0: Mas Gunjegi.
1: Yeah! Lunchbox with Ketan.
2: Kia ora, namaste, sat sri akaal, assalamu alaikum, aapka swagat karte hain aaj ke is khoobsurat din ke rainy day ke lunchbox show mein. Well, morning tak, abhi tak aapka time kaisa gaya? शेयर करिए मेरे साथ 5599 पे और मेरे साथ बने रहिए अभी से लेके 3 बजे तक. 3 बजे तक मैं यहाँ पे हूँ. बहुत सारी बातें होगी, बहुत सारे यू नो गपशप होंगे, कुछ ऐसे नए कंटेंट भी आपके साथ शेयर करूँगा जिससे आप अपडेटेड रहे बाय जस्ट लिसनिंग अस. जी हाँ, फीफा वर्ल्ड कप भी चल रहा है, उसके बारे में भी बताएंगे. क्रिकेट T20 वुमेन्स वर्ल्ड कप खत्म हो चुका है और एज यू ऑल नो वंस अगेन ऑस्ट्रेलिया इज द विनर. मेरे को एक चीज़ जानना है यार, पता नहीं क्या खाते हैं, क्या इनका माइंडसेट रहता है. मतलब इनका सही है, उठो प्रैक्टिस करो, खेलने जाओ, जीत जाओ वर्ल्ड कप, घर आ जाओ, खाओ, सो जाओ एंड रिपीट. इनका यही चलता रहता है. मतलब क्रिकेट जो भी सोचेगा ना, इट इज़ ऑलवेज ऑस्ट्रेलिया, पता नहीं क्यों. बट एनीवेज, अभी तो हाल फिलहाल फुटबॉल चल रहा है तो उसके बारे में बात करेंगे हम आज. बहुत अनगिनत मैचेस देखने को मिलेंगे, कुछ हो चुके हैं, 2 के रिजल्ट शायद आ चुके हैं, 2 या 3 मैचेस जो भी थे उसके बारे में भी आपकी आपसे बात होगी. टोटल एक्चुअली 2 ही मैच थे, एक हो चुका है और दूसरा अभी चल रहा है. जी हाँ, USA वर्सेस बेल्जियम के बीच अभी चल रहा है. सो यस, राउंड 16 ये हम आपको बताएंगे थोड़ी देर में. अभी के लिए एंजॉय करिए और होम से रेमेडीज के लिए कुछ कंटेंट भेजिए. मेरी अदा भी इश्क ने मेरे, ये है तुलसी कुमार की आवाज़ में.

0: I would love to hear some feedback, yes. But yes, homesick remedies ke liye, aaj hum phone lene ki try karte hain. To aap mujhe call kariye 0800-004-866 pe. Anyone over here, jo humare saath share karna chahe regarding what is the one thing you miss a lot. Yeah, chahe wo yahan se ho ya fir, you know, any place in New Zealand or agar kisi aur country ka bhi aap batana chahte hain, to aap share kar sakte hain. Do message to aaye hain, wo main padh lunga. But yes, aap mujhe call kariye 0800-004-866 pe taki baat ki jaye regarding homesick remedies ki. आजकल मैं देख रहा हूँ वैसे ना काफ़ी लोग बिजी हो गए थे, फ़ोन जो है, कॉल्स जो हैं वो काफ़ी नंबर्स में ड्रॉप डाउन हो चुके हैं. आते हैं बट आई थिंक ड्यूरिंग कॉम्पिटिशन्स ओनली. एक्चुअली वहाँ पे भी थोड़ा कम हो गए. लाइक कल हम फ्री में एक टिकट दे रहे था मैं, और मैंने ये बोला था कि कोई भी मुझे कॉल करेगा वो जीत जाएगा, और उसमें भी मुझे सिर्फ एक ही कॉल आया. लेकिन एक बाद में आया था कॉल, बट अनफॉर्चुनेटली तब तक तो कंपटीशन जो था वो हो चुका ख़त्म, यानी कि विजेता ऑलरेडी घोषित हो चुका था. बढ़िया, सभी भी आप कॉल कर सकते हैं 0800-004-866 पे. जो मैसेज आए हैं वो पढ़ लेता हूँ मैं तब तक. करण कहते हैं पापा टोयोटा से, आई मिस ईटिंग मैंगोज स्ट्रेट फ्रॉम द ट्री बैक इन फिजी, दे जस्ट डोंट टेस्ट द सेम. Is it? I mean, यार honestly बता ना, मैंने अभी तक यहाँ पे आम नहीं खाया न्यूजीलैंड में, अभी तक 10 साल हो गए मुझे. एक्चुअली टेक्निकली तो 3 साल ही हुए हैं ऑकलैंड में, क्योंकि इन्वरकागल में तो कहाँ आम थे यार, आम नहीं वहाँ पे, तो हम आम आदमी थे वहाँ के. बट यस, फोन आ रहा है, चलिए फोन उठा लेते हैं, उसके बाद हम जो दूसरा मैसेज है वो पढ़ेंगे. अरे गुस्सा हो गया लग रहा है, फोन ही कट कर दिया. एनीवेज, अनीता हेंडरसन से कहती हैं, आई मिस इवनिंग वॉक्स विद माई पेरेंट्स, दोज लिटिल चैट्स मेंट एवरीथिंग. यार ये तो मेरे को लगता है हर कोई मिस करता होगा यहाँ पे. काफ़ी यू नो ऑब्वियसली जुड़ी हुई है आपकी कहानियों से भी, तो आप डेफिनेटली वॉन्ट टू डू दैट ऑलमोस्ट एवरी डे. चलिए फ़ोन आया, उठा लेते हैं. हेलो
1: हेलो,
0: किससे बात हो रही है?
1: बजाज स्पीकिंग.
0: हाय बजाज, कैसे हैं आप?
1: गुड गुड गुड बेटा, गुड.
0: राइट, थैंक यू फॉर कॉलिंग. बताइए.
1: मैं संगम पिक्चर बहुत मिस कर रहा हूँ यार, उसके गाने.
0: अरे क्या बात है, कोई एक गाना बताइए, मैं देखता हूँ, अगर मेरी लाइब्रेरी में हो तो डेफिनेटली विल ट्राई टू प्ले इट.
1: मेरा प्रेम पत्र पढ़कर.
0: मेरा प्रेम
1: पत्र पढ़कर.
0: राइट, मेरा प्रेम पत्र पढ़कर. ओके,
1: तुम नाराज ना होना.
0: क्या बात है, तुम नाराज, मैं तो डेफिनेटली नहीं होगा.
1: ये 1962 में पिक्चर आई थी.
0: राइट,
1: इंडिया में.
0: राइट,
1: आई वाज 20 एट दैट टाइम.
0: राइट, तो आपने मतलब किसी के लिए डेडिकेट किया था ये, या फिर ऐसे ही बस पसंद आ गया था?
1: पहले तो मैं अपनी मम्मी के लिए डेडिकेट करता था.
0: अच्छा अच्छा,
1: अब अपनी मैडम के लिए, स्वीट हार्ट के लिए.
0: क्या बात है, क्या बात है, दैट्स वेरी वेरी स्वीट ऑफ यू. तुम नाराज ना होना. ओके, रफी जी ने गाया, राइट?
1: हाँ जी, यस यस यस,
0: पक्का. ठीक है, मैं ना इसको सर्च करता हूँ, अगर हमारी लाइब्रेरी पे हुआ तो डेफिनेटली विल प्ले फॉर यू.
1: थैंक यू वेरी मच. ऑलराइट,
0: थैंक यू बजाज जी, यू हैव, थैंक यू, यू हैव अ लवली इवनिंग, बाय. Afternoon, sorry.
1: You too, thank you.
0: Bye-bye. Lunchbox with Ketan. मुझे पसंद है लड़का.

0: की भाग दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फिजी कीर्तन पसंद है, लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फिजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहें तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फिजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फिजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने।
1: अरे बबीता, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी गुरुज नंबर यार।
2: क्यों, क्या हुआ?
1: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था, $20,000 चाहिए थे। बैंक गई तो इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत। एक हफ्ता हो गया, नो रेस्पॉन्स। फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट

0: अकाउंट में। गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है।
1: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री। कॉल 0800 LOGIC G, दैट्स 0800 564 424।
2: फ्यूल के दाम रोज बढ़ रहे हैं और स्मार्ट ड्राइवर्स अब स्विच कर रहे हैं। फ्यूचर है एफिशिएंट ड्राइविंग का और वेसिटी ओमोडा जेकू के साथ ये शिफ्ट और भी इजी हो जाता है। इंट्रोड्यूसिंग द पावरफुल J7 सुपर हाइब्रिड सिस्टम, परफॉर्मेंस भी, एफिशिएंसी भी, और ऑल इलेक्ट्रिक J5 EV, जीरो इमिशंस, मैक्सिमम सेविंग्स। आज ही वेसिटी ऑटो ग्रुप पहुंचे और जिमी टेलर और उनके एक्सपर्ट टीम से मिले। फॉर मोर इन्फो विजिट vesityautogroup.nz और सर्च फॉर वेसिटी ऑटो ग्रुप ऑन सोशल।
3: Oh no, we'll be late.
4: We'll be right. I'll call the AA.
5: Award-winning road service. Just one of the many benefits of AA membership. With over 45 ways to save every day, it's the membership with more. Join us today at aa.co.nz.
6: MediaWorks complaints. How can I help?
7: I've got this ad going around and around and around in my brain. And it's all because of you guys.
6: Thank you.
7: It's all I can think about.
6: What does it sound like?
7: Yeah, I'd rather not.
6: Go on, why don't you have a crack?
7: Okay, got a plumbing problem.
6: Oh, I need a bit more than that.
7: They've got your back.
6: That's starting to ring a bell. Why don't you sing it to me?
7: Oh, okay.
8: There's no better plumber to give it a crack.
6: Oh, wow. You're actually good. Do you want a job?
7: No, I want a plumber.
9: Advertise with
10: MediaWorks.
9: New Zealand listens to us.
11: Hi boys, एक कहानी सुनाती हूँ। एक राक्षस था, घमंड उसका शस्त्र था। वो धोखे से राज करता था।
12: मैं जो बना रहा हूँ वो इतिहास है।
13: But should we call her, sir?
14: इसकी माँ का नाम जानकी था। हम इसे सीता बुलाएंगे।
11: इतिहास जानता है ये कहानी कैसे खत्म हुई।
15: YRF Spy Universe presents
16: Alpha.
15: Now showing in cinemas. Distribution partner Forum Films. Rating TBC.
11: शुरू करो अग्नि परीक्षा।
17: Non-stop Bollywood.
18: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं।
17: हम playing Bollywood's biggest hits.
19: Lunchbox with Ketan.
20: हीरा लड़का है। टेलीस्कोप लेके ढूंढेगा ना तो भी इससे बड़े लड़का नहीं मिलेगा तुझे।
19: हम Office shoutout.
21: One of our listener, बजाज जी, उन्होंने एक गाना रिक्वेस्ट किया था। अनफॉर्चुनेटली हमारी लाइब्रेरी में तो नहीं है, बट यस थोड़ा सा मैं यहाँ पे चला लेता हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ कोर्स उन्होंने बहुत ही दिल से ये गाना सुनने की चाह रखी है। तो हमारा तो बनता है यार, लाइक यू नो वी शुड ट्राई टू मेक देम हैप्पी एंड यस। बट यस, आपने बताया था कि आप पहले अपनी मॉम के लिए ये गाना गाया करते थे या सुना करते थे, एंड नाउ आपकी मैडम जी यानी कि आपकी वाइफ के लिए। सो हियर यू गो, एंजॉय द सॉन्ग बजाज जी हमारे लिए, हमारी तरफ से।
22: लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा

0: पर बहुत ही प्यारा गाना है। नाउ आई नो, मेरे पापा भी बहुत सुना करते थे इस गाने को। बहुत ही मेरे पापा का भी वन ऑफ द फेवरेट सॉन्ग है। मोहम्मद रफ़ी जी ने गाया है, लता मंगेशकर भी इनमें आवाज़ दी है। संगम फिल्म का ये गाना है। 1960s की ये कहानी है, जब ये फिल्म जो है रिलीज़ हुई थी 1964 एक्चुअली। जी हाँ, जिसमें राज कपूर, विजयंतीमाला, राजेंद्र कुमार का एक्चुअली उतना बड़ा नाम नहीं हो, ऑब्वियसली उन्होंने बहुत ही काम किया है, बहुत सारा काम किया है, बट जितना लाइमलाइट बाकी के सितारों को मिला है उस टाइम के, उतना मुझे लगता है, मेरे हिसाब से, हो सकता है मैं गलत हूँ यहाँ पे, बट जितनी मैंने फिल्में देखी हैं उस हिसाब से मुझे लगता है कि इन्होंने शायद उतनी फिल्में नहीं की हैं कंपेयर टू बाकी के जो तब के कलाकार थे। बट बहुत ही खूबसूरत गाना है। बट थैंक यू सो मच बजाज जी ये गाना हमें रिक्वेस्ट करने के लिए। एंड जस्ट लेट यू नो, इसके गाने के जो बोल हैं वो शैलेंद्र जी ने लिखे हैं, हसरत जयपुरी ने भी लिखे हैं, और जो म्यूजिक डायरेक्टर है वो है शंकर जयकिशन ने किए हैं। बट यस, ये गाना चल रहा है तो मैं आपके लिए पढ़ भी लेता हूँ। ऑफिस शाउट आउट से कुछ मैसेजेस आए हैं, उसे भी मैं पढ़ लेता हूँ। अमित भाई कहते हैं पापा ट्विटर से, क्या बात है, आज पापा ट्विटर से काफ़ी लोग मैसेज भेज रहे हैं। उन्होंने कहा है कि वर्किंग फ्रॉम द ऑफिस टुडे, होममेड चिकन बिरयानी पैक्ड बाय माय वाइफ, ये उन्होंने कहा है। अच्छा सॉरी, मैं कंफ्यूज हो गया, मुझे लगा ओके नेवर माइंड। प्रिया कहती हैं वर्क फ्रॉम होम टुडे, जस्ट ऑर्डर्ड सुशी फॉर लंच। यार मैंने सुशी का भी ट्राई नहीं किया यार, सुशी सही में अच्छी होती है, अगर हाँ तो मुझे बताइए लाइक कहाँ पे सबसे बेस्ट होती है, दैट अगर वहाँ जाके मैं खाऊँगा सुशी तो डेफिनेटली मैं मायूस होके नहीं निकलूंगा। तो मुझे बताइए आप कि बेस्ट सुशी ऑकलैंड में कहाँ मिलती है। मैं पापाटोटो में रहता हूँ और ऑब्वियसली सिटी आता हूँ, बट बताइए मुझे यार, आई वुड लव टू ट्राई, बिकॉज मेरे को बहुत पसंद है नए नए खाने ट्राई करने का। आइडियली तो मैं वेज ही ट्राई करूँगा, मेरे को पता नहीं सुशी वेज में आता है कि नहीं आता है, आई डोंट नो। आरव कहते हैं ही इज़ जस्ट 14 एंड ही जस्ट मैसेज्ड फ्रॉम मनुकाओ, अरे क्या बात है, लंच ब्रेक एट स्कूल मॉम पैक्ड पास्ता एंड फ्रूट फॉर मी। यार ये मेरा सवाल पता है बहुत टाइम से है, ये स्कूल्स में फोन अलाउड होते हैं यार, मैं आई डोंट नो। बट थैंक यू सो मच आरव, थैंक यू सो मच, आई डिडंट मीन टू आस्क दैट, बट चलो होती ना पूछने की तो वो हमने पूछा है। बट थैंक यू सो मच यार टू ऑल द लवली लिसनर एंड टू सेंडिंग मी द मैसेज। एंजॉय करिए अगला गाना भी तेरे पास में, जो कि टॉप हिट ऑफ द आवर में काउंट होता है।
1: टॉप हिट ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, बिल्ड योर ड्रीम्स।

इस फिल्म का एक्चुअली मुझे एक और गाना याद है, बैंग बैंग मूवी के नाम है राइट, नाइट एंड डे या डे एंड नाइट, कौन सी फिल्म का था उसका रीमेक था शायद ये राइट, टॉम क्रूज वाली, आई थिंक नाइट एंड डे ओनली, बट काफ़ी लोगों को पसंद नहीं आई फिल्म है, फिल्म ये पसंद नहीं आई, मुझे पसंद आई बिकॉज मैंने ओरिजिनल देखी नहीं है तो पता नहीं, मैं कंपेयर तो कर नहीं सकता, बट आई रियली एन्जॉयड, और मोस्टली मुझे ऋतिक रोशन की फिल्में जो हैं बहुत ही पसंद आती है, लाइक यू नो आई थिंक या अगर आप मुझे पूछोगे मेरा फेवरेट एक्टर कौन है, नॉट लाइक डाई हार्ट फैन हूं मैं उसका, ऐसा नहीं है, बट फेवरेट एक्टर कौन है तो डेफिनेटली ऋतिक रोशन, यस फॉर श्योर। बट यस, आज पढ़ लेते हैं आज की इस खूबसूरत दिन के टाइम, खूबसूरत दिन आज यानी कि आज का डे के दिन क्या हुआ था। न्यूजीलैंड लेबर पार्टी, जी हाँ आप सभी ने सुना ही होगा, डेफिनेटली सपोर्टर भी होंगे आप, उसके बारे में बताने जा रहा हूँ बिकॉज ये 7 जुलाई आज के दिन 1916 की बात है जब वेलिंगटन में बनी थी, इससे कई लेबर ग्रुप्स ने मिलकर बनाया था जिनका मेन गोल वर्कर्स के राइट को प्रोटेक्ट करना और उनकी प्रॉब्लम्स को पार्लियामेंट तक पहुँचाना था। लेबर पार्टी ने फेयर वेजेस, बेटर वर्किंग कंडीशंस और सोशल जस्टिस के लिए काम किया। आज ये न्यूजीलैंड की सबसे पुरानी और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टीज में से एक है और देश की पॉलिटिक्स में इसका बहुत ही बड़ा रोल है। चलिए ये तो लेबर पार्टी का हुआ, आप मुझे बताइए नेशनल पार्टी जो है वो कब फॉर्म हुई थी। 5599 से नंबर जहाँ पे आप मुझे बताइए टेक्स्ट भेज के, नेशनल पार्टी का जो पहला दिन था वो कौन सा था।

0: वेलकम बैक। वेल अब बात करते हैं फटाफट से, मैं आपको अपडेट दे देता हूँ फीफा वर्ल्ड कप के लिए। जो फीफा वर्ल्ड कप में चला यूएसए वर्सेस बेल्जियम, बेल्जियम अभी आगे चल रही है, दो गोल मार चुकी है और यूएसए एक गोल पर ही है राउंड 16 पे, यानी कि राउंड ऑफ 16 सिएटल स्टेडियम में ये मैच हो रहा है। तो बस आप और भी अगर अपडेट चाहते हैं तो बस कनेक्टेड रहिए, सुनते रहिए हमारा शो। 42 मिनट्स हो चुके हैं, बट यस लेट्स गो फॉरवर्ड एंड लेट्स टॉक अबाउट हमारे पॉडकास्ट, जो कि होपफुली बहुत ही जल्द वीडियो पॉडकास्ट भी अब आने वाला है रिगार्डिंग जो AI वाला पॉडकास्ट हमने रिकॉर्ड किया था। बट यस दर्शित पांड्या, आप AI स्पेशलिस्ट की बातें सुनिए कि कैसे AI आपको कितना कुछ हेल्प कर सकता है फॉर योर यू नो अपने रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी होती है उसमें कितना हेल्प करेगा काफ़ी चीज़ें सॉर्ट करने के लिए एक प्रॉपर असिस्टेंट बन के। जी हाँ, तो ये काफ़ी चीज़ें हैं, तो एक बार आपको पॉडकास्ट तो सुनना पड़ेगा, बहुत ही अच्छे डिटेल में उन्होंने बात बताई है। साथ में उन्होंने ये भी बताया कि क्या अपॉर्चुनिटीज़ बन सकती है स्किल से लेके प्राइवेसी कंसर्न्स, जॉब सिक्योरिटी और कैसे आप इन फ्यूचर अपना करियर सेट कर सकते हैं, ये सारी बातें उन्होंने की है। तो आप ड्राइव लिखिए और 5599 पे भेज दीजिए बिफोर वी टेक इट अवे। जी हाँ, जस्ट टू लेट यू नो, दर्शित पांड्या इज अ सीनियर प्रिंसिपल इंजीनियर जो कि प्लेटफॉर्म एट सर्को एंड एन AWS कम्युनिटी बिल्डर। उन्होंने बहुत ही बढ़िया बात की है। सो यस, ड्राइव लिखिए और 5599 पे भेज दीजिए ताकि AI वाली जो इन्फॉर्मेशन है वो आप तक डायरेक्टली पहुंच जाए ऑडियो लिंक के थ्रू। जी हाँ, आपको लिंक मिल जाएगी, उसी को फॉलो करके आपको सुनना है।
1: लंच बॉक्स विद केतन,
2: इसके पीछे ना तीन चार लड़कियां पड़ी हुई हैं।
1: इसके पीछे
3: लेडीज एंड जेंटलमैन,
4: अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रिस्पे, क्योंकि दुनिया में ऑलरेडी बहुत सारे परफेक्ट पॉलिश्ड इंस्टाग्राम फ्रेंडली स्टोरीज हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं। यहाँ कहानियाँ होती हैं रॉ, इमोशंस होते हैं रियल और कॉन्वर्सेशंस होते हैं बिना मास्क के।
5: राजा, मंत्री, चोर, सिपाही सब यहाँ आते हैं।
4: अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रिस्पे ऑन रोवा, स्पॉटिफाई और एनीवेयर यू गेट योर पॉडकास्ट।
6: अरे बबीता, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी गुरुज नंबर यार।
7: क्यों, क्या हुआ?
6: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था, $20,000 चाहिए थे। बैंक गई तो इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत। एक हफ्ता हो गया, नो रेस्पॉन्स। फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में। गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है।
8: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री। कॉल 0800 लॉजिक जी, दैट्स 0800-564-424।
4: Lunchbox with Ketan.
9: ऐसा बजाऊंगा ना कि तेरे कानों में रोज मेरी आवाज गूंजेगी। हम
10: चटनी शॉट्स,
0: चटनी शॉट्स के सेगमेंट में आपका स्वागत है। अभी वैसे तो देखिए, बात तो मेरे को फटाफट बोलनी ही थी, लेकिन यस अभी बर्फबारी भी हो रही है, कई जगह बारिश भी हो रही है और कुछ इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है सीनियर कॉप्स पे। तो जी हाँ, उसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। बट यस, कुछ हेडलाइंस हैं जो आज की लेटेस्ट खबर है, उनमें से एक जो काफ़ी हाईलाइट हो रही है वो ये है कि न्यूजीलैंड पुलिस के एक सीनियर ऑफिसर डिटेक्टिव इंस्पेक्टर केविन वेरी, उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन चल रही है। उन पर चाइल्ड प्रोटेक्शन और एडल्ट सेक्सुअल असॉल्ट के 50 से ज़्यादा केसेस को सही तरह हैंडल ना करने का कंसर्न है। मतलब उन पे नहीं है, ये सब उन्होंने कुछ नहीं किया, बट उनका जो हैंडल किया था केस वो उन्होंने ढंग से नहीं किया, उस वजह से इन पे लाइक ना इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इस पे पुलिस ने पहले एक पुराने केस का रिव्यू भी किया, जिसके बाद और भी केसेस दोबारा इन्वेस्टिगेट करने का डिसीजन लिया गया। लगभग 1000 पॉलिसीज फाइल्स चेक की गई और टोटल 50+ केसेस दोबारा खोले गए। सभी विक्टिम्स को कॉन्टैक्ट किया गया और स्पेशलिस्ट इन्वेस्टिगेटर्स अब इन केसेस पर काम कर रही हैं। चलो, अच्छी बात तो ये कि केसेस फिर से खुल रहे हैं और जो जिनके ऊपर सही तरीके से नहीं किया गया इन्वेस्टिगेशन उस पर भी काम हो रहा है, विच इज़ गुड। दिस इज़ व्हाट आई लाइक इन न्यूजीलैंड, दिस इज़ एक्चुअली व्हाट आई लाइक इन न्यूजीलैंड।

0: Lunchbox with Ketan.
1: हीरा लड़का है, टेलीस्कोप लेके ढूंढेगा ना तो भी इससे बेटर लड़का नहीं मिलेगा तुझे.
0: हम
2: The Breakfast Show with VJ and Pooja.
3: बुरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे.
4: Those people who live around the Hunua area, वहाँ पर 1 degree है टेम्परेचर.
5: जितने भी लोग इस इलाके में हैं, enjoy करते रहे आप. West West side है ना, West side of Auckland है ये. I have lots of fun basically with
4: क्या?
5: The cold weather.
4: कौन है?
5: Hunua और Waitakere.
4: अच्छा Hunua West में.
5: किधर है Hunua?
2: The Breakfast Show with VJ and Pooja.

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: वेदर गाल चाल, आज 70% चांस है बारिश के, 15 डिग्रीज आज का मैक्सिमम टेम्परेचर रहने वाला है, 10 डिग्रीज आज का मिनिमम टेम्परेचर रहने वाला है, 5:19 पे होगा आज का सनसेट, लेकिन 4.3 mm रिकॉर्ड होगी आज की बारिश।
0: लंच बॉक्स विद केतन,
2: ऐसा बजाऊंगा ना कि तेरे कानों में रोज मेरी आवाज गूंजेगी।
0: लंच के मंच पे
1: नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, आपका फिर से स्वागत करते हैं आज के इस खूबसूरत दिन के खूबसूरत शो में जिसका नाम है लंच बॉक्स शो। वेल यस, आज इस आर में भी आप बने रहिए, बिकॉज हम थोड़ी देर में तो अपडेट करते ही रहेंगे। फीफा ऑलमोस्ट अबाउट टू हिट द फाइनल थिंग, और जल्द ही उसका रिजल्ट मिल जाएगा कि कौन जीतने वाला है, तो आप बस बने रहिए, सुनते रहिए आज का लंच बॉक्स शो। थोड़ी देर में बताऊंगा कि क्या रिजल्ट रहा है वैसे यूएसए वर्सेस बेल्जियम का, बट यस, उसके अलावा और भी चीजें होगी, मैं मौके देने वाला हूं जहां पे आप इवेंट्स के लिए ट्राई कर सकते हैं अपना लक, और अगर आप सक्सेसफुल रहे तो डबल पास जीतने का आपके पास मौका हो सकता है। तो बस आप ट्यून इन रहिए और सुनते रहिए मेरा शो लंच बॉक्स शो, थोड़ी देर में मिलता हूं। सबसे पहले तो आप ये आइला रे आइला दलेर मेहंदी की आवाज में एंजॉय करेगा ना।
0: बचाओ क्या

0: वेलकम बैक लंच पॉक शो, आप सुन रहे हैं। आप फोन उठाइए और मुझे 5599 में टेक्स्ट भेज दीजिए रिगार्डिंग द लंच टाइम फ्रंट लाइन के लिए, यानी कि आज या कल मेरे शो के बाद। इफ एनीथिंग हैज हैपेंड टू यू जो कि आपको इरिटेट किया हो, एंड इफ यू फील लाइक शेयरिंग विद अस, डेफिनेटली प्लीज डू, आप हमें कर सकते हैं। बट यस, एट द सेम टाइम मैं कॉल के लिए भी आपके आपके आपके फोन का इंतजार करूंगा मैं थोड़ी देर में। नॉट नाउ बट विद इन लाइक आई थिंक इन नेक्स्ट 2 मिनट्स में आपको मैं बताने वाला हूं कि कब कॉल करना है। आप मुझे कॉल करके भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि लंच टाइम रेंट लाइन के लिए मुझे लगता है कि अभी तक किसी से बात नहीं हुई है। सो यस, आई एम ओपन फॉर द कॉल्स एज वेल टुडे। स्टे ट्यून्ड एंड कीप लिसनिंग टू माय शो लंच बॉक्स शो।
1: लंच बॉक्स विद केतन।
2: इसके पीछे ना 3-4 लड़कियां पड़ी हुई हैं।

0: चाहे आप हमके दें चैट 20 को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माई एफएम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी, बसेस बिलबोर्ड ट्रेन स्टेशन स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वीव कॉट द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड। कॉल मी कशिका ऑन 021-769-755। मीडिया वर्क्स, मीडिया दैट वर्क्स।
1: रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम।
2: हाय, मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, जैसे कि क्राइंग विंडोज, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है।
1: मॉइस्चर और वेंटिलेशन का प्रॉब्लम लगता है।
2: और पता है, मेरे बच्चों को एस्मा और एलर्जी भी हो गई है।
1: और दैट्स नॉट गुड। हम आपके सभी प्रॉब्लम्स रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम से सॉल्व कर सकते हैं। इससे आपका घर रहेगा वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर। और हम मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक और तोशिबा हीट पंप्स के ऑथराइज्ड डीलर्स भी हैं।
3: कॉन्टैक्ट रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम ऑन 0800-787-111। रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम्स, सॉल्विंग वेंटिलेशन प्रॉब्लम्स फॉर ओवर 18।
4: Do you know why so many of your neighbors are installing a shower dome shower top? Just watch the demo video at showerdome.co.nz. You'll see how a shower dome stops steam misting up your mirrors, stops mold and mildew, and saves energy. No extractor fans required. The best thing you can do for your home is install a shower dome. Available now from your local installer.
5: Showerdome.co.nz.
6: A proud member of New Zealand's Master Builder, building high-quality standalone and terraced houses. We're one of the award-winning teams for House of the Year, one of the most trusted and experienced subdivisions and building specialists. We manage from subdivision until the end of CCC. Our customers always recommend us to their closest friends. Call us on 0800-233-111.
7: Indelible Homes, your building expert.
8: Before you can vote, you need to be enrolled. We're making it easy, with electoral commission teams popping up at events and venues across Aotearoa New Zealand, so you can enrol, check or update your details without any fuss. Find out where our teams will be at vote.nz.
9: Home loan के साथ थोड़ा cash भी पाना चाहते हैं? नया home loan लेना हो या मौजूदा loan का review करवाना हो? Squirrel आपको दिलाएगा एक ऐसी जबरदस्त deal कि आपकी हो जाएगी बल्ले बल्ले। जानिए power of the Squirrel effect. Squirrel.co.nz.
10: With Ketan.
11: मुझे पसंद है लड़का।
10: हम। Lunch time, rant line.
12: चलिए फोन उठाइए और मुझे कॉल कर दीजिए 5599 में, तो आपको टेक्स्ट भेजना है, बट 0800-04-866 पे आप मुझे कॉल करिए और बताइए कुछ ऐसी घटना आपके साथ घटित हुई है जो आप यू नो यू मस्ट हैव फेल्ट बैड, इरिटेटेड अबाउट, या फिर इन शॉर्ट कुछ कर नहीं पाए, या फिर अगर किया भी हो तो प्लीज़ शेयर विद अस कुछ ऐसी यू नो चीज़ हुई हो, या फिर इवन अगर आप चाहते हैं कि लंच टाइम रेंट लाइन कुछ खाने से रिलेटेड भी कुछ ऐसी चीज़ है तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। कॉल करिए मुझे 0800-004-866 पे। लेट्स चेक इट आउट कि हमारे लिसनर्स के साथ क्या कुछ हुआ है। अगर कुछ ऐसी बातें हैं जो आप यू फील लाइक शेयरिंग इट, प्लीज़ डू। तब तक कुछ मैसेजेस पढ़ लेते हैं, मैसेज तो आए हैं मुझे। एक ने गाने का भी रिक्वेस्ट किया है, अखिल

0: ਪੀਓ?
1: ਮੈਂ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਆਂਖ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਲੈਫਟ ਆਂਖ ਦੀ।
0: ਓਕੇ।
1: ਉਸਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੂੰ ਯਾਰ, ਥੋੜਾ ਕਮ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣੇ ਲਗਾ ਹੈ।
0: ਰਾਈਟ ਰਾਈਟ, 11 ਤਾਰੀਖ ਕੋ 11
1: ਜੂਨ ਕੋ ਹੋਈ ਥੀ।
0: ਹਾਂਜੀ।
1: ਲੈਫਟ ਆਈ ਕੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਡਰਾਈਵ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਮੁਝੇ।
0: ਰਾਈਟ।
1: ਤੋ ਮੁਝੇ ਜਹਾਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪੜਤਾ ਟੈਕਸੀ ਪੇ ਜਾਣਾ ਪੜਤਾ ਹੈ।
0: राइट राइट, तो अभी आपने ऑपरेशन मतलब हो गया है, अभी चल रहा है ट्रीटमेंट?
1: हो गया, ठीक हो, चल रहा है, अब तो मैं घर में रेस्ट कर रहा हूँ बस।
0: राइट राइट राइट राइट, तो थोड़ा फील तो होता ही होगा घर पे एकदम
1: जल्दी ठीक हो जाए।
0: हाँ, नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। वैसे आप कहाँ रहते हैं, इफ यू डोंट माइंड शेयरिंग?
1: मैं मनरेवा में।
0: मनरेवा,
1: मनरेवा।
0: ओके ओके,
1: मनरेवा में।
0: चलो,
1: फ्रॉम द लास्ट 18 इयर्स वी आर इन मनरेवा।
0: वाओ, दैट्स प्रीटी गुड, दैट्स प्रीटी गुड। 18 साल हो गए, टाइम मस्ट हैव फ्लाउन। अब फैमिली होगी यहाँ पे?
1: बिल्कुल, दो बेटे हैं, एक मेलबर्न में है, एक यहाँ है, छोटा यहाँ है, बड़ा मेलबर्न में है।
0: राइट राइट, चलो बढ़िया, वेरी।
1: I am 82, looking at 28.
0: Yeah, actually, you don't sound like 82. And आप काफी एक्टिव भी लग रहे, like, you know, by listening to you, it is more looking like you are very very active.
1: Sure, I'm always active. अभी granddaughter की शादी की है।
0: अरे क्या बात है,
1: granddaughter की शादी की है।
0: No worries, many congratulations to her as well. And thank you. Hum team actually want to wish you as well कि आपके जो आँख का जो problem है वो जितना जल्दी हो सके free हो, and then आप फिर से बाहर जा सके without any assistance.
1: Thank you
0: for calling, Vijay ji. You have a lovely afternoon. Bye bye.
1: You too. Thank you.
0: Well, काफी अच्छा लगता है ऐसे बात करके, तो आप भी हमें कॉल कर लीजिए करें जब भी आपको मौका मिले। बट यस, कुछ मैसेजेस आए हैं, ये पढ़ लेते हैं। Why does your phone battery last all day on weekends but on a work day it's down to 20% before lunch? ये भेजा है अखिल ने। ये सेम तो नहीं है अखिल, ये नंबर दूसरे हैं, तो मेरे ख्याल से दूसरा अखिल ही है। बट यस, उसके बाद एक और मैसेज आया है आरजू का, वो कहती हैं, टुडेज रेंट केतन, पीपल हु स्टैंड राइट इन फ्रंट ऑफ द ट्रेन और लिफ्ट डोर विदाउट लेटिंग अदर्स गेट आउट फर्स्ट, वे इज द पेशेंट? That is so true. ये चीज बहुत ज्यादा इरिटेट करती है, बहुत ही ज्यादा। यहाँ पे वो चीज होना चाहिए, सिविक सेंस, वे द सिविक सेंस ब्रो। आखिरी मैसेज है, वाई इज इट दैट द मोमेंट यू वॉश योर कार ऑकलैंड डिसाइड इट्स परफेक्ट टाइम टू रेन? आज वही हो रहा है एक्चुअली। अभी लास्ट वीक बहुत ही बढ़िया सनी वीक रहा हमारा, तो अभी वो पूरा सनी जो है ना, वो फिर से बोल रहा है कि नहीं भाई अब नहीं, बस आपको लास्ट वीक मिल गया ना, सो नाउ लेट्स बी बैक। सो यस, अगर किसी को कार धोनी तो बाहर ही रख दो कार, अपने आप मेरे को लगता है धुल जाएगी। सोप नहीं लगाना पड़ेगा तो भी क्या हुआ, कार तो एटलीस्ट वॉश ही हो जाएगी। बट थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लवली मैसेजेस एंड कॉल्स के लिए भी। बीच में एक कॉल आया था बट वो मिस हो गया, बिकॉज आई वॉज ऑलरेडी ऑन कॉल। बट अगेन थैंक यू सो मच, आप इंजॉय करिए बहुत ही प्यारा। माशुका महबूब महमूद और राघव चेतन की आवाज़ में, ये बहुत ही प्यारा गाना।

0: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स

0: Well, अभी की लेटेस्ट खबर यह है कि न्यूजीलैंड के काइकोरा डिस्ट्रिक्ट में हैवी रेन और फ्लडिंग की वजह से स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है। कोहाई रिवर अपने बैंक्स के ऊपर बह रही है, जिसकी वजह से कोई लो लाइंग एरियाज में पानी भर चुका है। यानी कि बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे लो लैंड एरिया जो है वहाँ पे पानी भर चुका है। अथॉरिटीज ने रेसिडेंट्स को तुरंत हायर ग्राउंड पर जाने की और ज़रूरत पड़ने पर अपने घर छोड़ने की एडवाइस दी है, ताकि कुछ ऐसे सिचुएशन में ना फंसें। बट रेड हैवी रेन वार्निंग अभी भी लागू है और अगले कुछ आर्स में और बारिश होने की संभावना है। पुलिस, फायर और इमरजेंसी टीम्स और सिविल डिफेंस मिलकर इवैक्यूएशंस और रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। कई रोड्स इंक्लूडिंग पार्ट्स ऑफ स्टेट हाईवे 1 भी बंद कर दिए गए हैं। वैसे ऑफिशियल सभी लोगों से अपील कर रहे हैं कि सिर्फ ऑफिशियल अपडेट्स फॉलो करें और बिना ज़रूरत ट्रैवल ना करें। यानी कि जितना हो सके नहीं, स्ट्रिक्टली अपने आप को रोक दो दैट यू डोंट ट्रैवल एनीवेयर अनलेस, अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो। एंड रिस्क नहीं लेने का चाहे तो अगर आपके आसपास कोई ऑफिशियल्स हैं तो उनकी हेल्प भी ले लेना, जस्ट इन केस अगर कुछ हो तो। बट यस, स्टे अपडेट एंड कीप लिसनिंग टू अस एज वेल। हम भी यहाँ पे आपको अपडेट बताते रहेंगे कुछ ऐसा है तो, अनलेस अगर आप लोकल जो रेडियो होते हैं उसे भी सुनते रहिए और जो भी वेदर है फॉरकास्ट उसको भी सुनते रहिए।
1: लंच बॉक्स विद केतन।
2: हीरा लड़का है, टेलीस्कोप लेके ढूंढेगा ना तो भी इससे बेटर लड़का नहीं मिलेगा तुझे।
3: वो दिन जब मोहब्बत खतों में होती थी,
4: ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर के तुम नाराज ना होना,
3: और कानों में

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: Mind, सिर्फ रोवा पर.
1: Do you know why so many of your neighbors are installing a shower dome shower top? Just watch the demo video at showerdome.co.nz. You'll see how a shower dome stops steam misting up your mirrors, stops mold and mildew, and saves energy. No extractor fans required. The best thing you can do for your home is install a shower dome. Available now from your local installer.
2: Shower dome.
3: Karan Aujla brings his P-pop culture world tour to New Zealand. Auckland, Spark Arena, this August. Tickets at livenation.co.nz. Don't miss Karan Aujla Live.
4: Why did I join People's Panel? Because this is the city I live in, so I care about it, and I wanted my voice to be heard.
5: Search and join the online People's Panel. Complete surveys, win prizes. Tāmaki Turiki, all together Auckland.
6: Lunchbox with Ketan.
7: इसके पीछे ना तीन चार लड़कियां पड़ी हुई हैं.
6: इसके पीछे
7: हम
6: लंच के मंच पे दिल से दिल तक.
8: वेल, चलिए बात करते हैं बॉलीवुड की. कुछ स्कोर कार्ड पे भी थोड़ी नजर डाल देते हैं. बॉलीवुड से कुछ खबर आई है अभी ओवर द वीकेंड. कुछ फिल्में रिलीज हुई थी अभी हाल फिलहाल. एक और नई न्यूज़ आई है दिलजीत की. जो एक नई फिल्म है सतलुज वो हटा दी गई है OTT से. मुझे ऑब्वियसली इतना ज़्यादा पता नहीं है कि एग्जैक्टली क्या रीज़न है, बट मैं जिन लोगों ने फिल्म देखी है, जो लकी रहे देखने लिए, उन्होंने बताया है कि फिल्म काफ़ी रियलिटी बेस्ड है. अपार्ट फ्रॉम फ्यू नेम चेंजेस, बट सब कुछ सच्चाई है, ऐसा उन्होंने कहा है. जो खुद पंजाब से उन्होंने ही कहा है ये. उन्होंने थोड़ी मेरे को बेसिक बताई है, बट मुझे लगता है कि जो तरीका उन्होंने बताया है मुझे लगता है कि बहुत ही इनकम्प्लीट है. तो आई वुड प्रेफर कि मैं खुद एक बार अपनी तरफ से रिसर्च करूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा. बट यस, अल्फा रिलीज़ हुई थी ओवर द वीकेंड 3 जुलाई को, और भी उसका वर्डिक्ट जो है पेंडिंग है. 37.3 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है इंडिया से. बेबी डू डाई डू 2 करोड़ का कलेक्शन कर चुकी है. ओवर 2+ करोड़ का कलेक्शन कर चुकी है. वेलकम टू जंगल 114.76 का कलेक्शन कर चुकी है. नवचक्र 0.062 ये हो चुकी है फ्लॉप. और तेरा मेरा नाता इज ऑल्सो फ्लॉप. वैसे कुछ फिल्में रिलीज होने वाली हैं. धमाल 10 जुलाई को रिलीज होने वाली है. बंटवारा 1947, आवारापन 14 अगस्त को. बंटवारा जो है वो 13 अगस्त को रिलीज होने वाली है, और इथा 28 अगस्त को. वैसे धमाल 4 से याद आया, मेरा भी एक गाना रिलीज होने वाला है 10 जुलाई को. आई एम वेरी एक्साइटेड. बेसिकली अब तो आपको पता पड़ ही गया होगा सफायर 2.0. बेसिकली जो ओरिजिनल गाना है सफायर का, उसे मैंने और मनप्रीत भाई ने मिलके, मनप्रीत भाई बोले तो जिन्होंने पापा टोटे सॉन्ग लिखा है, पापा टोए टोए पापा टोए टोए, वो गाना जिन्होंने लिखा है, उन हम दोनों ने मिलके ये गाना, लिरिक्स ऑब्वियसली उन्होंने लिखे हैं, बट पूरी फिल्मिंग मैंने की. और यू नो, अंडर VR3 फिल्म्स, जो मेरा प्रोडक्शन हाउस है, उसके अंडर हमने ये फिल्म जो है फिल्म की है. खास बात ये कि हमने ऑकलैंड से ऑल द वे अनटिल वेलिंगटन तक ट्रैवल किया है, एंड देन अदर साइड हम कोस्ट एरिया से ड्राइव करते हुए वापस आए हैं. तो ये सारी जो फीचर्स हैं हमने ट्रैवल किया है, बहुत ही अमेजिंग है. हिंदी और पंजाबी के गाने इसमें मिक्स हैं, तो यू विल बी अमेज, आपको बहुत पसंद आएगा. वी आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट दैट. बस 10 तारीख को रिलीज़ होगा, लेकिन उससे पहले 9 तारीख को एक्सक्लूसिवली ओनली ऑन हम ऑडियो लॉन्च करने वाले हैं, एक्सक्लूसिवली ओवर हियर इन द ड्राइव शो. किस टाइम पे करेंगे वो हम आपको जल्दी बताएंगे. उसका भी पोस्टर और उसकी भी जो अपडेट है हम आपको देंगे. आपको क्या करना है, आपको बस हमें सोशल मीडिया पे फॉलो कर लेना है, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, हर जगह. रोआ ऐप पे भी आप फॉलो करिए, बिकॉज वहाँ पे भी हम कंटेंट डालते रहते हैं. सो यस, स्टे ट्यून्ड फॉर अ क्विक अपडेट. बट यस, फुटबॉल की अगर बात करें तो 3rd गोल भी हो चुका है बाय बेल्जियम, यानी कि USA भी बहुत पीछे हो चुकी है. 1-3 से बेल्जियम बहुत आगे हो चुकी है फीफा वर्ल्ड कप में.

Welcome back. Well, a quick update regarding 25th of July. The Trust Arena में आ रहे हैं legend. क्या बात है, मतलब मैं तो कहता हूँ वर्ल्ड लेजेंड बन चुके हैं ये. राहत फतेह अली खान आ रहे हैं दो साल के बाद ऑकलैंड में एक अनफॉरगेटेबल नाइट अपने बेटे के साथ. एक्सपीरियंस करें द मैजिक ऑफ हिज टाइमलेस हिट्स सोल स्टिरिंग कवाली और बहुत ही पावरफुल इनकी जो सरगम है, इनकी जो मुर्खियाँ हैं, ये सुनने के लिए. बहुत ही अमेजिंग सिंगर है. आई डोंट थिंक सो इतने बड़े लेजेंडरी में कोई और आसपास भी है. डेफिनेटली बहुत से अच्छे सिंगर्स हैं, बट जिस लेवल पे ये इंटरनेशनल स्टार बन के बैठे हैं उतना आई डोंट थिंक सो इतने उस लेवल पे हैं. बट यस, ये शो जो है वो प्रेजेंट किया जा रहा है जेके स्टार प्रोडक्शंस, गोट लाइव, ड्रीम्स एंटरटेनमेंट, सिमरन प्रोडक्शंस एंड शहजादा प्रोडक्शन की तरफ से. dryticketsdot com पे जाके आप टिकट ले सकते हैं. द वेन्यू इज वन एंड ओनली द ट्रस्ट एरिना, जो कि 25th of July को ये इवेंट करवा रहे हैं.

0: आवाज गूंजेगी।
1: Kia ora, namaste, welcome back. You are listening to Lunchbox. अगर आपने मुझे अभी join किया, thank you so much for joining in. बने रहिए. वैसे result भी आ चुका है, जिसके बारे में थोड़ी देर में बताऊंगा कौन जीता है between USA and Belgium. But yes, of course, Belgium जीत चुकी है 4-1 से. But विस्तार से मैं थोड़ी देर में बताऊंगा कि क्या एग्जैक्टली किस तरह से मैच हुआ है. बट एक और खास चीज आपके लिए बताने वाला हूँ. मेक श्योर करना कि आप सोच के रखिए, एक शो होने जा रहा है, द ग्रेट कॉमेडी नाइट फीचरिंग कृष्णा अभिषेक एंड राजीव ठाकुर. जी हाँ, ये इनका शो होने जा रहा है ऑन 18th July, विक्ट्री कन्वेंशन सेंटर. आप bookmyevent.co.nz पे जाइए और टिकट खरीद लीजिए, बिकॉज बहुत ही जल्दी से इसके टिकट जो है बिकते जा रहे हैं. VIP टिकट जो है वो तो कब से, मतलब मेरे को लगता है लेस देन अ मंथ ही हो चुके थे, बिक चुके थे. बट यहाँ पे हमारे लिसनर्स के लिए बहुत ही खास चीज हम लेके आए हैं, जहाँ पे कृष्णा अभिषेक और राजीव ठाकुर पहली बार यहाँ पे आ रहे हैं न्यूजीलैंड में परफॉर्म करने, और बहुत ही बड़े सितारे हैं ये. एज यू ऑल नो, अगर आप कपिल शर्मा फॉलो करते हैं, अगर नहीं भी करते तो भी इनका इंडस्ट्री में बहुत नाम है. तो यस, ये आ रहे हैं यहाँ पे. बेसिकली क्या करना है, इस आर में आपको सोच के रखना कोई ऐसा जोक जो आप मुझे सुनाएंगे कॉल करके 0800-004-866 पे. और उस जोक पे अगर मैं हंस लिया, जैसे कि कल एक बंदा हुआ था, उस जोक पे अगर हंस लिया मैं, तो डेफिनेटली आप स्ट्रेट अवे टिकट लेके जाएंगे डबल पास का. जी हाँ, So, बहुत ही बढ़िया मौका है आपके पास. बढ़िया से एक और चीज़ है, अगर मान लो एक ही बंदे ने कॉल किया मुझे, और उस एक बंदे ने, चलो मैं नहीं हंसा या फिर उसने जोक उस तरह से नहीं मारा, तो भी मैं उसको दूंगा. यानी कि मेरे को टिकट तो देना है, किसको देना है डिपेंड करता है आपके जोक पर. जी हाँ, तो यस, 0800-004-866 ये नंबर नोट कर लीजिए, और मैं जब बोलूँ तब आपको मुझे कॉल करना है. तब तक के लिए आप जोक जो है वो सोच के रखिए क्या मुझे बोलना है.
2: बचाओ क्या

0: बट एक्स्ट्रा जो 1 मिनट मिला था उसमें उन्होंने गोल किया। उसके बाद यूएसए वर्सेस बेल्जियम के बीच मैच हुआ था, जो कि सबसे पहला मैच जो गोल था वो था बेल्जियम की तरफ से, जिन्होंने चार्ल्स के नाम से गोल दागा, यानी कि चार्ल्स ने गोल दागा और सेकंड गोल भी उन्होंने किया था। उसके बाद तीसरा गोल यूएसए की तरफ से पड़ा था मलिक तिलमैन की वजह से, की तरफ से 31 मिनट में इन्होंने मारा, फिर चार्ल्स ने फिर से मारा। उसके बाद हैंस वानाकेन ने मारा और रोमेलु लुकाकू ने 90+3 में चौथा गोल मार के मैच जो है बेल्जियम के नाम पे रख दिया। बट यह सभी की जो टीमें हैं जो क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुकी है वो है फ्रांस, जिनका मैच होने वाला है मोरक्को से आज ही के दिन एक्चुअली, यस। उसके बाद नेक्स्ट वुड बी आज नहीं, 10 तारीख को इनका मैच होने वाला है। उसके बाद 11 तारीख को होगा स्पेन वर्सेस बेल्जियम के बीच, यानी कि आज जो मैच जीती बेल्जियम वो पहुंच चुकी है क्वार्टर फाइनल में। उसके बाद नॉर्वे वर्सेस इंग्लैंड के बीच में भी मैच है जो 12 तारीख को होगा, वो भी काफ़ी एक्साइटिंग होगा, देखते हैं कौन जीतता है उसमें। और अभी 2 मैचेस और बाकी है जिसमें डिसाइड होगा कि कौन सी 2 टीमें क्वार्टर फाइनल में जाएगी। एक मैच तो है अर्जेंटीना वर्सेस इजिप्ट और एक है स्विट्जरलैंड वर्सेस कोलंबिया के बीच, तो देखते हैं दोनों में से जो 4 टीमें हैं उनमें से 2 टीमें कौन सी जाएगी क्वार्टर फाइनल में। क्या लगता है आपको, वैसे हाउ मेनी पीपल ओवर हियर आर बिग फैन ऑफ अर्जेंटीना अर्जेंटीना।
1: लंच बॉक्स विद केतन।
2: हीरा लड़का है, टेलीस्कोप लेके ढूंढेगा ना तो भी इससे बड़े लड़का नहीं मिलेगा तुझे।
3: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन।
4: DVS huge winter sale on now. Huge savings across all DVS ventilation systems. Say no to crying windows. Say yes to the huge winter sale on now. T's and C's apply.
5: Discover the magic at Go Bananas Chai Ke, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 19 branches across Auckland and Waikato, हम हमेशा आपके पास हैं.
6: Go Bananas Chai Ke is now offering 30 hours for just $10 per week for all ages.
5: तो जल्दी join करें to enjoy these special offers. और सबसे खास बात, Go Bananas Chai Ke Beachlands is now open and offering 12 months completely free for a limited time. तो देर मत कीजिए. Call 0800 46 26 26 today.
6: Available at selected branches. T's and C's apply.

0: अटोटियों के गहनों के साथ आप भी चमक जाएंगे।
1: चूड़ी, कंगन, पायल, बाली, झुमके और चोकर, ये सोना वही सोना संसार है जहां दिल्ली से लेकर दुबई तक के सभी गोल्ड ज्वेलरी डिजाइन मिलते हैं, समझे?
0: सोना संसार पापा ट्विटर, जहां था वहां अभी भी है। शॉप इनसाइड विद आजा डिजाइन स्टूडियो, कॉर्नर ऑफ ग्रेट साउथ रोड एंड ईस्ट तमाकी लाइट्स, पापा ट्विटर।
2: सोना संसार, 138 ग्रेट साउथ रोड, पापा ट्विटर। सोना संसार, यू आर नेवर टू ओल्ड फॉर गोल्ड।
3: The King Living Winter Sale ends soon. Save up to 50% on Australian designed award-winning furniture. Come home to the future of furniture. Come home to King. Sale ends soon. Shop online or visit a King Living showroom today.

0: पीछे ना तीन चार लड़कियां पड़ी हुई हैं।
1: इसके पीछे हम स्किप या रीप्ले।
2: वेल वेलकम बैक। वेल एक बहुत ही बढ़िया कॉम्पिटिशन लेके आई एम प्रीटी श्योर यहाँ

0: पे आपके जोक्स जो हैं वो रेडी हो चुके होंगे। सो यस, मुझे कॉल करिए 0800-004-866 पे, और एक और जोक मेरे पे, जोक नहीं एक्चुअली टास्क है जो रेडी है मेरी तरफ से। जल्दी से मुझे कॉल करिए 0800-004-866 पे, बिकॉज यहाँ पे जो भी शख्स मुझे कॉल करेगा, अगर वो इकलौते हुए तो डेफिनेटली वो जीत के ले जाएंगे डबल पास फॉर दिस अमेजिंग शो, जो कि 18 जुलाई को विक्ट्री कन्वेंशन सेंटर में होने वाला है। ट्रिविजन इवेंट्स की तरफ से ये ऑर्गेनाइज किया जाए, और आप आ जाइए कॉल पे 0800-004-866 पे, बिकॉज डबल पास आप जीतने का मौका मिलेगा द ग्रेट कॉमेडी नाइट के लिए। कृष्णा अभिषेक एंड राजीव ठाकुर आ रहे हैं पहली बार लाइव ऑन स्टेज इन न्यूजीलैंड और ऑकलैंड। वैसे आप टिकट ले सकते हैं bookmyevent.co.nz पे जाके, बट यस यहाँ पे जिसने भी मुझे कॉल किया, चलो ठीक है अगर जोक्स नहीं, अगर लग रहा है क्योंकि अभी जोक्स अगर आपके रेडी होते तो शायद अब तक कॉल कर चुके होते, बट यस एक टास्क है, जिस ताले की चाबी उस चाबी का ताला, ये जिसने भी 5 बार रिपीट कर दिया बैक टू बैक विदाउट मेकिंग अ मिस्टेक वो जीत के ले जाएगा। और वही यहाँ पे एक और है कि अगर इकलौते आप ही कॉलर हुए, अगर आपने गलत भी बोला तो भी आप जीत जाएंगे। जिस ताले की चाबी उस चाबी का ताला, हाँ सही बोला ना मैंने, हाँ हाँ, इसको 5 बार रिपीट करना है। सो यस मुझे कॉल करिए 0800-004-866 पे, और जल्दी से इस टास्क को कंप्लीट करिए। जिस ताले की चाबी उस चाबी का ताला, नहीं जिस ताले की चाबी उस ताले का, हाँ सही तो बोला मैंने, सही तो बोला, हाँ जिस ताले की चाबी उस चाबी का ताला, हाँ सही बोला। तो यस जल्दी से मुझे कॉल करिए 0800-004-866 पे, यहाँ पे आपके पास बहुत ही बढ़िया मौका है इस अमेजिंग इवेंट के लिए डबल पास जीतने का। हाथों हाथ मैं आपको विनर घोषित कर दूंगा अगर आपने सही जवाब दिया तो, और अगर नहीं दे पाए तो जस्ट आपको वेट करना है, कोई और कॉल नहीं कर ले। किसी का कॉल आया लेकिन कट गया है, आज पता नहीं मिस कॉल क्यों मार रहे हैं बहुत,
1: मिस कॉल खेला जा रहा है, मिस कॉल।
0: चलिए कॉल करिए फिर से, आया है फोन, चलिए फोन उठाते हैं। हेलो
1: देवी प्रसाद घर पे है, हेलो
0: कोई बोल ही नहीं रहा, हेलो 1 2 3 1 2 3 फोन ही कट गया। चलिए अगर आपका लक चलता है तो फोन लगा लीजिए, यहाँ पे हो सकता है आप वो लकी विनर हो जो डबल पास जीत सकते हैं कृष्णा अभिषेक एंड राजीव ठाकुर। कृष्णा अभिषेक पता है क्या है? उनकी खासियत यह है कि वो मिमिक एग्जैक्टली तो नहीं करते लेकिन मिमिक में फन डाल देते हैं, यानी कि उनका खुद का स्टाइल है फन करने का। और राजीव ठाकुर को आपको पता ही, अभी एक लेटेस्ट फिल्म आई थी बेस्ड ऑन जो एयर इंडिया का जो प्लेन हाईजैक हुआ था इन 1990s या अर्ली 1998 आई गेस समथिंग अराउंड दैट, तो उसमें भी इन्होंने रोल किया था। 0800-004-866 पे अभी तक तो कॉल आ जाना चाहिए, आ गया। हेलो
1: बोल दो कोई तो
0: हाँ फोन कर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो फोन कर दिया, फिर मेरे को लग रहा है इनका रिसेप्शन ही खराब लग रहा है आज, शायद फोन नहीं लग रहा। भैया जी मैसेज नहीं करना है, मैसेज करके हमको लिखा जा रहा है जिस ताले की चाबी उस ताले का चाबा, सॉरी उल्टा बोल गया, जिस ताले की चाबी उस चाबी का ताला। ये चीज आपने लिख के भेज दी मेरे को, लिख के नहीं भेजनी, मुझे फोन करना है। 0800-004-866 पे आप कॉल करिए, चले भगवान फोन उठा ले आज, मतलब रिसेप्शन पकड़ ले। हेलो फाइनली आवाज आ रही है। हेलो किससे बात हो रही है?
2: नितिन।
0: नितिन भाई बताइए, आपने सुन लिया होगा टास्क?
2: हाँ जी हाँ जी, 5 बार बोलना है।
0: तो 5 बार बोलना आपको, जिस ताले की चाबी उस चाबी का ताला, शुरू हो जाइए।
2: ताले की चाबी उस चाबी का ताला,
0: हाँ जी 5 बार फटाफट, मेरे को सुने नहीं दे रहा
2: ताले की चाबी। अब आ रही है बात?
0: हाँ आप थोड़ा सा लाउड होके बोलिए।
2: जिस ताले की चाबी उस चाबी का ताला, जिस ताले की चाबी उस ताले का ताला, जिस ताले की
0: चाबी। फिर से बीच में रुक गए आप, फिर से।
2: जिस ताले की चाबी उस चाबी का ताला, जिस ताले की चाबी उस चाबी का ताला।
0: ये नहीं होना चाहिए, चलो आखिरी मौका देता हूँ फिर से।
2: ओके डन फाइनल।
0: हाँ जी बोलिए।
2: जिस ताले की चाबी उस चाबी का ताला, जिस ताले की चाबी उस चाबी का ताला, जिस ताले की चाबी उस चाबी का ताला, जिस ताले की चाबी उस चाबी का ताला, जिस ताले की चाबी उस चाबी का ताला।
0: I'll take it as a lead. But हम एक और फोर लगाते हैं, अगर वो आपसे बेटर कर लेते तो वो जीत के जाएंगे, नहीं तो आप डेफिनेटली हो सकते हैं विनर। ऑलराइट, थैंक यू। हेलो
3: हेलो,
0: हाय, किससे बात हो रही है?
3: निशा।
0: हाय निशा, सो आपने क्वेश्चन तो सुन ही लिया होगा, आपको ये रिपीट में 5 बार लगातार बोलना है विदाउट एनी हेजिटेशन। जिस ताले की चाबी उस चाबी का ताला, ठीक है?
3: जी जी।
0: हाँ जी, शुरू हो जाइए।
3: जिस ताले की चाबी उस चाबी का ताला, जिस ताले की चाबी उस चाबी का ताला, जिस ताले की चाबी उस चाबी का ताला, जिस ताले की चाबी उस चाबी का ताला, जिस ताले की चाबी उस चाबी का ताला।
0: मैं आपको एक और मौका देता हूँ, बिकॉज लास्ट टाइम लास्ट कॉलर को मैंने 3 मौके दिए, तो यू ऑल्सो शुड डिजर्व वन मोर, राइट? वैसे आपने ऑब्वियसली बस एक वो माइनर मिस्टेक आई थी, बट कोई बात नहीं, एक बार फिर से।
3: ओके, जिस ताले की चाबी उस चाबी का ताला, जिस ताले की चाबी उस चाबी का ताला, जिस ताले की चाबी उस चाबी का ताला, जिस ताले की चाबी उस चाबी का ताला, जिस ताले की चाबी उस चाबी का ताला।
0: Well done. आपका नाम डेफिनेटली विनर लिस्ट में जा रहा है अब, और आप जीत चुके हैं कृष्णा अभिषेक राजू ठाकुर के लाइव शो, जो कि होने जा रहा है 18 जुलाई को विक्ट्री कन्वेंशन सेंटर पे। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, यू हैव अ लवली डे, होप आई मेड योर डे।
3: थैंक यू,
0: बाय बाय।
4: Top hit of the hour, brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: अभी की लेटेस्ट खबर पढ़ लेते हैं। न्यूजीलैंड के काइकोरा डिस्ट्रिक्ट में लगातार हैवी रेन और फ्लडिंग की वजह से स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर हो चुकी है। कोवाई रिवर के बैंक्स टूटने से कई एरियाज में पानी भर चुका है और कुछ लोगों को अपने घर छोड़कर सेफ जगह पर पहुंचना पड़ा। अथॉरिटीज ने रेसिडेंट्स से अपील की है कि अगर उन्हें अपनी सेफ्टी को कंसर्न हो तो तुरंत हायर ग्राउंड पर चले जाएं। कई रोड्स इंक्लूडिंग स्टेट हाईवे 1, ये अभी की लेटेस्ट खबर है, बंद कर दी गई है और स्वेयर वेदर की वजह से ट्रैवल अवॉइड करने की सलाह भी दी गई है। इमरजेंसी सर्विस और सिविल डिफेंस टीम रेस्क्यू और इवैकुएशन ऑपरेशन में लगे हुए हैं। और अभी अभी कुछ खबर आई है दैट काफ़ी जगह रास्ते जो हैं वो टूट चुके हैं। एक जगह ब्रिज जो है कोलैप्स भी हो चुका है। क्रिप क्रीक ब्रिज जो कि काइकोरा में है, इनलैंड रोड, वो टूट चुकी है। जी हाँ, यानी कि उस तरफ तो बिल्कुल भी मत जाइए। अगर आप ऑन द वे थे तो जस्ट कैंसिल योर प्लान और जस्ट लुक फॉर, मैं तो यही बोलूँगा कि आप अवॉइड ही कर लीजिए जाना, बिकॉज इट इज़ नॉट सेफ एट द मोमेंट। उसके बाद काफ़ी जो ब्रिज है वहाँ से बहुत ही तेज़ जो नदी है वो बहती हुई जा रही है, तो यानी कि वो भी बहुत इफ़ेक्ट कर सकती है। सो इट्स बेटर नॉट टू गो एनीवेयर, जस्ट स्टे एट योर होम। और अगर आप उस एरिया में जहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है तो जस्ट गो इन अ सेफर और हायर लेवल पे, अगर आपके किसी नोन पे हो, या फिर जस्ट कॉन्टैक्ट द ऑफिशियल्स।
1: बॉलीवुड के सबसे बड़े हिट गाने हम,
2: तेरी बेस है फाड़ू, मेरी हाइज के लिए हम। 1, 2, 3

0: Radio.
1: Streaming on Rover.
2: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 19 branches across Auckland and Waikato, हम हमेशा आपके पास हैं.
3: Go Bananas Childcare is now offering 30 hours for just $10 per week for all ages.
2: तो जल्दी join करें to enjoy these special offers. और सबसे खास बात, Go Bananas Childcare Beachlands is now open and offering 12 months completely free for a limited time. तो देर मत कीजिए. Call 0800 46 26 26 today.
3: Available at selected branches. T's and C's apply.
4: अपने सपनों की दुनिया बनाने, we all came here and we work hard to protect them. But when something goes wrong, like a cancer diagnosis, an accident or a heart attack, your insurance claims only succeed if your application was done right from the start. At Assure One, Nitesh Sheeta works with you to make sure details are captured, nothing is missed, nothing forgotten. Because the right advisor knows the application process, the policy wording, and knows exactly what it takes for a claim to be successful. Assure One, plan for tomorrow today. Call 0800-77-HEETA. North Henvale Advisory Limited, trading as Assure One, is a licensed financial advice provider.
5: Non-stop Bollywood.
6: जो भी करते हैं शिद्दत के साथ करते हैं.
5: हम playing Bollywood's biggest hits. Lunchbox with Ketan.
7: इसके पीछे ना तीन चार लड़कियां पड़ी हुई हैं.
8: इसके पीछे
5: हम. TikTok.
9: टिकटॉक पे नजर डालते हैं. चाइना में गिग इकोनॉमी यानी फूड डिलीवरी और राइड हेलिंग जैसे जॉब्स बहुत तेजी से बढ़ते नजर आ रहे हैं. आज लगभग 320 मिलियन लोग यानी कि वर्कफोर्स का करीब 44% इस तरह के फ्लेक्सिबल जॉब्स में काम करता है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये जॉब्स अनएम्प्लॉयमेंट को कम दिखाने में मदद कर रही है क्योंकि कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेक्टर्स में जॉब्स कम हो चुकी है. लेकिन इसके साथ ही बड़ी प्रॉब्लम भी है. ज़्यादातर गिग वर्कर्स को जो पेंशन, हेल्थ इंश्योरेंस और दूसरी सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स होती है वो नहीं मिलती है. और इसके अलावा राइड हेलिंग और डिलीवरी सेक्टर्स में कंपटीशन भी इतना बढ़ चुका है कि वर्कर्स की इनकम भी कम होती नज़र आ रही है. इकोनॉमिक्स का मानना है कि लो इनकम और जॉब सिक्योरिटी की वजह से लोग कम खर्च कर रहे हैं जो चाइना की इकोनॉमी के लिए भी बहुत ही बड़ा चैलेंज बन सकता है.
5: दिल

एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। बहुत ही बढ़िया लगा आपसे बात करके, बहुत ही बढ़िया लगा आपके कॉल को रिसीव करके, आपसे गुफ्तगू करने का। तो यस, आप बस बने रहिए, अभी कॉफी ब्रेक में सैंडी विल बी जॉइनिंग शॉर्टली। ड्राइव शो में रोज भी उनका साथ देंगे, बट मैं निकलता हूँ। आई विल सी यू टुमारो सेम टाइम। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू।

0: भाग दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फिजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फिजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहें तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फिजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फिजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने।
1: वो इनडेलिबल होम्स वाली कहानी सुनाओ ना।
2: The story begins in 2007. Claude has a vision for a building company. It aims to become an expert in providing affordable homes with modern designs. With a 10-year master builder guarantee, awards pour in.
3: And award goes to Indelible Homes.
2: Trust of the customers builds. Indelible Homes becomes New Zealand's favorite master builder.
0: Kahani of Indelible Homes.
4: Hi boys, ek kahani sunati hu. Ek rakshas tha, ghamand uska shastra tha. वो धोखे से राज करता था।
5: मैं जो बना रहा हूँ वो इतिहास है।
6: But should we call her, sir?
7: इसकी माँ का नाम जानकी था। हम इसे सीता बुलाएंगे।
4: इतिहास जानता है ये कहानी कैसे खत्म हुई।
8: YRF Spy Universe presents
9: Alpha.
8: Now showing in cinemas. Distribution partner Forum Films. Rating TPC.
4: शुरू करो अग्नि परीक्षा।
10: हम Time Check. To you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
11: Afternoon, I'm KM Adams with the latest at 3. Kaikoura's mayor is urging those impacted by flooding to move to higher ground immediately. Evacuations are underway for properties between Middle Ford and the township, as well as other low-lying areas. Craig Mackle says all eyes are on the remaining riverbank surrounding the town.
12: The secondary bank is holding the majority of the Kōwhiri River at present, and that's why we've got our fingers crossed that that continues to do so.
11: Snowfall and high winds have caused significant damage to electrical networks across the South Island. Customers from Otago to the West Coast remain without power as repair crews contend with the stormy conditions. Heather Keats from Met Service says the lower North Island is next in the firing line.
13: Gales south to southeast winds are expected for Wellington, Marlborough Sounds, Kapiti Coast and Taranaki from 6 p.m. tonight.
11: More than 50 child protection complaints and adult sexual assault cases have been reopened amid concerns about a senior officer. As RNZ reports, Assistant Commissioner District Support Tusha Penny says concerns were raised in May about the management of one historic case, which sparked a review. Harry Styles has been awarded a Guinness World Record for the longest run of concerts at Wembley Stadium after completing a 12 sold-out shows in 12 nights. At the World Cup, US President Donald Trump's intervention over that US player getting a red card meant nothing in terms of results. Belgium has dumped out the Stars and Stripes 4-1 and will play Spain in the quarterfinals after the Spanish beat Portugal 1-0. Football updates brought to you by Hisense. And it's been confirmed today that all club rugby in the capital this weekend has been cancelled because of an increase in the abuse of referees.
10: Sports News. Brought to you by Sona Sansar, Papatoy and Mount Roskill. Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
14: मौसम के हालचाल मेट सर्विस के अनुसार इस समय टेम्परेचर बाहर का 13.8 डिग्री से और आज का ओवरनाइट 8 डिग्री टेम्परेचर रहने वाला है। थोड़ा सा क्लाउडी आज का डे रहेगा। सनसेट आज का 5:19 पर।
10: The beat of Bollywood.
15: World's best, हमारी कोई ब्रांच नहीं है।
10: Coffee break with Sandy.
14: 3:02 हो चुके हैं। अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू यू। कॉफी ब्रेक आपके लिए यहाँ पे शुरू हो चुका है। अराउंड न्यूजीलैंड वैसे वेदर को लेके काफ़ी सारी वार्निंग्स भी है। स्टेट ऑफ एमरजेंसी डिक्लेयर की गई है काइकोरा डिस्ट्रिक्ट में, बिकॉज वहाँ पे जो कोफाय रिवर है बर्स्ट हुआ है, सो जिसके वजह से सिग्निफिकेंट फ्लडिंग हुई है। सो रेजिडेंट्स इन पार्ट्स ऑफ काइकोरा, उन्हें अर्ज किया गया है टू इवैक्यूएट इमीडिएटली एंड मूव टू द हायर ग्राउंड। सिविल डिफेंस ने ऐसे उनको वार्निंग दी है। नॉर्थ कैंटरबरी टाउन जो है हैज़ बिन कट ऑफ द रोड। सेवरल सेक्शंस जो है स्टेट हाईवे के ये अफेक्ट हुए हैं बाय द वेदर अक्रॉस द साउथ आइलैंड। रेड हैवी रेन वार्निंग है से काफ़ी जगह के लिए फॉर द पार्ट्स ऑफ मेलबरो एंड कैंटरबरी, जिसमें काइकोरा रेंजेस भी आते हैं। सो अभी और भी हैवी रेन वहाँ पर एक्सपेक्टेड है। ऑरेंज हैवी रेन वार्निंग्स जो है इज इन अदर पार्ट्स ऑफ कैंटरबरी एज वेल। सो ट्यूसडे मॉर्निंग तक फायर एंड एमरजेंसी न्यूजीलैंड जो है इन्होंने बोला है कि इन्होंने काफी लोगों को रेस्क्यू भी किया है. दे इवन रेस्क्यूड अ पर्सन ट्रैप्ड इन फ्लड वाटर इन देयर कार. सो ये सब कुछ एक्चुअली में अपडेट्स वेदर के रिलेटेड सो फार आ रही है साउथ आइलैंड से. अगर आप इस समय पर हमें रोवा के जरिए साउथ आइलैंड से सुन रहे हैं, यो आप कुछ ज़्यादा जानकारी है, आप ऐसे किसी पार्ट में हैं, तो ज़रूर यहाँ पे शेयर कर सकते हैं कॉल करके या फिर मैसेज करके 5599 पर.
9: कत्ल करती हैं निगाहें कि दिल को खबर ना हो, जख्म देती है ऐसा कि दर्द का असर ना हो. हमने समझा था इश्क मोहब्बत को ही ख्याले दिल, लगता है डर बस इतना वो मेरा आम शक्ल ना हो.

0: पिंटरेस्ट पे, क्योंकि दुनिया में ऑलरेडी बहुत सारे परफेक्ट पॉलिश्ड इंस्टाग्राम फ्रेंडली स्टोरीज हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं। यहाँ कहानियाँ होती है रॉ, इमोशंस होते हैं रियल और कॉन्वर्सेशंस होते हैं बिना मास्क के।
1: राजा, मंत्री, चोर, सिपाही सब यहाँ थे।
0: अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रिस्पे ऑन रोवा, स्पॉटिफाई और एनीवेयर यू गेट योर पॉडकास्ट।
2: पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हो या आप फ्यूचर की तरफ शिफ्ट कर रहे हो, स्मार्ट चॉइस अब सिंपल है। वे सिटी GWM हैवल, हैवल का हाइब्रिड और प्लग इन हाइब्रिड रेंज पे डिस्काउंट्स और सिर्फ 4.95% फाइनेंस ऑफर्स। आज ही वे सिटी ऑटो ग्रुप पहुँचे और जिमी टेलर और उनकी टीम से मिले। लिमिटेड टाइम ऑफर, टीज एंड सीज अप्लाई। फॉर मोर इन्फो विजिट वे सिटी ऑटो ग्रुप .nz और सर्च फॉर वे सिटी ऑटो ग्रुप ऑन सोशल्स।
3: Face it, you're good in groups. So why not turn your superpower into getting a group of blood buddies together? Friends, whānau, workmates, book a time to donate at nzblood.co.nz. Give blood. Give plasma. Save lives.
4: Don't be an egg. Have a crack at putting eggshells in your food scraps bin instead of the rubbish. Because every scrap counts. Tāmaki Tūtaki. All together, Auckland.
5: G'day Kiwis, Kogan Mobile here. I'll be honest, we're Australian. Sorry about that. But it's about time you got a taste of Aussie-style pricing. Right now, get a yearly prepay plan from just $160. Crikey! I know what you're thinking. And no, I'm not joking. And no, it's not too good to be true, because it is true. Kogan Mobile, true Aussie value. Terms and conditions apply.
6: When City Rail Link arrives soon, it's going to give us all more time. From the new Te Waihorotu station, you'll be able to go from a busy day at work in the city to the peaceful zen of home in Henderson in just 35 minutes. Auckland Transport and City Rail Link. More connections that'll take you from the city to your place.

0: you by PFSL, providing the best home loan advice for the last 20 years. Google PFSL today. A mass food, 100% authentic and pure as mother's love. And Indelible Homes, your building experts known for subdivisions. Visit indelblehomes.co.nz.
1: काफी इंटरेस्टिंग होता जा रहा है वर्ल्ड कप. वैसे आज पोर्चुगल के फैंस के लिए तो ज़्यादा अच्छी न्यूज़ नहीं थी, स्पेसिफिकली रोनाल्डो के फैंस के लिए. स्पेन की आज सुबह जीत हुई 1-0 के साथ फ्रॉम पोर्चुगल. यूएस से बेल्जियम के बीच में जो मैच था इंटरेस्टिंग था, लग रहा था कि बेल्जियम लेके जाएगा. बेल्जियम ने वैसे 5-1 के साथ न्यूजीलैंड को भी हराया था. सो बेल्जियम ने यूएसए को 4-1 के साथ हराया. एंड इससे पहले वैसे कल मैक्सिको इंग्लैंड के बीच में इंग्लैंड की जीत हुई थी. ब्राज़ील नॉर्वे के बीच में नॉर्वे की जीत हुई थी. अब पेंडिंग मैचेस जो क्वार्टर फाइनल्स के रहते हैं वो है अर्जेंटीना इजिप्ट का और स्विट्ज़रलैंड और कोलंबिया का, जो कि कल होने वाला है, जहां से हमें पता चलेगा कि क्वार्टर फाइनल्स में कौन कौन खेलने वाला है. 3 मैचेस तो कन्फर्म है क्वार्टर फाइनल्स के. एक है फ्रांस एंड मोरक्को के बीच में, जो कि फ्राइडे 10 जुलाई को होगा. देन 11 जुलाई को स्पेन और बेल्जियम के बीच में मैच होने वाला है. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा. इस पर मुझे नहीं आइडिया कौन जीतेगा. फ्रांस मोरक्को के बीच में फिर भी मैं बोल सकती हूँ कि शायद फ्रांस जीतेगा. देन नॉर्वे एंड इंग्लैंड के बीच में भी इंटरेस्टिंग रहने वाला है मैच, बिकॉज नॉर्वे ने ब्राज़ील को हराया है एंड इंग्लैंड इज़ क्वाइट अ स्ट्रॉन्ग टीम. सो या कुछ भी हो सकता है. सो फोर्थ क्वार्टर फाइनल अभी डिसाइडेड नहीं है. माई प्रडिक्शन इज़ अर्जेंटीना इजिप्ट के बीच में अर्जेंटीना की जीत होगी. स्विट्ज़रलैंड कोलंबिया के बीच में कोलंबिया की जीत होगी, ऐसा मेरा प्रडिक्शन है. मैं चाहती हूँ अर्जेंटीना आगे जाए, लेकिन ऐसा मेरा प्रडिक्शन है. और हो सकता है क्वार्टर फाइनल्स इज़ अर्जेंटीना वर्सेस कोलंबिया, बाकी देखते हैं. मैं फाइनल्स में 100% फ्रांस और अर्जेंटीना को देखना चाहती हूँ, बट लेट्स सी क्या होता है. आपकी प्रेडिक्शंस क्या है, आप भी यहाँ पे इसके बारे में ज़रूर शेयर कर सकते हैं. सेमीफाइनल्स वैसे बाद में 15 जुलाई एंड 16 जुलाई को होने वाले हैं. एंड फाइनल मैच जो है वर्ल्ड कप का, ये 19th को होने वाला है. फाइनल मैच 20 जुलाई को होने वाला है. एंड 20 जुलाई जो कि मंडे है, तो हमारे यहाँ पे सुबह 7 बजे के तकरीबन ही मैच शुरू हो जाएगा.

0: most wanted.
1: गुंडी कर दो या सीधा अंदर आओ.
2: मैं लाऊं अपना A game.
0: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

3:23 एट द मोमेंट यहाँ पे हो चुके हैं. 7 जुलाई है. अगर आज अपना बर्थडे आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, और वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू. अगर आज आपकी एनिवर्सरी है तो उसके लिए भी अ वेरी वेरी हैप्पी एनिवर्सरी टू यू. यू नो रोवा ऐप अब अगर आपने अभी तक हमारी डाउनलोड नहीं की है, ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा, बिकॉज रोवा ऐप के ज़रिए आप बहुत कुछ इन्जॉय कर सकते हैं. इनफैक्ट हम के साथ आप कनेक्टेड रह सकते हैं जहाँ पर भी आप जाए रोवा ऐप के ज़रिए. इफ़ यू आर ओवरसीज, कहीं पर भी आप घूमने के लिए जा रहे हैं, आप मिस कर रहे हैं, जानना चाहते हैं बैक इन न्यूजीलैंड क्या क्या हो रहा है, तो यस, इसके लिए भी रोवा ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं. ROVA इज एस पहले प्ले स्टोर में, ऐप स्टोर में जाइएगा, डाउनलोड द ऐप एंड आप हमें कहीं पर भी सुन सकते हैं. इनफैक्ट आप ऐप पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको ढेर सारे आर्टिकल्स भी दिखाई देंगे. वहाँ पे काफ़ी आर्टिकल्स अपडेट होते रहते हैं बॉलीवुड में या फिर और भी म्यूज़िक की दुनिया में क्या क्या हो रहा है, इसकी इन्फॉर्मेशन एक्चुअली में आपको वहाँ पे भी मिलती रहती है. सो वहाँ पे डिटेल में आर्टिकल्स भी आपको मिलते हैं. सो इफ़ यू गो ऑन hum.rova.nz वेबसाइट पर भी आप जाते हैं तो वहाँ पे भी नीचे स्क्रॉल करके ये सारे के सारे आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगे. हमारे म्यूज़िक स्टेशंस भी हैं वहाँ पे, म्यूज़िक स्टेशंस एज इन की जहाँ पे 80s के गाने, 70s, 50s, 40s ये सारे गाने भी आप सुन सकते हैं. जूक बॉस है हमारा 80s का, जहाँ पे 80s के गाने हैं. रिवाइंड है जहाँ पे आपको 50s एंड 60s के, इवन 70s के गाने जो है ये आप वहाँ पे सुन सकते हैं. देन फीजी भजन है वहाँ पे, फीजी कीर्तन संग्रह है वहाँ पे, चढ़ती कला पंजाबी हिट्स है जहाँ पे बैक टू बैक पंजाबी गाने हैं. राहत फ़तेह अली खान का शो से पहले अगर आप प्रेप करना चाहते हैं तो इसके लिए भी म्यूज़िक स्टेशन आपको रोवा पर ही मिलेगा.

0: हाफा थ्री हो चुके हैं फिलहाल, कॉफी ब्रेक आप यहाँ पे सुन रहे हैं। मैं लिटिल लेजेंड्स का एक आर्टिकल पढ़ रही थी जहाँ पे किड्स के बारे में बातें की गई है विद सुपर ह्यूमन मेमोरीज। काफ़ी बच्चों को अपने फेवरेट कार्टून्स जो है ये याद रहते हैं, लेकिन काफ़ी बच्चे ऐसे भी हैं जो थाउजेंड्स ऑफ डिटेल्स जो है इनको याद रखते हैं। ऐसे बच्चे बहुत ऑब्जर्व होते, बच्चे बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं, कई बार बहुत सारी डिटेल्स उनको याद रहती है। हमें कई बार लगता है कि मेमोरी समथिंग यू आर सिंपली बॉर्न विद, लेकिन काफ़ी यंग चैम्पियंस ऐसे भी हैं जो प्रूव करते हैं कि ब्रेन कैन बी ट्रेन्ड, इट कैन बी स्ट्रेंथन्ड एंड इट कैन बी चैलेंज लाइक अ मसल एज वेल। जैसे ध्रुव मनोज इज अ मेमोरी किड हु शॉक द वर्ल्ड एट 12 ईयर ओल्ड। इंडियन ओरिजिन स्टूडेंट है ध्रुव मनोज। ही मेड द हेडलाइंस बिकॉज इसने गोल्ड मेडल जीते एट द वर्ल्ड मेमोरी चैम्पियनशिप। इस बच्चे ने कम्पीट किया इन मैनी कैटेगरीज लाइक रिमेंबरिंग नेम्स एंड फेसेस, मेमोराइजिंग रैंडम वर्ड्स, रिमेंबरिंग नंबर्स एंड कार्ड सीक्वेंस। सो हिज अचीवमेंट जिसमें बहुत सारी चीज़ें मेमोराइज करना था, मोर देन लाइक 7 शफल डेक्स ऑफ कार्ड्स इन एन आवर। सो काफ़ी बाइनरी नंबर्स जो है, लाइक मोर देन 1000 बाइनरी नंबर्स इन हाफ एन आवर, 87 नेम्स एंड फेसेस को 15 मिनट में इस बच्चे ने एक्चुअली में याद रखा। 15 मिनट के अंदर अंदर इसने रिकॉल किए 87 नेम्स एंड फेसेस को भी। कई बार हमें स्ट्रगल होता है कि भाई हमने गाड़ी कहाँ पार्क की थी, पार्किंग हम भूल जाते कि गाड़ी पार्क कहाँ पे थी, लेकिन ध्रुव को ये सब छोड़ो, उसको हंड्रेड्स ऑफ पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन ऐसे याद रहती है जैसे हमें अपनी प्लेलिस्ट याद रहती है, वैसे उसको वो सब कुछ याद रहता है। वेल, आपकी मेमोरी कैसी है? अगर आपको अपनी मेमोरी टेस्ट का रेट करना हो आउट ऑफ 10, अपने आप को आप कितनी रेटिंग देंगे? आपको कितनी चीज़ें मतलब याद रहती है, कितनी भूल जाते हैं आप? कई लोग अपने आप को कहते हैं ना कि हमारी एलिफेंट मेमोरी है, लेकिन हम तो भूलते ही नहीं है चीज़ें, मतलब बहुत सारी चीज़ें उनको याद रहती ही है। कई होते हैं ऐसे एंड कईयों को चीज़ें याद नहीं होती है। आई थिंक कन्वीनियंस भी एक चीज़ होती है, उसके हिसाब से भी कई बार हम काम करते हैं। सो आप अपने आप को 10 में से कितनी रेटिंग देना चाहेंगे अपनी मेमोरी टेस्ट के ऊपर? I think I will rate my memory as 7 या 8। या 7 या 8 अपने आप को मैं रेट देना चाहूँगी, मैं 7.5 ले लो, चलो 7.5 आई विल रेट माई सेल्फ आउट ऑफ 10 फॉर द मेमरी टेस्ट। वॉट अबाउट यू? आप अपने आप को कितना रेट देना चाहेंगे? शेयर कीजिए 5599 पर। नॉन स्टॉप
1: बॉलीवुड जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं।
2: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स। The Breakfast Show with VJ and Pooja.
3: बुरी प्लानिंग से आए हैं, 100% तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
4: Those people who live around the Hunua area, वहाँ पर 1 degree है टेम्परेचर।
5: जितने भी लोग इस इलाके में हैं, enjoy करते रहे आप। West side है ना, west side of Auckland है ये। I have lots of fun basically with the cold weather.
4: कौन है?
5: Hunua और Waitakere।
4: अच्छा, Hunua west में?
5: किधर है Hunua?
2: The Breakfast Show with VJ and Pooja.

0: 3:35 एट द मोमेंट यहाँ पे हो चुके हैं एंड हमारा पॉडकास्ट सुनना ना भूलेगा। हमारा जो पॉडकास्ट हमने रिकॉर्ड किया है अबाउट AI, अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वेल ये ज़रूर सुनेगा बिकॉज इसमें आप AI में क्या सीख सकते हैं, आप शुरुआत कैसे कर सकते हैं किसी चीज़ों को सीखने के लिए, ये हमने बातें की है। और AI स्पेशलिस्ट दर्शित पांडे के साथ एक्चुअली में हमने बातें की है जिन्होंने फुल डिटेल समझाया है इस पॉडकास्ट में। AI क्या हमारे जॉब में रिस्क फैक्टर लेके आएगा, प्राइवेसी कंसर्न्स के बारे में, अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में, जो हमें स्किल्स चाहिए होंगी फ्यूचर में सर्वाइव करने के लिए, इसके बारे में भी इसमें बताया गया है। किस AI टूल को, फॉर एग्जांपल वेरियस होते हैं, ChatGPT होता है, क्लॉड है, जेमिनाई है, और भी बहुत सारे, परप्लेक्सिटी, क्या उसका नाम है यार, बहुत सारे हैं। सो हर किसी को आप अपने वे से कैसे डिफरेंटली यूज़ कर सकते हैं ताकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिले। जैसे एक स्पेसिफिक अगर AI टूल है तो वो एक काम करने के लिए नहीं बना है, लेकिन उसके लिए कौन सा टूल सही है उसके बारे में भी उन्होंने यहाँ पे शेयर किया है। एंड उन्होंने ना ये सब कुछ ऐसे समझाया है जैसे एक 10 साल के बच्चे को समझाते हैं, तो इसलिए ये पॉडकास्ट आपके लिए, हमारे लिए बहुत ज़रूरी है सुनना बिकॉज हम ट्राई कर रहे हैं ऐसे पॉडकास्ट आपके लिए लेके आने के लिए जो आजकल की लाइफ में आपको अफेक्ट करते हैं। एंड राइट नाउ AI इज़ देयर, बैठा है आपके फोन में वो। सो यस, ये पॉडकास्ट में और भी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। अगर आप ड्राइव लिख के भेजते हैं 5599 पर, ऑटो रिप्लाई में आपको इसका जो लिंक है ये मिल जाएगा। थोड़ा सा बिट मैं इस पॉडकास्ट का आपको सुनाती हूँ यहाँ पे। छोड़ो, एडिटर को पकड़ो,
1: हाँ,
0: उसको दो,
1: क्योंकि जो एडिटर है उस वो AI यूज कर रहा है बट उसको मालूम है कौन सा AI यूज
0: कर रहा है, उसको पता है कैसे करना है ना।
2: इसलिए मैं रिमाइंड कराता हूँ हमारे लिसनर्स को भी, आपको भी, टी शेप स्किल किसके पास है, टूल्स तो बहुत सारे अवेलेबल है, स्किल किसके पास है, एडिटर के पास। आप लोग करने का ट्राई किया लेकिन यू गाइस कंफ्यूज, हाँ भाई इतने सारे मेरे, मुझे एग्जैक्टली कौन सा करके देगा आई डोंट नो, क्योंकि मेरी एक्सपर्टाइज नहीं है। अल्टीमेटली सेम वो बंदा जॉब में रहा लेकिन उसका इफेक्टिवनेस बढ़ गया, डिलीवरी बढ़ गई, वेलोसिटी बढ़ गई उसकी, राइट। तो मैं टूल बताऊं अभी आपको कि देखो फ्री टियर से शुरू करते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि भाई मुझे अभी पैसे नहीं खर्च
1: करने, को ये दूसरी बात ये पूछनी है,
0: बोलो। इसका तो बीच में सवाल रहेगा ही, दूसरी की तीसरी बात भी रहेगी, लेकिन आप जाके पूरा पॉडकास्ट जरूर सुनेगा कि किन टूल्स के बारे में उन्होंने वहाँ पे बातें की है कि यू नो अगर आप एक चीज़ में एक्सपर्टीज है आपकी तो उसको आप और भी एफिशिएंट वे से कैसे काम कर सकते हैं एक स्पेसिफिक टूल्स को यूज़ करके। सो ड्राइव लिख के अगर आप भेजते हैं आपको फुल एपिसोड मिल जाएगा, अदरवाइज रोवा स्पॉटिफाई पे अगर आप सर्च करते हैं Unfiltered with Sandy and Rusbe, तब भी आपको जो एपिसोड है ये मिल जाएगा।
3: Everybody's talking about peace in the world. All we get to see is the pain and the hurt. We don't want no war. We don't want no fights, no guns, no bombs, no fists or the knives.

कॉकटेल टू मूवी के एक्चुअली में ये गाना आप यहाँ पे सुन रहे थे राघव चैतन्य की आवाज में। ड्राइव शो थोड़ी देर में यहाँ पे शुरू हो जाएगा। ड्राइव शो में वैसे आज बताने वाले हैं क्या क्या इवेंट्स होने वाले हैं। कुछ इवेंट्स में पार्टिसिपेट करने का मौका भी आपको मिलने वाला है। द ग्रेट कॉमेडी नाइट ये कॉम्पिटिशन भी आपके लिए रहेगा, सो इसमें पार्टिसिपेट करने का मौका भी आपको मिलेगा। एंड बाली एंड बैंकॉक गेट अवे, वेल इसमें अगर आपने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है, वी हैव वेरी लिमिटेड सीट्स गाइस। सो क्या हो रहा है अगर आपने मिस आउट किया है, रुजबे और मैं मार्च 2027 जब ईस्टर वीकेंड रहेगा उस समय पर स्कूल हॉलीडेज भी होती है, सो उसी 7 डेज के लिए, एक्चुअली में 7 डेज आपको छुट्टी लेनी पड़ेगी। ईस्टर वीकेंड और सब मिला के टोटल 11 डेज का ये ट्रिप है। एंड द ट्रैवलिंग डेट्स इज 23rd मार्च से लेकर 2nd अप्रैल। दीज आर द ट्रैवलिंग डेट्स। अब मैं और रुजबे बाली एंड बैंकॉक जाने वाले हैं ग्रुप ऑफ लिसनर्स के साथ, और ये ग्रुप ऑफ लिसनर्स आप हो सकते हैं। अमेजिंग एक गेटअवे होने वाला है, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा टाइप ऑफ गेटअवे ये होगा। तो जहाँ पे आप बाली में घूमेंगे वो सब चीज़ें हमारे साथ ही आप एक्टिविटीज़ करेंगे, बैंकॉक में भी आप साथ ही एक्टिविटीज़ करेंगे। तो ये जो पैकेज है बाय सन टूअर्स, इसमें फ्लाइट टिकट्स है हर जगह की, अकोमोडेशंस है, ब्रेकफास्ट लंच डिनर एंड बहुत सारी जो एक्टिविटीज़ है वहाँ पे वो भी है। सो क्वाइट थिंग्स ओवर देयर। लेकिन ये है कि हमारे पास लिमिटेड स्पॉट्स रहेंगे जो हमारे साथ जा सकते हैं, तो इसलिए अपने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के लिए हम बहुत ही जल्दी ईमेल्स भेजना शुरू कर देंगे आइटेनरी की, जितनी भी आइटेनरी और प्राइसेस है। तो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के लिए आप फॉर्म फिल कर लीजिएगा। ड्राइव अगर आप लिख के भेजते हैं 5599 पर, तो ऑटो रिप्लाई में आपको फॉर्म भी मिल जाएगा। तो फॉर्म फिल कीजिए जिसमें आपको बस आपकी ईमेल आईडी रजिस्टर हो जाएगी, आपको अपना फ़ोन नंबर फिल करना है, सो दैट आपको हम आइटेनरी प्राइसेस के साथ भेज सके। एंड अभी से आप प्लानिंग देन करना शुरू कर देना, बिकॉज मार्च 2027 में अगर छुट्टी लेनी है तो यू नीड टू प्लान फ्यू थिंग्स। और क्या होता है कि पैकेज में जब आपको पे भी करना होता है, देन यू हैव टू अरेंज द पेमेंट्स एज वेल, बिकॉज आप द महीने का इंस्टॉलमेंट्स में तब आप पे करते हो, तो वो वाली ऑप्शंस भी इसमें रहेंगी। सो या सो व्हाट यू हैव टू डू इज़ जस्ट फिल द फॉर्म राइट नाउ, बिकॉज फॉर्म फिल करना तो फ्री है, तो फॉर्म फिल कीजिएगा सो दैट आपको आइटेनरी पता चले। देन हैव अ डिस्कशन विद योर फैमिली, विद योर फ्रेंड्स, एंड ये फ्रेंड्स भी साथ में मिलके एक्चुअली में जा सकते हैं। एंड एनीवन आउट देयर जो काफ़ी समय से कहीं पे घूमना चाहते थे लेकिन जिसके पास कोई कंपनी नहीं है, आपके लिए तो ये बहुत ही परफेक्ट है। सो ये एक ग्रुप हमारे साथ, मेरे और रुजबे के साथ जाएगा, जहाँ पे वी गोना हैव लॉट ऑफ फन। तो पूरा टाइम बहुत मस्ती भी हम करने वाले हैं। ड्राइव लिख के भेजिए 5599 पर, सो दैट ऑटो रिप्लाई में आपको लिंक मिल जाए जो आपको फिल करना है एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के लिए।

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: Feels like 12 degrees. Three layers of clothing is recommended. Thunderstorms or hail possible hai north of Fangaporoa or until evening. Yahan pe kaafi barish ho rahi, kuch jagah pe heavy barish bhi ho rahi hai. 5:19 pe hoga sunset. Overnight barish hone wali hai dher sari, but kal beautiful rahega afternoon mein.
2: Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manugo and Bukikoi. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now.
0: Super Se Ooper, brought to you by Reliance Ventilation Systems Limited. Drive Show with Sandy and Rusby.
3: Masti karenge, mauj katenge, garda paar denge.
1: 4:03 on the 7th of July, 7-7. Aaj date hai. Good afternoon, welcome to the Drive Show.
4: Good afternoon, Rusbe, kaise ho tu?
1: Main bahut hi badhiya, Sandy. How are you doing?
4: I'm doing good. Yeah, very well.
1: Good job.
4: ये इसलिए बोल रहे क्योंकि ऐसा बहुत बोलने की आदत पड़ गई है मुझे. Good job.
1: और अभी सैंडी का नेफ्यू भी वही बोलता है.
4: नेफ्यू भी रिपीट करता है. मेरे को माइल्स को बोलना पड़ता है, लाइक डॉग को बोलना पड़ता है जो
1: वो
4: कुछ अच्छा कर. नहीं नहीं, थैंक गॉड. इट विल बी स्केरी रुस्बे अगर वो उठ के मेरे को बोलेगा गुड जॉब, भाग जाओगे घर से मैं.
1: बट यू नो दिस, देयर इज दिस मूवी द डिटेक्टिव शीप.
4: ओके, उसमें क्या है?
1: इसमें शीप बात करते हैं.
4: शीप आपस में बात करती है?
1: आपस में बात करते हैं.
4: अरे
1: वाह, बहुत सही है वो. मतलब इट्स आई थिंक रेटेड वन ऑफ द ग्रेट मूवीज, लाइक बेस्ट मूवीज ऐसा कुछ उसका है. बट यू शुड चेक इट आउट.
4: शीप तुमने बोला ना?
1: हाँ.
4: न्यूजीलैंड में बनी है क्या?
1: नहीं, हो सकता है वैसा.
4: हाँ.
1: नहीं, बट नहीं,
4: बट नहीं बनी. द शीप डिटेक्टिव्स की बात कर रहे हो?
1: द शीप डिटेक्टिव, सॉरी.
4: ओके, 2020. ओ, ये इसी साल की है. मिस्ट्री कॉमेडी है ये.
1: या इट्स सच अ कूल मूवी यार.
4: ओके,
1: लाइक हमने लिटरली उसको आधी, मैं क्या हो गया हूँ ना सैंडी, मैं आई हैव बीन दैट पर्सन जो चीजें आधी आधी देखने लग गया है.
4: आधी लाइफ क्यों हो गई है तुम्हारी? जब से बेटर हाफ मिली है ये चीजें बाकी सब आधी आधी कर रहा है.
1: क्योंकि अब मेरी नहीं रही ना पूरी जिंदगी.
4: हाँ वही ना, आधी हो गई है तुम्हारी जिंदगी.
1: मेरी आधी है, आधी मेरी बीवी की है.
4: Yeah.
1: But the Sheep Detectives actually is a very fun watch. I think ये प्राइम पे है शायद, if I'm not wrong.
4: तो लेकिन तुमने कंप्लीट नहीं किया अभी तक ये?
1: मैंने कंप्लीट नहीं किया, लेकिन मैं थोड़ी बहुत देखी है तो बहुत मजा आया था देखकर.
4: ओके. हम समझ सकते हैं इतना मजा आया इस बंदे को कि छोड़ दी बीच में.
1: अरे ऐसे नहीं यार, मतलब क्या होता है, प्रायोरिटीज होती है ना सैंडी लाइफ में.
4: या 100%.
1: क्या समझोगे अभी आप, क्या बोलूं. कल मेरे साथ ये हुआ ना, मैंने वो सतलुज देखना शुरू किया. वो भी आधी छोड़नी पड़ी.
4: ओह माय गॉड,
1: आई हेट लीविंग थिंग्स हाफ.
4: या लेकिन यही कर रहे हो तुम.
1: बट माय वाइफ हेट्स कंप्लीटिंग थिंग्स.
4: देख लो क्या है कि अभी तक तो है वो ओवरसीज में अवेलेबल, बट यू नेवर नो.
1: हाँ.
4: वो कब चली जाए.
1: या
4: लेकिन मेरे को हंसी आ रही है इंडियन ऑडियंस के लिए कि मतलब पता था सबको कि जाने वाली है मूवी, एक बार आ गई प्लेटफॉर्म पे जाएगी. हर किसी ने डाउनलोड करके रख ली है यार, और लोग एक दूसरे को लिंक भेज रहे हैं, मूवी देखनी है ये लो.
1: अच्छा, ऐसा हो रहा है.
4: मतलब और लोग ये कह रहे, मैंने कुणाल कामरा का भी पढ़ा जो तुमने लिखा, मैंने वो भी पढ़ा. इनफैक्ट मैंने एक जगह पे एक पोस्ट पढ़ा, इट वाज अबाउट इश्किया मूवी. वहां पे उसका कंपैरिजन था, इश्किया मूवी जो बहुत पहले आई थी. उन्होंने लिखा कि इश्किया मूवी जब हमने देखनी शुरू की सिनेमा में, जब हमने देखी तो उसके बाद जब वो उसका पायरेसी वर्जन, रिमेंबर वी वर टॉकिंग अबाउट द पायरेसी यस्टरडे, हमने उसका पायरेसी वर्जन देखा तो वी सॉ सो मेनी थिंग्स जो सिनेमा में नहीं थी. एंड वी फेल्ट कि यार इससे अच्छा तो पायरेसी ही देख लो, अगर हमें फुल वर्जन.
1: अच्छा, ऐसा था इश्किया में, पूरा नहीं था वो. इश्किया वो था ना, विद्या बालन, नसीरुद्दीन शाह एंड अरशद वारसी.
4: यस, तो अगर हमें अनकट वर्जन वैसे देखने को मिल रहा है तो फिर क्यों, पंगा क्या है. सो आई रेड दिस वेरी इंटरेस्टिंग पोस्ट किसी की एक्चुअली में.
1: बट इट इज अ बिग रिस्क, आई वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, जो रॉनी स्क्रूवाला प्रोडक्शंस ने लिया है, जहाँ पे दे रिलीज दिस मूवी, दे हैड टू ब्रिंग इट डाउन. And it is basically going head on with the system.
4: Head on with the system. And yeah, there are many debates as well. Ki, you know, agar kuch particular movies allowed hai dikhane ke liye, to, aur ye aisi movie mein na aisa kuch nahi hai jo kahin pe likha nahi hai, जो कहीं पे डॉक्यूमेंटेड नहीं है, डॉक्यूमेंट्री नहीं है जिसके ऊपर. इट्स ऑल देयर, इट्स एवरीवेयर. मैंने आई शेयर विद यू ग्रोइंग अप आई हर्ड द स्टोरीज अबाउट इट सो आई इवन आई नो एवरीथिंग अबाउट इट
1: हम सतलुज की बात कर रहे हैं जो
4: पंजाब 95 से जो सतलुज बनी
1: हाँ मतलब इट वाज ऑल द आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ
4: 84 सो 90s के टाइम की कहानी है वहां पे
1: सोचो ना यार 84 से लेके 95
4: एंड दिस पर्टिकुलर स्टोरी इज जस्ट अबाउट द पर्सन द एक्टिविस्ट जसवंत सिंह दैट्स इट
1: जसवंत सिंह खालरा
4: सिर्फ उसके ऊपर ये मूवी बेस्ड है सो मोर इम्पोर्टेंट पार्ट इज कि इसमें ज्यादा कुछ और नहीं दिखाया है सिर्फ उसके बारे में दिखाया है
1: या और मैंने जितनी देखी है it's quite a gripping movie
4: it is man isme jo actors bhi liye hai na starting from Arjun Rampal and that guy Kora series mein bhi jo inspector bana tha Satvinder Vicky kya uska naam
1: hai ha wohi banda jo hawaldar bana hai na
4: jo hawaldar bana hai nahi jo hawaldar nahi hai ha jo ssp bana hai
1: ssp bana wo acha
4: yeah so yeah quite an actors this movie mein actually mein liye gaye hain bahut acha kaam kiya hai Ronnie Screw wala to I think usse ye produce karke aur piche nahi hata wo banda is like ki main ye movie to na aage tak pahunchaunga and tum trick dekho na movie ko release kar diya without any promotion
1: yeah no teaser no trailer
4: nothing they were like ki agar promote kiya to movie aayegi nahi seedha release karo
1: that was yeah my god
4: it was smart one
1: masterpiece. Thank you.

0: You're listening to Humpling Bollywood's biggest hits. Meghna Mishra ki awaaz mein sun rahe the aap ye bahut hi pyara sa gana from Secret Superstar.
1: And काफी heavy rain and snow ki wajah se South Island mein काफी सारे जो disruptions है ये हो रही है. काफी roads जो है ये closed है. So drivers को वहाँ पे urge किया जा रहा है to take care. काफी roads impact हुई है by flooding and snow.
0: बहुत rarely ऐसा होता है कि दो different corners of the world, लेकिन news बहुत similar आ रही है. एक यहाँ पे न्यूजीलैंड में काइकोरा का ये न्यूज आ रहा है और दूसरा इंडिया में भी काफी जगहों पे फ्लडिंग हो गया है.
1: यू सेड नासिक में ना?
0: नासिक में नहीं बट बॉम्बे में भी बहुत ज्यादा फ्लड्स है. पुणे के अराउंड
1: बहुत ज्यादा बारिश हो रही है वहाँ पे भी.
0: हाँ, क्लाउड बर्स्ट और वो सब चीजें हो रही है वहाँ पे.

0: माउनू से आप टर्न अराउंड कर लीजिए।
1: काइकोरा में जो इस समय पर काफ़ी लोगों को इवैक्यूएट किया गया है, कुछ के ये कमेंट्स आए हैं कि दे आर उनको डर है 1993 के फ्लडिंग्स का। 1993 में बहुत बड़ी फ्लडिंग हुई थी काइकोरा में, एंड इस चीज़ का उनको डर लग रहा है। तो वो होता है ना कि ऐसी जो फ्लडिंग देखते हो तो आपको कुछ पास्ट इंसिडेंट याद आता है,
0: ट्रॉमा
1: आपको याद आता है। सो इसके बारे में बोला गया है, स्टेट ऑफ एमरजेंसी वैसे वहाँ पर डिक्लेयर की गई है।
0: Alright, so अभी आज वैसे है Tuesday and today we bring to you
1: character guess। अरे मजेदार गेम आज आपके लिए रहने वाली
0: है। character guess मिस कर दिया अपने। character guess। character guess में होता यह है कि हम एक character के बारे में सोचते हैं और आज मेरा turn है।
1: Yo।
0: Oh my God, आज मेरा turn है। तो मैं कैरेक्टर के बारे में सोचूंगा, उसके पांच हिंट दूंगा, आपके पास पांच सवाल होंगे, येस नो क्वेश्चंस। आप उन पांच क्वेश्चन और पांच हिंट के थ्रू आपको गेस करना है कि ये इंसान कौन है।
1: सो पांच हिंट रुजबे देगा और पांच सवाल हम यहाँ पे पूछेंगे, यानी कि आप और मैं मिलके रुजबे से पूछेंगे, गेस करेंगे कि रुजबे ने किसके बारे में सोच के रखा है। कोई भी हो सकता है ये पर्सन, सेलिब्रिटी, पॉलिटिशियन, कोई चैरिटी में इन्वॉल्व, एनी वन, इट कैन बी एनी वन। सो रुजबे को ऑलरेडी ना थिंकिंग कैप ऑन है कि किसके बारे में आज किया जाए।
0: या
1: थिंकिंग, मे बी यू हैव वन और टू नेम्स इन द माइंड।
0: आपने अभी ऐसे ऐसे ऑप्शन दिए हैं, क्या क्या ऑप्शन दिया आपने कि कोई,
1: मुझे लग रहा है आज तुम ना पॉलिटिशियन के बारे में पूछने वाले हो। अच्छा, ऐसा फील हो रहा है
0: आपको
1: मुझे?
0: ऐसा फील हो रहा है
1: ऐसा मुझे लग रहा है, बट लेट्स सी,
0: जस्ट बिकॉज पॉलिटिक्स इज इन द एयर,
1: यस, इसीलिए,
0: या लेट्स सी नाउ,
1: ओके लेट्स सी। सो कुछ कॉम्पिटिशंस भी आपके लिए रहेंगे, बट रिमेंबर राहत फतेह अली खान ये भी आपके सुपर सिटी में पहुंचने वाले हैं। राहत फतेह अली खान जो है, इनके शो के लिए टिकट्स आप जल्दी से बुक कर लीजिएगा dryticketsdotcom पे जाके, एंड इनका शो जो है एक्चुअली में आप इंजॉय कर सकते हैं।
0: राहत फतेह अली खान का शो,
1: या
0: जी, जो 25 जुलाई को हो रहा है ना ट्रस्ट अरीना में,
1: 25 जुलाई को ट्रस्ट अरीना में इनका शो होने वाला है। एंड जेके स्टार प्रोडक्शंस का ये इवेंट है, शहजादा प्रोडक्शंस भी है इसमें,
0: गोट लाइव है, ड्रीम्स एंटरटेनमेंट है, सिमरन प्रोडक्शंस भी है, और dryticketsdotcom पे आपको इसके टिकट्स मिल जाएंगे।
1: यस,
0: और भी काफी इवेंट्स हो रहे हैं आपके सुपर सिटी में, जिसके डिटेल्स हम आपको देंगे थोड़ी देर में।
2: Of wisdom, wit, and wild conversations.
3: The Drive Show with Sandy and Rusby.
4: आपका प्रोफाइल देखा, आप मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आए।
5: फ्यूल के दाम रोज बढ़ रहे हैं और स्मार्ट ड्राइवर्स अब स्विच कर रहे हैं। फ्यूचर है एफिशिएंट ड्राइविंग का, और वेसिटी ओमोडा जेकू के साथ ये शिफ्ट और भी इजी हो जाता है। इंट्रोड्यूसिंग द पावरफुल J7 सुपर हाइब्रिड सिस्टम, परफॉर्मेंस भी, एफिशिएंसी भी, और ऑल इलेक्ट्रिक J5 EV, जीरो इमिशंस, मैक्सिमम सेविंग्स। आज ही वेसिटी ऑटो ग्रुप पहुंचे और जिमी टेलर और उनके एक्सपर्ट टीम से मिले। फॉर मोर इन्फो विजिट vesityautogroup.nz और सर्च फॉर वेसिटी ऑटो ग्रुप ऑन सोशल।
6: Mary didn't think she needed a DVS system.
7: I've got a heat pump.
6: That should do, but it didn't do it. Did it, Mary?
7: No, my windows wouldn't stop crying condensation.
6: So Mary got DVS home ventilation, and its fresh air in, stale air out technology went to work, making her rooms drier, healthier, and condensation free. Say yes to DVS. Your healthy home isn't complete without it.
8: The

0: You're listening to Humpling Bollywood's biggest hits. ये Cocktail 2 का गाना आप सुन रहे थे, जो movie I think आके चली गई ना अभी, और शाहिद कपूर की movie थी ये.
1: Yes, ये आके.
0: Kriti Sanon and
1: no Rashmika.
0: Rashmika Mandanna ना.
1: Rashmika Mandanna
0: Yeah. Nice.
1: Yeah, भूल गए थे yeah. तुम्हें पता है एक सवाल पूछूं तुमसे?
0: प्लीज पूछो ना प्लीज.
1: या सवाल ये है कि ऐसा क्या है आई कैन बी गिवन इंस्टेंटली बट कैन टेक इयर्स टू रिटर्न.
0: आई कैन बी टेकन इंस्टेंटली
1: या बट कैन टेक इयर्स टू रिटर्न.
0: मल्टीपल आंसर्स है,
1: मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं.
0: कॉल कीजिए 0800 004866. What can you think of?
1: या फिर यहाँ पे मैसेज करके बताइए ड्राइव कीवर्ड के साथ.
0: मेरा आंसर है फेवर.
1: फेवर कि इंस्टेंटली आपको मिल तो जाता है लेकिन रिटर्न करने में तुम्हें सालों
0: लग सकते हैं. क्योंकि फेवर आप तब भी किसी को दे सकते हो जब कोई मांगे. अगर मैं आपको बोलता हूँ कि सैंडी कैन यू डू मी अ फेवर, इंस्टेंटली आप मुझे दे सकते हो
1: yeah.
0: मैं ले सकता हूँ इंस्टेंटली, बट मैं आपको रिटर्न तब तक नहीं कर सकता जब तक आप मेरे को ना पूछो कि कैन यू डू मी अ फेवर.
1: या वो भी है मेरे माइंड में था जब मैंने ये सवाल पूछा. मुझे नहीं पता इस सवाल का एग्जैक्ट आंसर क्या है, इसके मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं. मेरे माइंड में जो आंसर आया वो था लोन.
0: ओह गुड पॉइंट.
1: इंस्टेंटली मिल जाते हैं, लो लोन चाहिए ये लो, लेकिन सालों लग जाते हैं आपको लोन चुकाने में.
0: दैट्स अ गुड वन.
1: या मेरे माइंड में वो आया था
0: 100%.
1: लेकिन और भी ढेर सारे एक्चुअली.
0: आई डोंट थिंक टू मच अबाउट लोन्स ना, ज्यादा वास्ता नहीं ना मेरा लोन्स के साथ.
1: बैंक बाबू है ये.
0: हाय आपका स्वागत है.
2: हाय कैसे आप लोग?
0: बहुत ही बढ़िया. आप कैसे?
2: मैं भी अच्छा हूँ. मेरे पास ऐसे एक तो मनी था पर इसमें वैसे लोन के काइंड ऑफ हो गया वो.
1: हाँ मनी भी है, सही है, उधार लेना किसी से.
2: बट आई एम नॉट श्योर अबाउट मे बी रिलेशनशिप.
1: रिलेशनशिप
0: हाँ रिलेशनशिप. अच्छा ओ ओके डिपेंड्स तुम क्या बोल रहे हो.
1: रिलेशनशिप में इंस्टेंटली है और रिटर्न इज लाइक मतलब क्या ब्रेकअप बहुत लंबा है क्या? मतलब वो थोड़ा क्लेरिफाई करना पड़ेगा फास्ट.
0: बट मेरे को नहीं लगता ये सही टाइम रहेगा क्लेरिफाई करने का. 6 बजे के बाद क्लेरिफाई करना.
2: ट्रस्ट हो सकता है.
1: ट्रस्ट इंस्टेंटली बट रिटर्न
0: नहीं. ट्रस्ट का उल्टा है, इंस्टेंटली टूट सकता है, फिर से गेन करने को तुम्हें काफी टाइम लग सकता है.
1: या
2: चलो फिर तो पोपट हो गया.
0: नहीं नहीं कोई नहीं.
1: नो वरी, सोचिए और फिर बताना. ठीक है, थैंक यू.
2: ओके.
0: नहीं दीस आर सच थिंग्स दैट वी हैव टू लाइक थिंक अबाउट इट ना. ब्रेनस्टॉर्म करना भी बहुत जरूरी है.
1: ब्रेनस्टॉर्म करना बहुत जरूरी है. ब्रेन की एक्सरसाइज बहुत जरूरी है. सो 5599 पर ड्राइव कीवर्ड के साथ यहां पे मैसेज करके भेजिए कि ऐसा क्या है जो इंस्टेंटली आपको मिल जाता है लेकिन रिटर्न करने में कई बार सालों लग जाते हैं. So, yeah, 5599 is a number. और क्या आता है तुम्हारे माइंड में, जहन में?
0: तो फेवर आ गया, लोन आ गया. इंस्टेंटली आता है लेकिन वापस से जाने के लिए
1: बहुत टाइम लेता है. वेरी ट्रिकी गाइस. सो थिंक अबाउट इट.
0: आप भी बताइए हमें क्या हो सकता है. 5599 is the number to message.

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: ऊपर से ऊपर brought to you by Reliance Ventilation Systems Limited.
1: सुपर से ऊपर ये शो जारी है आपके लिए 4:38 right now on the clock. एंड आपको हम बताने वाले हैं अभी मतलब मौका देने वाले हैं आपको टू पार्टिसिपेट टू कॉल हियर एंड पार्टिसिपेट.
2: या सो ट्राइविजन इवेंट्स आपके लिए द ग्रेट कॉमेडी नाइट लेके आ रहे हैं जिसमें कृष्णाभिषेक राजीव ठाकुर लाइव रहेंगे स्टेज पे. लाइव पहली बार न्यूजीलैंड में आने वाले हैं रुजबे ये. एंड फैमिली फ्रेंडली इवेंट है जहाँ पे अनफॉरगेटेबल मेमोरीज आप क्रिएट कर सकते हैं अपनी फैमिली के साथ जाके. VIP टिकट्स बाय द वे सोल्ड आउट हो चुकी है, बाकी थोड़ी टिकट्स ही बाकी है जो आप खरीद सकते हैं bookmyevent.co.nz पे जाके. आफ्टर पे ऑप्शन भी अवेलेबल है. इवेंट इज ऑन 18 जुलाई विक्ट्री कन्वेंशन सेंटर में
1: जी. और मैंने रिसेंटली एक वीडियो देखा सोशल मीडिया पे कृष्ण अभिषेक और राजीव ठाकुर का, बहुत अच्छा था वो, मस्त था. दे वर वेरी एक्साइटेड टू कम टू ऑकलैंड.
2: Nice.
1: And उसके ऊपर थोड़ा सा वो वीडियो था. हम सुना सकते थे आपको अगर हमारे पास भी आता वो वीडियो तो, लेकिन कोई नहीं, सोशल मीडिया के थ्रू भी आप चेक कर सकते हो. बट अभी अगर आपको पार्टिसिपेट करना है इस ड्रॉ में
2: तो आपको क्या करना है?
1: तो अभी आपको यहाँ पे कॉल करना है 0800-004-866 इस नंबर पे
2: और अपना लक आजमा सकते हैं. डबल पास आप जी सकते हैं इस इवेंट के लिए
1: और आप हमें यहाँ पे एक जोक सुना सकते हैं.
2: या तो जोक सुनाइएगा. एंड क्योंकि
1: आज के जमाने में बहुत इजी हो गया जोक सुनाना. अभी के जमाने में तो बहुत इजी हो गया
2: चैट जीपीटी
1: से.
2: कल ट्राई किया था हमने.
1: किया था ना ये कल ही किया था.
2: सो नॉट जस्ट चैट जीपीटी, इवन रुजबे व्हाइल ग्रोइंग अप हमने बहुत सारे जोक्स पढ़े होते हैं एंड सुने होते हैं कई बार. तो अपना लक आजमाइए 0800 हम इज अ नंबर.
1: बट वो ये प्रॉब्लम जो बचपन में सुने थे वो पता नहीं अभी अप्रोप्रिएट होते कि नहीं होते ना.
2: हाँ, रेडियो फ्रेंडली होनी चाहिए, इतना ध्यान रखना.
1: नहीं, आजकल अभी मैं बताता हूँ इसके बारे में भी. हाय, आपका स्वागत है.
3: रुजबे भाई कैसे हो?
1: बहुत ही बढ़िया, आप कैसे हो?
3: How are you?
2: I'm good as well, thank you so much.
1: क्या नाम है आपका?
3: Anthony.
1: बोलो एंथनी भाई, जोक सुनाओगे आज आप हमें?
3: अच्छा जोक है छोटा सा,
1: बोलो.
3: ओके, देयर इज अ होटल काइंड ऑफ रेस्टोरेंट इन ग्रीन लाइन, इट्स नेम इज ग्रीन लाइन होटल. नाम है ग्रीन लाइन होटल है उसका.
1: ग्रीन लाइन होटल,
2: ओके.
3: ग्रीन लाइन होटल. ओके, सो एक बंदा तो रेगुलर जाता है वो इडली सांबार खाने. सो वन गाय यूज्ड टू गो एवरी डे एंड यूज्ड टू ड्रिंक लॉट्स ऑफ सांबार इडली के साथ, पूरा खत्म कर देता. ओके, तो वो एक दिन इसका मालिक बहुत हैपनिंग है, वो देखता है ऐसा एक बंदा था हर रोज ऐसा ऐसा काम करता. तो आई डोंट नो, वो शेफ ने एक दिन क्या करता कुछ, आई डोंट नो, दे माइट डू समथिंग. सो उसने एक दिन आया, पूरा सांबार इडली खा लिया, सांबार पी लिया पूरा, बस वो चलते पड़ा.
1: मैं कंफ्यूज हूँ, किसने ऐसा किया? ये
2: शेफ ने किया कि वही जो बंदा आता था,
3: पता नहीं कुछ ना किया, कुछ ना करना पड़ेगा इसको, ऐसा डेली हो रहा है. तो उसने कुछ कमाल कर दिया, शेफ ने मालिक से बात कर, तो बंदा ने सांबर पी लिया, उसके बाद चलते चलते निकल गया रोड से. उसके बाद किसी ने गोरे ने बोला, यू नो वेयर इज दिस ग्रीन लाइन होटल?
1: क्या था वो येलो लाइन? उसका सांबर.
2: इतना एक्सप्लेन नहीं, इतनी एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए
1: उसमें. एंथनी भाई, शाही पे खाने के बाद ऐसा नहीं होगा ना?
3: नहीं,
2: सोच लीजिए.
1: नहीं, थैंक यू सो मच यार फॉर शेयरिंग.
2: थैंक यू
1: भाई. हाय, आपका भी स्वागत है.
4: हेलो रुजबे भाई, कैसे हो?
1: अरे बहुत ही बढ़िया, आप कैसे हो?
4: बस चल रहा है, आपकी दुआ से
1: चल रहा है. क्या बात है, हमारी दुआ खुद पे नहीं काम कर रही है लेकिन अच्छा है आप पे काम कर रही है तो.
4: तो मैंने बीवी से पूछा, एक बात बताओ, अगर मान लो अगर कोई औरत या कोई लड़की आए फूल लेके हमारे पास, हमें प्रपोज करी, तुम कौन सी करेगा, तुम कौन सी बोलेगी उससे, हमें बताओ। पहले तो हम एक से पीछे हो जाएगा और देखेगा और सुनेगा तुम को जी करता है। तब हम बोला तब बोले तुम्हें देखे तुम को जी करता। तब फिर हमें बोले अच्छा राइट, मान लो अगर कोई लड़का आइए फूल लेके गुलाब के फूल लेके और नी पे बैठ गए और हमें बोले कि हम तुम्हें प्रपोज करना तेरी खाना खाए संगे, तू वहां कोई रक्षण रही हमें बताओ। हम लड़का हम पकड़े खोला और बोला खराब ज्यादा 25 साल तुम कहा रहा, तुम मेरे 25 साल ही बात बोल देता, आज हम यहाँ ले सुन देता यार।
2: सही है। उसके बाद खाना खाया आपने?
4: इन्हें बोला बोला मैं खराब हुआ आपके जाने पे, मेरा नहीं इससे चलता।
1: मैं तो ऐसी हिम्मत नहीं करता हूँ भाई जोक मार। आप तो खतरों के खिलाड़ी हो भाई, ऐसे जोक मार के आप निकल जाते हो। वेरी नाइस, बढ़िया अश्विन, थैंक यू सो मच यार।
2: थैंक यू अश्विन फॉर कॉलिंग।
1: मेरे को नहीं लगता ऐसे अभी हम आज के जनरेशन में ऐसे जोक मार पाएंगे।
2: जोक ये वाले तो लाइक इट्स बिटवीन बोथ ऑफ देम ना, डिपेंड करता है कि उनकी बीवी को अगर पसंद है तो लाइक शी इज फाइन तो शी इज फाइन,
1: ऐसा बोलते हो क्या?
2: हाँ, ये आपस की इक्वेशन होती है।
1: हाय
5: हाय
1: यस।
5: तो जैसे अपन बचपन में जो होते थे वैसे चलेगा ना,
1: जैसे
5: कहना सिंपल सिंपल जोक जो रेडियो पे,
1: तुम सिंपल जोक मारो रेडियो फ्रेंडली, मैं उसमें भी कुछ ना कुछ खामियां निकालूंगा, ठीक है?
2: तुम ट्राई करो बस।
1: हाँ
5: अच्छा चलो। मैं एक बार मैं और मेरा भाई, ठीक है, तो हम दोनों ऐसे ही बात कर रहे थे और तब हम लोगों के ना ऐसे यानी स्कूल के बाहर ऐसे बेर मिलते थे, वो शायद इसको पता होगा और उस पे
1: हाँ, बोर बोर
5: मीठ वाले, मीठ वाले नहीं कहते मीठ वाले जो
1: बोर बोर
5: पिकले ले, हाँ बोर जो होते थे तो वो मिलते थे, तो हम उसको लेते थे और फिर हम ना वी यूज टू डिवाइड इट लाइक वन वन ईच ना। तो ऐसे मैंने मैंने उसको बोला कि अभी 10 तेरे पास है और अगर मैं इसमें से 5 ले लूंगा तो यानी वो समझदारी वाली बात एक्सपेक्ट कर रहा था क्योंकि थोड़े गेस्ट भी आए हुए थे घर में, तो मैंने बोला अगर मैं इसमें से 5 ले लूंगा तो फिर तेरे पास तो क्या बचेगा। तो वो मेरे को बोल रहा है भाई जितना बचेगा, तो
1: जितना बचेगा
5: इतना इन्हें समझा मतलब लड़ाई।
1: अच्छा ओके।
5: हाँ तो मैंने मैंने बोला लड़ाई क्यों, तो बोले क्योंकि अगर तू मेरे बिना पूछे मेरे से तू मेरे बेर ले लेगा तो फिर तो वही बचेगा ना, लड़ाई बचेगी। तो ये ऐसा था ना सिंपल।
1: नाइस नाइस, अच्छा था, वेरी नाइस यार। थैंक यू सो मच अहबाज, थैंक यू
2: अहबाज।
1: वेल अगर आपको और हंसना है और सच्ची में हंसना है तो bookmyevent.co.nz पे जाके आप टिकट्स ले लीजिए, बिकॉज डबल द कॉमेडियंस डबल द लाफ्टर, कृष्ण अभिषेक और राजीव ठाकुर लाइव ऑन स्टेज, ट्राइविजन इवेंट्स लेकर आ रहे हैं द ग्रेट कॉमेडी नाइट एट 18 जुलाई विक्ट्री कन्वेंशन सेंटर, अभी ले लीजिए टिकट्स।

0: Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now.
1: Power Drive at 5.
2: Brought to you by Focus Kitchens. Quality kitchens with modernized, customized designs for your dream kitchen. Drive Show with Sandy and Rizvi.
3: मस्ती करेंगे, मौज काटेंगे, गर्दा पार देंगे.
4: 5:03 on the 7th of July. Good evening. Hi Sandy.
5: Good evening Rizvi. कैसे हो तुम?
4: मैं अभी स्ट्रेस में हूँ थोड़ा.
5: आज गाइस ट्यूसडे है, मतलब कि आज हम कैरेक्टर गेस खेलने वाले हैं.
4: Your favorite segment, this
5: favorite.
4: One.
5: Favorite.
2: Character guess.
4: And I am very confused today.
5: So, तुम्हें एक गाने का टाइम देते हैं.
4: एक गाने का टाइम दे रहे हो आप?
5: हाँ, गाने का टाइम देते हैं तुम्हें. So, कैरेक्टर गेस के रूल्स आपको समझा देती हूँ. इसमें क्या होगा, हमारी टर्न्स होती है, मेरी और रुजबे की. आज रुजबे की टर्न है, तो रुजबे एक कैरेक्टर के बारे में सोच के रखेगा. इट कैन बी एनी वन, दुनिया में वो कोई भी इंसान हो सकता है या फिर एक इंसान का करेक्टर हो सकता है. अगर वो किसी बॉलीवुड को सोच रहे तो एक बॉलीवुड करेक्टर भी वो हो सकता है, यू नो. जैसे मोगैम्बो इज़ वन करेक्टर, बट अमरीश पुरी इज ऑल्सो अ करेक्टर. सो इट कैन बी एनी वन. सो हमें 5 सवाल पूछने हैं रुजबे से, जिसका जवाब वो सिर्फ हाँ या नाम भी दे सकता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, क्या जिसके बारे में तुमने सोचा रुजबे, क्या वो इंसान अलाइव है? तो हाँ बोलेगा तो मतलब वी नो कि चलो ये पर्सन अलाइव है. और 5 हिंट रुजबे हमें देने वाला है. तो इन्हीं 5 सवालों में और उसके 5 हिंट सुन के हमें फिगर आउट करना है कि किस करेक्टर के बारे में सोच के रखा है आज रुजबे ने.
4: जी.
5: एंड रुजबे इज कंफ्यूज्ड राइट नाउ.
4: या आई एम जस्ट गैदरिंग माय हिंट्स ऑल टुगेदर.
5: बट तुम दो लोगों के बीच में क्यों कंफ्यूज हो?
4: दो लोगों के बीच में थोड़ी बोला मैंने.
5: तुमने बोला ना अभी थोड़ी देर पहले
4: नहीं,
5: कि
4: मैंने नहीं
5: मैं
4: बोला,
5: कुछ कंफ्यूज हूं.
4: मैं कंफ्यूज हूँ कि जो मैं सोच रहा हूँ क्या वो सही होगा कि नहीं, क्योंकि हमारे लिसनर्स बहुत तेज है यार, वो पकड़ लेते हैं फटाफट. माई जस्ट होप इज के 3 हिंट के पहले कोई गेस ना कर पाए, क्योंकि 3 हिंट के पहले ही गैस हो जाता है काफी बार.
5: लेकिन मतलब वो होता नहीं है गैस, कई बार हमारे पास आंसर्स आ जाते हैं बट वी आर नॉट श्योर अबाउट इट.
4: श्योर अबाउट इट आल्सो.
5: या तो आप मैसेज भी उस समय कर सकते हैं, बट यू कैन कॉल 0800 हम पर. सो लेट्स सी.

0: Character Guess.
1: And it's time for Character Guess. आज Character Guess में मेरा turn है कि मैं यहाँ पे character सोचूंगा character के बारे में और आपको मैं उसके बारे में थोड़े बहुत hints दूंगा और आपको in return आपके पास 5 सवाल है मेरे को पूछने के लिए.
2: Yes, और मैं note करके रखती हूँ जितने भी hints रुजबे यहाँ पे provide करता है. So that we are एकदम organized. तो रुजबे start करो.
1: Okay. यार इट्स अ डिफिकल्ट वन.
2: पहला हिंट देना.
1: सो पहला हिंट दो ना मैं. आई कैन एक्सप्रेस हैप्पीनेस, टेरर, कंफ्यूजन एंड अ मिड लाइफ क्राइसिस ऑल इन अ स्पैन ऑफ 3 सेकेंड्स विदाउट सेइंग अ सिंगल वर्ड.
2: तुम करेक्टर ही सोच रहे हो ना, कोई थिंग नहीं सोच रहे हो तुम.
1: कौन सा थिंग आपके मन में आया ये?
2: मतलब आई एम जस्ट थिंकिंग की करेक्टर के, मतलब वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट लिविंग बीइंग इन द करेक्टर गेस.
1: इसमें आपको क्या लग रहा है कि ये क्या ऐसा है कि नॉन लिविंग थिंग है इसमें?
2: अब पता नहीं ना.
1: आई कैन एक्सप्रेस हैप्पीनेस, टेरर, कंफ्यूजन, मिड लाइफ क्राइसिस ऑल इन अ स्पैन ऑफ 3 सेकंड्स विदाउट सेइंग अ सिंगल वर्ड. ये आपको क्यों लग रहा है कि नॉन लिविंग थिंग कर सकता है ये?
2: दिस इज समवन हु कैन नॉट, हु मतलब 3 सेकंड्स के अंदर ही ना मे बी मिमिक्री से या किसी चीज से, नॉट मिमिक्री, उसे क्या कहते हैं, जैसे मैंने चार्ली चैपलिन किया था.
1: अच्छा.
2: या एक एक्ट के साथ एक्चुअली में सारी की सारी चीजें बता दे.
1: अच्छा.
2: दिस कैन बी समवन. हैप्पीनेस, टेरर तुमने बोला, और क्या बोला तुमने?
1: कंफ्यूजन.
2: कन्फ्यूजन.
1: ये पूरा नोट करोगे आप? ऐसा अलाउड नहीं है नोट वोट करना.
2: ऐसे क्यों नहीं अलाउड है? याद रखने के लिए चाहिए ना. हैप्पीनेस, टेरर, कन्फ्यूजन,
1: मिड लाइफ क्राइसिस.
2: मिड लाइफ क्राइसिस. या तो ये 3 सेकंड्स में दिस पर्सन कैन रिफ्लेक्ट इन ऑल दीज थिंग्स बेसिकली. ऐसा है. या वेरी ट्रिकी. सो दिस पर्सन जो है ये रिफ्लेक्ट कर सकता है, ये कर सकती है हैप्पीनेस, टेरर, कंफ्यूजन, मिड लाइफ क्राइसिस इन 3 सेकंड्स.
1: या
2: इन द स्पैन ऑफ 3 सेकंड्स ये सारी चीजें रिफ्लेक्ट हो सकती है. वाओ.
1: इज इट पर्सनल एक्सपीरियंस? प्रशांत बोल रहा है
2: पर्सनल एक्सपीरियंस.
1: पता नहीं. नहीं.
2: हैप्पीनेस, टेरर, कंफ्यूजन, मिड लाइफ क्राइसिस.
1: मुझे तो वर्ड कहना जरूरी है यार. आई कांट बी विदाउट सेइंग अ वर्ड.
2: या
1: एनीवे नेक्स्ट हिंट चाहिए आपको?
2: सेकंड. या 100% चाहिए. सेकंड हिंट चाहिए हमें.
1: चलेगा ठीक है. इज इट हैपनिंग इन स्लीप? प्रशांत हम लोग कैरेक्टर गेस खेल रहे हैं तो मैं एक कैरेक्टर के बारे में
2: बता रहा
1: हूं.
2: क्या है ना, कैरेक्टर गेस में ही इज टॉकिंग अबाउट सम कैरेक्टर, किसी के बारे में वो बात कर रहा है जिसमें ये क्वालिटीज है या फिर जिसके ये एट्रीब्यूट्स है, उसके बारे में हमें हिंट मिल रहे हैं.
1: या एग्जैक्टली.
2: सो बताओ सेकंड हिंट क्या है तुम्हारा?
1: सेकंड हिंट,
2: बिकॉज़ ये तो बाउंसर गया.
1: सेकंड हिंट है आई एम प्रोबेबली द मोस्ट यूजलेस हेंचमैन, ड्राइवर और सर्वेंट.
2: हेंचमैन मतलब?
1: मतलब गुंडा जो होता है.
2: हाँ.
1: भाई जो होता है.
2: ओ, मतलब सर्किट की तरह.
1: सर्किट. हाँ. मोस्ट यूजलेस हो सकता हूँ मैं.
2: हाँ.
1: गुंडे का
2: भाई.
1: गुंडे का राइट हैंड. राइट हैंड.
2: यूजलेस राइट हैंड है ये.
1: यूजलेस राइट हैंड हो सकता है ये.
2: इसे कंसीडर कर सकते हैं useless.
1: इसको कंसीडर कर सकते हैं यूजलेस राइट हैंड.
2: मुझे ऐसा लग रहा है गाइस ये कोई बॉलीवुड का करेक्टर है. अब देखो ना सीक्वेंस, रियल लाइफ में कौन ही ऐसा करेक्टर होगा यूजलेस हैंडमैन, ये किसको बोलेगा?
1: यूजलेस हैंचमैन.
2: हैंचमैन ये किसको बोलेगा? राइट. रियल लाइफ में बोलेगा तो ये फंसेगा.
1: ऐसा बोलते हो आप? मैं फंसूंगा.
2: आजकल फंस ही रहे हैं.
1: okay.
2: यूजलेस हैंचमैन ये बोलेगा तो मुझे नहीं लगता रियल लाइफ में कोई ऐसा होगा. कोई एक करेक्टर होगा जो हैप्पीनेस को भी रिप्रेजेंट करता है, टेरर को भी, कन्फ्यूजन को भी, मिड लाइफ क्राइसिस को भी. 800-004-866.
1: स्वागत है.
0: Hello.
2: Hi,
0: Sharon. Is it Raj Kapoor?
1: Raj Kapoor. आप पहले सवाल के साथ शुरू करो, डायरेक्ट आप गेस करोगे ना उसमें फिर वो ये हो जाएगा, मतलब
0: सवाल है ना, उसने एक मूवी की थी जहाँ पे ही हैज दिखाया था बिना बात करे ही इज अनहैप्पी, मेरा नाम जोकर,
1: मेरा नाम जोकर, हाँ हाँ हाँ, जीना यहाँ मरना यहाँ, वो उसी का गाना है ना,
2: मुझे ऐसा लग रहा है ना, हाँ
0: हाँ, मिड लाइफ क्राइसिस, आई मीन वो मिडिल एज का थोड़ा था उस वक्त पे. एंड द थ्री जो आपने बोला कि
2: यूजलेस
0: शो द थ्री, वो हाँ वो है यूजलेस तो नहीं थे, बट आई मीन ही डिडंट वर्क एज अ हेंचमैन, कभी मैंने देखा नहीं.
1: तो वहीं पे
0: गुड कैरेक्टर,
2: तो वहाँ पे वो नहीं फिट हुआ ना, फिर
1: नहीं फिट हुआ ना वो वहाँ
2: तो
1: पे.
2: हर एक चीज फिट होनी चाहिए. मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके आंसर से ना मुझे एक चीज लग रही है, जोकर.
1: जोकर
2: या इट कैन बी अ जोकर एज वेल. जोकर कुछ ही सेकंड्स में कैन रिप्रेजेंट हैप्पीनेस, टेरर, कंफ्यूजन, मिड लाइफ क्राइसिस, यूजलेस हेंचमैन,
1: जोकर. इंटरेस्टिंग
2: हो सकता है, जोकर भी हो सकता है इसका जवाब.
1: अभी वो क्यों नहीं फिट हो रहा है कैटेगरी में, शेरिल का आपने बोल दिया कि ये फिट नहीं हो रहा है,
2: वो राज कपूर के हिसाब से फिट नहीं हो रहा है ना,
1: जोकर हो रहा है फिट, लेकिन
2: जोकर हो सकता है.
1: अच्छा, यूजलेस हेंचमैन में कैसे आ रहा है वो,
0: यूजलेस हेंचमैन. अच्छा, मैं भी समझी नहीं जो लास्ट पे आपने बोला था, ही
2: तो थोड़ा समझाओ यूजलेस हेंचमैन के बारे में. उसमें
1: He'll probably be a useless henchman.
2: तो henchman का मतलब होता है वो गुंडे का right hand बंदा.
0: नहीं नहीं, useless henchman नहीं. My understanding is useless henchman जो बेकार है, वो जैसे सर्कट है, वो he doesn't know what he's doing.
1: हो सकता है.
0: In the हाँ, तो that's why I fit in Raj Kapoor, कभी उसको henchman देखा नहीं था. तो अगर करेगा भी तो useless होगा, इतना अच्छा, he was such a good actor. In making people laugh, but you can see all the three traits जो रुस्बे ने बोला है, but you know,
1: okay, nice, nice one.
0: Okay, thank you,
2: Cheryl.
1: Thank you.
2: हाँ सही है. और भी कॉल करो यहाँ पे 0800 00 हम पर.
1: एक सवाल पूछना है आपको,
2: मैं सोच रही हूँ कि एक सवाल पूछती हूँ मैं.
1: एक सवाल है, इजी बिलोंग्स टू दत्त फैमिली, अगर आपको ये पूछना है तो आप पूछ सकते हो ये सवाल.
2: तो मेरा सवाल तुमसे ये रहेगा कि जिस पर्सन के बारे में तुम बात कर रहे हो, This person belongs to Bollywood?
1: Yes.
2: तो ये Bollywood के बारे में ही बात कर रहा है. At least हमें इतना confirm हो गया है.
1: Yes.
2: So guys, we know that this person is from Bollywood. So Bollywood को
1: तो एक सवाल हो गया अभी और तीन हिंट हो गए ना?
2: दो हिंट हुए.
1: सिर्फ दो ही हुए क्या?
2: हाँ.
1: अच्छा ठीक है.
2: तीसरा हिंट बोलो.
1: तीसरा हिंट अभी बोल दूँ?
2: Yeah.
1: Okay. देखो. ये हिंट थोड़ा सुनना अच्छे से, ठीक है. माइकल जैक्सन माइट हैव इन्वेंटेड द मून वॉक, बट माय डांस मूव्स एंड लिप सिंकिंग स्किल्स आर सो इंटेंस दे कुड इजीली कॉज अ माइनर अर्थक्वेक.
2: व्हाट?
1: तो मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि इनके डांस मूव्स और इनके लिप सिंकिंग जो स्किल्स है ये बहुत इंटेंस है, मतलब बहुत ही

0: of 8 degrees on the northern. Reports of a crash between Oniwa Road and Esmond Road affecting southbound traffic. On the southern, we're hearing there's a crash around the Green Lane interchange affecting southbound traffic there. It's very slow from the city to Highbrook Drive. And on the southwestern, we're hearing there's a crash by the Onehunga southbound on-ramp and traffic heavy between Whitty and there.
1: You could win 10k when you order your new Kitchen Mania kitchen. T's and C's apply.
2: Professional Financials has saath aapke. Loan or insurance, ek chhat ke niche. No broker charge. बस ट्रस्टेड एडवाइस हर डील बनाए परफेक्ट राइट
3: रीफाइनेंस के लिए कंपेयर करें डिफरेंट बैंक्स लोन प्रोसेस हो सिंपल एंड फ्रैंक
2: बिजनेस फाइनेंस या इनकम प्रोटेक्शन हो हर स्टेप पर गाइडेंस परफेक्ट हो सब कुछ मिलेगा यहीं अपना फ्यूचर सिक्योर बनाए
3: प्रोफेशनल फाइनेंशियल सॉल्यूशंस योर फ्यूचर आवर प्रायोरिटी कॉल 09846 9934 फॉर सर्च PFSL T's and C's लेंडिंग एंड क्रेडिट क्राइटेरिया अप्लाई.
4: Jen didn't think she needed a DVS system.
5: Oh, I've got insulation in that.
4: But Jen had forgotten about the mould on her walls and curtains.
5: Ah, yeah.
4: So Jen got DVS home ventilation, and its fresh air in, stale air out technology went to work, making her rooms drier, healthier, plus mould and mildew free. Say yes to DVS. Your healthy home isn't complete without it.
6: Fall in love with your home again with an ANZ Reno Loan. A home loan top-up of up to $50,000 at just 2.5% per annum, fixed for 3 years. Minimum 20% equity eligibility lending rules, terms and fees apply. Available for a limited time. ANZ, we do how.
7: Use your loaf and throw your burnt toast in your food scraps bin instead of the rubbish. Because every scrap counts. Tāmaki Tūriki. All together, Auckland.
8: जब कशिश देसी घी से खाना बनेगा तो यही तो होगा. न्यूजीलैंड में मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी से बना ग्रास फेड दानेदार काऊ घी. जब खाने में होगी इतनी शुद्धता, इतना स्वाद, तो आपको भी किचन में कुछ ऐसा सुनाई देगा.
9: मुझे भी
8: कशिश प्योर देसी घी, अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स इन न्यूजीलैंड. खुशियाँ पकाए, खुशियाँ खिलाए.
10: Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manukau and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now.
11: Power Drive at 5.
12: Brought to you by Focus Kitchens. Quality kitchens with modernized, customized designs for your dream kitchen.
13: You're listening to Humbling, Bollywood's biggest hits. And aaj character guest mein thoda mausam thanda hai. काफी अभी आंसर्स आ रहे हैं, काफी लोग मैसेज कर रहे हैं. आई एम लीविंग विदाउट थर्ड हिंट.
14: इज ही सफरिंग फ्रॉम सम सॉर्ट ऑफ इलनेस.
13: अच्छा,
14: ओके. एक ने बोला है जोकर कुड बी अ करेक्टर. देवानंद, इमरान हाशमी, राज कपूर, माधुरी दीक्षित, रणवीर सिंह, बेन एफर.
13: अभी कौन ही बाकी रह गया फिर इसमें.
14: तो हमें ये देखना है कि जो भी आपका आंसर है ना, उसमें ये सब कुछ फिट होता है. In 3 seconds can bring happiness, terror, confusion and midlife crisis.
13: मतलब आप समझ लो कि इनका जो चेहरा is made of rubber. आप कैसे, मतलब ऐसा कोई भी अलग shape ले सकता है वो. ऐसा.
14: जादू तो नहीं है.
13: नहीं नहीं, वैसा नहीं. और confuse नहीं करना मुझे आपको.
14: Useless henchman, ठीक है. Bollywood से है this person. इसके dance steps से The dance steps can cause mini earthquake.
13: मतलब basically to be very precise, very graceful dancer but not known for dancing.
14: Oh, graceful dancer.
13: Yeah, good dancer. मतलब okay. Earthquake मतलब ऐसे दिल में धक-धक करा दे आपके, मतलब ऐसा. हिला ना दे. अच्छा dancer.
14: माधुरी तो नहीं है ये. माधुरी is not a useless henchman.
13: Graceful dancer.
14: Graceful dancer she is.
13: मतलब नहीं, माधुरी की नहीं बात कर रहा हूँ.
14: हाँ हाँ.
13: मतलब ग्रेसफुल मतलब सही है डांसर.
14: ओके,
13: सवाल पूछना है कि मैं हिंट दूं?
14: तो ऐसा करते हैं गाइस, एक सवाल पूछते हैं.
13: कोई कॉल करो यार, यहाँ पे हेल्प की जरूरत है अभी सैंडी को.
14: मुझे हेल्प की जरूरत है यार. 0800004866 इस नंबर पे कॉल करो एंड हमें एक सवाल पूछना है रुजबे से, सो दैट हम कहीं पे पहुंचे. एक ने ऋतिक रोशन लिखा है. ऋतिक रोशन तो बहुत सही डांसर है यार.
13: एक और हिंट दे दूं क्या आपको?
14: लाइक गुड.
13: चौथा हिंट है.
14: ग्रेसफुल डांसर. हाँ,
13: चौथा हिंट
14: बोलो.
13: दे दूँ?
14: हाँ हाँ हाँ.
13: पक्का या फोन आंसर करना है पहले?
14: तुम तो, तुमसे एक सवाल पूछती हूँ मैं.
13: हाँ

0: उपेंद्र का भी सवाल है, इज दिस बॉलीवुड एक्टर कॉमेडियन मोस्टली हु हैज फ्यू फैमिली मेंबर्स इन बॉलीवुड एज वेल. वेरी इंटरेस्टिंग,
1: वेरी इंटरेस्टिंग. उपेंद्र,
0: तो तुमसे ये सवाल है जो उपेंद्र ने पूछा है, क्या बोला है उसने, इज दिस बॉलीवुड एक्टर इज कॉमेडियन मोस्टली हु हैज फ्यू फैमिली मेंबर्स इन बॉलीवुड एज वेल. तो तुम मुझे ये बताओ कि ये जो पर्सन है जिसके बारे में तुमने सोच के रखा है, क्या उसकी बॉलीवुड में फैमिली है?
1: हाँ.
0: इतना सोच के बोला तुमने हाँ, लेकिन प्रोमिनेंट फैमिली है, इसने एक्टिंग की यहाँ पे.
1: मींस आई डोंट नो हाउ, लाइक बॉलीवुड, हाउ डू यू डिफाइन बॉलीवुड?
0: बॉलीवुड
1: मीडिया में है.
0: Not media, I'm talking about Bollywood, movies.
1: Movies में?
0: जैसे for example कपूर खानदान है, करीना कपूर, करिश्मा कपूर, ये सब. तो इसकी क्या Bollywood में family है क्या जिसके बारे में तुमने सोचा है? Guys, इसका मतलब ये कपूर वगैरह ये बड़े खानदान से नहीं, क्योंकि ये सर्च कर रहा है. बड़े खानदान का कोई होता,
1: मेरे को अलाउड है ना?
0: हाँ, बड़े खानदान का कोई होता तो इसको सर्च नहीं करना पड़ता.
1: हाँ, एक मिनट से बात करते. हाय,
2: हेलो, उपेंद्र बोल रहा हूँ भाई.
0: ये उपेंद्र, किसके बारे में सोच रहे थे आप?
2: अरे नहीं, मैं तो पहले भी, गोविंदा है ना ये,
0: गोविंदा, लेकिन ये बोला नहीं कुछ गोविंदा, लेकिन यूजलेस हेंचमैन कहाँ पे था वो?
2: अरे एक फिल्म में वो बना था शायद विलेन थे और चली नहीं, वो फ्लॉप है, इसलिए यू डोंट नो मेबी.
1: Oh, हाँ,
0: तो
1: okay.
0: इसने बोला कि मतलब जो डांसर ना, ही इज नॉट नोन फॉर द डांसिंग, लेकिन गोविंदा तो डांसिंग के लिए जाने जाते थे, एक वहां पे फिट नहीं हो पा रहा है.
2: वो बेसिक डांस है ना, डांसर इज समथिंग डिफरेंट ना. उस टाइम पे वो ऑफ कोर्स अपने टाइम पे 90s के टाइम पे ही इज अ गुड डांसर, बट इफ यू कंपेयर विद रितिक ऑफ लाइक द करंट डांसर, ऑफ कोर्स
1: क्या बात कर रहे हो, गोविंदा डांसर नहीं है कम्पेयर टू ऋतिक भाई, वो अलग डांस फॉर्म है उसका.
2: हाँ, ऑफ कोर्स अलग डांस फॉर्म है, बट स्टिल मेरे हिसाब से नहीं है वो.
0: उनकी नजर में नहीं है ना रुस्बे.
1: गोविंदा इज भाई ओजी है भाई, गोविंदा बस क्या
0: बुरा लग गया इसका मतलब नहीं है उपेंद्र. एक तो हमें आंसर मिल गया कि वो नहीं है.
2: अरे
0: सही है, सही है,
2: बट माय आंसर इज
0: गोविंदा. अच्छा, आपका आंसर गोविंदा है, ठीक है.
1: थैंक यू यार उपेंद्र,
0: ठीक है, देखते हैं.
1: नाइस, गुड वन, गुड वन,
0: ठीक है, ओके. तो इनसे भी बात करते हैं.
1: हाय, आपका स्वागत है.
3: हेलो
1: जी,
0: जी
3: ये कॉमेडियन है ना?
1: क्या
0: कॉमेडियन आप किसके बारे में सोच रहे हैं? किसके बारे में सोच रहे हैं आप?
3: मैं जॉनी लीवर.
0: जॉनी लीवर, हैप्पीनेस, टेरर, कन्फ्यूजन, मिड लाइफ क्राइसिस, यूजलेस हेंचमैन. ओ या, ये भी फिट होता है उसके ऊपर. बॉलीवुड डांस स्टेप्स कैन कॉज, हाँ उसका भी डांस मतलब ग्रेसफुल तो है, लेकिन इज नॉट नोन फॉर द डांसिंग. क्या फिट तो हो रहा है जॉनी लीवर इसमें. ऐसा करते हैं ना, हमने कितने सवाल पूछ लिए? एक अभी हमने
1: तीन सवाल पूछ लिए ना आपने.
0: तीन सवाल कहाँ से पूछा मैंने,
1: दो सवाल पूछे.
0: दो सवाल पूछे मैंने.
1: और आपका नाम क्या है?
3: मेरा नाम दीप.
1: दीप है आपका नाम.
0: तो अच्छा. दीप ऐसे करते हैं ना, एक सवाल पूछते हैं, ठीक है?
1: सवाल पूछो, ठीक है.
0: तो सवाल है रुजबे तुमसे,
1: हाँ.
0: कि जिस पर्सन के बारे में तुम बात कर रहे हो, क्या इस पर्सन का फैमिली मेंबर कॉमेडी में है?
1: अरे नहीं, आपने मेरे को पूछा था ऑलरेडी सवाल, क्या इस पर्सन का बॉलीवुड में है, क्या पूछा ना आपने.
0: हाँ, तो वो कैसे, उसका तुमने अभी तक जवाब नहीं दिया ना?
1: उसका जवाब
0: नहीं दिया तुमने अभी. नहीं, तुम सर्च कर रहे थे.
1: नहीं नहीं नहीं, एक और, नहीं मैं एक और सवाल पकड़ूंगा इसको. आपने बॉलीवुड पूछा, मैंने यस बोल दिया.
0: बॉलीवुड फैमिली पूछा था मैंने.
1: बॉलीवुड फैमिली नहीं, आपने पूछा इसके फैमिली मतलब बॉलीवुड में है क्या, मैंने बोला हाँ है.
0: बॉलीवुड में है,
1: बॉलीवुड में है.
0: तो जॉनी लीवर की फैमिली नहीं है ना बॉलीवुड में? या
1: चलो ठीक है,
3: मेरे को लगा वो जो फेशियल एक्सप्रेशन की बात कर रहे थे.
0: हाँ, मेरे को भी वही ना, एकदम मेरे को वही लगा अभी. बट देन ही सेड कि उसकी फैमिली बॉलीवुड में है, बट जॉनी लिवर की फैमिली बॉलीवुड में नहीं है.
1: नहीं है क्या?
0: नहीं.
1: चलो ठीक,
0: उसकी बेटी कॉमेडियन है.
1: ओके ठीक है, तो क्या करे फिर? एफआस से बात करे एक बार
0: ना, कर लो.
1: बोलो एफआस.
0: ये तो बाउंसर ही जा रहा है.
3: बाउंसर जा रहा है. अच्छा मुझे इतना बताओ कि ये जो एक्टर है ये बॉडी रिलेटेड चीज में है क्या?
1: बॉडी रिलेटेड चीज मतलब क्या?
0: मतलब कुछ थोड़ा प्रिसाइज.
3: जैसे जिम है, जिम वगैरह एंड एक्सरसाइजिंग.
1: क्या पूछ रहे हो ये सवाल आप?
3: तो मैं पूछ रहा हूँ ना.
0: हाँ लेकिन हमें साथ में मिलके पूछना पड़ेगा ना यहाँ पे.
3: अच्छा ओके.
0: हाँ बॉडी रिलेटेड किसके बारे में सोच रहे हो आप एफआस?
3: यार मैं पता नहीं क्यों सलमान खान के बारे में सोच रहा हूँ.
0: सलमान खान यूजलेस हेंचमैन कैसे हो गया?
3: क्या उसने नेगेटिव रोल्स किए हैं यार?
0: अरे लेकिन गुंडे का मतलब भाई का रोल नहीं किया ना उसने, जैसे गुंडे का जैसे सर्कट हो गया फॉर एग्जांपल ना.
1: चलो एक और हिंट दूं क्या मैं भी आपको?
0: हाँ
1: चलो एक और हिंट का टाइम आ गया है. तो एक और हिंट है कि मैंने 300 से ज्यादा मूवीज की है पर मुझे आज तक स्क्रीन पर हीरोइन नहीं मिली.
0: तीन सौ से ज्यादा मूवीज की है लेकिन मुझे आज तक स्क्रीन में हीरोइन नहीं मिली.
1: नहीं मिली.
0: क्या बात कर रहे हो?
1: 300 से ज्यादा फिल्म में की है पर स्क्रीन पे आज तक कभी हीरोइन नहीं मिली है.
0: वाओ तो इसके ऑपोजिट हीरोइन होगी ही नहीं कभी.
1: आई डोंट नो मे बी. क्या बोल रहे हो?
3: नाना पाटेकर
1: पता नहीं
0: तो एवरी वे से एक्चुअली में जॉनी लीवर सूट यहाँ पे सूट कर रहा है. शक्ति कपूर भी हो सकते
3: हैं. जॉनी लीवर को कभी हीरोइन तो नहीं मिली है मतलब. बट यार ऐसा नहीं है कि उसको नहीं, उसको मिली है. उसमें एक होता है ना वो आपा जापा जापा.
0: अच्छा मिली है उसको. चलो इससे भी इनसे भी बात करते. थैंक यू एफआस.
1: थैंक यू. हाय आपका स्वागत है.
4: नमस्कार.
1: नमस्कार. What's happening? अरे belated happy birthday to you Binayfer.
0: अरे belated happy birthday.
1: कल इनका birthday
4: क्या? Thank you darling. अच्छा अमरीश पुरी
1: क्या बोल रहे हो आप?
4: मतलब वो
0: संजय दत्त लग रहा है. ओके.
4: मैंने संजय दत्त पर लागो. कितना टेक्स्ट मैसेजेस मोकल लिया.
0: सुनते ही नहीं है ये.
1: बट संजय दत्त कहाँ से?
0: कैसे कैसे हिंट दे रहे हैं ना बेनेफर. ये
1: क्या इतने बढ़िया हिंट है?
0: क्या बढ़िया हिंट है? कुछ तो पता चले किस चीज के बारे में बात कर रहा है. जवाब भी सही से नहीं दे रहा है.
1: लास्ट हिंट का टाइम आ गया. सवाल कुछ पूछना चाहते हो?
0: ठीक है तो सवाल मेरा अगला सवाल है. चौथा सवाल मेरा.
1: गुड क्वेश्चन.
0: क्या बोला?
1: लड़की है कि लड़का है?
0: लड़की है कि लड़का है? हाँ ये पूछ
1: तो पूछा ही नहीं ना आपने अब तक.
0: नहीं पूछा है.
1: बट लड़की तो
0: ये ना हिंट खाएगा मेरा बेनेफर. तुम ये बताओ मुझे भी ऐसा लग रहा है. ये बताओ मुझे कि इज दिस पर्सन फेमस फॉर कॉमेडी?
1: Is this person famous for comedy? Yes.
0: Yes. तो जॉनी लीवर ही है मेरे को ऐसा लग रहा है. कितने लोग वोट कर रहे हैं जॉनी लीवर के लिए?
4: अमीर खान पर. अरे अमीर खान ना, चलो अमीर खान कौन हो तो थ्री इडियट्स में कौन हो तो?
1: अमीर खान.
4: रांचो. रांचो कौन बने लो?
1: अमीर खान. अमीर खान इज नॉट अ हेंचमैन ना. लेकिन
4: नहीं हेंचमैन नहीं हो तो. हाँ बराबर करेक्ट.
1: यस
0: ओके.
4: आई एम टेलिंग यू इट्स जॉनी लीवर.
0: इट इज जॉनी लीवर
4: और संजय दत्त.
1: हाँ बता दो और पांच छह नाम भी.
0: नहीं इतने नाम नहीं दो यार. जॉनी लीवर ही लग रहा है मुझे. या तो जावेद जाफरी हो सकते हैं. या तो जावेद जाफरी है या जॉनी लीवर है.
4: या जावेद जाफरी
1: या
4: अरे
0: So, अब मेरे को ना वोटिंग चाहिए गाइस. कम ऑन वोट.
1: ओके चलो टाइम नहीं है.
0: कम ऑन वोट ऑन 5599 जल्दी से. जॉनी लीवर है कि जावेद जाफरी है? रिमेंबर ये सारी चीजें फिट होनी चाहिए इस पर्सन में. दिस पर्सन की एक्टिंग में हैप्पीनेस टेरर कंफ्यूजन मिड लाइफ क्राइसिस फ्यू सेकेंड्स में आ सकता है. फिट्स बोथ यूजलेस हेंचमैन बने हैं. ये बॉलीवुड से रिलेटेड है, इनकी फैमिली बॉलीवुड से रिलेटेड, इनका बेटा अभी बॉलीवुड में है. और जॉनी लीवर जो है उसकी बेटी इज़ नॉट इन बॉलीवुड बॉलीवुड, शी इज़ अ स्टैंड अप कॉमेडियन. तो वहाँ पे मैं कन्फ्यूज़ हूँ. डांस स्टेप्स कैन कॉज अर्थक्वेक, ग्रेसफुल डांसर दोनों. जावेद जाफरी इज़ अ सुपर्ब डांसर यार. कॉमेडी के साथ रिलेटेड है तो मेरा ऐसा वोट अभी जावेद जाफरी को जा रहा है. सो व्हाट वी डू इज़ वी लिसन टू अ सॉन्ग एंड देन वी
1: ओके.
0: हाँ
1: ओके, वी लिसन टू अ सॉन्ग नाउ. ओके
5: Hollywood's most wanted.
6: गुंडी खड़ गाओ या सीधा अंदर आओ.
7: मैं लाऊं अपना A game.
5: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: You're listening to Humpling Bollywood's biggest hits. आज आपके लिए हम यहाँ पे character guest में एक बहुत ही बड़ी पहेली लेकर आए हैं. इतनी बड़ी पहेली है ये कि सीधा
1: ऑस्ट्रेलिया से कॉल आ गया.
0: ऑस्ट्रेलिया से कॉल आ गया हमें. स्वागत है
2: आपका.
1: मेलबर्न से. ओके, मेलबर्न कॉलिंग. बताइए
0: क्या नाम है आपका. शीतल. और आपका नाम.
2: दर्पण.
1: तपन. तो तपन आपको कौन लग रहा है. ये
2: गुलशन ग्रोवर. ही हैज डन मोर देन 300 मूवीज एंड डिफरेंट रोल्स एंड एवरीथिंग ही हैज डन. ही इज वन ऑफ द बेस्ट ऑन दोस कॉमेडियन एंड जो भी होगा वो सब किया हुआ है.
1: डांस स्टेप्स वाला फिट नहीं होगा ना इसमें.
2: नहीं, उसने डांसिंग भी किया हुआ है और फिट नहीं हो रहा है बिकॉज ही हैज ऑल्सो डन द.
1: एंड ऑल्सो एक और चीज तपन.
2: सो इज नॉट नोन फॉर दैट.
1: हाँ, वो लेकिन ये भी ध्यान दीजिए कि वो यूजलेस हेंचमैन नहीं था. वो तो पावरफुल हेंचमैन था.
2: इसमें यूजलेस हेंचमैन भी था.
1: हाँ.
0: ओके.
1: तो वो ये ना अभी रुजबे एक और हिंट देने वाला है. बताओ.
0: एक फाइनल हिंट देने का टाइम आ गया है और वो फाइनल हिंट ये है अभी कि ये इससे बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए. कि मैंने जिंदगी भर एक गलत लास्ट नेम यूज किया.
1: गलत लास्ट नेम यूज किया. हाउ इज दिस इजी रुजबे. तुमने और घुमा दी है.
0: अरे मैंने जिंदगी भर एक गलत लास्ट नेम, मतलब जो मेरा लास्ट नेम है वो नहीं यूज किया, एक अलग लास्ट नेम यूज किया है.
1: अच्छा, इतना तो नहीं पता है.
0: क्या बात कर रहे हो.
1: नहीं पता सच में. नहीं इतना मेरे को.
0: यार बॉलीवुड रेडियो स्टेशन या हम. कम ऑन मैन. हाय.
3: हेलो. इज दैट दिलीप कुमार.
0: दिलीप कुमार. हाँ, क्योंकि नहीं बट उन्होंने. हाँ, उन्होंने भी
1: उनका नाम अलग है ना,
0: अलग यूज किया. यस,
1: लेकिन ये सिर्फ लास्ट नेम अलग यूज किया.
0: ये इन्होंने सिर्फ लास्ट नेम अलग यूज किया.
1: मेरा एक क्वेश्चन बाकी है ना, उसके बाद मुझे आंसर देना है. मेरा एक क्वेश्चन है अभी.
0: एक क्वेश्चन और है.
1: हाँ प्लीज यार, एक मेरा और क्वेश्चन है, अगर तुम उसका जवाब दे सको.
0: ओह गॉड.
1: सवाल मेरा ये है कि ये जो पर्सन है क्या वो ऑकलैंड आ चुके.
0: यस,
1: इट इज जॉनी लीवर. 100% Johnny Lever है ये.
0: Okay, so time for you guessing it for sure. Are you sure?
1: Yeah.
0: Done.
1: क्योंकि एक ने बोला he used his Hindustan Unilever company name. Okay, हाँ तो Lever. Oh, Johnny Lever. Johnny Lever is the answer.
0: Yes, that's right. It is Johnny Lever.
1: Thank God.
0: भाई मैं honestly मैं बोल रहा हूँ सैंडी वॉज समवेयर एल्स ओनली. फिर दीप का कॉल आया यहाँ पे.
1: दीप ने घुमाया यहाँ पे मुझे.
0: दीप ने जॉनी लीवर बोला और मैंने बोला यार ये कैसे गेस हो गया.
1: उस कॉल से पहले आंसर भी नहीं कोई जॉनी लीवर आ रहा था. डिफरेंट आंसर्स आ रहे थे.
0: या,
1: तो थैंक यू दीप, आपने यहाँ पे कॉल किया, थोड़ा घुमाया उधर.
0: या करेक्ट जगह पे.
1: एवरीथिंग फिट. या हैप्पीनेस, टेरर, कंफ्यूजन, मिडलाइफ क्राइसिस उनकी एक्टिंग में.
0: और हमारे मेलबर्न के साथियों को भी बोलते हैं थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग.
1: थैंक यू गाइस फॉर कॉलिंग.
2: नो वरीज, ऑल गुड, ऑल गुड.
0: सुनते रहिए ऐसे ही हमें. थैंक यू.
2: थैंक यू. बाय.
0: और आ जाइए वापस यार, आपका ही है ये.
1: क्यों रे.
0: नहीं अच्छा
2: भाई, हम लोग वही तो थे 15 साल. अभी तो वापस, अभी तो यहां है.
1: वही ना, जीने दो उनको.
0: चलो ठीक है, एंजॉय एंजॉय.
2: All right, bye-bye.
0: Thank you. Thank you. Chalo, theek hai. It's now time we listen to some songs.

What is up? क्या बोल रहे सब लोग? MMA बंटा है मालूम है ना? मचाएंगे जो नहीं नाचते उसको भी नचाएंगे. Let's do it. Hey.

0: sets from only $7.99. On sale now.
1: Let's go! 3, 2, 1.
2: Trend Makers. The Drive Show with Sandy and Rizbe.
3: Masti karenge, mauj katenge, garda paar denge.
4: Good evening, 6:02 on the 7th of July. You're listening to Hum playing Bollywood's biggest hits. Hi Sandy, good evening.
5: Hi Rizbe, a very very good evening to you. Before starting aaj ka Trend Makers, aapko hum bata dete hain hamari trip ke bare mein. Because bahut hi jaldi hum dekh rahe ki seats fill up ho rahi hai Rizbe. We are talking about Bali and Bangkok.
4: जी, ईस्टर 2027 में सैंडी और रुज़बे हम जा रहे हैं बाली और बैंकॉक फॉर अराउंड 9-10 डेज, कुछ
5: 11 डेज का कुछ रहने वाला है, 10-11 डेज का कुछ रहने वाला है.
4: ईस्टर का वाला जो ब्रेक है उसमें हम जाने वाले
5: हैं. सो 23 मार्च से लेके 2 अप्रैल ये ट्रेवल डेट्स रहने वाली है. एंड यू कैन ज्वाइन अस फॉर दिस ट्रेवल बिकॉज ये एक एडवेंचरस ट्रैवल रहने वाला है. पहले बाली पहुंचेंगे, वहां पे कुछ दिन एंजॉय करेंगे, एक्टिविटीज रहेंगी,
4: वाटर स्पोर्ट्स होने वाले, वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज होंगे.
5: यस,
4: फिर वहां का स्ट्रीट फूड थोड़ा बहुत देखेंगे, मतलब यू नो स्ट्रीट्स में घूमेंगे ये सब फूड और वो सब. तो इट्स गोइंग टू बी ऑल 4-5 स्टार अकोमोडेशन होटल्स.
5: सो 4-5 स्टार अकोमोडेशन जो है ये प्रोवाइडेड होंगी एंड वहां पे खाना प्रोवाइडेड होगा. ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, एवरीथिंग इज सॉर्टेड. बेसिकली आपको अपनी शॉपिंग के लिए जो साथ में पैसे हैं वो सिर्फ लेके जाने होंगे, बाकी सब कुछ इस पैकेज में इंक्लूडेड रहेगा, इंक्लूडिंग एक्टिविटीज जो कि लिस्टेड रहेंगी.
4: और एक्टिविटीज में भी काफी अलग अलग एक्टिविटीज प्लान की है, जैसे काफी लोगों को पसंद आता है ना कि हम फोटोज ले स्विंग के ऊपर, अलोहा स्विंग और
5: वो बाली की फेमस,
4: तो वो स्विंग भी कवर्ड है. प्लस उसके बाद अगर आप बोलते हो कि शॉपिंग करनी है
5: वहाँ पे, डिफरेंट टेम्पल्स के लिए जो टूर है वो भी होने वाला है. देयर आर सो मेनी थिंग्स एक्चुअली. सो इसके लिए अभी आप जाना चाहते हैं अगर इस ट्रिप में और आपको जानना है कि इस ट्रिप की आइटेनरी क्या है और इसकी कॉस्ट क्या है, तो आपको क्या करना है, आपको ड्राइव लिख के भेजना है 5599 पर, ताकि आपका ईमेल आईडी हमारे पास आ जाए. बिकॉज वहाँ पे एक फॉर्म है, आपको एक फॉर्म फिल करना है. फॉर्म फिल करने के बाद आपका ईमेल आईडी हमारे पास आ जाएगा, तो आपको हम आइडेंटिटी बाद में भेज देंगे, जिससे यू विल हैव एन आइडिया कि हम क्या क्या करने वाले हैं एंड टोटल कॉस्ट उसकी क्या रहने वाली है.
4: जी, और अगर बच्चों को आप साथ में लेकर आना चाह रहे हो तो वो भी ओके है, लाइक यू कैन ब्रिंग द किड्स अलोंग एज वेल.
5: या
4: आप अकेले आना चाह रहे हो तो वो भी चलेगा, जो भी.
5: सो ऐसा कोई भी हमने रिस्ट्रिक्शंस इसमें नहीं रखी है. सो यस, आपको ड्राइव लिख के भेजना है 5599 पर. जस्ट फिल योर ईमेल आईडी, जस्ट फिल योर डिटेल्स सो दैट आपकी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ जाए. एंड बिकॉज लिमिटेड सीट्स रहेंगी हमारे पास. एंड यू नो जब आपको हम आइटेनरी भेजेंगे उसके बाद आप जब जितनी जल्दी रजिस्टर कर पाएंगे, रजिस्ट्रेशन करने के लिए सिर्फ $500 है. इट विल जस्ट कॉस्ट यू $500 टू रजिस्टर, टू डू योर बुकिंग बेसिकली.
4: एंड इफ यू डू योर बुकिंग विद इन द एंड ऑफ जुलाई, तो उसके बाद सैंडी आपके लिए मैसेज आया है.
5: आई नो, हाय रुज़बे, आई नो यू आर टेकिंग योर वाइफ हु इज सैंडी टेकिंग, वो आप ट्रिप में देखेंगे.
4: वो ये
5: दैट विल बी एक्सक्लूसिव फॉर यू,
4: इट्स गोना बी अ रिवील.
5: या
4: हाउ मच पूछ रहे हैं, हाउ मच के बारे में आप बस अभी के लिए अपना जो इंटरेस्ट है.
5: सी, आपने ड्राइव लिख के भेजे, आपको फॉर्म मिला होगा ऑटो रिप्लाई में. फॉर्म को फिल कर दीजिए, आपकी ईमेल आ जाएगी. सो सब ईमेल्स को एक साथ हमारा वो जो आइटेनरी है, प्राइसेस, एवरीथिंग गोना गो, सो देन यू विल हैव एन आइडिया. और अच्छा है ना, अभी गुड टाइम है ये सब कुछ प्लान करने के लिए, बिकॉज मार्च में अगर आपको छुट्टी भी अप्लाई करनी है देन यू कैन डू इट नाउ ओनली.
4: जी, तो अभी आप इन्होंने फुल कॉन्वर्जेशन किया हमारे साथ, लेकिन एनीवे आई थिंक नाउ इज द टाइम दैट वी गेट इनटू आवर शो फॉर द इवनिंग. आज 7 जुलाई, और 7 जुलाई 7:07 थाला फॉर अ रीजन कहते हैं.
5: यहाँ आज धोनी का बर्थडे है.
6: Tony finishes off in style, a magnificent strike into the crowd. India lift the World Cup after 28 years, and it is an Indian captain who's been absolutely magnificent in the night of the final.
4: ये है धोनी का बहुत ही ब्यूटीफुल.
5: जब भी धोनी ग्राउंड में आता था, एवरीवन यूज्ड टू चीयर जस्ट धोनी धोनी. वो जो चीयर है वो हमेशा सिर्फ सुनाई देती थी. सो आज MS धोनी अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं एंड वी हैव अ फुल बॉलीवुड मूवी दैट इज डेडिकेटेड टू MS धोनी. सो क्यों ना इस मूवी के आज हम गाने सुने. और आज एक्चुअली में धोनी के कुछ इंटरव्यू बिट्स भी रहने वाले हैं, बिकॉज उनकी बातें बड़ी कमाल की है. कैप्टन कूल के नाम से हमेशा धोनी को जाना गया है. एंड धोनी का मैंने देखा है ना रुजबे की इंटरनेशनल लेवल पे एनी क्रिकेट टीम हर किसी ने धोनी को पसंद किया है. एनी नेशन कोई भी है वो धोनी को पसंद जरूर करते हैं. वन प्लेयर इन इंडियन टीम जो वो डेफिनेटली पसंद करते हैं.
4: सिर्फ पसंद नहीं करते बट लुकअप भी करते हैं क्योंकि काफी स्किल तो है ही. इन्होंने विकेट कीपिंग को काफी रीडिफाइन किया, बैटिंग को काफी रीडिफाइन किया पूरे स्पोर्ट के लिए. एंड उसके साथ साथ जो कैप्टनसी है उसको भी काफी हद तक रीडिफाइन किया. कैप्टन कूल का नाम इनको पड़ा था.
5: इनकी स्ट्रगल तो हमने देखी जब आपने एमएस धोनी मूवी देखी तो जो सुशांत सिंह राजपूत ने इनका रोल किया था वो लगे नहीं कि सुशांत सिंह राजपूत है. ही वाज लुकिंग धोनी ओनली. सो हमें वहाँ पे थोड़ी स्ट्रगल समझ में आई कि धोनी को एक पॉइंट तक पहुँचने में क्या क्या मेहनत करनी पड़ी.
4: और लेट पीकर थे ना वो, मतलब लेट उन्होंने जो भी उनको मिला ही डिडंट गो थ्रू द कन्वेंशन रूट. ही हैड टू फेस अ लॉट ऑफ स्ट्रगल्स कमिंग फ्रॉम अ स्मॉल सिटी. वो भी एक अलग चैलेंजेस थे. सो या टुडे इज डेडिकेटेड टू दिस मैन धोनी हु चेंज्ड क्रिकेट फॉर अ लॉट ऑफ अस.

0: You're listening to Humpling, Bollywood's biggest hits. आपके लिए यहाँ पे हम एक से गाने लेकर आ रहे हैं और इधर उधर की बातें वगैरह वगैरह भी करेंगे, लेकिन आज धोनी के अराउंड होने वाली है हमारी पूरी बातें, बिकॉज धोनी का आज हम हैप्पी बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं
1: एंड वी हैव अ बॉलीवुड मूवी दैट इज डेडिकेटेड टू MS धोनी. तो उसी मूवी के आज गाने आप यहाँ पे सुनने वाले हैं. धोनी के बारे में बातें करते हैं. ये तो मूवी से हमने देखा ही है, जिन्होंने MS धोनी मूवी देखी है, उनकी शुरुआत एज अ गोलकीपर हुई थी.
0: गोलकीपर
1: या उसमें दिखाते हैं ना कि बिफोर ही पिक्ड अप द क्रिकेट बैट सीरियसली ही वाज अ फुटबॉल एंड बैडमिंटन प्लेयर एंड उसे गोलकीपर का रोल था. और वो जो जब वो गोलकीपर होते हैं तो कोई उनको देखते हैं ना, क्या देखता है कि अरे गोलकीपर अच्छा है, ये तो क्रिकेटर बहुत अच्छा बन सकता है, ये विकेट कीपिंग बहुत अच्छी कर सकता है ये.
0: अच्छा ऐसा होता है.
1: ऐसा होता है उसमें.
0: याद ही नहीं आ रही अभी वो मूवी.
1: या सो इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग कि गोलकीपर से विकेट कीपिंग तक पहुंचना, इट वाज क्वाइट अ जर्नी.
0: Absolutely. And इसी जर्नी को और भी मतलब जानेंगे हम, समझेंगे आज. लेकिन एक इंटरव्यू उन्होंने दिया था नॉट लॉन्ग अगो, और उसमें उन्होंने बात की थी अबाउट यू नो व्हेन अदर पीपल सक्सीड तो क्या कंपैरिजन होते हैं उसमें, और हाउ डू यू डील विद कंपैरिजन एंड डू यू गेट नेगेटिव विद बिकॉज समवन एल्स इज डूइंग वेल. इट्स अ वेरी रेलेवेंट टॉपिक, क्योंकि हम हर कोई ऐसे
1: हर एक फील्ड में होता है ये
0: के थ्रू जाता है. इट्स नॉट इन वन फील्ड ओनली. लेट्स लिसन टू व्हाट धोनी सेज ऑन दैट.
2: आई व्हाई नेगेटिव, यू नो इफ समबडी एल्स इज सक्सेसफुल एंड डूइंग वेल, व्हाई शुड आई लुक इट एज अ नेगेटिव. यू नो आई शुड बी हैप्पी दैट दे हैव मेड अ पाथ व्हिच वी कैन फॉलो, कि ये पाथ पे फॉलो करना है. यस यू वुड वांट टू सरपास हिम, गो बियॉन्ड, you know, make a path for yourself so others can follow. But there's no good reason for me to, you know, be jealous or feel inferior because somebody else is successful.
3: Insurance is so red.
0: So, yeah, ye hai inki thodi bahut inka mindset, which
1: thoda
0: shows
1: mindset
0: how
1: or tip
0: different
1: diya.
0: That mindset is. Aur bhi baatein karenge hum dhoni ke baare mein, but abhi ke liye ek gaana ho jaye.

0: Radio.
1: Streaming on Rover.
2: प्रोफेशनल फाइनेंशियल्स है साथ आपके लोन और इंश्योरेंस एक छत के नीचे नो ब्रोकर चार्ज बस ट्रस्टेड एडवाइस हर डील बनाए परफेक्ट राइट
3: रीफाइनेंस के लिए कंपेयर करें डिफरेंट बैंक्स लोन प्रोसेस हो सिंपल एंड फ्रैंक
2: बिजनेस फाइनेंस या इनकम प्रोटेक्शन हो हर स्टेप पर गाइडेंस परफेक्ट हो सब कुछ मिलेगा यही अपना फ्यूचर सिक्योर बनाए
3: प्रोफेशनल फाइनेंशियल सॉल्यूशंस योर फ्यूचर आवर प्रायोरिटी कॉल 09846-9934 फॉर सर्च PFSL T's and C's लेंडिंग एंड क्रेडिट क्राइटेरिया अप्लाई
4: Ski G. Yeah, it's a real word now. Verb, to stop in Fiji before you hit the slopes. Because why fly straight to the snow when your island paradise is on the way? Land in paradise, soak up the sun, and then go shred Japan. Or hit the slopes in Vancouver. Rather unwind a pre-ski, relax and recover in Fiji on your way back home. This winter, don't just ski, Ski G. Check out FijiAirways.com/SkiG.
5: डिब्बा खुल गया
6: भरत भाई टिफिन खुल गए छे संजना का डिब्बा खुल गया
7: जब कशिश स्पाइसेस से खाना बनेगा तो सारे ऑफिस की नजर में रहेगा फिर यही तो होगा
6: डिब्बा खुल गया
7: हल्दी मिर्ची गरम मसाला कशिश मसाले अच्छे वाले बाय एनी कशिश प्रोडक्ट एंड बी इन द ड्रॉ टू विन अप टू $10,000 वर्थ ऑफ कैश प्राइजेस गोल्ड कॉइंस एंड गिफ्ट वाउचर्स टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई
8: The King Living Winter Sale ends soon. Save up to 50% on Australian-designed, award-winning furniture. Come home to the future of furniture. Come home to King. Sale ends soon. Shop online or visit a King Living showroom today.
9: Big Barrel, you know, come to your store.
10: Big Barrel, big range, bigger deals. Kirin Hikitsu, 4% lemon 10-pack cans, $22.99. Jim Beam or Canadian Club, 4.8% 10-pack cans range, hot 2 for $50. And Cruiser, 5% 12-pack cans range, 2 for $50.
11: Big Barrel, big range, bigger deals.
9: Big Barrel, you don't come to your store.
12: Cancer touches almost all of us in some way. This Feel Better Month at Farmers, buy a participating beauty product or make a donation in store. At a time when cancer can leave people feeling overwhelmed and uncertain, you're helping provide practical support. Support Feel Better Month at Farmers.
13: The beat of Bollywood.
14: World's best, hamari good brands nahi hai.

0: Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99 on sale now.
1: You're listening to Trendmakers और आज हम धोनी स्पेशल आवर लेकर आ रहे हैं. इसमें धोनी मूवी के गाने आपको सुनाएंगे और प्लस धोनी के बारे में कुछ बातें आपको सुनाएंगे.
2: या सुनाएंगे भी करेंगे भी. वैसे काफी नाम है ना रुजबिन का, माही नाम है इनका, माही काफी लोग बोलते, थाला, कैप्टन कूल, ये तो कुछ लेजेंडरी नाम है जो बोले जाते हैं
1: जी.
2: माही आई थिंक इज अ फेवरेट वन.
1: माही इज जो उनको बचपन से उनके दोस्त लोग भी बुलाते थे ना, माही.
2: Yeah.
1: माही बुलाते थे.
2: माही
1: इट इज वेरी वेरी सिमिलर टू अमल. अमल नहीं, अमल बोलते,
2: अमल बोलते जैसे. हाँ, सेम वे
1: जैसे माही दूसरे बोलते हैं लेकिन घर वाले उनके माही बोलते हैं.
2: माही बोलते हैं
1: वो मूवी में भी वो देखा है हमने. माही बोल रहे हैं उनको.
2: सो एनीवे धोनी इज द ओनली कैप्टन इन क्रिकेट हिस्ट्री टू विन ऑल थ्री मेजर

0: 104.2 FM और Rova App के जरिए आप हमें सुन रहे हैं from anywhere actually, Rova App से तो but 87.7 FM से आप हमें सुन सकते हैं from city.
1: Yeah, city में ही आप सुन सकते हैं.
0: While the weather's good, you can listen to us clearly.
1: Yeah. और आज MS धोनी का बर्थडे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और आज मुझे लगता है कि एक फोटो मैं डेफिनेटली देखने वाली हूँ जो मैं हमेशा साल बाद ही देखती हूँ.
0: कौन सी फोटो?
1: सलमान खान एंड MS धोनी की.
0: हाँ.
1: So every year दोनों की जो फ्रेंडशिप है ना इज वेरी प्राइवेट फ्रेंडशिप और दोनों की फोटो सिर्फ एक दूसरे के बर्थडे पे ही आती है.
0: क्या बात कर रहे हो?
1: या इट्स अ दोनों के बीच में बहुत ही एक रिस्पेक्टेड सी फ्रेंडशिप है जहाँ पे उसके फार्म हाउस में धोनी जाता है और जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ नहीं क्या कहते उसको, वो ट्रक कहते हैं, मट ट्रक कहते हैं ना उसको,
0: ATV बोलते
1: हैं. हाँ, वो चलाने वहाँ पे जाता है सलमान खान के साथ.
0: ओह वाओ.
1: ही स्पेंड्स क्वालिटी टाइम विद सलमान खान एट हिज फार्म हाउस.
0: ओह वाओ.
1: वो अपने बर्थडे पे हमेशा, वो सलमान खान के बर्थडे का उसका रिचुअल होता है धोनी का, उसके फार्म हाउस में जाके टाइम स्पेंड करना. एंड धोनी के बर्थडे का रिचुअल होता है कि सलमान खान उसके घर जाता है केक काटने के लिए.
0: धोनी के घर पे सलमान खान जाता है
1: केक काटने के लिए एवरी ईयर.
0: क्या बात कर रहे हो?
1: यू हैव नॉट सीन द पिक्चर्स.
0: वो रांची जाता है.
1: कहाँ जाता है मतलब वी डोंट नो बट वी सी द पिक्चर टुगेदर कटिंग द केक.
0: क्या बात
1: मतलब
0: कर रहे हो?
1: पहले मैंने तो एक ऐसा फोटो वीडियो देखा था, आई थिंक इट वॉज लास्ट ईयर या प्रीवियस ईयर उसे, कि जहाँ पे वो केक काट के साक्षी को केक नहीं खिला रहा है लेकिन सलमान खान को केक खिला रहा है वो.
0: वाओ यार.
1: सो दोनों की जो फ्रेंडशिप है ना इट्स वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज ज्यादा पब्लिसाइज्ड फ्रेंडशिप नहीं है दोनों की.
0: धोनी की फ्रेंडशिप किसी के साथ भी पब्लिसाइज नहीं है.
1: He got a very private life, same with Salman Khan.
0: क्योंकि धोनी was also friends with John Abraham.
1: Oh yeah, yeah.
0: At one point.
1: At one point.
0: वो लोग बाइक का पैशन शेयर करते थे काफी और लंबे बालों का पैशन.
1: Yeah.
0: इनफैक्ट धोनी ने बोला था ना लंबे बाल उन्होंने John Abraham के लंबे बाल देख के रखे थे.
1: Yeah. इनफैक्ट एक जगह पे धोनी ने इसके बारे में किसी ने पूछा था तो उसने बोला था कि आई हैव केप्ट माई फ्रेंडशिप विद हिम वेरी प्रोटेक्टिव
0: सलमान खान
1: के साथ एंड आई डोंट वॉन्ट पीपल टू टॉक मच अबाउट इट. वो एनी वे वो अपनी लाइफ में वैसे भी प्राइवेट
0: है. Sandy, यार.
1: अरे बिकॉज बर्थडे है ना आज तो बनता है.
0: आपका हक बनता है यार सलमान के बारे में तो.
1: या इवन धोनी. सो देयर वाज अ रीसेंट फोटो एज वेल जहाँ पे काफी फोटो वो वायरल हुई थी जहाँ पे वो रग्ड लाइफस्टाइल धोनी जो है मतलब फार्म हाउस में फुल वो ऑफ रोड जो ट्रकिंग है वो कर रहे हैं सलमान खान के साथ, मड से भरे हुए हैं. So they, yeah, that's a ritual of their birthdays.
0: Interesting. Well, Dhoni movie se ek dialogue sun lete abhi. And this one, I think a lot of us go through this emotion in life. Jahan pe hum aise lag raha hai ki yaar hum kya kar rahe hai. To dekhte hain Dhoni ke saath kya hua tha.
2: Aur baithe baithe kya soch raha tha?
3: Kuch nahi sir. Bas aise hi sir, kuch nahi.
2: Arre baat karna chahiye. Man halka ho jata hai.
3: सर हम सोच रहे थे कि हम कर क्या रहे. हम एक क्रिकेटर हैं लेकिन टीसी का काम कर रहे हैं यहाँ खड़गपुर स्टेशन पे. ये बात नहीं है कि हमको ये काम छोटा लगता है सर, लेकिन हमको ये समझ में नहीं आ रहा कि हम यहाँ से आगे कैसे खेलेंगे. रोज हमारी लाइफ में क्या चल रहा है सर हम ही जानते हैं. 8013 अप और 8029 डाउन के बीच में हमारा जॉगिंग हो जाता है. फिर गेट नंबर 3 के सामने खड़े होकर फाइन इकट्ठा करते हैं. ना तो हमारा गेम इम्प्रूव हो रहा है सर, ना हमको कोई आगे अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, बस रणजी खेले जा रहे हैं. कब तक और कैसे चलेगा सर? कभी कभी तो मन करता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के वापस चले जाएं, लेकिन फिर पापा का चेहरा सामने आ जाता है. रोज रात को जब क्वार्टर लौटते हैं ना सर, तो ऐसा लगता है आउट होकर पवेलियन लौट रहे हैं. पूछ रहे थे ना कि यहाँ पे क्यों बैठे, यही सोचते रहते हैं बस, कहीं पे भी बैठे.
1: फ्रॉम दैट प्लेस जहाँ पे ही डोंट नो व्हाट टू डू from there अपना ड्रीम को अचीव करना.
0: I know यार, commendable. Literally a fairy tale ना.
1: Yeah.
0: Anyway, ये था धोनी का एक छोटा सा पीस from MS धोनी. But और भी बातें करेंगे आपके साथ. अभी के लिए गाना from MS धोनी for you.

tablets from only $7.99 on sale now.

0: आप सुन रहे हैं ट्रेंड मेकर्स, आज धोनी स्पेशल, ये आप सुन रहे हैं ऑन द 7th of July। एंड सैंडी, और कोई इवेंट्स के बारे में कुछ कहना है आपको?
1: या तुम्हें कहना है कुछ इवेंट्स के बारे में?
0: नहीं, राहत फतेह अली खान का शो।
1: हाँ, राहत फतेह अली खान का शो, यस, ये भी आप अपनी सुपर सिटी में देख सकते हैं। एंड अपनी टिकट्स जो है ये dryTickets.com, वहाँ पे जाके आप खरीद सकते हैं।
0: ग्रेट, तो अभी हम आपको सुनाते हैं एक बहुत ही बढ़िया मोटिवेशनल स्पीच है ये,
1: या
0: धोनी के अराउंड।
1: धोनी के अराउंड आज MS धोनी, इनका बर्थडे हमने सेलिब्रेट किया। एंड MS धोनी के बारे में बातें करते हैं तो वैसे अपना एपिक फेयरवेल के लिए भी ये जाने जाते हैं, जब इन्होंने रिटायरमेंट ली थी, टाटा बाय-बाय किया था,
0: गाना डाला था एक,
1: या
0: मैं दो पल का
1: राही हूँ। या सो बस वो इंस्टा पे गाना डाल दिया और बोल दिया कि बस जा रहा हूँ गाइस।
0: बट एक चीज हमें थोड़ी, मेरे को मतलब खटकी है धोनी की, वो IPL से रिटायरमेंट का वो कुछ ज्यादा हुआ नहीं हुआ वो चीज का,
1: बिकॉज मुझे लगता नहीं वो कि उनके लिए वो बड़ी बात थी कोई। IPL से रिटायरमेंट, आई मीन इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट इज अ बिग थिंग। IPL इज नॉट बड़ा है, IPL ने
0: IPL पूरे चेन्नई को अपने कंधों पे रखा है उन्होंने,
1: कंधों पे रखा है 100%। बट देन फॉर हिम, फॉर धोनी को अगर हम समझते हैं, फॉर हिम इंटरनेशनल क्रिकेट मैटर्स मोर देन IPL।
0: दैट्स राइट। एनीवे, आपके लिए अभी एक छोटा सा क्लिप।
2: फॉर मी मोस्ट ऑफ द टाइम इज गुड टाइम, ईदर यू आर लर्निंग और यू आर एंजॉयिंग व्हाट यू हैव लर्नड। सो इट्स नॉट द अप्स एंड द डाउन्स, यू नो, यू लूज सम, यू विन सम, व्हेन यू विन यू सेलिब्रेट, व्हेन यू लूज you learn. Either ways, I'm having a good
3: time. I mean, as I said, it's always, you are unfazed by good and bad. So how do you maintain that calm, cool exterior?
2: Very simple. Don't think about the result. It's a result that puts pressure on us. You know, what if this happens? What if we don't win the game? What if we don't get selected? But again, worry about the controllables, you know, and whatever the controllables are, we take care of it. We'll get the desired result. If we don't get the desired result, we'll improve. We'll change our plans, we'll execute better, and we'll get a chance to prove ourselves again. So, you know, that's what it is. Thinking about the result never gives you result. Yes, you may have a target in mind, but what is more important is to take care of the small steps in life. You know, what needs to be done, what I am supposed to do, what extra I can do, and you know, that will help us achieve the target. The most important thing is, whenever I'm going out representing my country, I want to give it my best shot. You know, it's not about the expectation that others have from me. For me, it's all about what good I can do, how well I can contribute. I always felt country was the biggest motivation for me. It was never about scoring runs or taking wickets. You know, it was more about the team should do well and we should win the games. And that always helped because it kept things very simple. You know, once you start getting into the groove of I want to score runs, I want to take wickets, I want to do this, we play a team sport. So for us, it's always about, you know, all of us moving together. And you know, what is something that you can do but maybe some of the others can't do? To realize all of that and then to move forward, taking that added responsibility, that's what makes you, you know, slightly special. The most important ingredient, yes, hard work is there, dedication is there, passion is there, but I felt being honest is one of the most important things. To start off being honest to yourself. Unless you are honest to yourself, you can't be honest to others. And what it also does is, it helps you in accepting what the shortcomings are. You may not be a great player, you know, may not be a great human being, but if you're willing to accept the shortcomings, you can always look to improve. You can go to people, you can ask for help, and there'll be people to guide you out. You know, whether it's your seniors, whether it's your parents, close friends, whoever those may be. And I always felt all these things really helped me keep moving ahead in life. You know, throughout being honest towards the goal. What is the goal? The goal is not to, for me, it was never to score so many runs for India. For me, it was always, you know, how we'll be able to win a game. Whether you are the captain or you're not the captain. What you want is, you know, how much you have contributed for the team to win. So, you know, that's what it is. Thinking about the result never gives you result. Yes, you may have a target in mind. But what is more important is to take care of the small steps in life. You know, what needs to be done, what I am supposed to do, what extra I can do, and you know, that will help us achieve the target.
4: I personally always felt sport teaches you a lot in life. It teaches you how to deal with the losses, you know, the failures, and at the same time, how to behave when you are successful. You know, you need to show a lot of respect to the opposition or the contender you are competing with, but at the same time, you know, be humble in life, enjoy what you are supposed to, and have respect for everybody around you.
0: Beautiful words, yeah. Mahi and Thala for a reason. I think kitni sari cheeze inki na, it's not just about sports, it's not just about cricket, it's just life lessons.
1: Life lessons, actually. Wo unhone apni life mein jo experience kiya hai, usko kis positive way se leke unhone aage channelize kiya hai.
0: Yeah.
1: Wo actually mein kamal ki baat hai.
0: It's a great thing to learn from such a legend.
1: Yeah.
0: So yeah, we humne koshish ki ke hum yahan pe aaj you know ek shout out de sake, ek hour kar sake only for Dhoni. And hopefully aapne bhi enjoy kiya is show ko.
1: Yeah, so guys, isi note pe aapko tata bye bye kehne ka waqt aa chuka hai. Take care of yourself. Ab aapse kal mulaqat hone wali hai meri my time mein.
0: Acha, my time mein.
1: Meri mulaqat aapse.
0: Acha, my time mein hogi.
1: So my time mein, tumhe pata hai main gardening ki tips bhi deti hu.
0: Acha.
1: मैं 6-word स्टोरी भी बताती हूँ वहाँ पे.
0: ओके.
1: किसी चीज़ को रिसाइकल करके कैसे यूज़ कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं, मैं वो भी बताती हूँ. मैंने पोचा बताया कैसे कैसे बन सकता है.
0: ये सब आप बताते हो लेकिन ये सब किया ही है अपने कभी?
1: हाँ ना, टी शर्ट, स्टेन टी शर्ट को तुम कैसे कैसे यूज़ कर सकते हो, ये सारे तरीके बताए आज.
0: अच्छा,
1: मैंने
0: कैसे यूज़ कर सकते हो स्टेन?
1: मतलब उसका सबसे पहले तो तुम उसको डस्टिंग के लिए यूज़ करो.
0: अच्छा.
1: ठीक है, किसी काम की नहीं है तो उसको डस्टिंग के लिए यूज़ करो.
0: ठीक है.
1: उसके बाद डस्टिंग से भी वो कपड़ा खराब हो जाए तो तुम उसके पोछा मारने के लिए या फिर गाड़ी साफ करने के लिए यूज करो. अपने घर पे अगर तुमने प्लांट्स लगाए हैं तो उसको तुम एज अ रोप यूज कर सकते हो, उसको बांधने के लिए, स्टेम्स को बांधने के लिए, प्लांट की ग्रोथ को वो करने के लिए. जो रोप होती है वो थोड़ी सख्त होती है. कपड़ा जो होता है कॉटन होता है, वो प्लांट्स को खराब नहीं करता है. सो ऐसे ऐसे आप अपने घर पे ना चीजों को यूज कर सकते हो. और बचपन से ही हम देखते हैं ना हमारे घर में.
0: हाँ, वही तो मैं वही सोच रहा था कि सब देखा है तो ये सब ये क्यों बोल रहे हो आप?
1: क्योंकि अब नहीं कर रहे हैं ना.
0: अब नहीं कर रहे हम. राइट.
1: अब हम सिर्फ इधर उधर बस दे रहे हैं या फेंक रहे हैं, यूज नहीं कर रहे हैं, रीयूज नहीं कर रहे हैं,
0: रीयूज नहीं कर रहे. तो या मोरल ऑफ द स्टोरी, प्लीज रीयूज, रीइन्वेंट.
1: और ये माय टाइप का सेगमेंट है. एनीवे,
0: एक्चुअली मैं
1: ये सब बातें मैं कल आप सुनना, मेरे बहुत ज्ञान देती हूँ मैं 10 से 12 के बीच में.
0: अच्छा.
1: या
0: तो आप कल जरूर सुनिएगा, ठीक है? इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आप
1: रोवा के जरिए भी सुन सकते हैं,
0: या 104.2 एफएम या 87.7 एफएम.
1: थैंक गॉड रेसिपीज नहीं है अभी.
0: रेसिपीज
1: बनाती मैं.
0: आप अच्छे, आप बनाते तो सही हो आप.
1: I agree.
0: All right. With that, thank you so much for your time and thank you so much for your saath. Main aapko seedha milunga kal drive show mein.
1: Bye.

0: Happy Hour on Hum. The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
1: We're planning se aaye hain. Shat pratishat tumko subah yahan se le jayenge.
2: Those people who live around the Hunua area, वहाँ पर 1 degree है टेम्परेचर।
3: जितने भी लोग इस इलाके में हैं, एंजॉय करते रहे आप। वेस्ट साइड है ना, वेस्ट साइड ऑफ ऑकलैंड है ये। I have lots of fun basically with the cold weather।
2: कौन है?
3: हुनुआ और वेटाकरे।
2: अच्छा हुनुआ वेस्ट में?
3: किधर है हुनुआ?
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.

0: 6 to 10 a.m.
1: Ski G. It's a word now. Verb. To stop in Fiji on your way to or from skiing. Because why fly straight to the snow when paradise is on the way? Soak up the sun in Fiji and then go shred the slopes. Or relax and recover in Fiji on your way back home. Ski G flights are on sale now. Fly to Vancouver return from $1,799 or Japan from $1,299. FijiAirways.com.
2: Māori Ma, have you received a reminder email or text about your role for this year's election or not sure you're enrolled? Luckily, we still have time. If you're Māori and 18 or over, you get to choose Māori role or general role. There's no right or wrong, just right for you. The role you choose affects who you can vote for to represent you and your roe in Parliament. Find out more at vote.nz or call 0800 36 76 56. Brought to you by the Electoral Commission.
3: Right now, in midwinter, with ills, chills, the short week and school holidays kicking in, many of NZ Blood's regular donors are out of the game. So if you can, please make time to give blood this week. The team would really appreciate your donation. Come off the bench and make a real impact. Your donation of blood could help save up to 3 lives. Bloody legend. Give blood, save lives. Book now at nzblood.co.nz.
4: JB Hi-Fi's long weekend price frenzy on now. Save big on phones, TVs, computers and more. Get a whopping $500 off the Samsung 65-inch smart TV. Ends 15th July. JB, you've done it again.
5: होम लोन के साथ थोड़ा कैश भी पाना चाहते हैं? नया होम लोन लेना हो या मौजूदा लोन का रिव्यू करवाना हो, स्क्विरल आपको दिलाएगा एक ऐसी जबरदस्त डील कि आपकी हो जाएगी बल्ले बल्ले। जानिए पावर ऑफ द स्क्विरल इफेक्ट। squirrel.co.nz।
0: हम टाइम चेक। हम न्यूज़ ब्रॉट टू यू बाय लॉजिक फाइनेंस लिमिटेड, चेंजिंग लाइव्स विद लॉजिक।
6: Good evening to you with the latest at 8. I'm Jeff Bryan. Evacuees in Kaikoura are urged not to return to their homes tonight as the heavy rain continues. About 100 people are hunkered down at Takahanga Marae, that's now full. Others are gathered at New Life Church. Kaikoura Township has received more than a month's worth of rain in just one day, and a large section of State Highway 1 north and south of the town will remain shut overnight. The stormy front lashing parts of the Upper South Island, expected to head north tomorrow. Prime Minister Christopher Luxon says no decision has been made about joining a defence pact between Australia and Fiji. And in sport, the Warriors play the Tigers in Sydney on Friday night. They're coming off a bye. Back from injury are co-captain James Fisher-Harris, Leka Halasima and Olofiana Khan-Pereira. And in football updates brought to you by Hisense, Belgium crushed the American dream today at the World Cup, winning 4-1. The Belgian camp has revealed it was fired up by the controversy surrounding US President Donald Trump's intervention over an American red card. Post-match today, Belgium's social media team used just 2 words: overturn this.
0: Sports news. Brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Roskill. The beat of Bollywood.
7: World's best, hamari good brands me hai.
0: Hum. Night Cafe on Hum.
8: गुड इवनिंग एंड वेलकम एवरीवन, आपका स्वागत है नाइट कैफे में. मैं क्रिश आ गया हूँ आपका साथ देने के लिए और हमारा साथ रहेगा मिडनाइट तक. और आज ट्यूसडे है, 7th जुलाई है, और एज यूजुअल ट्यूसडेज को हम लेकर आते हैं आपके लिए एक बहुत ही वंडरफुल सेगमेंट जो काफ़ी लोग लुक फॉरवर्ड करते हैं सुनने को लिए के लिए, एंड दैट इज कोक स्टूडियो रिलोडेड.
0: आपका मोमेंट, क्रिश का मैजिक, ओनली ऑन हम.
8: वेलकम एवरीवन, कोक स्टूडियो रिलोडेड में आपका स्वागत है. कोक स्टूडियो सॉन्ग्स, कोक स्टूडियो भारत और पाकिस्तान के गाने हम लेकर आते हैं, और बहुत ही अनोखी और इंटरेस्टिंग रेयर फैक्ट्स भी लेकर आते हैं, फैसिनेटिंग इंटरेस्टिंग स्टोरीज भी लेकर आते हैं, आर्टिस्ट इन्फॉर्मेशन भी हम आपके लिए पेश करते हैं कोक स्टूडियो रिलोडेड में. आज कुछ आर्टिस्टों के बारे में बातें करेंगे जिन्होंने कोक स्टूडियो में कदम रख के अपने नाम को बहुत ही रोशन कर लिया. बहुत ज़्यादा ख्याति प्राप्त हुआ इनको इन चीज़ कोक स्टूडियो में आने के बाद, और अलग अलग फ्यूजन सॉन्ग्स गाने के बाद ये जानकारी आज हाँ आपके लिए हम लेकर आए हैं. मैं क्रिश आपका स्वागत करता हूँ कोक स्टूडियो रिलोडेड में. बैक टू बैक 2 कोक स्टूडियो सॉन्ग्स आपको सुनाता हूँ.
0: ये है कोक स्टूडियो रिलोडेड ऑन हम.

0: Studio Reloaded.
1: You're listening to Coke Studio Reloaded और मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ। आज कुछ आर्टिस्ट्स के बारे में हम बातें करेंगे जिन्होंने Coke Studio पाकिस्तान और इंडिया में गाने गाकर अपने नाम को बहुत मशहूर कर लिया। इसमें से काफ़ी प्रसिद्ध सिंगर्स हैं जैसे आतिफ असलम, इनका जॉनरा है पॉप और रॉक, ताजर देहराम और गो जो गाने हैं नोटेबल Coke Studio सॉन्ग्स गाकर इन्होंने अपना नाम बहुत ऊँचा किया है, बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी हासिल की है Coke Studio गानों को लेकर। वन ऑफ पाकिस्तान बिगेस्ट सिंगर्स है ये। रेंडिशन ऑफ ताजे हरम बिकेम वन ऑफ द प्लेटफॉर्म्स मोस्ट व्यूड परफॉर्मेंसेज। इसके अलावा Coke Studio पाकिस्तान के एक और फनकार के बारे में बात करें तो वो है अबीदा परवीन। सूफी गाने ये गाते हैं, छाप तिलक और मौलाए कुल इन्होंने गाए हैं। वाइडली रिगार्डेड एज द क्वीन ऑफ सूफी म्यूजिक और एक रेगुलर Coke Studio परफॉर्मर भी ये है। अली सेथी एक और है सिंगर है जिनके बारे में जानकारी मैं आपको दूंगा। इसके अलावा Coke Studio भारत के जो आर्टिस्ट्स है उनके बारे में भी जानकारी आज हमारे पास है। कुछ और गाने आपको सुनाते हैं, बैक टू सॉन्ग्स आपके लिए इस बार।

0: the moment. Krishka Magic. Only on Hum.
1: कोक स्टूडियो रिलोडेड आपके लिए जारी है और मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूँ। अली सेठी गजल और पॉप और फोक गाने ये गाते हैं। पसूरी जो वन ऑफ द बिगेस्ट हिट्स रह चुका है, इन्होंने ये गाना गाया है। उमरान लंगियान ये भी इन्होंने गाया है। वर्ल्ड वाइड फेम इनको मिला है थ्रू पसूरी, वन ऑफ कोक स्टूडियो पाकिस्तान बिगेस्ट ग्लोबल हिट्स ये माना जाता है, जिससे आज भी लोग रिलेट कर पा रहे हैं क्योंकि इसी गाने से लेकर कोक स्टूडियो पाकिस्तान का नाम जुड़ा है और अली सेठी ने इस गाने को गाया है। कोक स्टूडियो इंडिया के कुछ आर्टिस्ट, श्रेय घोषाल ये प्लेबैक सिंगर है, वेरियस परफॉर्मेंसेज उन्होंने किया है। ये वन ऑफ द इंडियाज मोस्ट अवार्डेड प्लेबैक सिंगर्स है, शी नीड्स नो इंट्रोडक्शन एज यू नो। इन्होंने भी काफ़ी प्यारे प्यारे पॉपुलर कोक स्टूडियो सॉन्ग्स गाए हैं। दिलजीत दोसांझ पंजाबी पॉप ये गाते हैं, ग्लोबल कोक स्टूडियो कोलेब्रेशन इन्होंने किए हैं। And he represents India in the global Coke Studio platform. Ayaz Rahman film aur fusion genre hai, producer aur performer ke taur pe bhi ye nazar aaye Coke Studio songs ko lekar. Academy Award winning composer hai jinhone memorable Coke Studio performances ki taraf contribution diya hai. Shafqat Amanat Ali Sufi gaane cross border collaborations inhone kiye hain, appeared on both Pakistani aur Indian film music platforms. इंडियन म्यूजिक प्लेटफॉर्म्स जिन्होंने अपना म्यूजिकल कनेक्शंस अक्रॉस बॉर्डर्स बनाया है। मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ कुछ और प्यारे गाने आपके लिए।

0: वेट बीच को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माई एफएम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी। बसेस, बिलबोर्ड्स, ट्रेन स्टेशन, स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वी've got the spotlight for your brand. Call me Kashika on 021-769-755. Media Works. Media that works.
1: जब कशिश देसी घी से खाना बनेगा तो यही तो होगा। न्यूजीलैंड में मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी से बना ग्रास फेड दानेदार काउ घी। जब खाने में होगी इतनी शुद्धता, इतना स्वाद, तो आपको भी किचन में कुछ ऐसा सुनाई देगा। कशिश प्योर देसी घी, अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स इन न्यूजीलैंड। खुशियाँ पकाएं, खुशियाँ खिलाएं।
2: When City Rail Link arrives soon, it's going to give us all more time. From Panmure, you'll be able to go from instant noodles for one in the library to... Hey, hey! Noodles with friends on Karanga Hape Road! In just 23 minutes. Auckland Transport and City Rail Link. More connections that'll take you from a night in to a night out.
3: SmartPay is now
4: Shift 4 Dakota.nz. Global commerce, local service.
3: Running a business keeps you busy enough. Managing your payments should be the easy part. Shift 4 is here to help with friendly 24/7 local support. Plus, their simple merchant dashboard lets you see your daily sales and more at a glance. So, make the shift today.
4: Shift 4
5: Everyday burn hazards are hotter than they look. Help the Burn Support Group support survivors and whānau. Text BURN to 4499 to make a $3 donation now. Proudly supported by the MediaWorks Foundation.
6: Now's the time to book your next tour with House of Travel. Save $500 per couple on Globus small group tours to Japan, Vietnam, South Africa and more. See the very best of every destination without the stress. Talk to our team today only at House of Travel. TNCs apply.
7: The beat of Bollywood.
8: World's best, hamari good brands nahi hai.
7: Coke Studio Reloaded.
9: आप सुन रहे हैं आपका नंबर वन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स। आज हम कर्क स्टूडियो आर्टिस्ट्स के बारे में बातें कर रहे हैं, सलाम कर रहे हैं उन फनकारों को जिन्होंने कर्क स्टूडियो का नाम और भी रोशन किया है, और भी ऊंचा लेकर गए। ये हर्षदीप कौर एक और कर्क स्टूडियो इंडिया की अदाकारा है, फिल्मी गाने भी ये गाती है। सूफी इनका सबसे बिगेस्ट स्ट्रेंथ है। इन्होंने कटिया करूँ ये गाना गाया है, पॉपुलर फॉर हर सूफी और पंजाबी म्यूज़िक। स्वानंद किरकिरे फोक गाने ये गाते हैं, वेरियस कोलाबोरेशंस हुए हैं, नेशनल अवार्ड विनिंग ये सिंगर भी है और ख़ास तौर पर ये लिरिसिस्ट है जिन्होंने बहुत प्यारे प्यारे गाने लिखे हैं। पेपॉन फोक और इंडी गाने ये गाते हैं। बैसारा बीरा इन्होंने गाया है, नोन फॉर ब्लेंडिंग एसमीज फोक म्यूज़िक विद कॉन्टेम्प्रेरी साउंड्स। इनफेक्ट पेपॉन का गाना जो मुझे बहुत पसंद आया है वो है ये मोह मोह के धागे। अब सुनना, मुरली ठाकुर ने फीमेल वर्जन गाया लेकिन जो मेल वर्जन है इन्होंने पेपॉन ने गाया है, एंड आई एम एब्सोल्युटली इन लव विद दैट सॉन्ग। मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूँ, सुनते रहो कर्क स्टूडियो रिलोडेड।
10: भारत सब्सक्राइब नाउ।

You're listening to number one hum playing Bollywood's biggest hits. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ. कुछ और कोक स्टूडियो आर्टिस्ट्स को सलाम करते हैं. कैलाश खेर सूफी जॉनरा पिया घर आएंगे इन्होंने गाए हैं और फेमस फॉर हिज डिस्टिंक्टिव सूफी इंस्पायर्ड सिंगिंग स्टाइल जो बहुत मज़ेदार के गाने बनते हैं. लेस्ली लुइस पॉप गाने सीजन वन प्रोड्यूसर ये रह चुके हैं, म्यूजिक डायरेक्टर और द फर्स्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोक स्टूडियो एट एमटीवी. सलीम मर्चेंट ने भी बॉलीवुड और फ्यूजन जॉनर के गाने गाते हैं. मल्टीपल परफॉर्मेंस इन्होंने किए हैं और कहा गया है कि ही इज़ नोन फॉर हिज फ्यूजन म्यूजिक. कुछ और कोक स्टूडियो पाकिस्तान के सिंगर्स कैफी खलील फोक और पॉप काना यारी इन्होंने गाया है एंड ही इज़ नोन फॉर ब्लेंडिंग बलोची फोक म्यूजिक विद मॉडर्न पॉप. इसके अलावा अरूज आफ्ताब जैज़ और फोक महराम इन्होंने गाया है. महरम ग्रैमी अवार्ड विनिंग आर्टिस्ट है जिन्होंने कोक स्टूडियो सीजन 14 में अपना नाम बहुत कमाया है. कोक स्टूडियो रिलोडेड में आज के लिए बस इतना ही.

0: listening to Krish.
1: Let's go!
2: आप सुन रहे हैं आपका नंबर वन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स क्रिश का साथ है। आज अगर आपका जन्मदिन है अ वेरी हैप्पी बर्थडे टीम हम की ओर से आपको हम विश करना चाहेंगे। बहुत सारी खुशियां बहुत सारी बधाइयां हम आपको देना चाहेंगे। कुछ स्पेशल हो रहा है कुछ प्लान किया गया है या आगे चलकर भी कुछ होने वाला है आपके लिए तैयारियाँ हो रही है तो इसके लिए भी बहुत सारी शुभकामनाएं आपको हम देना चाहेंगे। बस आपको हमारा साथ देना है। हैप्पी बर्थडे वंस अगेन टीम हम की ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं। सुनते रहो हम मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूँ।

You're listening to number one, hum playing Bollywood's biggest hits, Krish ka saath hai. New Zealand Art and Culture Charitable Trust ki or se ek bahut hi shandar announcement hai. Shri Ram Leela aapke liye ayojit kiya ja raha hai. Stall inquiries ke liye aap Master Ashok se baate kar sakte hain. 021-179-5459 par. Ram Leela ek divine theatrical experience hone ja raha hai. Save the date. Ye date aapko mark karke rakhna hai. 8th August ko hoga. और भी डिटेल्स जो है बहुत ही जल्दी आपके साथ शेयर किया जाएगा. न्यूजीलैंड आर्ट एंड कल्चर चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से ये सूचना आपके लिए है जो रामलीला लेकर आ रहे हैं आपके लिए ऑन 8th August. क्रिश के साथ है और भी प्यारे गाने आपके लिए हम पेश करते रहेंगे और भी इंटरेस्टिंग खबरें आपके साथ हम शेयर करते रहेंगे.

0: I'm Mani Ben.
1: कुंतला कांता की बड़ी बहन। मेरे डैड बोले कर ले शादी वरना मर जाएगी बूढ़ी दादी।
2: शादी कर, शादी कर, शादी कर, आपको दी शादी कर
0: और कुछ काम नहीं है क्या?

0: You're listening to Krish.
1: Let's go!
2: आप सुन रहे हैं आपका नंबर वन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ. ओकलैंड गेट रेडी. लेजेंडरी राहत फतेह अली खान ओकलैंड आ रहे हैं फॉर वन अनफॉरगेटेबल नाइट ऑफ म्यूजिक. इनका मैजिक आप एक्सपीरियंस कीजिए ऑफ हिज टाइमलेस हिट्स, साउल स्टरिंग कवाली, पावरफुल वॉइस जो इनका होता है, जिन्होंने ऑडियंस को कैप्टिवेट किया है अक्रॉस द वर्ल्ड. इनके गाने इतने मजेदार होते हैं. ट्रस्ट अरिना में ये शो होने जा रहा है 25 जुलाई को. प्रेजेंटेड बाय जयका स्टार प्रोडक्शन, गोट लाइव, ड्रीम्स एंटरटेनमेंट, सिमरन प्रोडक्शन और शहजादा प्रोडक्शन. आपके लिए टिकट्स आप dry.com से ले सकते हैं. राहत फतेह अली खान लाइव देखने का मौका है ऑन 25 जुलाई ट्रस्ट अरिना. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूं. यू लिसनिंग टू नंबर वन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स.

0: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन।
1: G'day Kiwis, Kogan Mobile here. I'll be honest, we're Australian.
2: Sorry about that.
1: But it's about time you got a taste of Aussie-style pricing. Right now, get a yearly prepay plan from just $160. Crikey! I know what you're thinking. And no, I'm not joking. And no, it's not too good to be true, because it is true. Kogan Mobile, true Aussie value. Terms and conditions apply.
3: The moment that matters, when you make a claim, it's too late to fix your insurance application at that time. At AssureOne, we work with you to make sure every detail is captured upfront, even the things you think don't matter. Because the right advisor knows exactly what the insurers need to know and make sure nothing is missed to ensure claims get paid. That is how trust is built. AssureOne, Nitesh Hira, your insurance advisor in Auckland. Call 0800-77-HIRA. North Invale Advisory Limited, trading as AssureOne, is licensed financial advice provider.
4: यो हमिंग अलोंग विद क्रिश ऑन योर नंबर वन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स। एआई सभी जगहों पर है तो हम पॉडकास्ट सुनना ना भूले क्योंकि इसमें रुजबे और सैंडी बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें करते हैं विद एआई स्पेशलिस्ट दर्शित पांड्या। ये एक सीनियर प्रिंसिपल इंजीनियर है प्लेटफॉर्म एट ज़ेरको एंड एन AWS कम्युनिटी बिल्डर जो बहुत ही बारीकी से ब्रेक डाउन करते हैं द वर्ल्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन अ वे दैट एक्चुअली मेक सेंस। चाहे ChatGPT हो या AI एट वर्क हो टू जॉब सिक्योरिटी प्राइवेसी कंसर्न्स अपॉर्चुनिटीज या कोई भी स्किल्स दैट यू नीड फॉर द फ्यूचर ये कन्वर्सेशन ये सारे क्वेश्चंस का जवाब देता है और डिस्कस करता है इन मुद्दों को। चाहे आप एक्साइटेड हो क्यूरियस हो या फिर लिटिल नर्वस अबाउट AI ये एपिसोड आपके लिए एक प्रैक्टिकल गाइड है टू अंडरस्टैंड कि टेक्नोलॉजी किस दिशा में जा रही है और कैसे आप टेक्नोलॉजी के साथ साथ चल सकते हैं। तो AI इज़ एवरीवेयर लेकिन इसका क्या मतलब हमारे ज़िंदगी के लिए होता है हमारे काम के लिए होता है ये एपिसोड आप सुनना ना भूले। 5599 पर टेक्स्ट करें ड्राइव फॉर द फुल ऑडियो। इसके अलावा ब्रेकफास्ट कैचअप के लिए भी आप हमारे पास 5599 पर BF भेजे जहां पर फ्यू बिट्स एंड कन्वर्सेशंस विद विजय एंड पूजा होता है फ्रॉम द ब्रेकफास्ट शो। तो हमारे पॉडकास्ट को आप सुने क्योंकि बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव टॉपिक्स आपके लिए यहां पर डिस्कस किया जाता है। मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूं।
5: Tuck a tick, tuck a tick, tuck a tick, tuck a tick, tuck a tick, tuck a tick, tuck a tick, tuck a tick, tuck a tick, tuck a tick, tuck a tick, tuck a tick, tuck a tick, tuck a tick, tuck a tick, tuck a tick, tuck a tick, tuck a tick, tuck a tick, tuck a tick, tuck a tick, tuck a tick, tuck a tick, tuck a tick, tuck a tick, tuck a tick, tuck a tick, tuck a tick, tuck a tick, tuck a tick, tuck a tick, tuck a tick, tuck a tick, tuck a tick, tuck a tick, tuck a tick, tuck a tick, tuck a tick, tuck a tick, tuck a tick, tuck a tick, tuck a tick, tuck a tick, tuck a tick, tuck a tick, tuck a tick, tuck a tick, tuck a tick, tuck a tick, tuck a tick, tuck a tick, tuck a tick, t

आप सुनते रहो आपका नंबर वन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स। कुछ इंटरेस्टिंग बॉलीवुड खबरें भी आपके लिए हम लेकर आए हैं जो आपके साथ हम शेयर करेंगे। इसके लिए बस आप हमारा साथ देते रहे। दिलजीत दोसांझ सतलुज रिमूव्ड फ्रॉम Z5। दिलजीत दोसांझ की ये फिल्म वॉज टेकन डाउन फ्रॉम Z5 शॉर्टली आफ्टर इट्स रिलीज और रिमूवल केम जस्ट अ डे आफ्टर द एक्टर hinted that it might happen और फैंस ने काफ़ी बड़ा डिसअपॉइंटमेंट एक्सप्रेस किया है ओवर द अनएक्सपेक्टेड डिवेलपमेंट। कोई डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया है कि ये क्यों हुआ, लेकिन इसके वजह से काफ़ी ऑनलाइन डिस्कशन शुरू हो गया है। 5 July को ये स्टोरी पब्लिश किया गया है इंडिया की। ये स्टोरी है आपके लिए, मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ।

0: Night Cafe on Hum. Aapka Moment. Krish ka Magic. Only on Hum.
1: It is Tuesday night cafe jari hai aur main Krish aapke saath de raha hu. Welcome back everyone. Night cafe mein aapka swagat hai. This is our final hour aur bahut hi mazedar ye show ja raha hai. Aapke saath hame milta hai to bahut hi acha lag raha hai. Kuch aur samajik suchna is ghante par aapke saath hum share karenge. Events jo hone ko hai iske bare mein to maine aapko bata diya, lekin yaad rahe tickets aapko lena hai inhe agar aapko events mein jana hai. Shows jo aane wale hain usme bhi jaakar aapko agar entertained hona hai to phir tickets aapko pehle se lena hai. Kuch aur Bollywood information lekar आएंगे इस घंटे पर. अंशुला कपूर इमोशनल चूड़ा सेरेमनी पर जानकारी देंगे. अरशद वारसी ऑन जॉइनिंग किंग, इस पर भी जानकारी हमारे पास है अगर हमें समय मिलता है तो. ये इन्फॉर्मेशन भी आपके साथ हम शेयर करेंगे. बट फर्स्ट आप 30 मिनट्स ऑफ नॉन स्टॉप म्यूजिक फॉर यू एवरीवन. एंजॉय.

0: listening to Krish.
1: Let's go!
2: You're listening to number one, hum playing Bollywood's biggest hits. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ. कुछ सामाजिक सूचनाएं भी हमारे पास है जो आपके साथ हम शेयर करेंगे. श्री राम मंदिर 11 ब्रिक स्ट्रीट हेंडरसन की ओर से सूचना है कि अखंड रामायण पाठ यहाँ पर होने जा रहा है सैटरडे 1 और संडे 2 अगस्त को. सैटरडे को रोट पूजा होगा, आरती और रामायण पाठ भी होगा 8:45 AM. संडे को सुबह 10 बजे रामायण पाठ ख़त्म होगा. 10:30 AM हवन और आरती भी होगी. महाप्रसाद भी यहाँ पर आपको दिया जाएगा थ्रू आउट द प्रोग्राम. और भी जानकारी के लिए आप कॉल कर सकते हैं 09836464647 पर. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ. सुनते रहो हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स.

0: अब दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फीजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फीजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहे तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फीजी कीर्तन संग्रह दुनिया का पहला 24/7 फीजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने।
1: बबीता, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी गुरुज नंबर यार।
2: क्यों, क्या हुआ?
1: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था, $20,000 चाहिए थे। बैंक गई तो इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत। एक हफ्ता हो गया, नो रेस्पॉन्स। फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में। गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है।
3: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री। कॉल 0800 LOGIC G, दैट्स 0800-564-424।
4: क्रेविंग हो रही है उस थिक और क्रीमी दही की जैसे घर पर मिलती थी, तो मिलवाते हैं आपको कशिश नेचुरल योगर्ट से, जिसका हर स्पून है एकदम डिलाइटफुल। 100% वेजिटेरियन, जेलेटिन एंड ग्लूटेन फ्री, परफेक्ट है स्मूदीज बनाने के लिए, टैंगी डिप्स बनाने के लिए, पनीर या चिकन मैरिनेट करने के लिए, या बस सीधा कप से खाने के लिए, क्योंकि ये है नेचुरली डिलीशियस, ऑलवेज देसी। अवेलेबल नाउ एट योर फेवरेट इंडियन सुपरमार्केट अक्रॉस न्यूजीलैंड। ब्रिंग होम द टेस्ट ऑफ ट्रेडिशन। कशिश नेचुरल योगर्ट।
5: When City Rail Link arrives soon, it's going to give us all more time. From the new Te Waihorotu station, you'll be able to go from a busy day at work in the city to the peaceful zen of home in Panmure in just 20 minutes. Auckland Transport and City Rail Link. More connections that'll take you from the city to your place.
6: Why did I join People's Panel? Because this is the city I live in, so I care about it, and I wanted my voice to be heard.
7: Search and join the online People's Panel. Complete surveys, win prizes. Pāmaki Turiki, all together Auckland.
8: The Cooperative Bank has shared over $25 million in profit with our customers. Switch to the Cooperative Bank today and get a share of $25,000. Bank better, New Zealand. Apply by the 31st of July. T's and C's and eligibility criteria apply.
9: If you're serious about solar energy, switch on to Trade Depot. They stock the world's leading solar panels, inverters and batteries. Trade Depot specializes in powerful full house solar systems ranging from $10,000 to $20,000. Shop solar at Trade Depot for high quality solar systems with installation available nationwide. Trade

0: Cafe on Hum.
1: You're listening to Hum playing Bollywood's biggest hits. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ. अंशुला कपूर ने emotional चूड़ा ceremony के बारे में कुछ moments share किया है from a traditional चूड़ा ceremony. उन्होंने कहा कि wedding celebrations finally real feel होने लगे इनके लिए. Family और friends ने इनका intimate pre-wedding event को attend किया. Fans ने congratulate किया her on her social media page. और इस ceremony ने एक बहुत important milestone इनके लिए mark किया है before her wedding. और 5th जनवरी को ये सेरेमनी हुआ है. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ. आप सुनते रहो नाइट कैफे. रात 12 तक मैं आपके साथ दूंगा.

नाइट कैफे यहीं पर खत्म हो रहा है दोस्तों, आपने हमारा साथ दिया, थैंक यू सो मच, बहुत ही प्यारा लगा। अब हमारी मुलाकात होती है कल, आ जाएंगे वेंसडे मिड वीक मसाला लेकर, जिसमें बॉलीवुड इन्फॉर्मेशन बहुत सारे आपके लिए रहेंगे। कृष का बहुत सारा प्यार, हैव अ गुड वन एवरीवन, गुड नाइट।

0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
1: बुरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे.
2: Those people who live around the Hunua area, वहाँ पर 1 degree है टेम्परेचर.
3: जितने भी लोग इस इलाके में हैं, enjoy करते रहे आप. West side है ना, west side of Auckland है ये. I have lots of fun basically with the cold weather.
2: कौन है?
3: Hunua और Waitakere.
2: अच्छा, Hunua west में.
3: किधर है Hunua?
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.

0: Living.
1: Weekdays, 6 to 10 a.m. Professional Financials के साथ आपके लोन और इंश्योरेंस एक छत के नीचे नो ब्रोकर चार्ज बस ट्रस्टेड एडवाइस हर डील बनाए परफेक्ट राइट
0: रीफाइनेंस के लिए कंपेयर करें डिफरेंट बैंक्स लोन प्रोसेस हो सिंपल एंड फ्रैंक
1: बिजनेस फाइनेंस या इनकम प्रोटेक्शन हो हर स्टेप पर गाइडेंस परफेक्ट हो सब कुछ मिलेगा यही अपना फ्यूचर सिक्योर बनाए
0: प्रोफेशनल फाइनेंशियल सॉल्यूशंस योर फ्यूचर आवर प्रायोरिटी कॉल 09846-9934 और सर्च PFSL T's and C's लेंडिंग एंड क्रेडिट क्राइटेरिया अप्लाई
2: अपने सपनों की दुनिया बनाने वी ऑल केम हियर एंड वी वर्क हार्ड टू प्रोटेक्ट देम बट व्हेन समथिंग गोज रॉन्ग लाइक अ कैंसर डायग्नोसिस एन एक्सीडेंट और अ हार्ट अटैक योर इंश्योरेंस क्लेम्स ओनली सक्सीड इफ योर एप्लीकेशन वाज डन राइट फ्रॉम द स्टार्ट एट अश्योर वन नितेश शीरा वर्क्स विद यू टू मेक श्योर डिटेल्स आर कैप्चर्ड नथिंग इज मिस्ड नथिंग फॉरगॉटन बिकॉज द राइट एडवाइजर नोज द एप्लीकेशन प्रोसेस द पॉलिसी वर्डिंग एंड नोज एग्जैक्टली व्हाट इट टेक्स फॉर अ क्लेम टू बी सक्सेसफुल अश्योर वन प्लान फॉर टुमारो टुडे कॉल 0800-77 हीरा नॉर्थ एंड वेल एडवाइजरी लिमिटेड ट्रेडिंग एज अश्योर वन इज अ लाइसेंस financial advice provider.
3: Shine Dental has a fresh new look with more space and the same caring team. New patients ke liye ultrasonic scale and polish from $99 or one tooth acrylic denture sirf $599 mein. Plus free dental examinations for new and existing patients. Free wins and ACC codes. Or under 18s ke liye free treatment. Visit Shine Dental at 574 Great South Road, Manukau. Book today on 09-277-6644. T's and C's apply.
4: Night flight on.

0: चाहे आप हम के ढिंचैक 20 को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माय एफएम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी. बसेस, बिलबोर्ड्स, ट्रेन स्टेशंस, स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वीव कॉट द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड. कॉल मी काशिका ऑन 021-769-755. मीडिया वर्क्स, मीडिया दैट वर्क्स.
1: अरे बबीता, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी गुरुज नंबर यार.
2: क्यों, क्या हुआ?
1: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था, $20,000 चाहिए थे. बैंक गई तो इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत. एक हफ्ता हो गया, नो रेस्पॉन्स. फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में. गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है.
3: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री. कॉल 0800 LOGIC G, दैट्स 0800-564-424.
4: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं जैसे खुद कोई गूगल हो,
5: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स.
6: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सब डिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी. फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 0927994939 और विजिट legalassociates.co.nz.
7: The beat of Bollywood.
8: World's best, हमारी कोई ब्रांच नहीं है.
7: Nightfly.

लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: rock and roll. Download Rova to listen Hum 80s Jukebox.
1: किसी प्रियजन को खोना परिवार या मित्र के लिए कठिन समय हो सकता है। जीवन में मृत्यु को छोड़कर सभी चीजें अनिश्चित है। हम सभी को मृत्यु की वास्तविकता का सामना करना पड़ता है और गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार सेवा के माध्यम से प्रियजन के जीवन की अंतिम यात्रा भी करना महत्वपूर्ण है। We are Auckland's one-stop funeral service provider where responsible options and prices are offered. Anne's Funeral Home and On-Site Cremations. 11 Boulderwood Place, Wiri. Call 24/7 on 0927-88600.
2: Everyday burn hazards are hotter than they look. Help the Burn Support Group support survivors and whānau. Text BURN to 4499 to make a $3 donation now. Proudly supported by the MediaWorks Foundation.
3: Playing Bollywood's biggest hits. Put your head to Gandhi.

0: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन।
1: रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम।
2: हाय, मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, जैसे कि क्रैकिंग विंडोज, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है।
1: मॉइस्चर और वेंटिलेशन का प्रॉब्लम लगता है।
2: और पता है, मेरे बच्चों को एस्मा और एलर्जी भी हो गई है।
1: और दैट्स नॉट गुड। हम आपके सभी प्रॉब्लम्स रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम से सॉल्व कर सकते हैं। इससे आपका घर रहेगा वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर। और हम मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक और तोशिबा हीट पंप्स के ऑथराइज्ड डीलर्स भी हैं।
3: कॉन्टैक्ट रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम ऑन 0800-787-111। रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम्स, सॉल्विंग वेंटिलेशन प्रॉब्लम्स फॉर ओवर 18 years.
4: A proud member of New Zealand's Master Builder, building high-quality standalone and terraced houses. We're one of the award-winning teams for House of the Year, one of the most trusted and experienced subdivisions and building specialists. We manage from subdivision until the end of CCC. Our customers always recommend us to their closest friends. Call us on 0800-233-111. Indelible Homes, your building expert.
5: सोना संसार पापा टोटो के गहनों के साथ आप भी चमक जाएंगे।
6: चूड़ी, कंगन, पायल, बाली, झुमके और चोकर, ये सोना वही सोना संसार है जहां दिल्ली से लेकर दुबई तक के सभी गोल्ड ज्वेलरी डिजाइन्स मिलते हैं, समझे?
5: सोना संसार पापा टोटो, जहां था वहां अभी भी है। शॉप इनसाइड विद आजा डिजाइन स्टूडियो, कॉर्नर ऑफ ग्रेट साउथ रोड एंड ईस्ट तमाकी लाइट्स, पापा टोटो।
7: सोना संसार, 138 ग्रेट साउथ रोड, पापा टोटो। सोना संसार, यू आर नेवर टू ओल्ड फॉर gold.
8: Everyday burn hazards are hotter than they look. Act fast. Cool burns under running water for 20 minutes. And for serious or large burns, always call 111. Brought to you by the Burn Support Group and the MediaWorks Foundation.

0: यार यार नाटक ना कर, नाचु ना यार, नाचु ना।
1: अरे अरे छोड़ो यार, मैं नहीं नाचूंगा वाचूंगा।
2: ओए पुत्र नाचना, पहनती सगाई च पाइनू नचना ही पैंदा।
1: हाँ हाँ तो फिर बड़े भैया को नचाओ ना।
3: क्यों, तेरी भी तो पैन है।
4: ए गल चंगी बोली।
5: ओ कम ऑन शेखर, नाचो ना।
1: नहीं नहीं मुझे नहीं नाचना।

0: की भाग दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फिजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फिजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहें तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फिजी कीर्तन संग्रह दुनिया का पहला 24/7 फिजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने।
1: Everyday burn hazards are hotter than they look. Help the Burn Support Group support survivors and whānau. Text BURN to 4499 to make a $3 donation now. Proudly supported by the MediaWorks Foundation. Night Flight.

0: उस पे, क्योंकि दुनिया में ऑलरेडी बहुत सारे परफेक्ट पॉलिश्ड इंस्टाग्राम फ्रेंडली स्टोरीज हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं। यहाँ कहानियाँ होती है रॉ, इमोशंस होते हैं रियल और कॉन्वर्सेशंस होते हैं बिना मास्क के।
1: राजा मंत्री चोर सिपाही सब यहाँ थे।
0: अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रिस्पे ऑन रोवा, स्पॉटिफाई और एनीवेयर यू गेट योर पॉडकास्ट। द बीट ऑफ बॉलीवुड
2: वर्ल्ड्स बेस्ट, हमारी कोई ब्रांच नहीं है। Night Flight.

0: Breakfast Show with VJ and Pooja.
1: बुरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे.
2: Those people who live around the Hunua area, वहाँ पर 1 degree है टेम्परेचर.
3: जितने भी लोग इस इलाके में हैं, enjoy करते रहे आप. West side है ना, west side of Auckland है ये. We have lots of fun basically with the cold weather.
2: कौन है?
3: Hunua और Waitakere.
2: अच्छा Hunua west में.
3: किधर है Hunua?
0: The Breakfast Show with VJ and Pooja.

शाम पिया मुरी रंग दे चुनरिया, बिल्कुल स्पष्ट है इसका अर्थ। और गहराई में जाएं और ध्यान दें तो एक नया अर्थ सामने आता है। रंग भी शाम है और पिया भी शाम है, तो शाम रंग में पिया मोरी रम दे चुनरिया। शब्दों की ओर ध्यान दें।

0: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा।
1: बुरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
2: Those people who live around the Hunua area, वहाँ पर 1 degree है टेम्परेचर।
3: जितने भी लोग इस इलाके में हैं, enjoy करते रहे आप। West side है ना, west side of Auckland है ये। We have lots of fun basically with the cold weather.
2: कौन है?
3: Hunua और Waitakere।
2: अच्छा Hunua west में?
3: किधर है Hunua?
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
4: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living at Bedsworth, Manuka. English heritage-inspired furniture for everyday luxury living.
0: Weekdays, 6 to 10 a.m.
5: At Flooring Extra, they don't just sell floors, they transform homes. From luxurious carpets to show-stopping hard flooring, you get expert advice and installers who get it right the first time. They make it effortless. Visit in-store or they'll bring the showroom to you. Measure, quote, install, done. All backed by solid warranties for total peace of mind. Visit your local Flooring Extra or book your free in-home consultation today.
6: Flooring Extra. Adore your floor.
0: Check. Hum News, brought to you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
7: Morning, I'm Grace Cocker with the latest at 6. Kai Koura residents will be cautiously waiting for first light to assess damage from a massive deluge of rain. Multiple bridges have been washed out, with people urged to stay off the road until officials have assessed them. Alan Bailey from Met Service says things are looking up though.
8: From what I'm seeing on the radar now, that red warning will probably be lifted this morning.
7: Disgruntled Kiwis are pushing back on utility services more than ever. There was a 62% jump last year on the number of complaints laid with utilities disputes. Spokesperson Neil Morland says people aren't letting things slide.
9: Quite a few triggers we think that are driving complaints. Cost of living pressures, price increases, and you're seeing sort of generational change in energy, which is increasing the price households have to pay.
7: Facial recognition tech has been switched on at all New Zealand Bunnings stores. The system is aimed at reducing retail crime and protecting staff. General Manager Melissa Haynes says they have addressed privacy concerns.
10: If there's no match, then images are deleted almost instantly. If there is a match, then it's checked by 3 independent people.
7: In sport, Argentina have come back from 2-0 down against Egypt at the FIFA World Cup on TVNZ+.
11: Taro sent it across. Cometh the hour, cometh the man, yet again.
7: A short time ago, it was 2-2 approaching full-time of the round of 16 match in Atlanta. Football updates brought to you by Hisense.
4: Sports news.
0: Brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Roskill. Non-stop Bollywood. Playing Bollywood's biggest hits. Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
2: 10.5 degrees temperature Auckland mein abhi aap feel kar rahe hain. Aaj ka high 16, overnight kam se kam 7 degrees temperature ancha hone wala hai. Aur aaj ke mausam ke liye kaha ja raha hai ki mausam saaf rahega. Sunrise 7:33 AM par aur sunset aaj ka 5:20 PM par hoga.
0: Pooja.
4: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedsworth, Manuka. English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
0: Breakfast catch up.
2: 2 minute हो रहे हैं 6:00 नमस्कार, a very good morning, स्वागत है आपका. Welcome to the breakfast show with Vijay and Pooja. आज बुधवार है, 8 जुलाई. आज की ये सुबह आप सभी को बहुत बहुत बार शुभ और मुबारक हो, और आपका भी स्वागत है. गुड मॉर्निंग.
3: गुड मॉर्निंग, नमस्ते आप सबको भी. आप वेरी गुड मॉर्निंग. आज की सुबह की बहुत सारी शुभकामनाएं हमारी ओर से, और जहाँ के भी आज आप हमारा साथ दे रहे हो उसके लिए थैंक यू सो वेरी मच.
2: अभी से लेकर ठीक 10 बजे तक हमारा और आपके साथ इस प्रोग्राम में होने वाला है, जिस दौरान बहुत सारी चीज़ों के बारे में बातें होनी हैं. सबसे पहले तो साउथ आइलैंड में ख़राब मौसम के चलते बहुत सारे लोग कई मुसीबतों का सामना कर रहे हैं. कुछ लोगों को ओवरनाइट बचाया भी गया है कई जगहों से, बाढ़ के पानी वगैरह से. तो इस पर लेटेस्ट अपडेट जो है ये हम आपके लिए लेकर आएंगे, और साथ ही में कई अन्य खबरें भी हैं.
3: बिल्कुल, तो इन सारी चीजों के लिए आप तैयार रहेगा। शुरुआत ही जबकि हम कर रहे हैं ब्रेकफास्ट केचप के साथ, तो क्विक केचप तो रहेगा ही रहेगा, पर इसके अलावा आपके लिए हम कुछ यू नो इंटरेस्टिंग से क्वेश्चंस भी लेकर आएंगे, ताकि इंटरेक्शन हमारे और आपके बीच का बना रहे। आपके पसंदीदा गाने जो है ये तो रहेंगे ही, कुछ नए रिलीज सॉन्ग्स जो है ये भी आज आपके लिए हम पेश करेंगे, और इसके अलावा आज कुछ दिलचस्प खबरें जो है इधर उधर से, चाहे वो बॉलीवुड की हो या दुनिया में क्या कुछ हो रहा है या पर्टिकुलरली न्यूजीलैंड में क्या कुछ हो रहा है, इसके बारे में भी आपसे हम जरूर बातें करेंगे।
2: और साथ ही में फीफा वर्ल्ड कप के अंतर्गत राउंड ऑफ 16 का बहुत ही जबरदस्त मैच इजिप्ट और अर्जेंटीना के बीच फिलहाल खेला जा रहा है, और ये मैच अगर आपको बताएं, इस मैच में इजिप्ट की जीत अर्जेंटीना के खिलाफ 2-0 से हो रही थी, लेकिन अर्जेंटीना केम बैक इजिप्ट की ओर से 15th मिनट और 67th मिनट में गोल्स जो है ये बनाए गए, जिसके बाद अर्जेंटीना ने अपना पहला गोल 79th मिनट में बनाया, और उसके बाद 83rd मिनट में अर्जेंटीना ने खेल को 2-2 गोल से बराबर कर दिया, और अब इनटू द अभी जो मैच है इसमें अर्जेंटीना की जीत अब इजिप्ट के खिलाफ 3-2 से होने लगी है।
3: वेरी इंटरेस्टिंग, इस साल वैसे कह सकते हैं ना कि काफी ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग मैचेस हुए हैं जहां पर डिसअपॉइंटमेंट्स भी बहुत सी रही है, बिकॉज द फेवरेट टीम जो है ये शायद फीफा वर्ल्ड कप से बाहर हो गई बाय अ टीम जिससे शायद उतनी ज्यादा उम्मीद नहीं थी कि ये टीम इस फेवरेट टीम को हरा पाएगी, बट दैट हैज ऑलरेडी हैपेंड, एंड यही सिलसिला अर्जेंटीना के साथ होते होते रह गया, विच इज डेफिनेटली अ गुड न्यूज फॉर ऑल द अर्जेंटीना फैंस। एंड ऑफ कोर्स मेसी इज प्लेइंग, तो सिंस मेसी जो है ये मैदान में उतर चुके हैं, तो इनके भी बहुत सारे फैंस सुबह सुबह उठकर आज इस मैच का मजा ले रहे होंगे, तो डेफिनेटली अ लॉट इज हैपनिंग एज फार एज द वर्ल्ड कप इज कंसर्न्ड। इससे जुड़े हुई डिटेल्स आपके लिए हम जरूर लेकर आएंगे।

0: Sunnyside Up.
1: तो आज का सनी साइड अप स्टोरी, इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल येट अ वेरी इंस्पिरेशनल स्टोरी टू शेयर. तो हमने सोचा क्यों ना इसके बारे में हम बातें करें. ये कहानी दरअसल कनेडिकट यूनाइटेड स्टेट्स की है और इट्स अबाउट शाई टेलर एलन. ये इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी जिंदगी के 10 साल स्पेंड कर दिए वर्किंग एज अ जेनेटर एट येल न्यू हेवन हॉस्पिटल. और जब इन्होंने ये जॉब जो है ये करना शुरू किया था तो ये सिर्फ 18 साल की थी. और ये नौकरी इसी वजह से कर रही थी ताकि अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सके और खुद को सपोर्ट कर सके फाइनेंशियली. उनका भी ख्याल जो है ये रख सके क्योंकि इनकी मम्मी कुछ सीरियस हेल्थ स्ट्रगल्स जो है ये फेस कर रही थी. एंड आफ्टर दैट सिचुएशन शी वॉज इंस्पायर्ड कि ये अब मेडिसिन की पढ़ाई जो है ये करे. She worked tirelessly to earn a place at medical school. और इन्होंने कभी भी अपने सपने पर गिव अप नहीं किया. Years later, she graduated from medical school. And जब ये मैच हुई with a hospital जहां पर ये अपना residency program कर पाती, दरअसल इनको Yale New Haven Hospital ही मिला. मतलब जहां पर इन्होंने 10 साल spend किए working as a janitor, ये वापसी उसी hospital में इन्होंने की. But this time, she returned not as a janitor, but as a doctor. जहाँ पर इन्होंने अपना residency program जो है ये complete किया. इनकी life was not a very easy one to live. And जब इन्होंने अपनी माँ को एक serious illness से जूझते हुए देखा, उस young age में इन्होंने फैसला किया कि she is not gonna end up just working as a janitor at a hospital. और ये मेडिसिन की पढ़ाई कर कर एक डॉक्टर बनना पसंद करेंगी. एंड दैट्स व्हेन ये जज्बा इनमें आया. इन्होंने खूब मेहनत की, खूब पढ़ाई की, पढ़ाई के साथ साथ काम भी की. और इमेजिन आप उसी हॉस्पिटल में वापसी कर रहे हो और इस बार एज अ डॉक्टर आप वापसी कर रहे हो जहाँ पर कभी आपने एज अ जेनेटर मतलब जो साफ सफाई करते हैं उनका काम आपने किया हो. इट्स सच अ बिग अचीवमेंट टू सेलिब्रेट इन लाइफ, इजंट इट?
2: Yeah, exactly. And it goes to show कि जिंदगी में अगर आप कुछ सोचते हैं और उसके लिए काम करते हैं, मेहनत करते हैं, तो आप अचीव कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आप में वो कमिटमेंट हो, आप में वो डेडिकेशन हो और आप जेन्युइनली उसे अचीव करना चाहें.
1: एब्सोल्युटली. इसीलिए तो शाहरुख खान का वो डायलॉग है ना कि अगर आप किसी भी चीज को पूरी दिल से पाने की कोशिश करो तो पूरी की पूरी कायनात जो है आपको वो दिलाने में वो लग जाती है. वो पूरा जो कहता है ना यूनिवर्स, वो पूरा उस पर काम करना शुरू कर देती है. सो इसी वजह से ऑलवेज रिमेम्बर इफ यू वॉन्ट टू अचीव समथिंग इन लाइफ, आपका डेडिकेशन, आपका फोकस और आपका जो पूरा 100% दिल में इच्छा है ये होनी चाहिए एंड यू वुड डेफिनेटली अचीव इट.

0: हम के दिन चाहे 20 को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माई एफएम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी, बसेस बिलबोर्ड्स ट्रेन स्टेशंस स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वी हैव गॉट द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड। कॉल मी काशिका ऑन 021-769-755। मीडिया वर्क्स, मीडिया दैट वर्क्स।
1: अरे बबीता, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी गुरुज नंबर यार।
2: क्यों, क्या हुआ?
1: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था, $20,000 चाहिए थे। बैंक गई तो इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत। एक हफ्ता हो गया, नो रेस्पॉन्स। फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में। गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है।
3: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री। कॉल 0800 LOGIC G, दैट्स 0800-564-424।
4: सोना संसार पापा टोटो के गहनों के साथ आप भी चमक जाएंगे।
5: चूड़ी, कंगन, पायल, बाली, झुमके और चोकर, ये सोना वही सोना संसार है जहां दिल्ली से लेकर दुबई तक के सभी गोल्ड ज्वेलरी डिजाइन्स मिलते हैं, समझे?
4: सोना संसार पापा टोटो, जहां था वहां अभी भी है। शॉप इनसाइड विद आजा डिजाइन स्टूडियो, कॉर्नर ऑफ ग्रेट साउथ रोड एंड ईस्ट तमाकी लाइट्स, पापा टोटो।
6: सोना संसार, 138 ग्रेट साउथ रोड, पापा टोटो। सोना संसार, यू आर नेवर टू ओल्ड फॉर gold.
7: The moment that matters, when you make a claim, it's too late to fix your insurance application at that time. At Assure One, we work with you to make sure every detail is captured up front, even the things you think don't matter. Because the right advisor knows exactly what the insurers need to know and make sure nothing is missed to ensure claims get paid. That is how trust is built. Assure One, Nitesh Hira, your insurance advisor in Auckland. Call 0800-77-HIRA. North Invale Advisory Limited, trading as Assure One, is licensed financial advice provider.
8: It's a client who tried DIY, it did not work. It's that 5-minute job still going 5 weeks later. It's a supplier, everything is out of stock. There's a lot on the line starting a business. To see how ANZ can help, search ANZ How To. Eligibility criteria, T's and C's apply.
9: Stop what you're doing, Rebel are turning up the heat this long weekend with red hot savings. There's epic half price deals on clothing, shoes and more. Plus a scorching 20 to 40% off store wide. Sale on now, only at Rebel Sports. See online for T's and C's.
10: The beat of Bollywood.
11: World's best, हमारी कोई ब्रांच नहीं है.
10: The breakfast show with Vijay and Pooja.
12: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Manuko. English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
13: Global headlines.
14: सुबह के मुख्य समाचारों में, कैकोरा डिस्ट्रिक्ट में स्टेट ऑफ इमरजेंसी लागू किया गया है। मालबरा और कैंटरबरी, जिसमें कैकोरा रेंजेस भी शामिल हैं, के लिए रेड रेन वार्निंग जो है ये आज सुबह 10 बजे तक के लिए लागू की गई है। गंभीर बारिश और बाढ़ के चलते कैकोरा डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का कहना है कि वो आज सुबह एक बार फिर कई इलाकों का मुआयना करेगी। लगभग 80 लोग जिनको अपने घरों से निकलना पड़ा ने रात एक मराए में गुजारी। और कैकोरा के मेयर क्रेग मैकल का कहना है कि उनकी सबसे पहली प्राथमिकता होगी उन लोगों को शहर से बाहर निकालना जिनको तत्काल मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है। इसके अलावा अन्य खबरों में, ईरान के बारे में खबर आ रही है कि ईरान ने ओमान के टेरिटोरियल वाटर्स में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के पास 3 कमर्शियल वेसल्स पर फायरिंग की है, जिसे यूएस ऑफिशियल्स ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का ग्रॉस वायलेशन बताया है। स्ट्रक होने वाले जहाजों में कतार का एक क्वालिफाइड नेचुरल गैस टैंकर भी शामिल है, जिसके बाद कतारी फॉरेन मिनिस्ट्री ने इस हमले को इंटरनेशनल लॉ का मजाक बताते हुए ईरान से तुरंत रुकने को कहा है। भारत के असम डिस्ट्रिक्ट में 1 अप्रैल से 3 जुलाई के बीच 49 नवजात शिशु की मौत के बाद स्टेट गवर्नमेंट ने एक डिटेल इन्वेस्टिगेशन का आदेश दिया है। वैली रीजन के 3 डिस्ट्रिक्ट्स को मिलाकर टोटल 148 नियोनेटल डेथ्स हुए हैं, जिससे चीफ मिनिस्टर का ऑफिस काफी चिंतित है। पीजे में इमरान खान, जिन्हें किंग खान के नाम से भी जाना जाता है, के ड्रग केस में गैर हाजिर रहने वाले 2 पुलिस ऑफिसर्स ने नसीनू मजिस्ट्रेट्स कोर्ट में पेश होकर सफाई दी, जिसे मानकर कोर्ट ने उनका बेंच वारंट कैंसिल कर दिया और खान को फिर से रिचार्ज करने का आदेश दिया है। तीसरे सिविलियन स्टाफ का वारंट अभी भी एक्टिव है, जबकि कमिश्नर ऑफ पुलिस रुसियाते तुंड्रावू ने इस लापरवाही की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि इससे पब्लिक ट्रस्ट कम होता है और इस पर इंटरनल डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा। फीफा वर्ल्ड कप के अंतर्गत अर्जेंटीना ने आज सुबह इजिप्ट को 3-2 से हराकर क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बनाई। इस मैच में इजिप्ट ने पहले 2 गोल्स बनाए और अर्जेंटीना ने इंजरी टाइम में जाकर आखिरी गोल बनाया, जिसकी बदौलत टीम की जीत 3-2 से हुई है। इसके बाद आज सुबह 8 बजे राउंड ऑफ 16 का एक और बहुत ही जबरदस्त मैच स्विट्जरलैंड और कोलंबिया के बीच खेला जाएगा और इस मैच पर भी अपडेट्स आपके लिए हम लेकर आएंगे। ये रहे सुबह के मुख्य समाचार।
12: फुटबॉल अपडेट्स ब्रॉट टू यू बाय PFSL, प्रोवाइडिंग द बेस्ट होम लोन एडवाइस फॉर द लास्ट 20 इयर्स। गूगल PFSL टुडे, अम्मास फूड, 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव, एंड इंडेलिबल होम्स, योर बिल्डिंग एक्सपर्ट्स नोन फॉर सब डिविजन्स। विजिट indelibleholmes.co.nz।
10: Bollywood's most wanted.
2: गुंडी खड़ गाओ या सीधा अंदर आओ।
15: मैं लाऊं अपना A game.
10: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: 6:30 बज रहे हैं ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा, और ब्रेकफास्ट कैचअप आपके लिए जारी है। पिछले फ्राइडे को आई थिंक दो फिल्में एक साथ रिलीज हुई थी, और दोनों फीमेल सेंट्रिक जो फिल्में हैं ये रही हैं। अल्फा, जिसमें आलिया भट्ट और शर्वरी वाघ ने काम किया, दूसरी तरफ हुमा कुरैशी जो हैं इनकी फिल्म जो है बेबी डू डाई डू, ये भी उसी दिन रिलीज हुई है। और बेबी डू डाई डू जो फिल्म है, जिन लोगों को इस फिल्म के बारे में बहुत पता नहीं था, इस फिल्म का जो नाम है उसका मतलब ही फिल्म देखने के बाद जाकर पता चला।
1: Because even I was wondering ki what kind of a name is this, baby do die do, like what does it even say? So I haven't seen the film, मैंने तो नहीं देखी अभी तक, और अगर आपने देखी है या फिर आप सिनेमाज में जाकर देखने वाले हैं तो आप जरूर हमें बता सकते हैं after watching it, and let us know ki what is the connection without actually revealing the plot, क्योंकि I believe it's a film with a lot of suspense, और साथ ही साथ बहुत सारा डार्क ह्यूमर भी है इसमें, तो वो सारी चीज़ें रिवील करने के बावजूद बिना आप हमें बता सकते हैं ना।
0: और इस फिल्म को लेकर शायद बॉक्स ऑफिस पर जो अल्फा है फिल्म, उसके मुकाबले उतनी अच्छी जो कमाई अभी तक फिल्म ने नहीं की है। तो वहीं पर गीता मोहनदास, इन्होंने हुमा कुरैशी को डायरेक्ट किया था फिल्म टॉक्सिक में, एंड शी हैज़ कम आउट इन सपोर्ट ऑफ हुमा कुरैशी, और साथ में उनके भाई क्या नाम है उनका, साकिब सलीम
1: जी,
0: उनको सपोर्ट जो है ये उन्होंने किया। और इंस्टा पर एक पोस्ट में उन्होंने बेबी डू डाई डू को प्रेज किया, एंड उन्होंने कहा कि यू नो इट जस्ट फेल्ट लाइक सराउंडेड बाय अ स्टोरी बिल्ड बाय पीपल आई नो, a sister and brother who bet on each other, a partner who delivered exactly what I always knew he had in him. I wasn't watching strangers succeed, I was watching people I care about become exactly who I always knew they'd become. ye unhone jaakar insta par share kiya hai.
1: So there you go, not just in real life lekin ye profession wise bhi ek dusre ke support mein khade rehte hain, because both of them belong to the same industry, they do the same kind of job, as they belong to the same profession as well, so it's very interesting and of course at the same time very loving as well. To ye to rahi Bollywood se judi aane wali, ya so not aane wali, release ho chuki film Baby Do Die Do ke bare mein, par aane wali ek film ke bare mein bhi aapko hum bata dete hain. And this particular movie is titled Queen 2. काफी प्रॉब्लम्स में फंस चुकी है ये फिल्म, लेकिन अभी इस पर काम चल रहा है, एज इन अभी पता चलेगा व्हाट इज गोना हैपन एंड आगे चलकर क्या होगा इस फिल्म का, बट द मूवी आई एम टॉकिंग अबाउट इज नन अदर देन क्वीन 2। ये एक लॉ सूट के बीच में अभी घिरा हुआ है, एंड जियो हॉटस्टार, और शुड आई से जियो स्टार, इन्होंने डिनाई किया है कोई भी क्लेम दैट इनकी जो आने वाली अपकमिंग फिल्म है क्वीन 2, जिसमें कंगना रनौत दिखने वाली है, इट्स अ कॉपी ऑफ द 2014 हिट मूवी क्वीन, जिसमें कंगना रनौत ने काम किया था, ये उसका पार्ट 2 नहीं है, ये इनका कहना है। जियो स्टार का कहना है कि क्वीन 2 इज अ कम्प्लीटली ओरिजिनल एंड इंडिपेंडेंट स्टोरी, और इसका ओरिजिनल फिल्म प्लॉट के साथ या उनके कैरेक्टर्स के साथ या कहानी के साथ कोई भी कनेक्शन नहीं है। फैंटम स्टूडियोज, जिन्होंने जियो स्टार के खिलाफ 250 करोड़ का एक लॉ सूट फाइल किया है इन द बॉम्बई हाई कोर्ट, उनका कहना है कि उनके पास जो ओरिजिनल फिल्म है क्वीन, उसका 50% इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ओनरशिप है, और उन्होंने कभी भी सीक्वल के लिए कोई अप्रूवल नहीं दिया है। जियो स्टार ने इस बात को आर्ग्यू किया है, सेइंग कि क्वीन एक कॉमन इंग्लिश वर्ड है, और ये कभी भी एक्सक्लूसिवली owned as a title by any particular production house नहीं हो सकता है। That is why उन्होंने Queen 2 title जो है ये चुना है, और कंपनी ने ये भी कहा है it will fight the case in court and is confident कि ये एक ऐसे legal position में है कि इनका जो बात है ये सामने आएगा and they wouldn't end up paying any money. The original Queen जो फिल्म आई थी 2014 में, उसे critically acclaim का खिताब जो है ये हासिल हुआ था, और ऑफ कोर्स इस फिल्म की वजह से कंगना रनौत को उनका नेशनल अवार्ड भी मिला था बेस्ट एक्ट्रेस के लिए, और क्वीन 2 में भी कंगना रनौत दिखने वाली हैं, प्लस ये डायरेक्ट करने वाले हैं विकास बहल, जिन्होंने फिल्म क्वीन जो है 2014 में आई थी उसे भी डायरेक्ट किया था। सो द डायरेक्टर इज द सेम, द लीड एक्ट्रेस इज द सेम, बस प्रोडक्शन हाउस बदल चुकी है, और साथ ही साथ इसको लेकर प्रॉब्लम्स जो है ये खड़ी हो चुकी है।
0: वेल जैसे ही आप सुनेंगे क्वीन टू, ये नाम जब आप सुनते हैं ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में ये आता है कि ये सीक्वल होगा ना.
1: जी, नाम इटसेल्फ मेक्स पीपल थिंक लाइक दैट, ट्रू.
0: बट लीगलिटी आई डोंट नो व्हाट इट्स ऑल अबाउट. देखें आगे क्या होता है, जो भी होगा डिटेल्स हम आपको जरूर हम पर देंगे. अभी 25 मिनट रह गए हैं 7 बजने में.
2: Breakfast show with Vijay and Pooja.
3: Don't mind, लेकिन आप दोनों की जोड़ी बड़ी क्यूट है.
4: Accurate traffic.
5: Kitchen mania. 17th birthday.
6: A high of 16. A bit of cloud. Fine spells increasing today. Coming in on the southern motorway. 25 minutes Manukau to town. 46 from Drury. Now we're building south of Manukau. Mainly just slow Papakura through to Manurewa. A little bit around Mount Wellington. Northwestern. 22 minutes Massey to town. It's slowing around Massey and Te Aratu and close to the city. Northern 20 in from Constellation. Slowing there to Milford and back at Silverdale.
5: You could win 10k when you order your new Kitchen Mania kitchen. T's and C's apply.
7: पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हो या आप फ्यूचर की तरफ शिफ्ट कर रहे हो, स्मार्ट चॉइस अब सिंपल है. वे सिटी GWM हैवल. हैवल का हाइब्रिड और प्लग इन हाइब्रिड रेंज पे डिस्काउंट्स और सिर्फ 4.95% फाइनेंस ऑफर्स. आज ही वे सिटी ऑटो ग्रुप पहुँचे और जिमी टेलर और उनकी टीम से मिले. लिमिटेड टाइम ऑफर. टीज एंड सीज अप्लाई. फॉर मोर इन्फो विजिट वे सिटी ऑटो ग्रुप .nz और सर्च फॉर वे सिटी ऑटो ग्रुप ऑन सोशल्स.
8: At Flooring Extra, they don't just sell floors, they transform homes. From luxurious carpets to show-stopping hard flooring, you get expert advice and installers who get it right the first time. They make it effortless. Visit in-store or they'll bring the showroom to you. Measure, quote, install, done. All backed by solid warranties for total peace of mind. Visit your local Flooring Extra or book your free in-home consultation today.
9: Flooring Extra. Adore your floor.
10: Face it, you're good in groups. So why not turn your superpower into getting a group of blood buddies together? Friends, whānau, workmates, book a time to donate at nzblood.co.nz. Give blood. Give plasma. Save lives.
11: Oh, don't slip up on a banana skin. Throw it in your food scraps bin instead of the rubbish. Because every scrap counts. Tāmaki Tūtaki. All together, Auckland.
12: At Bunnings, there's some really easy things you can do to modernise your kitchen. You'll be surprised at how little it costs, and they just look amazing. Whether you own your own home or whether you're renting, rejuvenate your kitchen and make it look fabulous.
13: Get your kitchen sorted with a Practa trimmable utensil tray, only $15. A Mistral White cordless kettle, $19. And a very handy Caboodle spice tray, just $15.
12: Bunnings makes DIY easy.
14: Bunnings Warehouse!
12: Lowest prices are just the beginning.

0: Breakfast Show with Vijay and Pooja.
1: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Manco. English heritage-inspired furniture for everyday luxury living.
2: 22 मिनट रह गए हैं अभी 7 बजने में ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा. और आज वेंसडे है 8th of July, आपका बर्थडे है या शादी की सालगिरह है. मेक श्योर अपने मैसेजेस जो है आप हमें समय से पहले भेज दें. 7:30 बजे के बाद आपको हम विश करेंगे ऑन हम, सो उससे पहले आपके मैसेजेस आ जाते हैं तो बढ़िया होगा.
3: बिल्कुल, तो गेट रेडी और जरूर हमारे पास फटाफट अपने मैसेजेस सेंड कर दीजिएगा ताकि आपके पास इनफ टाइम रहे हमारे साथ जुड़ते हुए. आज बर्थडे ग्रीटिंग्स जो कि आपके लिए हम लेकर आएंगे तो आप अपनों तक ये जरूर पहुंचा सकते हैं. और इसके अलावा आज इस घंटे जहां पर आपके लिए हम एक और एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी खबर लेकर आए हैं, तो ये तो आपके साथ हम शेयर करेंगे ही करेंगे. लेकिन उससे पहले आज का इस घंटे का हमारा जो सवाल है ये भी रहेगा, और उससे पहले आपके जो गुड मॉर्निंग मैसेजेस आए हैं चलिए वो भी जल्दी से देख लेते हैं.
2: राम राम, जय श्री कृष्णा, हैप्पी वेंसडे एवरीवन, हैव अ गुड डे मिस्टर मटर मटर. सुबह 4:15 बजे के वक्त इनका मैसेज जो है गया था. आपको भी ये सुबह मुबारक हो.
3: गुड मॉर्निंग विजय एंड पूजा, हैव अ गुड डे. ये मैंडी ने हमारे पास अपना मैसेज भेजा है. थैंक यू सो मच मैंडी आपके भी मैसेज के लिए.
2: 6177 आपका नाम तो नहीं है लेकिन आपने भी गुड मॉर्निंग विश किया सुबह 5:30 बजे के वक्त. थैंक यू सो मच, आपको भी सुबह मुबारक हो.
3: और इनके अलावा अगर देखा जाए तो आज गुड मॉर्निंग मैसेज जो है ये हमारे पास आया है और ये भेजा है रवनेश मोदलियार ने. इन्होंने कहा है, गुड मॉर्निंग एंड नमस्कारम विजय एंड पूजा एंड ऑल स्टाफ एंड लिसनर्स ऑफ हम, हैव अ हैप्पी डे फ्रॉम रवनेश मोदलियार.
2: गुड मॉर्निंग विजय जी, पूजा जी, जय श्री गणेश, विशिंग यू बोथ अ वंडरफुल एंड ब्लेस्ड डे. विमलेश एंड प्रिया, आपको भी अ वेरी गुड मॉर्निंग. थैंक यू सो मच हमें सुबह सुबह याद करने के लिए.
3: और साथ में अगर आपके भी मैसेजेस आप हमें भेज रहे हैं तो याद रहे आप हमारे पास अपने मैसेजेस सेंड कर सकते हैं ऑन 5599, ये हमारा टेक्स्ट प्लेटफॉर्म नंबर है. एंड ऑन द अदर हैंड हम 104.2 FM विद ब्लू टिक, दैट्स अ वेरीफाइड फेसबुक पेज हमारा, जिसके जरिए आप हमारे साथ कनेक्टेड रह सकते हैं. मेक श्योर कि आप जरूर हमारे जो पेज को लाइक करें और फॉलो करें ताकि हमारे साथ आप बने भी रहें. कोई अपडेट्स वगैरह हम वहां पर डाल रहे वो भी आप जरूर चेकआउट कर सके. बिफोर वी मूव ऑन, गुड मॉर्निंग मैसेज आया है बॉबी मान जी की ओर से भी. गुड मॉर्निंग पूजा एंड विजय, 23M साउंड्स गुड ना, गणेशा ब्लेसिंग्स एंड एंजॉय योर डे. आई डोंट नो व्हाट डज ही मीन बाय दैट दो.
2: नहीं, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा.
3: मुझे भी समझ में नहीं आया बॉबी जी, आज आपका मैसेज मुझे समझ में नहीं आया. तो अगर आप थोड़ा
2: 23 मिलियन आज शायद पावर बॉल में होगा.
3: ओके, इज इट 23 मिलियन हो गया है?
2: मुझे पता नहीं.
3: इंटरेस्टिंग मैन, आई मीन मुझे भी नहीं पता है बिकॉज आई थिंक मैंने लास्ट वीक ही फॉलो किया था, उसके बाद आई हैव नॉट फॉलोड इट, सो नो आइडिया. बट देयर वाज अ टाइम आई थिंक वी वर फॉलोइंग इट क्वाइट स्ट्रिक्टली एंड बॉबी मान जी वाज विद अस.
2: यस, इट्स 23 मिलियन.
3: गुड वन, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग. तो जितने भी लोगों ने ये खेलना है, अपना अपना अल्लाह का आजमाना है, गो फॉर इट. ये आज रहेगा 23 मिलियन फॉर पावर बॉल लोटो का जो जैकपॉट अमाउंट है. और अगर जैकपॉट आज आपने क्रैक कर लिया तो ऑफ कोर्स 23 मिलियन आपके हो सकते हैं. लाइफ कितनी आसान हो जाती है ना व्हेन यू हैव सो मच ऑफ मनी.
2: पता नहीं भाई, आसान होती कि मुश्किल हो जाती है. अब कभी उतने पैसे थे नहीं मेरे पास, तो एक्सपीरियंस नहीं है मेरे पास ना.
3: अच्छा,
2: मैं बहुत इनएक्सपीरियंस्ड हूं
3: इस मामले में. नहीं, बट आई डोंट नो, इट कुड बी बोथ वेज. लाइक मुश्किल व्हेन यू नो देयर आर पीपल अराउंड यू हु फाइंड आउट यू हैव गॉट दैट मच ऑफ मनी, तो वो कहीं ना कहीं फाइनेंशियली आप पे डिपेंड करना शुरू कर देते हैं, व्हिच इज बेसिकली नॉट सच अ गुड थिंग व्हेन इट कम्स टू पीपल अराउंड यू. बट ऑन द अदर हैंड इट्स गुड फॉर यू बिकॉज आपको कई तरह की चीज़ों के लिए फिर सोचना समझना नहीं पड़ता है, स्पेशली इफ़ यू वॉन्ट टू ग्रो योर सेल्फ फाइनेंशियली प्रोफेशनली या फिर बिजनेस वाइज आप अपने आप को ग्रो करना चाहते हैं. जब पैसे हो हाथ में तो यू कैन एक्चुअली इन्वेस्ट इट इन अ गुड वे ना.
2: अरे चलो, अभी
3: है नहीं,
2: अंडे नहीं दिए मुर्गी ने तो बच्चे गिनना सही नहीं होगा हमारे लिए ना.
3: वो मैं हमेशा करती हूँ ये. बट एनीवेज, जैसे कि आपको हमने बताया है, मेक श्योर यू ट्राई लक विद दिस, क्योंकि आज 23 मिलियन डॉलर्स है पावरबॉल जैकपॉट के लिए. एंड इसके अलावा चलिए, आज हमने कहा था हमारा इस घंटे का सवाल ये भी आपके लिए लेकर आएंगे. और आज एक और एक गेम आपके साथ खेलेंगे. व्हाट यू नीड टू डू इज हम आपको बताएंगे एक वर्ड, एक लाइन, एक सेंटेंस, व्हाटएवर इट कुड बी, और उसका जो ऑपोजिट होगा वही होगा आज के हमारे फिल्म का टाइटल, मतलब हमारा इस सवाल का जवाब।
2: ओके
3: तो अपने आंसर्स जो है ये आप हमारे पास भेज सकते हैं 5599 पर अपने नाम के साथ, लेकिन सबसे पहले आपको लिखना होगा
2: BF
3: लिखे और फिर उसके बाद अपना आंसर लिखे और हमारे पास इसे मैसेज कर दे अपने नाम के साथ। घर खाली, दिस इज द लाइन। आपको याद होगा एक बार पहले भी हमने ये खेला था एंड उस टाइम हमने कहा था हम अलग अलग हैं, दैट वाज द लाइन, जिसका ऑपोजिट वुड बी हम साथ साथ हैं और वो एक फिल्म का टाइटल था। सो उसी तरह से घर खाली, दीज आर द टू वर्ड्स, इसका ऑपोजिट एक फिल्म का टाइटल है। कौन सी फिल्म है ये आपको बताना है अपने नाम के साथ जवाब हमारे पास 5599% करते हुए।
2: सो जल्दी से अपने जवाब भेजे। राम राम विजय भाई एंड पूजा जी, अर्जेंटीना 1, ब्यूटीफुल स्टार्ट ऑफ द डे। रोनल यू मस्ट बी वेरी हैप्पी, शायद अर्जेंटीना इनकी फेवरेट टीम है। सो थैंक यू रोनल आपके भी मैसेज के लिए। तो जवाब 5599 पर अब आपको भेजना है।

0: Breakfast Show with Vijay and Pooja.
1: Chup ho ja, papi ho. Chup ho ja.
2: Driving you home.
3: The Drive Show with Sandy and Rusby.
4: तो फिर सरिता के चप्पल का साइज क्या था?
5: तो उसने सरिता ने जाके मैडम को बोल दिया कि हाँ जी मेरे को जहाज मारा किसी ने,
6: वो भी आई लव यू वाला।
5: मैडम ने पकड़ लिया, अभी यहाँ पे किसने बनाया? वो एक लड़की थी, वो बोलती जहाज तो दिलजीत बना रहा था बेटा।
6: अच्छा आप दिलजीत तो
5: आए आए बताओगे यार।
3: Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manukau and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99, on sale now. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaku. Hum, accurate traffic.
7: Shower dome, shower tops.
8: Mainly fine, cloud clearing, a high of 16. Coming into the city motorways, looking okay. Northern 22 minutes in from Constellation Drive, 40 from Silverdale. Slowing at Silverdale and slow patches Constellation to the bridge. Northwestern, 26 minutes in from Massey, slow there to Te Aritu and close to the city. Southern, half an hour in from Monaco, slow patches on and off Papakura to Mount Wellington. Little slow on George Bolt heading to the airport.
7: Eliminate shower steam by simply fitting a shower dome. Showerdome.co.nz.
9: Arey Babita, thank you so much for giving me Guru's number, yaar.
10: Kyun? Kya hua?
9: Mujhe urgent kaam se Fiji jana tha. $20,000 chahiye the. Bank gayi, to itne hi documents maange ki bas pooch hui mat. Ek hafta ho gaya, no response. Phir tumne Guru ka number दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में। गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है।
3: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री। कॉल 0800 लॉजिक जी, दैट्स 0800 564 424।
11: वो इनडेलिबल होम्स वाली कहानी सुनाओ ना।
12: The story begins in 2007. Claude has a vision for a building company. It aims to become an expert in providing affordable homes with modern designs. With a 10-year Master Builder Guarantee, awards pour in.
13: And award goes to Indelible Homes.
12: Trust of the customers builds. Indelible Homes becomes New Zealand's favourite Master Builder.
14: Kahani of Indelible Homes.
15: It's the truth. You know it. Your girl group do everything together. There's even a name for it. Dogetherness. Oh, cute. So why don't you do something new? Something that really matters. Something like giving blood or plasma. Together. This winter, with all the dreaded lurgies around, NZ Blood needs blood and plasma more than ever, and one donation could save lots of lives. Get your blood buddies together, then book a time to donate at nzblood.co.nz. Oh, and coffee is included. Give blood, give plasma, save lives.
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
3: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Beds R Us Manukau. English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
0: Breakfast catch up. Throwback.
16: अभी 8:30 रह गए हैं 7 बजने में। जल्दी से आपको बता दें कि मेट सर्विस ने आज वेदर रिलेटेड क्या वार्निंग इशू किया है। हैवी रेन ईस्टर्न एरियाज के लिए और स्ट्रॉन्ग साउथ ईस्ट फ्लो जो है ये रहेगा साउथ आइलैंड और लोअर नॉर्थ आइलैंड में। और हैवी रेन वार्निंग रेड जो है मलबरा कैंटबरी साथ में हेनमा और इसके अलावा कई कोर रेंजेस के लिए। हैवी रेन वॉचेस जो है हॉरफेनवा मनवातु तैहापे और साथ में तररू डिस्ट्रिक्ट के रेंजेस और हुक्स बे के लिए लागू है। स्ट्रॉन्ग विंड वॉच वेलिंगटन मालबरा साउंड कपिटी कोस्ट और तारानकी के लिए आज लागू किए गए हैं।
17: तो ये सारे अपडेट्स वेदर रिलेटेड भी आपके लिए हम बारी बारी लेकर आते रहेंगे। बट फिलहाल जो सवाल हमने किया, हैविंग अ लुक एट द रिजल्ट राइट नाउ, डोंट रियली नो, इतना आसान क्वेश्चन फिर भी इतने कम सही जवाब इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। अभी हमारे पास जो आंसर आया है रोनल्ड की ओर से है, निलेशनी की ओर से है, निलेश की ओर से है, इन सभी ने तो सही जवाब दिया।

0: लेकिन बाकी सारे के सारे गलत आंसर जो है ये हमारे पास आए हैं। अभी आप अच्छे से सुन लीजिए, हमने आपको बताया है कि हम आपको बताएंगे एक वर्ड या एक सेंटेंस, एंड आफ्टर लिसनिंग टू दैट आपको बस उसका ऑपोजिट हमें बताना है, जो कि एक फिल्म का टाइटल भी है। और फॉर एग्जाम्पल हमने बताया हम अलग अलग है, दिस इज वन लाइन, हम अलग अलग है, इसका ऑपोजिट होगा हम साथ साथ है, एंड इट्स बेसिकली अ बॉलीवुड फिल्म टाइटल। उसी तरह से आज जो वर्ड हमने आपको दिया है वो है घर खाली, यानी हाउस एम्प्टी। अभी मैंने ट्रांसलेट भी कर दिया ताकि आपको और आसानी हो जाए। सो इफ घर खाली इज अ वर्ड, हाउस एम्प्टी इज द वर्ड, इसका ऑपोजिट क्या होगा जो एक फिल्म का टाइटल है, बॉलीवुड फिल्म का टाइटल है।
1: सो BF अपना आंसर और अपना नाम ये 5599 पर हमारे पास आप भेजे आपके आंसर्स, हम देखेंगे 7 बजे न्यूज एंड स्पोर्ट्स अपडेट के बाद, और आपको सही जवाब जो है ये भी बताएंगे। फिलहाल आज का हमारा पहला थ्रॉबैक आप एंजॉय करें, और तब तक 5599 पर अपने जवाब हमारे पास भेजते रहें।

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: Below 10 degrees temperature ja chuka hai aaj subah subah Auckland mein. Aaj ka high 16, overnight kam se kam 7 degrees. A fine day. Sunset aaj ka sham 5:20 par hoga.
0: The breakfast show with Vijay and Pooja,
2: brought to you by Fortune, with whole grains and essential vitamins. Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Manco, English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
1: Welcome to Morning Madness on Hum, playing Bollywood's biggest hits. The Breakfast Show with Vijay and Pooja आपके लिए जारी है. अभी 3 मिनट हो रहे हैं 7:00 कुछ देर से. अगर आप हमारे साथ शामिल हुए हैं इस प्रोग्राम में, आपका स्वागत हम कर रहे हैं. गुड मॉर्निंग एंड वेलकम. एंड होपफुली आज का ये दिन आपका बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया जाए. इस घंटे भी तमाम चीज़ें होंगी स्टारिंग ऑफ विद योर राशि वाइब्स वेरी शॉर्टली. लेकिन एक चीज़ जो है, इसका एहसास मुझे कल शाम ही जाकर हुआ कि दिस इज अ शॉर्ट वीक.
3: अच्छा, आपको पहले से पता नहीं था?
1: हाँ, I mean, पहले पता था, लेकिन इस हफ्ते तो बिल्कुल पता नहीं था.
3: भूल गए थे बेसिकली आप.
1: हाँ,
3: ऐसा इनफेक्ट कभी कभी होता है ना कि इफ इट्स अ पब्लिक हॉलीडे, इफ इट्स अ शॉर्ट वीक, तो हमें याद नहीं रहता है. एंड टाइम्स ये भी होता है कि इतना फास्ट पूरा वीक जाता है कि इस बात का भी एहसास नहीं होता कि कौन सा दिन है आज. एंड एक्चुअली देयर इज समथिंग दैट हैपेंड विद मी यस्टरडे. मैं थोड़ा ऐसे हैरान हो गई थी, ऐसे परेशान हो गई थी. मेरे को ऐसा लग रहा था कि इट्स अ फ्राइडे बेसिकली. कल जबकि ट्यूजडे था, पर मेरे को ऐसी फीलिंग्स आ रही थी कि फ्राइडे है आज.
1: मुझे अब जब कल एहसास हुआ कि इट्स अ शॉर्ट वीक, समझ में नहीं आ रहा था कि मैं खुश हो जाऊं या फिर परेशान हो जाऊं कि भाई अच्छा इस हफ्ते एक दिन कम काम पे जाना पड़ेगा, या फिर परेशान हो जाऊं कि भाई ये तो शॉर्ट वीक हो गया, अब सारा का सारा काम कैसे निपटेगा,
3: जल्दी जल्दी करना पड़ेगा. Yeah, that does happen a lot. But अगर आप भी भूल गए थे हमारी तरह कि ये एक शॉर्ट वीक है, बिकॉज इट्स अ पब्लिक हॉलीडे ऑन फ्राइडे, एंड फ्राइडे बीइंग मातृ की डे के लिए जो पब्लिक हॉलीडे सेलिब्रेट किया जा रहा है, या ये इस दिन रहेगा, तो एन्जॉय दिस शॉर्ट वीक. आज है और कल है, फिर उसके बाद छुट्टी. तो अ लॉट ऑफ यू विल बी बिजी विद अ लॉट ऑफ थिंग्स एज वेल. लॉन्ग वीकेंड भी है ना, तो आप अपना लॉन्ग वीकेंड के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं. What ever you are doing, बस इस बात का ख्याल रखें कि आप सेफ है, फैमिली के साथ अच्छा टाइम तो गुजार रहे हैं, लेकिन फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, बिकॉज लॉन्ग वीकेंड्स ऐसे होते हैं जहाँ पर अ लॉट ऑफ पीपल ट्रेवल, स्पेशली ऑन द रोड रहते हैं लोग, और उस दौरान आपको ज़्यादा केयरफुल रहना होता है. Anyways, अभी चलिए देखते हैं. हमने पिछले घंटे सवाल किया, अकॉर्डिंग टू अस या अकॉर्डिंग टू मी पर्टिकुलरली, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, बावजूद इसके बस गिने चुने ही सही जवाब आए. बट नेवरदलेस चलिए, आज जो हमारे पास सही आंसर्स, हमने पिछले घंटे तो नाम बताए थे, इसके अलावा बॉबी मान जी ने भी अपना आंसर दिया है, और उसके साथ साथ विधि ने अपना आंसर दिया है, और माजिद अहमद जी है मेट्रोपॉलिटन एयर से, इनका मैसेज आया है. थैंक यू सो मच माजिद जी, आपके भी मैसेज के लिए थैंक यू सो मच, आपके भी साथ के लिए. बॉबी मान जी ने एक मैसेज किया है, इन्होंने कहा आई रिमाइंडेड यू ऑन मंडे Enjoy short week, इन्होंने कहा था. तो ये वापस याद दिला रहे कि मंडे को तो मैंने बताया था आप दोनों को कि enjoy your short week. Actually, मैं I can see his message now. इन्होंने लिखा था enjoy the short week.
1: My God. खैर जो भी हो, थोड़ी देर बाद आज के आपके राशि वाइब्स हम लेकर आएंगे with the update.
3: हेलो हेलो. मेरे को जवाब भी बताना है ना.
1: हेलो हेलो
3: हेलो हेलो बोलना पड़ता है, वरना आप निकल पड़ते अपनी ट्रेन लेकर. So the correct answer for the question is Houseful. That's the correct answer. That's the name of the movie जो आज हम आप से expect कर रहे थे. Houseful.
1: So, thank you so much आप सभी के answers के लिए. तो थोड़ी देर बाद आपके राशि वाइब्स, कुछ बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज भी आज हमारे हाथ लगी हैं, ये भी हम आपके लिए लेकर आएंगे. सिनेमा जब आप जाते हैं मूवी देखने के लिए, कौन सी जगह जो है वुड बी योर प्रेफर्ड प्लेस इन द थिएटर?
3: It's weird. A lot of people prefer कि right at the back जो होता है, far away from the screen, in the middle वो बैठना पसंद करते हैं. पर मुझे a few seats away, a few rows away from the screen ज़्यादा अच्छा लगता है. Like probably if like I'm sitting in that row जो शायद screen से एक दो row पीछे हो, एक नहीं दो दो row पीछे हो, I enjoy that.
1: ओके, आज हम आपको बताएंगे फॉर द बेस्ट साउंड एक्सपीरियंस एक मूवी थिएटर में कहां पर आपको अपनी सीट जो है ये बुक करनी चाहिए. इसके अलावा दुनिया में सबसे इन्फ्लुएंशियल कंट्रीज कौन कौन सी हैं?
3: वेरी इंटरेस्टिंग. और इस घंटे मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसी कंट्री के बारे में जिसे माना जाता है सेकंड मोस्ट विजिटेड कंट्री, और यहाँ पर कितने टूरिस्ट जो है हर साल जाते हैं, इस साल की क्या एनालिसिस है ये भी आपके साथ हम शेयर करेंगे. बट बिफोर वी मूव ऑन विद ऑल दिस इंटरेस्टिंग अपडेट्स, फीफा वर्ल्ड कप 2026 जारी है एंड एज वी हैड सेड इन द मॉर्निंग एज वेल कि देयर आर लॉट ऑफ हार्ट ब्रेक्स हैपनिंग. आई थिंक मैंने मैचेस तो कोई भी फॉलो नहीं किया है बिकॉज एज आई सेड आई एम नॉट रियली अ फुटबॉल फैन. फॉर वंस I'd enjoy watching rugby, but football उतना समझ में नहीं आता, I guess. I'll be very honest. तो ज़्यादा पसंद नहीं, और बहुत लंबा होता है मेरे लिए. 80 minutes is like way too much for me to, you know, sit down and watch a particular match.
1: Okay, we'll put a petition at FIFA कि इसको छोटा
3: कम कर दो. But I would say the heartbreaks that people are actually witnessing because I can see it online. कल यार मेरे को बहुत बुरा लगा रोनाल्डो का कुछ फोटोज जो है ये इनके सामने आई है देखकर. It felt so bad. इमेजिन ना कि कितने सालों से मेहनत करते हैं, कितना ट्रेनिंग करते हैं, कितने डिसिप्लिन के साथ ये जीते व्हेन इट कम्स टू देयर हेल्थ. बिकॉज एक एथलीट जो होता है, एक स्पोर्ट्समैन जो होता है, जितना वो हेल्थी रहते हैं और एक एज फैक्टर भी हो जाता है उनके लिए ना, बिकॉज सर्टेन लाइक इफ यू नोटिस अ लॉट ऑफ स्पोर्ट्स पीपल जो स्पोर्ट्समैन जो होते हैं ये बहुत जल्द रिटायर हो जाते हैं. जल्द आई मीन लाइक इफ देयर इन देयर 40s दे रिटायर because of the type of sport they play. फिर कई players होते हैं जिनको injuries भी हो जाती है and those injuries lifelong उनके साथ रहती है. कई सारे players हैं जो field में खेलते खेलते भी like I've seen so many matches जिसके बारे में बातें होती हैं जहाँ पर some amazing players have lost their lives while playing this particular sport they have so much love for. And इतना बड़ा dream जब टूटता है तो कैसा लगता है. It really is heartbreaking. And whoever says कि मर्द को दर्द नहीं होता या फिर जो आदमी है ये रोते नहीं है, you know, these are the moments you see that the passion they have in them, especially for a sport that they play with so much of love, और उसकी वजह से वो कितना respect कमाते पूरी दुनिया भर में. जब एक ऐसा moment आता है कि वो इतने बड़े tournament से बाहर हो जाते हैं या फिर अपना final tournament कहीं ना कहीं खेल रहे थे, because if I'm not mistaken, Neymar has announced his retirement, right? After the match जो उन्होंने ब्राज़ील के लिए खेला था परसों. And this was, if I'm not mistaken, this was the last World Cup jo Cristiano Ronaldo khel rahe the Portugal ke liye. So it's quite heartbreaking. I don't know ki aage chal kar kya hona hai kya nahi. But I don't know, do you share the same emotions jab aap aise matches dekhte hai?
1: Kaise mein ye emotion hota hai, obviously you feel bad for players who do not achieve जो वो अचीव करना चाहते हैं. एक टारगेट शायद उन्होंने उनका अचीव करना बाकी रह गया था, जब वो रह जाता है इस तरह से यू फील बैड फॉर देम, बट दैट्स पार्ट ऑफ लाइफ एंड पार्ट ऑफ द गेम. अब क्या करेंगे ना, आप सब कुछ अचीव नहीं कर सकते. इट्स अ टीम स्पोर्ट एंड द गुड थिंग इज कि इतिहास के पन्नों में हमेशा आपका नाम रहेगा, दैट यू बीन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर्स ऑफ ऑल टाइम. सो दैट्स व्हाट वी हैव टू लिव विद. एंड ऑब्वियसली किसी ने मैसेज किया है, हाँ एक्साइटमेंट में 90 मिनट्स को 80 मिनट्स बोल दिया था आपने ना, फुटबॉल का मैच जो है 90 मिनट्स का होता है, 45 मिनट्स ईच हाफ. खैर और भी कई बातें हैं जो होती रहेंगी इस प्रोग्राम में. राजू अ वेरी गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए.

0: Breakfast Show with Vijay and Pooja.
1: Chubo jao, papi ho. Chubo jao.
0: Rashi Vibes.
2: लो भाई कैसा रहेगा आज का आपका दिन. मेष यानी एरीज, आज पूजा पाठ में मन लगेगा, बिजनेस अच्छा चलेगा, झगड़ा झंझट में ना ही पड़े तो बेहतर होगा. उधार दिया हुआ पैसा जो है कि आपको वापस मिलेगा, इससे आप काफी रिलीव्ड फील करेंगे.
3: इसके बाद वृषणि टॉरस, आज आपके लिए कहा जा रहा है चोट चोरी विवाद आदि इन सारी चीजों से आपका नुकसान हो सकता है, इसीलिए ख्याल रखें, सही फैसले लें और रिस्क से जितना आज दूर रहे उतना आपके लिए अच्छा है. एक और एक खास बात आपको बताई जा रही है आज के दिन की, गलत संगत भी आपके लिए काफी नुकसानदायक है, इसलिए ऐसे लोग जो आपके लिए गलत संगत हो उनसे दूर रहें.
2: मिथुन यानी जेमिनी, आज सरकारी कामों में जो प्रॉब्लम्स थी ये खत्म होंगी, फायदा होगा आपको. गुस्से पर थोड़ा कंट्रोल बनाए रखें तो अच्छा होगा आपके लिए. रुके हुए काम समय पर पूरे होने से आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और फैमिली में कोई प्रॉब्लम थी तो ये भी आज खत्म होगी.
3: करके ने कैंसर, आपके लिए कहा गया है प्रॉपर्टी के मामले में जो भी फैसले आप ले रहे हैं अच्छे फैसले हैं क्योंकि भविष्य में चलकर फाइनेंशियल फायदा आपको जरूर ये दिलाएगा. और साथ में कहा गया है कि कभी कभी ऐसा एक डर रहता है ना कुछ लोगों का, जो कहते हैं शत्रु भय जैसा, कि कुछ लोग हैं जो आपका बुरा चाहते हैं, जो आपके साथ हमेशा गलत सलत करते रहते हैं, तो इनका डर आज कहीं ना कहीं आपके मन में रहेगा और इनसे थोड़ा बचकर आपको रहना है, ऐसा भी आपके लिए बताया गया है. डोंट ट्रस्ट ओवर ट्रस्ट पीपल, ये एक खास सलाह आपको दी जा रही है.
2: सिंह यानी लियो, क्रिएटिव कामों में सक्सेसफुल रहेंगे आज आप, बिजनेस अच्छा चलेगा और साथ ही में फाइनेंशियली दिन बढ़िया रहेगा. इसके अलावा आज ये भी कहा गया है कि कुछ ऐसा काम आप करेंगे जिसकी वजह से आपकी लोकप्रियता काफी बढ़ेगी.
3: इसके बाद देखा जाए कन्या यानी वर्गो, आपके लिए कहा गया एक्साइटमेंट पर कंट्रोल बहुत जरूरी है और कुछ लोग हैं जो आपका बुरा चाहते हैं, थोड़ा बचकर रहे इनसे. आप बुरी खबर मिल सकती है किसी न किसी तरह से, शोक से भरी खबर मिल सकती है आपको, तो आपको इमोशनली एंड मेंटली स्ट्रोंग भी रहना पड़ेगा आज के इस दिन. आज थकान महसूस करेंगे, बिजी दिन रहेगा ना, तो बहुत सारी चीजों के पीछे भागदौड़ लगी रहेगी, बहुत सारी चीजें आप करते रहेंगे एंड यू विल सी कि इतनी ज्यादा थकावट आप महसूस करेंगे इस वजह से.
2: तुला यानी लिब्रा, आज आप बहुत रोमांटिक फील करेंगे, दिन भर एकदम प्यार जो है आपके रोम रोम में बसा रहेगा और मेहनत का पूरा फल बनेगा, मिलेगा, काम बनेगा जिससे आप बहुत खुश होंगे, बिजनेस अच्छा चलेगा और फैमिली एनवायरनमेंट भी आज आपको बहुत अच्छा मिलेगा. बिजनेस के काम से कहीं बाहर जाना पड़ सकता है.
3: और उसके बाद आज वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, आपके लिए कहा गया है कि घर पर मेहमान आएंगे, अच्छा समय बीतेगा इनके साथ, कोई अच्छी बहुत एक्साइटिंग सी खबर भी मिलेगी आपको और आज आपका स्वाभिमान मान सम्मान ये सब बना रहेगा जिसकी वजह से यू फील वेरी सेटिस्फाइड एंड हैप्पी.
2: धनु यानी सेजिटेरियस, बिजनेस ट्रेवल अच्छा जाएगा, कोई गिफ्ट मिल सकता है. एक्साइटेड ना हो बहुत ज्यादा किसी चीज को लेकर, अपने आप को कंट्रोल में रखें और आज दूसरों को हेल्प आउट करने के लिए आप काफी ईगर रहेंगे.
3: एंड मकर यानी कैप्रिकॉन, कीमती चीजों को संभाल कर रखें, ये सलाह आपको दी जा रही है. अननोन लोगों पर विश्वास ना करें या फिर कुछ ऐसे लोग, कुछ ऐसे शख्स जिनसे अभी भी आपकी मुलाकात हुई हो उन पर हद से ज्यादा विश्वास आपके लिए अच्छा नहीं है, ऐसा आपके लिए बताया जा रहा है. आज जो भी कोशिशें आप कर रहे हैं लेजी पने से दूर रहे, अदरवाइज ये कोशिशें ना समय पर होंगी ना ही तो इसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा.
2: उसके बाद कुंभ यानी एक्वेरियस, दिन अच्छा गुजरेगा, बिजनेस ट्रेवल बढ़िया जाएगा, रुका हुआ पैसा मिलेगा, खुशियां होंगी, जल्दबाजी ना करें, आपके जो प्रियजन हैं उनकी मदद से आज आप पूरा का पूरा जो अच्छा रिजल्ट है ये हासिल करेंगे.
3: एंड आखिर में मीन यानी पाइसिस, आपके लिए बताया जा रहा है नए प्लान्स बन रहे हैं, काम करने के तरीके में एक सुधार आप देख रहे हैं, मान सम्मान भी आपको मिलेगा और बिजनेस आपका आज अच्छा चलेगा. सो ये थे आज के आपके राशि वाइब्स, उम्मीद करते हैं दिन सभी का बहुत ही अच्छा बढ़िया और कमाल का गुजरे और इसी उम्मीद के साथ थोड़ी देर बाद लेकर आएंगे आज का हमारा सेलिब्रिटी अलार्म. आज के सेलिब्रिटी की आवाज पहचानने के लिए रहिएगा एकदम तैयार, देखते हैं क्या आप इनको पहचान पाते हैं या नहीं.
0: बॉलीवुड का असली ब्लॉकबस्टर,
4: पूरे शहर पे कब्जा होगा, राज होगा,
0: प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स.
5: वो दिन जब मोहब्बत खत्म में होती थी.

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: Rewind, Sif Rova par.
1: Media Works complaints. How can I help?
2: My kids won't shut up.
1: I'm not sure that's our problem.
2: They keep reciting lines from one of your radio ads.
1: Aw, cute.
2: Yeah, well, it was cute initially, but after 27 times.
3: What do you want, son?
4: I want me some of that real southern chicken.
2: 28 times.
1: So where are you now?
2: Eating chicken.
5: Advertise with
6: Media Works.
5: New Zealand listens to us.
7: A proud member of New Zealand's Master Builder, building high-quality standalone and terraced houses. We're one of the award-winning teams for House of the Year, one of the most trusted and experienced subdivisions and building specialists. We manage from subdivision until the end of CCC. Our customers always recommend us to their closest friends. Call us on 0800-233-111.
8: Indelible Homes, your building expert.
9: Now's the time to book your next tour with House of Travel. Save $500 per couple on Globus small group tours to Japan, Vietnam, South Africa and more. See the very best of every destination without the stress. Talk to our team today, only at House of Travel. TNCs apply.
10: And now the latest in sport. Teams are gearing up this week for $10 deals on Uber Eats. Holy... And now time for a break, I think. Find Ding Dong Deals on Uber Eats.
11: Contact supportive promo not applied. T's and C's and fees apply.
12: And phir Mrs. Singh se maine pucha, enna achha khane ke saath kitchen mein reels aur TikTok kaise bana leti ho? Boli, bas, mera focus hai.
13: Achha?
12: Batao, tuhanda focus focus, saada kuch nahi.
13: Shh, Mrs. Singh.
14: Arre Pammi ji, mera focus means mere ghar ka kitchen, jisko design kiya hai Focus Kitchens ne.
15: Modern classic chic style kitchens, Focus Kitchens, Unit K 33-1. Wansley Road, Otahuhu. Call 0928130500 or visit focuskitchens.co.nz.
16: The Breakfast Show with Weejay and Pooja.
17: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedsarras, Manukau. English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
16: Celebrity Alarm. Hit it.
18: आज का सेलिब्रिटी अलार्म आपके लिए हम लेकर आए हैं. मेरी कोशिश तो भाई यही है कि ऐसी कोई एक आवाज़ एक दिन आए जो आप पहचान ही ना पाओ, और एटलीस्ट एक दो दिन या एक हफ्ते ही सही हम थोड़ा वो आवाज़ जो है ये खींच सके, आपके साथ ये गेम खेल सके जहाँ पर आपको डिफ़िकल्टी हो और हमें मज़ा आ जाए बस. तो आई डोंट नो हाउ इजी और डिफ़िकल्ट दिस विड बी, बिकॉज अगर कुछ लोग हैं जो इनको फॉलो करते हैं वो तो इनकी आवाज़ तुरंत पहचान जाएंगे, पर अगर आप इनको उतना फॉलो नहीं करते हैं पर कहीं देखा हुआ है या थोड़ी जान पहचान के हैं आपके, हो सकता है कि आपको डिफिकल्टी हो इनकी आवाज पहचानने में.
19: तो सबसे पहले आवाज जो है ये आप सुन ले.
20: शाम की फेरे के लिए निकल रहा हूं, वैसे मेरी बेकरी भी है इधर ही, सब मिलता है, अंडा पाव, बनमस्का, एकदम फ्रेश.
19: तो ये बताना है कौन है ये.
18: हाँ, अभी कुछ क्लूज व्लूज नहीं देंगे हम आपको, आपने आवाज सुन ली है, अब आपको बस हमारे पास अपना जो जवाब है ये भेजना है 5599 पर. BF लिखना है सबसे पहले, याद रहे, फिर उसके बाद अपना आंसर और अपना नाम लिखकर 5599 पर हमारे पास आप सेंड कर दीजिए.
19: तो एक बार फिर अच्छी तरह से आवाज सुने.
20: शाम की फेरे के लिए निकल रहा हूँ, वैसे मेरी बेकरी भी है इधर ही, सब मिलता है, अंडा पाव, बनमस्का, एकदम फ्रेश.
19: तो अब कोशिश करें BF अपना आंसर और नाम ये 5599 पर भेजें. आज तो अभी तक एक भी अटेम्प्ट नहीं आया है, आपके जवाबों पर नजर डालेंगे थोड़ी देर बाद.
16: Bollywood's most wanted.
21: गुंडी खड़ गाओ या सीधा अंदर आओ.
22: मैं लाऊं अपना A game.
16: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: News Headlines.
1: सुबह के मुख्य समाचारों में, कोफाई नदी में बाढ़ आने के बाद हुई तबाही की वजह से काइकोरा डिस्ट्रिक्ट में स्टेट ऑफ इमरजेंसी लागू किया गया है। काइकोरा के कुछ इलाकों के लोगों से मांग की गई है कि वो तत्काल अपने घरों से निकलकर ऊंची जगह पर चले जाएं। अभी दो इवैक्यूएशन सेंटर में 150 से ज्यादा लोग जो है ये शरण लिए हुए हैं, और आज भी मालबरा साथ में कैंटरबरी, जिनमें काइकोरा रेंजेस भी शामिल हैं, वहाँ गंभीर बारिश होने की चेतावनी लागू की गई है। इसके अलावा फकताने मेटल्स फेसबुक पेज पर ट्रक ड्राइवर मार्क लो के एक पोस्ट के बाद ये खुलासा हुआ है कि पानी के लीक्स और बिलिंग इश्यूज की वजह से कई लोगों को $500 से लेकर $6,500 तक के भारी भरकम वाटर बिल्स मिले हैं। स्वेन कार्लसन नाम के एक रेसिडेंट ने बताया कि उन्हें एक ओलंपिक साइज्ड स्विमिंग पूल जितने पानी के इस्तेमाल का $6,581 का बिल मिला है, जिससे उन्हें कंप्यूटर सिस्टम या इनवॉइसिंग में गड़बड़ी का शक है। फकताने डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के निक जॉनसन ने कहा है कि पानी के रेट्स कॉम्प्लेक्स होते हैं और उनकी टीम इसकी जांच कर रही है। साथ ही उन्होंने लोगों को मीटर चेक करने और लीक रिपेयर होने पर रिफंड के लिए अप्लाई करने की सलाह दी है। फीफा वर्ल्ड कप के राउंड ऑफ 16 के मैच में आज सुबह अर्जेंटीना की जीत इजिप्ट के खिलाफ 3-2 से हुई, और बस 25 मिनट बाद राउंड ऑफ 16 का जो मैच है ये स्विट्जरलैंड और कोलंबिया के बीच खेला जाएगा, और इस मैच पर भी अपडेट्स आपके लिए हम लेकर आएंगे। ये रहे सुबह के मुख्य समाचार।
0: फुटबॉल अपडेट्स ब्रॉट टू यू बाय PFSL, प्रोवाइडिंग द बेस्ट होम लोन एडवाइस फॉर द लास्ट 20 इयर्स। गूगल PFSL टुडे, अम्मास फूड, 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव, एंड इंडेलिबल होम्स, योर बिल्डिंग एक्सपर्ट्स नोन फॉर सब डिविजन्स। विजिट indelibleholmes.co.nz.
2: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
0: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Manco. English heritage inspired furniture for everyday luxury living. Accurate traffic.
3: IKEA sale is on now.
4: A bit of cloud should stay mainly fine today. 16 hour high. Coming into the city, motorways fairly quick. Northern at 26 minutes. Constellation Drive to the city. It's slow all the way from there to the bridge. A bit of slowness at Silverdale. Northwestern 24 minutes in from Massey. Fine to Point Chev. Slow there to the city. Southern 36 minutes. Manukau to town. It's slow all the way from Papakura. Southwestern a bit slow here and there, but not too bad.
3: Get up to 70% off selected products at ikea.co.nz today.
5: प्रोफेशनल फाइनेंशियल्स है साथ आपके लोन और इंश्योरेंस एक छत के नीचे, नो ब्रोकर चार्ज, बस ट्रस्टेड एडवाइस, हर डील बनाए परफेक्ट राइट।
6: रीफाइनेंस के लिए कंपेयर करें डिफरेंट बैंक्स, लोन प्रोसेस हो सिंपल एंड फ्रैंक।
5: बिजनेस फाइनेंस या इनकम प्रोटेक्शन हो, हर स्टेप पर गाइडेंस परफेक्ट हो, सब कुछ मिलेगा यही, अपना फ्यूचर सिक्योर बनाए।
6: प्रोफेशनल फाइनेंशियल सॉल्यूशंस, योर फ्यूचर आवर प्रायोरिटी। कॉल 09846-9934 फॉर सर्च PFSL. T's and C's, लेंडिंग एंड क्रेडिट क्राइटेरिया अप्लाई।
7: Coffee? The usual?
8: How about the unusual?
9: Can't wait for coffee? Then don't! Turn into Wild Bean Cafe at BP and try our new barista-made hojicha latte. Something a bit different at BP.
10: Reliance Ventilation System.
11: Hi, मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, जैसे की ड्राइंग विंडोज, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है।
10: मॉइस्चर और वेंटिलेशन का प्रॉब्लम लगता है,
11: और पता है मेरे बच्चों को एस्मा और एलर्जी भी हो गई है।
10: दैट्स नॉट गुड। हम आपके सभी प्रॉब्लम्स रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम से सॉल्व कर सकते हैं। इससे आपका घर रहेगा वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर। और हम मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक और तोशिबा हीट पंप्स के ऑथराइज्ड डीलर्स भी हैं।
12: कॉन्टैक्ट रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम ऑन 0800-787-111। रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम्स, सॉल्विंग वेंटिलेशन प्रॉब्लम्स फॉर ओवर 18 years.
13: TradeDepot.co.nz. If you're serious about solar energy, switch on to Trade Depot. They stock the world's leading solar panels, inverters and batteries. Trade Depot specializes in powerful full house solar systems ranging from $10,000 to $20,000. Shop solar at Trade Depot for high quality solar systems with installation available nationwide.
14: TradeDepot.co.nz.
15: The beat of Bollywood.
16: World's best, हमारी कोई ब्रांच नहीं है।
15: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
0: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Manco. English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
15: Birthday.
14: greetings.
17: Iska birthday bhai?
18: Mera bhi birthday hai, chalo line mein aa jao.
19: Happy birthday to you.
1: A very, very happy birthday. सबसे पहले डेविड, आज आपको हम कहना चाहेंगे 11 kisses from Dad Vinesh. भैया प्रीतेश है, बहन देविका है और तमाम जितने भी परिवार वाले हैं सभी आज आपको याद कर रहे हैं. Many, many happy returns of the day.
20: Happy birthday, जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं आपको हमारी ओर से. और इसके अलावा आज अपना बर्थडे जो है ये सेलिब्रेट कर रही हैं या कर रही हैं रदा. हैप्पीएस्ट बर्थडे डियरेस्ट गौरव चाचू, आज आपको ढेर सारा प्यार मिल रहा है. विशिंग यू अ वंडरफुल डे फिल्ड विद हैप्पीनेस लाफ्टर एंड ऑल द लव यू एंड ऑल द लव यू सो जेनरसली शेयर विद एवरीवन अराउंड यू. अयान एंड इवान आर सेंडिंग यू द बिगेस्ट हग्स एंड लॉट्स ऑफ बर्थडे किसेस. मे दिस न्यू ईयर ऑफ योर लाइफ ब्रिंग यू गुड हेल्थ, एंडलेस जॉय, सक्सेस एंड काउंटलेस ब्यूटिफुल मेमोरीज. यू ट्रूली डिजर्व ऑल द हैप्पीनेस इन द वर्ल्ड विद लॉट्स ऑफ लव ऑलवेज. गोविंद, सृष्टि, अयान और इवान की ओर से ये बहुत ही प्यारा सा मैसेज आज गौरव के लिए.
1: इसके अलावा आज एक और मैसेज आया है और इन्होंने कहा, गुड मॉर्निंग विजय एंड पूजा, जस्ट वांटेड टू विश माय सन रिशान हैप्पी 17th बर्थडे. सो रिशान, आज आपके पेरेंट्स की ओर से ये दिन आपको बहुत बहुत बार शुभ और मुबारक हो. अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे. बीस मिनट रह गए हैं अभी 8 बजने में और सबसे पहले तो एक मैसेज जो है ये आया है फ्रांसीना की ओर से. गुड मॉर्निंग पूजा एंड विजय, यस इट वाज डिसअपॉइंटिंग टू सी पोर्चुगल डिन प्रोग्रेस टू द नेक्स्ट स्टेज एंड आई गॉट इमोशनल टू सी क्रिस्टियानो लास्ट टाइम ऑन फीफा ग्राउंड्स. बट एज यू से विजय, ही विल ऑलवेज बी रिमेंबर्ड, ही विल ऑलवेज रिमेंबर्ड टू बी वन ऑफ द बेस्ट. द C7 great fan of FIFA. Francina ka message aaya.
20: Thank you so much Francina, aapke message ke liye bahut bahut shukriya. Waise inhone aaj ke hamare celebrity alarm ke liye bhi apni awaaz jo hai apna jo jawab hai ye bheja hai. Inko lag raha hai ki ye awaaz Farhan Akhtar ki hai. Nitika ne bhi apna jawab jo hai ye bheja hai. Bas do hi logo ne aaj koshish ki hai, kya baat hai. Ek bol rahi hai Farhan Akhtar और दूसरे बोल रहे, दूसरे का जवाब कुछ और ही आया है.
1: okay.
20: तो ये अभी क्या है कि I'm kind of surprised because मैंने कहा था कि डिफिकल्ट होने वाला है, पर कितना डिफिकल्ट होने वाला है ये देखकर मुझे अभी एहसास हो रहा है कि इतना तो नहीं है कि सिर्फ एक दो बंदे को ही जवाब देने का यू नो दिल करे कि यार ये बहुत डिफिकल्ट आवाज है तो चलो ट्राई नहीं करते, ऐसा तो नहीं है.
1: आज आपने दो सवाल पूछे,
20: दोनों में ऐसा रिस्पॉन्स आया. आई एम वेरी बैड एट इट आई गेस, या फिर जिस तरह से मैं सवाल पूछ रही हूँ वो बहुत गलत है, जो सवाल पूछ रही हूँ वो गलत है.
1: अच्छा, आवाज आप आखिरी बार फॉर द फाइनल टाइम ये आवाज आप सुने.
21: शाम की फेरे के लिए निकल रहा हूँ, वैसे मेरी बेकरी भी है इधर ही, सब मिलता है, अंडा पाव, बनमस्का, एकदम फ्रेश.
1: तो कौन है ये अंडा पाव बनमस्का जो है अपनी बेकरी में बेचते हैं?
20: राइट, तो अपने आंसर आप हमारे पास जरूर भेज सकते हैं. और एक मैसेज चलो आया है और इन्होंने कहा है, किनका मैसेज है, कोमल का मैसेज है. इन्होंने कहा है कि द आंसर इज मनोज पावा. सो नो, मनोज पावा की आवाज तो बहुत ही डिस्टिंग्विश्ड है, काफी डिफरेंट है. एंड आई थिंक इफ आई लिसन टू हिज वॉइस आई विल बी वेरी इजीली एबल टू गेस कि ये मनोज पावा है. पर ये मनोज पावा भी नहीं है, कौन है ये? चले आपको थोड़ा सा टाइम और देते हैं, जवाब आप भेज सकते हैं हमारे पास. टू बी प्रिसाइज आपके पास है 5 मिनटों का समय. अगला गाना इज अराउंड दैट टाइम का और फिर उसके बाद अराउंड थ्रोबैक सही जवाब आज का हम बता देंगे हमारे सेलिब्रिटी अलार्म में किसकी आवाज आज आपके लिए हम लेकर आए हैं.
1: बी एफ आंसर और नाम, ये 5599 पर कोई क्लू आपको देना है.
20: क्लू ये कि बहुत कमाल के एक्टर है, फिल्मों में तो काम किया ही इन्होंने, लेकिन टेलीविजन पर इन्होंने बहुत सारा नाम कमाया है. If you have been a television fan, you've seen a lot of television programs, तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपने इनका कोई एक television program देखा ही होगा. और गुजरात के बड़े जाने माने कलाकार है ये.
1: चलो भाई, अब तो ये आसान हो जाना चाहिए. तो बी एफ आंसर और नाम विद इन द नेक्स्ट 5 मिनट्स, देखे कितने लोग कम से कम अटेम्प्ट कर पाते हैं इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए.

0: 8 मिनट रह गए हैं अभी 8 बजने में, 8 मिनटों के बाद न्यूज इन स्पोर्ट्स अपडेट, और 8 मिनटों के बाद जो फाइनल राउंड ऑफ 16 मैच है फीफा वर्ल्ड कप का, ये भी शुरू हो जाएगा बिटवीन स्विट्जरलैंड और कोलंबिया, इस पर भी अपडेट्स हम आपको देंगे।
1: तो इस घंटे जैसे कि हम आपके लिए सेलिब्रिटी अलार्म लेकर आए थे, हमने कहा था कि आप आवाज पहचानिए किसकी है। आई स्टिल कांट फिगर इट आउट कि फरहान अख्तर जैसी आवाज कैसे ज्यादातर लोगों को लग रही, क्योंकि नॉट जस्ट प्रांसीना लेकिन उनके बाद भी कुछ लोगों ने अपने आंसर्स इस फरहान लिखकर भेजा है। अश्नील का भी यही जवाब आया है। प्रतीक गांधी कौशिक ने अपना जवाब भेजा है, स्तुति ने अपना जवाब भेजा है, साथ में ध्रुव ने कहा है मनोज जोशी, और लोकेश का भी आंसर आया है। सो हमने सोचा था कि शायद आज डिफिकल्टी हो किसी न किसी को आवाज पहचानने में, गलत आंसर आते तो भी सही रहता, लेकिन एक भी सही आंसर आ जाता है तो हम वही आवाज कल नहीं लेकर आ पाते हैं आपके लिए। और ऐसा हुआ जहां पर आज एक नहीं लेकिन कई लोगों ने सही तरीके से आवाज जो है पहचानी, क्योंकि ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि देवेंग भोजानी की है। और देवेंग जो कि बहुत ही कमाल के एक्टर है, फिल्मों में इन्होंने काम किया ही है, लेकिन साथ ही साथ जैसे कि मैंने कहा था टेलीविजन में काफी जाने माने नाम है, आई मीन हस्ती है, ये काफी बड़ा नाम है इनका। बहुत से शोज इन्होंने डायरेक्ट भी किए हैं और बहुत से शोज में आइकॉनिक कैरेक्टर्स भी इन्होंने प्ले किए हैं।
0: या और मुझे तो इनका असली नाम वैसे याद नहीं रहता है ऑलवेज, लेकिन मैं गट्टू के नाम से इनको जानता हूँ।
1: आई थिंक दैट वॉज वन ऑफ द मोस्ट लव्ड कैरेक्टर्स जो उन्होंने प्ले किया था, और लोग इनको कहीं ना कहीं उस नाम से अपना चुके हैं। अगर आपने देखी हो इनकी ये सीरीज बाबू।

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: 9 degrees है टेम्परेचर ऑकलैंड में भी आज का हाई 16, ओवरनाइट कम से कम 8 degrees होगा. फाइन डे, सनसेट शाम 5:20 पर आज होगा.
0: द ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा
2: ब्रॉट टू यू बाय फॉर्च्यून विद होल ग्रेन्स एंड एसेंशियल विटामिंस. फॉर्च्यून फ्यूल्स एवरी विन, बिग और स्मॉल, ब्रिंग होम द फॉर्च्यून. एंड हैरिंगटन लिविंग एट बेडजरस मनको, इंग्लिश हेरिटेज इंस्पायर्ड फर्नीचर फॉर एवरीडे लग्जरी लिविंग.
0: The Rush Hour, brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates, Barristers and Solicitors, Papatoy and Hamilton. Trend Patrol.
3: आज जो ट्रेंड पेट्रोल में आपके लिए स्टोरी हम लेकर आए हैं, दिस इज अबाउट समथिंग दैट हैज बीन ट्रेंडिंग क्वाइट अ लॉट. और ये ट्रेंडिंग स्टोरी यहाँ न्यूजीलैंड की नहीं है, इंडिया की नहीं है, लेकिन ये है न्यू जर्सी की. और ये हम इसलिए आपके लिए लेकर आए क्योंकि ये स्टोरी काफ़ी ट्रेंड कर रही है. अमेरिका में शायद ऐसा कुछ पहली बार देखा गया हो, जो कि एक वीडियो के रूप में लोगों के सामने आया और इंटरनेट पर वायरल हो गया. अपेरेंटली न्यू जर्सी में एक नया इंडियन ग्रोसरी स्टोर जो है, इन्होंने अपना ग्रैंड ओपनिंग जो है ये किया. और ऑफ कोर्स एज वी ऑल नो कि जब भी कोई यू नो स्टोर की ग्रैंड ओपनिंग होती है तो ओपनिंग स्पेशल्स बहुत सारे मिलते हैं. और यहाँ पर अनएक्सपेक्टेडली एक मैसिव क्राउड जो है ये आया, बिकॉज दे गॉट क्वाइट अट्रैक्टेड क्योंकि वहाँ पर एक ओपनिंग स्पेशल उनको जो मिल रहा था परवल पर. परवल जो है एक किस्म की सब्जी होती है, इट्स कॉल्ड पॉइंटेड गॉड मेरे ख्याल से.
1: okay.
3: और ये छोटे छोटे लाइक इट्स वेरी टाइनी सब्जी, देखने में आई थिंक ये क्यूकम्बर जैसा होता है छोटा सा.
1: अच्छा.
3: उसमें से वाइट वाइट लाइंस भी होते हैं, ग्रीन कलर का होता है ये, तो परवल की सब्जी.
1: नाउ आई नो,
3: राइट, पॉइंटेड गॉड इसे कहते हैं. और इट वाज गोइंग फॉर $1.99 किलो, इतना स्पेशल पे ये जा रहा था. सो इट वाज बेसिकली अ डीपली डिस्काउंटेड प्राइस जिसने हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ शॉपर्स को अट्रैक्ट किया, जिसकी वजह से ओवर क्राउडिंग हुई, एक कैओटिक सीन सामने आया, कस्टमर्स रश्ड टू ग्रैब द लिमिटेड स्टॉक जो इस वेजिटेबल का वहां पर मिल रहा था. और ये जो कंटेंट है इसे शूट किया गया, इंटरनेट पर डाला गया और इसको टाइटल दिया गया कि दिस इज नो आईफोन लॉन्च अमेरिका हैज एवर सीन.
1: वाओ, अमेजिंग.
3: परवल की सब्जी डिस्काउंटेड प्राइस में देखने के बाद एक ब्रांड न्यू इंडियन ग्रोसरी स्टोर के ओपनिंग के दौरान लोगों ने ऐसी लूट मारी की कि वो वीडियो ही वायरल हो गया और फिलहाल इंटरनेट पर ट्रेंड कर रहा है. परवल की सब्जी, परवल इज बेसिकली ट्रेंडिंग ऑनलाइन राइट नाउ.
1: ओके, आपने कभी खाया है परवल?
3: आई डोंट नो बट मैंने इसको देखा, मेरे को ऐसे दिखा सा बहुत लगा, ऐसे फेमिलियर से सब्जी लगी मेरे को ये, बट आई डोंट नो कि मैंने खाया या नहीं. खुद तो बना के कभी नहीं खाया, इतना मैं कह सकती हूँ.
1: अच्छा, लेट मी सी द फोटो, परवल दिखने में कैसा लगता है.
3: हाँ, तो आपको आसानी होगी.
1: इट लुक्स लाइक टिंडोरा ना.
3: टिंडोरा?
1: हाँ.
3: टिंडोरा क्या होता है?
1: कुंदरू.
3: ओ अच्छा, वैसा है ये.
1: हाँ, दिखने में वैसा लग रहा है. ओनली थिंग इस पे स्ट्राइप्स है थोड़े तरबूज जैसे.
3: हाँ, वही भी बोल रही हूँ, स्ट्राइप्स है वाइट कलर के. सो टिंडोरा यार, क्या इंटरेस्टिंग नाम है ना सब्जियों की भी, क्या कमाल के नाम होते हैं. कद्दू और लौकी, मेरे को सबसे इंटरेस्टिंग ये वो क्या बोलते हैं, गवार की सब्जी, गवार फली बोलते हैं ना. एक तो गवार फली होती है, एक तो गवार होती है.
1: अच्छा, दो अलग अलग चीजें हैं.
3: आई थिंक वही सेम चीज है, इट्स नॉट डिफरेंट. कई लोग उसको गवार की फली भी बोलते हैं, कई लोग गवार भी बोलते हैं. मेरे को इतना वियर्ड लगता है सब्जी का नाम, इसको गवार की बोला जाता है. आई डोंट रियली नो, या गुआर बोलते होंगे शायद, प्रोनाउंसिएशन पे भी डिपेंड करता है. बट गुआर का गवार भी कर देते हैं कई बार कई लोग. बट सबसे इंटरेस्टिंग नाम की सब्जी की आपने जो सुनी हो, आपको क्या लगा है?
1: चलो इसके बारे में आज टॉपिक जो व्हाट्स योर टेक है वो थोड़ा चेंज कर देते हैं,
3: ये करेंगे हम.
1: हाँ, इसके खाने के बारे में
3: कोई नहीं कुछ बोलेगा, ट्रस्ट मी. मैंने सुबह से कोशिश कर ली है, दो सवाल किए, 6 से 7 बजे के बीच, 7 से 8 बजे के बीच. अभी मेरी बात पे ये टॉपिक ऑफ द डे आप रखोगे, इस पे भी किसी का कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा.
1: नहीं आएगा, आएगा क्योंकि आई एम इंटरेस्टेड.
3: देख लेना आप, देख लेना.
1: हाँ, देख लेंगे, देख लेंगे. मुझे तो अवतार फिल्म का गाना याद आ गया, देख लेना.
3: मैं गाना नहीं गा रही थी, मैं आपको बता रही थी कि देख लेना किसी का इंटरेस्ट नहीं आएगा, बट नेवरदलेस चलिए आगे बढ़ते हैं रश आवर पर। 7 मिनट हो रहे हैं 8 बजकर फिलहाल, आज है वेंसडे 8th of July, और आपको याद दिला दे काफी चीजें हमारे आसपास हमारी कम्युनिटी में भी हो रही है जो अगले घंटे व्हाट्सएप ऑकलैंड में आपके लिए हम लेकर आएंगे जरूर। और इसके अलावा इनाम जीतने के बहुत से मौके हमारे साथ आपको मिल रहे हैं, तो ये अपॉर्चुनिटी आपको हम देंगे एक डबल पास जो है ये जीतने का, किस चीज के लिए और कैसे आप ये जीत सकते हैं जानने के लिए सुनते रहिएगा हम पर द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा। और शुरुआत कर रहे हैं इस घंटे की बेबी डू डाई डू, इसके बारे में आज सुबह आपने बातें की थी ना,
4: हाँ।
3: तो उसी फिल्म में इस गाने को रिक्रिएट किया गया है।
4: यार मुझे इतनी खुजली हो रही है कि बता दूं कि क्या है बेबी डू डाई डू, लेकिन नहीं ऐसा कर नहीं सकते ना।
3: नहीं आप नहीं बता सकते, आपको गालियां पड़ेंगी।
4: हाँ, बता नहीं सकते।
3: तो आज हम आपको बता रहे हैं या सुना रहे हैं बेबी डू डाई डू का वो एक लौता गाना जो हमारे हाथ लगाए कि ये रिलीज हुई है। और ऐसे में आपको ये भी हम बता दें कि ये जो फिल्म है इसका ये गाना जो है इट्स नॉट द ओरिजिनल सॉन्ग, इसे रिक्रिएट किया गया है। शक्ति द पावा ये एक फिल्म आई थी जिसमें काम किया था करिश्मा कपूर ने, संजय कपूर और मेरे ख्याल से नाना पाटेकर थे इस फिल्म में, देयर वाज क्या नाम है उनका, शाहरुख खान भी थे एक छोटे से रोल में। और ये गाना शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय पर पिक्चराइज किया गया था। ऐश्वर्या राय केम मतलब शी वाज सीन इन दिस मूवी ओनली इन दिस पर्टिकुलर सॉन्ग। तो इस गाने को रिक्रिएट किया गया है बेबी डू डाई डू के लिए, और ये रिक्रिएटेड वर्जन आज आपके लिए ऑन द ब्रेकफास्ट शो हम लेकर आ रहे हैं। अलका याग्निक और सोनू निगम की तो आवाजें हैं ही, लेकिन लीजो जॉर्ज कासा और DMC को भी आप इस गाने में सुन सकते हैं।
5: कत्ल करती हैं निगाहें कि दिल को खबर ना हो, जख्म देती है ऐसा कि दर्द का असर ना हो। हमने समझा था इश्क मोहब्बत को ही ख्याले दिल, लगता है डर बस इतना वो मेरा आम शक्ल ना हो।

0: Soldier.
1: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन।
2: फ्यूल के दाम रोज बढ़ रहे हैं और स्मार्ट ड्राइवर्स अब स्विच कर रहे हैं। फ्यूचर है एफिशिएंट ड्राइविंग का और वेसिटी ओमोडा जेकू के साथ ये शिफ्ट और भी इजी हो जाता है। इंट्रोड्यूसिंग द पावरफुल J7 सुपर हाइब्रिड सिस्टम, परफॉर्मेंस भी, एफिशिएंसी भी, और ऑल इलेक्ट्रिक J5 EV, जीरो इमिशंस, मैक्सिमम सेविंग्स। आज ही वेसिटी ऑटो ग्रुप पहुंचे और जिमी टेलर और उनके एक्सपर्ट टीम से मिले। फॉर मोर इन्फो विजिट vesityautogroup.nz और सर्च फॉर वेसिटी ऑटो ग्रुप ऑन सोशल।
3: Smart Pay is now Shift 4 Dakota NZ Global Commerce Local Service.
4: Running a business keeps you busy enough. Managing your payments should be the easy part. Shift 4 is here to help with friendly 24/7 local support. Plus, their simple merchant dashboard lets you see your daily sales and more at a glance. So, make the shift today.
3: Shift 4
5: Proud member of New Zealand's Master Builder, building high-quality standalone and terraced houses. We're one of the award-winning teams for House of the Year, one of the most trusted and experienced subdivisions and building specialists. We manage from subdivision until the end of CCC. Our customers always recommend us to their closest friends. Call us on 0800-233-111.
6: Indelible Homes, your building expert.
7: Indelible Homes.
8: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
9: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Manco. English heritage-inspired furniture for everyday luxury living.
10: The Rush Hour. Brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates, Barristers and Solicitors, Papatoy and Hamilton.
11: What's your take?
12: 18 मिनट हो रहे हैं 8:00 व्हाट्स योर टेक का टाइम अब हो चुका है और आज खाने पीने के बारे में हम बातें करने जा रहे हैं। वी हैव चेंज्ड आवर टॉपिक टू कीप इट अ बिट लाइट टुडे। वैसे काफ़ी भारी भरकम टॉपिक था तो उसे चेंज कर दिया हमने। आज ट्रेंड पेट्रोल में जो बातें आपने की उसके बाद तो हमने सोचा चलो पूछें आपसे कि व्हाट आर द वेजिटेबल्स जो नॉट एवरीडे वेजिटेबल्स रेडली अवेलेबल होते हैं न्यूजीलैंड में जो आपने ट्राई आउट किया है या नए किस्म की सब्जी जो आपने खाई पहले आपने नहीं खाया था यहाँ आने के बाद चाहे वो इम्पोर्टेड हो फ्रॉम इंडिया या किसी अन्य पार्ट ऑफ द वर्ल्ड या फिर फ्रॉम फिजी या एनी साउथ पैसिफिक कंट्री कहीं से भी आपने कुछ नया वेजिटेबल जो है ये ट्राई किया हो कोई नई सब्जी या जो है ये आपने ट्राई की हो या जैसे आप बता रही थी किस चीज़ के बारे में
13: गुवार के बारे में
12: किसी ने कहा इट इज जवार
13: और जवार बोलते हैं उसको
12: पता नहीं मुझे नहीं पता जवार बोलते हैं क्या बोलते हैं वो तो मुझे पता नहीं
13: तो उसका जो जवार का जो आटा बनता है ना
12: हो सकता है क्योंकि हम बातें कर रहे थे परवल के बारे में ना कि परवल भी एक तरह की सब्जी है या फिर ऐसी कोई सब्जी जो आपने यहाँ मे बी इंडियन सुपरमार्केट्स में देखी है लेकिन कभी ट्राई नहीं किया वो आज हम आपसे जानना चाहते हैं तो सबसे पहले आपका स्वागत है गुड मॉर्निंग हेलो
14: गुड मॉर्निंग विजय गुड मॉर्निंग पूजा हाउ आर यू
13: बढ़िया जी आप कैसी हो
14: बिल्कुल ठीक एक सब्जी है जो मेरे घर में सबको पसंद है मुझे नहीं पसंद
12: हाँ.
14: वो उसको कहते हैं टिंडा
13: टिंडा
14: गॉड कहते हैं
13: ओके
14: वो फ्रोजन मिलता है यहाँ पे इंडियन स्टोर्स पे पर फ्रेश नहीं मिलता
12: टिंडा
13: मैंने खाया है
14: और जो फ्रोजन होता है ना वो कटा हुआ होता है पीसेस में छोटा छोटा तो बाय द टाइम आप उसको बनाएंगे तो वो बिल्कुल इट बिकम्स लाइक हलवा बॉयल होकर और जो एक्चुअल वो टिंडा जो होता है फ्रेश वो सर्कल में ही रहता है आप उसको काटो उबालो मसाला जैसे भी करो वो हमेशा सर्कल ही रहेगा वो सॉफ्ट हो जाएगा पर वो कभी मैश नहीं होगा.
12: Okay,
14: तो वो यहाँ कहीं नहीं मिलता,
13: फ्रेश
14: कभी
13: वाला
14: भी नहीं मैंने देखा. फ्रेश तो बिल्कुल नहीं दिखा. हाँ जी, फ्रोजन मिल जाता है,
13: फ्रोजन
14: कटा हुआ, बट नॉट फ्रेश.
12: वो मेरे
14: घर में सबको पसंद है,
13: बस आपको नहीं पसंद है.
12: आपको क्यों नहीं पसंद है? ऐसी क्या चीज है? हमने तो, मैंने तो कभी देखा है.
14: मुझे उसका कंसिस्टेंसी नहीं पसंद है, जो टंग पे उसका जो टेक्सचर आता है
13: वो नहीं पसंद
14: है, क्योंकि मसाला होता है. तो वो जो टेस्ट, वो तो टंग पे उसका कंसिस्टेंसी लगता है ना खाते हुए, वो नहीं अच्छा लगता, ये मुझे पसंद नहीं है.
13: आपका नाम क्या है भाई?
14: मेघा.
13: थैंक यू सो मच मेघा.
12: अरे रुक जाओ मेघा, आपने परवल खाया कभी?
14: हाँ जी, परवल खाया है.
13: कैसा लगता है आपको
14: परवल? वो मुझे अच्छा लगता है, मसालेदार, सूखा सूखा, काट के पीसेस में, और उसको अचार की तरह खाओ रोटी के साथ.
13: इसके
14: अगर सब्जी नहीं हो तो अचार का, परवल का अचार.
13: इसी परवल के अंदर वैसे ऐसे मसाले भर कर भी बनाए जाते हैं ना, भरवा परवल क्या बोलते हैं?
14: वो तो मुझे नहीं पता, मैं पता करवा सकती हूँ.
12: आप,
14: लेकिन मुझे उसका अचार अच्छा लगता.
12: न्यूजीलैंड आने के बाद कोई नई सब्जी आपने ट्राई की? कुछ नया आपने खाया जो
14: नई सब्जी?
12: हाँ
14: नहीं, ऐसी कोई नई सब्जी नहीं.
12: सब कुछ पहले से खाया हुआ था,
14: वही सब्जी. हाँ, मैं बहुत पिकी ईटर हूँ एक्चुअली में.
12: Okay.
14: तो मुझे अपना वही पसंद है जो खाया हुआ है. नया मैं कुछ ट्राई नहीं, मैंने नए क्विजींस ट्राई करे हैं, वियतनामीज, ताइवानीज, जापानीज, पर ऐसा कोई एक सब्जी नहीं है जो मैंने नहीं खाया था, और वो यहीं पे मिलता है. क्योंकि यहाँ पे सब्जियाँ जो भी आती है वो बाहर से ही आती हैं.
12: आपने
14: यहाँ पे कोई ऐसी होमग्रोन?
12: आपने कभी दरुका खाया है?
14: नहीं, मैंने तारो खाया है.
12: तारो खाया?
14: मैंने कभी नहीं खाया था.
12: अच्छा,
14: तारो खाया?
13: हाँ,
14: तारो
13: नहीं खाया आपने कभी?
12: हाँ, ये ट्राई किया.
13: खाई आपने? ओके.
12: अच्छा, आप
13: ब्रेडफ्रूट ट्राई किया कभी? ऊतो बोलते हैं उसको हम, उसकी सब्जी खाई कभी?
14: नहीं.
12: ओके,
13: दरुका
14: मैं बहुत पिकी ईटर हूं.
13: सुन लो ट्राई करना दरुका की सब्जी और ब्रेडफ्रूट की सब्जी, और साथ में क्या बोला था आपने, डालो तो इन्होंने खा लिया ना, ऑलरेडी ट्राई किया है. तो ये दरुका और साथ में बीटरूट का रायता खाया है, बीटरूट का अचार खाया है, आज तक सब्जी नहीं खाई है.
14: बीटरूट की सब्जी भी बनती है, और बीटरूट को ना हम पंजाबियों में कांजी भी कहते हैं, एक ड्रिंक को गर्मियों में बनती है, विच इज मेनली रेड कैरेट, और उसमें आप नमक, मिर्च, राई, और आप मसाले डाल के उसको 2-3 दिन रखो, वो फर्मेंट हो जाती है. और वो रेड कलर का ड्रिंक बनता है, और उसमें आप अपने हिसाब से आप मिर्च वगैरह मसाला डाल सकते हो जो डालना है. पर वो ड्रिंक बन जाता है, उसमें बीटरूट भी जाता है रंग के लिए, जस्ट फॉर द कलर, पर वो बनती रेड कैरेट से है.
12: Interesting.
14: और वो फर्मेंट होती है 2-3 दिन.
13: गुड फॉर योर गट ना?
14: गुड फॉर योर गट, वेरी गुड फॉर योर गट.
13: थैंक यू मेघा, थैंक यू सो मच आपके कॉल के लिए.
14: थैंक यू.
12: कुछ मेगा ने हमको सिखाया, कुछ हमने मेगा को सिखा दिया. सुबह सुबह नव ने कहा है, मॉर्निंग येस आई हैव बट डू नॉट नो द नेम, द फ्लावर ऑफ बनाना दैट इज पर्पल इन कलर.
13: हाँ, इसकी सब्जी बनती है, मैंने किसी को बताया था उस दिन. ये केले का पेड़ ना बहुत यूजफुल होता है, उसके पत्तों को इस्तेमाल किया जाता है खाना खाने के लिए, फलों को इस्तेमाल किया जाता है, बनाना जो बेसिकली होता है वो हम खाते हैं, और फिर साथ में उसके जो फूल होते हैं उसकी सब्जी बनती है, और फिर उसका जो पूरा स्टेम्प होता है जो केले का पेड़ का.
12: हाँ.
13: उसके अंदर का भी जो हिस्सा, उसको सेको बोलते हैं ना मेरे ख्याल से.
12: नहीं, उसको सेको नहीं बोलते.
13: तो किसको बोलते?
12: सेको का पेड़ तो डिफरेंट होता है ना,
13: बट जो स्टेम्प होता है उसके अंदर का भी, वो काट कर उसकी भी सब्जी बनती है.
12: अच्छा, मुझे नहीं पता थी ये बात,
13: मैंने खाई है, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग. अच्छा, जो जो किसी ने जवार लिख कर भेजा था ना, इट इज जवार, उन्होंने मैसेज किया था. इनका मैसेज कहाँ गया यार?
12: अरे वही है, टेक्स्ट प्लेटफॉर्म पे.
13: तो जवार इज बेसिकली अ टाइप ऑफ अ मिलेट, वो उसको पीस कर उसका आटा बनता है, जवार की रोटी बेसिकली जिसे बोलते हैं वो बनता है, उसकी रोटी बनती है आटे का. और ग्वार जो है ये डिफरेंट है, ग्वार इज लाइक अ सब्जी, इट्स लाइक अ बहुत पतला पतला बीन जैसा दिखता है वो.
12: अच्छा,
13: तो वो है. और अनदर थिंग जो आई थिंक मैंने ट्राई किया है एंड आई लाइक दैट, नॉट अ वेरी बिग फैन बट आई लाइक दैट, टिंडोरा.
12: टिंडोरा क्या?
13: टिंडोरा भी परवल जैसा दिखता है बट परवल थोड़ी मोटी होती है, टिंडोरा थोड़ा पतला होता है.
12: हाँ तो वो टिंडोरा ही तो कुंदरू है ना.
13: Oh, is it? हाँ वही मैंने बोला कि आई ट्राइड इट बट नॉट आई एम नॉट उतना बड़ा फैन नहीं हूँ मैं इसका. ये सारे ये टिंडोरा ये क्या ये मेघा ने भी बताया था टिंडा ये सारी जो है ना एंड लौकी दीज बिलोंग टू द सेम फैमिली आई थिंक ये एक जैसे ही होते हैं.
12: ओके तो आपने भी कुछ कोई ऐसी सब्जी जो रेडिली अवेलेबल न्यूजीलैंड में उगाई नहीं जाती या इंपोर्ट करके या फिर आपने यहाँ इंडियन सुपरमार्केट से लेकर कुछ नई सब्जी जो है ये ट्राई किया है यू नो चाहे अब लौकी को यू नो कुछ लोग इंडियन मैरो भी कहते हैं और साथ में ये तुरई कुछ लोग तो इसे देखना भी नहीं चाहते करेले होते हैं स्नैक बीन्स होते हैं पापड़ी आपने खाया कभी पापड़ी खाई
13: और खाई बैगन और मसाले में बना हुआ खाया खुद नहीं बनाया है किसी ने बना के खिलाया था तो खाई थी.
12: और काउपीस जो है उसको कुछ और बोलते हैं ना इंडिया में
13: हम तो बोड़ा बोलते हैं उसको.
12: हाँ, उसको कुछ
13: चावली बोलते मेरे ख्याल से. हाँ, चावली दाना और समथिंग
12: और उसके अलावा अरहर जो है.
13: हाँ,
12: ये भी एक
13: तुवर बोलते हैं उसको.
12: हाँ, ऐसी अलग अलग सब्जियां और जैसे कि ये परवल टिंडोरा टिंडा और एक और सब्जी है जिसका नाम मैंने फिल्मों में सुना था मुझे भी याद नहीं आ रहा है.
13: हाँ,
12: तो वो सब तो मैंने नहीं ट्राई किया है.
13: आई ट्राइड कैप्सिकम जिसे बेल पेपर्स बोलते हैं ना.
12: हाँ,
13: उसकी सब्जी खाई मैंने.
12: अच्छा,
13: जस्ट बेल पेपर इमेजिन उसकी भी सब्जी. आई मीन आई नो उसको जैसे हम जो इंडो चाइनीज डिशेस होते हैं उसमें डालते हैं और स्टफ्ड बेल पेपर्स भी बनता है ना उसको रोस्ट किया जाता है उसको स्टफ करके पर सब्जी मैंने कभी नहीं खाई थी तो मैंने उसकी सब्जी खाई एंड इट वाज क्वाइट नाइस अच्छी लगी थी मुझे.
12: तो आपको भी किसी एक सब्जी के बारे में पता है तो 5599 पर आप टेक्स्ट हमें जरूर कर सकते हैं.
0: सीधा अंदर आऊं मैं लाऊं अपना ए गेम.
7: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: Show with Vijay and Pooja.
1: Chubo jao, papio. Chubo jao.
2: Accurate traffic.
3: Unwrap huge savings at Carpetcourt's birthday celebration sale.
4: Fine today, plenty of sun, got a high of 16 degrees. Motorways fairly good into the city. Northern 25 minutes, Constellation Drive to town. Slow from there, heavy at Takapuna. Northwestern 28 minutes in from Massey. Finer Point Chev, slow there to the city, a little heavy. Southern 41 minutes in from Manukau. Slow from Wataru, heavy a lot of the way. Slow northbound on the southwestern through Whitty. Not too bad the other way.
3: Get free installation and free underlay on selected Rhino carpet. Visit Carpet Court today.
5: At Bunnings, you can make cleaning up your home easy with Sally's 750ml Rapid Mold Killer, only $9.90, or an all-set 50 litre clear storage container, just $8.99. Bunnings makes cleaning easy. Lowest prices are just the beginning.
6: Karan Aujla brings his P-pop culture world tour to New Zealand. Auckland, Spark Arena, this August. Tickets at livenation.co.nz. Don't miss Karan Aujla live.
7: Hey, the boss shouted us coffees this morning from BP.
8: No way.
9: We in trouble?
7: Nah, it's BP Plus.
9: What is that?
7: A fuel card that saves a business on BP fuel. Plus, we get free coffees.
10: Sweet. Fuel you and your crew with 14 cents off every litre of eligible fuel for 6 months, plus 25 free Wild Bean Cafe coffees through BP Me. Apply for a BP Plus fuel card today at bp.co.nz. T's and C's apply. New customers only for a limited time.
11: Welcome to Kebab's Kitchen. I am Chef Alex and this is my guest, Sarah.
12: बनाते हैं कबाब को स्पेशल शेफ एलेक्स
11: परफेक्ट ब्लेंड ऑफ स्पाइसेस टेंडर मीट और फ्रेश वेजिटेबल्स हर कबाब बनता है विद लव एंड पैशन
12: वाओ दीस कबाब्स आर अमेजिंग स्पाइसेस एकदम राइट एंड मीट इज सो ज्यूसी
11: ये है अम्मास कबाब्स प्रॉमिस डिलीवरिंग हैप्पीनेस बाइट बाय बाइट अम्मास फूड एट योर नियरेस्ट इंडियन ग्रोसरी और हलाल बुचरी स्टोर्स
13: 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव
14: Trade Depot brings you Midea, the world's number one air conditioning company. Introducing the Midea Inverter Heat Pump. It looks elegant and sophisticated, features innovative smart technology, and superb energy efficiency. Shop now for your Midea Inverter Heat Pump, including installation anywhere in New Zealand, from only $1,299 with Trade Depot. T's and C's apply.
0: TradeDepot.co.nz. The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
15: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras, Manukau. English heritage-inspired furniture for everyday luxury living.
0: The Rush Hour. Brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates, Barristers and Solicitors, Papatoy and Hamilton.
16: 22 मिनट रह गए हैं अभी 9 बजने में और अपने चुटकुले आप तैयार रखिएगा क्योंकि थोड़ी देर बाद आपको हम मौका देंगे इस प्रोग्राम में जब आप द ग्रेट कॉमेडी नाइट जो 18th ऑफ जुलाई को होने जा रहा है विक्ट्री कॉन्वेंशन सेंटर में ट्राइविजन इवेंट्स की पेशकश उसके लिए एक डबल पास जो है ये जीत सकेंगे
17: बिल्कुल और आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप इसमें शामिल होते हुए एंजॉय कर सके एक हिलेरियस नाइट क्योंकि एक नहीं बल्कि दो कमाल के कलाकार आ रहे हैं आपको एंटरटेन करने के लिए एक और कृष्णा अभिषेक का जादू तो वहीं दूसरी ओर राजीव ठाकुर का कमाल का कॉमिक टाइमिंग आप एंजॉय कर सकेंगे लाइव ऑन स्टेज क्योंकि डबल द कॉमेडियंस मतलब डबल द लाफ्टर एंड इट्स ऑल हैपनिंग ऑन द 18th ऑफ जुलाई यानी कि नेक्स्ट वीक ये होने जा रहा है आज 8th ऑफ जुलाई है अभी से बस 10 दिनों में 18th ऑफ जुलाई सैटरडे को है और आपको मौका मिलेगा कि आप इनको लाइव ऑन स्टेज परफॉर्म करता हुआ जबकि देख सके वीआईपी टिकट्स काफ़ी नहीं बल्कि सभी बिक चुके हैं सोल्ड आउट हो चुका है वीआईपी टिकट्स और दूसरी ओर इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन जो डिस्काउंटेड प्राइसेस टिकट्स थे ये भी अब बिक चुके हैं अब नॉर्मल प्राइस के टिकट्स ही अवेलेबल हैं जो कि आप bookmyevent.co.nz से ले सकते हैं और bookmyevent.co.nz पर जब आप टिकट बुक कर रहे हो कोई भी डिफ़िकल्टी हो टिकट लेने में तो आप ज़रूर संपर्क कर सकते हैं जो प्रमोटर हैं इनको और इनको कॉल करते हुए आप यू नो क्लेरिफाई कर सकते हैं कि कैसे टिकट्स जो है ये आप ग्रैब कर सकते हैं और दूसरी ओर आपको ये भी हम याद दिला दें कि जब आप टिकट्स लेते हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि यार टिकट्स आर समथिंग जो हम बल्क में ले रहे हैं तो इतना सारा पैसा एक साथ नहीं जाए तो अच्छा हो तो आप आफ्टर पे से भी टिकट्स जो है ये ग्रैब कर सकते हैं ये अपॉर्चुनिटी भी है अब आपके पास आफ्टर पे आपके लिए अवेलेबल है और आफ्टर पे पर भी जाकर आप टिकट जो है ये जरूर ग्रैब कर सकते हैं फॉर दिस अमेजिंग अमेजिंग कॉमेडी नाइट, द ग्रेट कॉमेडी नाइट जो कि ट्राइविजन इवेंट्स आपके लिए लेकर आ रहे हैं।
16: तो एक छोटा सा ही चुटकुला, फैमिली फ्रेंडली यू नो क्लीन जोक जो है ये आपको सुनाना है और एक डबल पास जो है ये आप जीत सकते हैं टू गो एंड वॉच द ग्रेट कॉमेडी नाइट। जैसे ही हम आपको मौका दे आपको कॉल करना होगा टू पार्टिसिपेट इन द कॉम्पिटिशन। इन द मीन टाइम मैंने बोला था कि मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंट्रीज के बारे में आपको बताएंगे, तो एक लिस्ट जो है US न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट द्वारा पब्लिश किया गया है ऑफ सम ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंट्रीज इन द वर्ल्ड, और इनमें टॉप 16 कंट्रीज का नाम मैं आपको बताऊंगा। नंबर 16 पर मालूम है कौन सी कंट्री है?
17: नहीं।
16: इंडिया।
17: ओह ओके।
16: यस, नंबर 16 पर इंडिया है, और उसके बाद टॉप 10 कंट्रीज को अगर देखें, नंबर 10 कनाडा,
17: ओके,
16: नंबर 9 चाइना, नंबर 8 स्विट्जरलैंड,
17: okay,
16: नंबर 7 स्वीडन, नंबर 6 नेदरलैंड्स, नंबर 5 जापान, नंबर 4 फ्रांस, नंबर 3 जर्मनी। नंबर 2 पर कौन सी कंट्री होगी?
17: नंबर 2 पर
16: हाँ
17: मोस्ट इन्फ्लुएंशियल ना,
16: हाँ
17: कुड इट बी, मैंने किसी एशियन कंट्री का नाम, आई मीन अपार्ट फ्रॉम इंडिया,
16: चाइना है नंबर 9 पर,
17: और चाइना था नंबर 9 पर,
16: जापान है नंबर 5 पर,
17: ओके एक मिनट, नंबर 2 पर, कुड इट बी यूएसए, आई डोंट नो,
16: इट्स नॉट यूएसए, इट्स यूनाइटेड किंगडम,
17: अच्छा यूके,
16: यूनाइटेड किंगडम। अब आपको अनुमान लगाना है
17: नंबर 1 पर
16: कौन सी कंट्री है, या देयर आर सम वेरी पावरफुल कंट्रीज जो अभी भी इस लिस्ट में शामिल नहीं हुई है, उनमें से कौन सी ये कंट्री हो सकती है?
17: ओके,
16: तो BF अपना आंसर और नाम 5599 पर आप हमें भेज सकते हैं।

0: Breakfast Show with Vijay and Pooja.
1: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Manco. English heritage-inspired furniture for everyday luxury living.
0: The Rush Hour. Brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates, Barristers and Solicitors, Papatoy and Hamilton. Throwback.
1: Football updates brought to you by PFSL, providing the best home loan advice for the last 20 years. Google PFSL today. Amma's Food, 100% authentic and pure as mother's love. And Indelible Homes, your building experts known for subdivisions. Visit indelibleHomes.co.nz.
2: 10 मिनट रह गए हैं अभी 9 बजने में और जो राउंड ऑफ 16 का आखिरी मैच फिलहाल खेला जा रहा है फीफा वर्ल्ड कप में बिटवीन स्विट्जरलैंड एंड कोलंबिया. फर्स्ट हाफ का मैच पूरा हो चुका है और दोनों टीमें अभी नील ओल से बराबर हैं. जो भी टीम जीतेगी उसका मुकाबला संडे को आखिरी क्वार्टर फाइनल में अर्जेंटीना के खिलाफ होने जा रहा है. द रेस्ट ऑफ द क्वार्टर फाइनल्स इन पर अपडेट्स जो है 9 बजे के बाद हम आपको देंगे.
3: तो इसके लिए आप भी तैयार रहिएगा. पर फिलहाल आपने क्वेश्चन पूछा था, द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंट्रीज की एक लिस्ट आपने शेयर की और आपने शुरुआत किया विद इंडिया बीइंग ऑन द 16th पोजीशन इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, राइट?
2: या
3: फिर उसके बाद आपने लिस्ट जो है पूरा शेयर किया ऑफ सर्टेन कंट्रीज ऑन द लिस्ट. नंबर 2 पर यूके था, नंबर 1 पर कौन सी कंट्री है ये आपने पूछा. तो नव ने पुकेकोहे से अपना जवाब दिया है और एश ने वेलिंगटन से अपना जवाब दिया है और दोनों का एक ही जवाब है.
2: दोनों ने कहा है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड दैट इज द करेक्ट आंसर.
3: अच्छा, तो मैंने नंबर 1 वाला आंसर नंबर 2 पे बता दिया था.
2: यस,
3: सो यूएसए इज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंट्री इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर लिस्ट राइट नाउ.
2: जी बिल्कुल,
3: वेरी इंटरेस्टिंग. अच्छा, बिफोर वी मूव ऑन, एक और एक बहुत ही कमाल की खबर, एंड दिस इज अबाउट अ 17 ईयर ओल्ड बॉय रिकी. आसाम के जोरहट डिस्ट्रिक्ट के है ये और ये फिलहाल ट्रेवल कर रहे हैं इंडिया, अक्रॉस इंडिया ऑन अ बाइसिकल अकंपनीड बाय हिज डॉग जिनका नाम है पा. और अच्छा, आसाम से केदारनाथ ये जा रहे हैं. 17 साल के ये हैं और इनके बारे में कहा गया कि इनको रिसेंटली दिल्ली मीरठ एक्सप्रेस वे पर स्पॉट किया गया और रिकी जो है ये अपनी जर्नी से अब वापसी कर रहे थे और केदारनाथ से ये वापस अपने घर की ओर जो है ये बढ़ रहे थे जब ये जर्नी इन्होंने शुरुआत जो है इसकी की थी. तो रिकी ने बताया कि इस साइकिलिंग ट्रिप की शुरुआत जब इन्होंने की तो ट्रेवल करते करते ही इनकी मुलाकात पास ही हुई. ये एक स्ट्रैंडेड स्ट्रे डॉग थे और उसी ट्रेवल जर्नी के दौरान इन्होंने उनको अडॉप्ट किया, उनको ये प्यारा सा नाम दिया और अपने सफर का हम सफर बना लिया.
2: That's so sweet.
3: It's a very beautiful story, ना?
2: Exactly. ऐसी और भी कई कमाल की कहानियां होती हैं जो कहीं ना कहीं हमारी एक इंस्पिरेशन भी बन जाती हैं. ये हम आपके लिए अंदर ब्रेकफास्ट शो लेकर आते रहेंगे. थ्रोबैक में ये गाना एंजॉय करें. इसके बाद लेटेस्ट न्यूज एंड स्पोर्ट्स अपडेट होगा ऑन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स.

0: accurate traffic.
1: Celebrate Matariki at Auckland Art Gallery.
2: Fine today, a bit of cloud, a high of 16. Coming in on the southern motorway, it's easing up nicely. 34 minutes Manukau to the CBD. Slow from Otahuhu, heavy spells on and off to Remuera. Northwestern, 28 minutes Massey to town. Fine to Point Chev, slow from there, a little heavy at times. Northern, 21 minutes in from Constellation. Slow patches, Sunny Nook through to Esmond. Southwestern, pretty decent, just a bit slow northbound at Whitty.
1: Matariki at Auckland Art Gallery. Waiata, Art, Kapahaka, Kai and more. 10th July.
3: Right now, many of NZ Blood's regular donors can't donate due to sickness, school holidays and the short week. So please, come off the bench and give blood and help save up to 3 lives. Book now at nzblood.co.nz.
4: The King Living Winter Sale ends soon. Save up to 50% on Australian-designed, award-winning furniture. Come home to the future of furniture. Come home to King. Sale ends soon. Shop online or visit a King Living showroom today.
5: When CityRail Link arrives soon, it's going to give us all more time. From the new Te Waihorotu station, you'll be able to go from a busy day at work in the city to the peaceful zen of home in Panmure in just 20 minutes. Auckland Transport and City Rail Link. More connections that'll take you from the city to your place.
6: Auckland Transport is upgrading your rail network this July as we get closer to more trains more often with City Rail Link in 2026. Between Thursday 9th July and Sunday 12th July, all train lines will be closed for a City Rail Link timetable trial and for essential rail upgrades. This is the best time for AT and our partners to carry out the upgrades. Buses will replace all impacted services. For details, visit at.govt.nz/matariki2026.
7: Please use your imagination for the following ad.
8: If I won Powerball, I'd book my family a trip to... And I'd stay right here with my new...
7: Imagine winning $23 million this Wednesday. Play in store or online.
9: Home. Time check.
10: Good morning, it's Amitik Nobajrihi here.
9: To you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
11: Morning, I'm Grace Cocker with the latest at 9. A man is in a critical but stable condition after a stabbing at a petrol station in Auckland's Avondale. It happened around 9:30 last night at a forecourt on Rosebank Road. Police say a 35-year-old man was arrested at the scene and will appear in court today, charged with wounding with intent. Kai Koura is beginning to assess storm damage now that conditions have eased. Dozens of residents have been evacuated and are being urged not to go home until they have been assessed. Mayor Craig Mackall says today will be confronting.
12: We've lost quite a few bridges, obviously homes, a lot of water gone through homes. But yeah, we just scraped through from the big one.
11: It's believed tenants hold the bargaining power this winter. Rental listings have jumped 10% in June. Vanessa Williams from realestate.co.nz says it should help keep prices stable.
13: I would anticipate that the weekly average rent will stay the same, if not soften a little bit more, just because of the increase in supply that we have at the moment. There's a lot of rental properties out there.
11: An overturned logging truck has closed down a stretch of Highway 1 down south. It happened on Lake Road and Surrey's Heights in Clother. In sport, to rugby with shift 4, a major boost for the All Blacks ahead of next month's tour of South Africa. MediaWorks News understands lock Fabian Holland will be available after missing the entire Super Rugby season with a dislocated shoulder. He's set to return for Otago's Ranfurly Shield defence against Mid-Canterbury on July 24th. And in the last round of 16 game at the FIFA World Cup, it's nil all at halftime between Switzerland and Colombia. Earlier, Argentina came back to beat Egypt 3-2.
9: Sports News. Brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Roskill. The beat of Bollywood.
14: World's best, hamari koi branch nahi hai.
9: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
10: 10.5 degrees abhi temperature Auckland mein aap feel kar rahe hain aaj ka high 16 overnight kam se kam 8 degrees hoga a fine day sunset sham 5:20 par hoga.
9: The breakfast show with Weejay and Pooja
15: brought to you by Fortune with whole grains and essential vitamins. Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Manukau, English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
9: What's going on? क्या बकते हो?
16: अरे कहना क्या चाहते हो?
17: आज का क्या बकते हो स्टोरी
0: और ये जो स्टोरी है आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं बेसिकली समथिंग दैट आई गॉट ऑफ द इंटरनेट और फिर से वेरीफाई भी किया है, चेक भी किया है कि ये सच की कहानी है या फिर ऐसे ही जो वायरल स्टोरी क्रिएट करने के चक्कर में कोई एक कहानी जो है ये सामने आई है. सो अपेरेंटली ये कहानी है एक लॉयर की. इन्होंने अपनी एक वीडियो जो है ये शेयर की है और वीडियो में इन्होंने बताया कि शायद ये इनकी ज़िंदगी के सबसे वर्स्ट क्लाइंट रहे होंगे. और क्यों? क्योंकि ये इनके क्लाइंट थे, ये बेसिकली इनके इनके इनके लिए ही केस जो है ये लड़ रहे थे. डिवोर्स केस था जहाँ पर एलिमनी के बारे में कुछ बातें जो ये हो रही थी. तो इन्होंने एक वीडियो बनाया और इसे इंटरनेट पर डाला सेइंग कि इनके साथ ऐसा हुआ कि ये केस लड़ रहे थे अपने क्लाइंट का. तो क्लाइंट का केस लड़ने के बाद द क्लाइंट अपेरेंटली टोल्ड हिम कि अभी जो नेक्स्ट सुनवाई है उस तक के लिए अभी मैं वापस तो आ जाऊंगा बट मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे गांव जाना है, गांव जाकर अपनी ज़मीन बेचनी है और फिर कुछ पैसे वगैरह इकट्ठा करके देन आई विल बी एबल टू पे ऑफ योर फीस एंड दिस एंड दैट, इन्होंने कहा. तो लॉयर ने उनके ऊपर विश्वास किया. विश्वास करने के बाद लॉयर ने उनसे कहा कि आई अंडरस्टैंड, तो आप चिंता ना करो, आप यू नो इतनी जल्दी भी नहीं है, कोई जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप आराम से पैसे जो है ये फीस जो है ये वापस भर सकते हैं. फिर अगली सुनवाई हुई और कोर्ट में अगली सुनवाई के दौरान जब बीवी ने एलिमनी के लिए पैसों की मांग की या उनके जो डिवोर्स केस के दौरान जब उनकी पत्नी ने एलिमनी की मांग की तो लॉयर ने भी कहा ना कि अरे कहाँ से पैसे देंगे, इनके पास तो मेरी फीस पे करने की भी पैसे नहीं है. तो उनकी बीवी ने बताया कि अरे अपने इंस्टाग्राम पर तो तुमने स्टोरियाँ डाली थी कि तुम तो दुबई गए हुए थे, 9 दिनों की छुट्टी मना कर आए हो, ये खा कर आए हो, वो पी कर आए हो, यहाँ पर ठहरे थे, इतना एंजॉय किया. तो लॉयर भी एकदम हैरान हो गया ना. तो जो उनका क्लाइंट है बेसिकली जो हस्बैंड जिनके लिए केस लड़ रहे थे, तो हस्बैंड ने अपनी बीवी से कहा कि मैंने तो तुम्हें इंस्टा पर ब्लॉक किया था, तुम्हें कैसे पता चला. बीवी ने रिवील किया कि हस्बैंड की चोरी पकड़ने के लिए इन्होंने एक फेक अकाउंट से इनको फॉलो किया हुआ था जिसके बाद स्टोरियों की जो स्क्रीनशॉट से ये इन्होंने कोर्ट में प्रेजेंट की. और ना केवल जज लेकिन जो लॉयर खुद अपने क्लाइंट के लिए केस लड़ रहे थे वो खुद परेशान हो गए कि भाई ये कैसा आदमी है, मतलब यहाँ मेरे को बोल रहा है फीस पे करने के पैसे नहीं, गांव जाकर बोल रहा है कि मेरे को जमीन बेचनी पड़ेगी और फिर दुबई जाकर मजे कर रहा है, इसका गांव क्या दुबई में, इसकी जमीन क्या दुबई के गांव में कहीं पर है. तो इट वाज अ हिलेरियस वीडियो विच केम यू नो इन लाइट दैट ऐसा भी होता है.
10: बोले लो यार पैसा नहीं है.
0: हाँ वही हुआ बस. बट द होल वीडियो इज क्वाइट इंटरेस्टिंग, जिस तरीके से लॉयर जो है ये अपनी परेशानी व्यक्त कर रहा है ना, बता रहा है कि दिस इज व्हाट हैज हैपेंड विद हिम.
10: तो ऐसी और भी कहानियां आपके लिए होंगी. हम पर कुछ देर बाद कम्युनिटी की खबरें हम लेकर आएंगे आपकी खातिर इस प्रोग्राम में. तो हमारे साथ ही आपको शामिल रहना है ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा. और अभी ना एक सवाल है, इसका जवाब आपको बस यस या नो में देना है.
0: हाँ या ना.
10: हाँ यस या नो, इतना ही करना आपको होगा. 5599 पर टेक्स्ट करना होगा जल्दी से 3 and 4, 7 minutes के अंदर. इज इट रूड टू म्यूट अ फैमिली ग्रुप ऑन सोशल मीडिया, जो ग्रुप फैमिली ग्रुप बनते हैं ना, व्हाट्सएप पर, मैसेंजर पर, वाइबा पर, जहां कहीं पर भी, इज इट रूड टू म्यूट अ फैमिली ग्रुप.
0: ओके यस या नो लिखकर अपने नाम के साथ 5599 पर हमारे पास आप भेजिए. आपके मैसेजेस का इंतजार रहेगा, थोड़ी देर बाद हम चेकआउट इन्हें जरूर करेंगे. लेकिन इसके अलावा चलिए इस घंटे की शुरुआत हम कर रहे हैं आप सभी के साथ विशाल ददलानी की आवाज है. नई फिल्म आई है अल्फा, उसका ये गाना है और हैवन सीन द मूवी सो डोंट रियली नो किस पर पिक्चराइज्ड है इज येट. गाना भी मैंने अभी तक चेकआउट नहीं किया है बट इट साउंड्स नाइस, साउंड्स फन. तो आपके लिए इस बार हम लेकर आ रहे हैं रोहनश और अबीर के संगीत पर. रोहन शरबीर लिरिसिस्ट भी है इस गाने के अलोंग विद कौसर मुनीर. तो एंजॉय कीजिएगा इस पर्टिकुलर ट्रैक को.

0: What's going on?
1: What's up?
2: What's up, Auckland?
3: क्या हो रहे हैं ऑकलैंड में, हमारे आसपास, इसकी जानकारियां जो हैं ये हम आपको देते रहते हैं ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा। सबसे पहले तो आपको याद दिला दें कि न्यूजीलैंड कैरम एसोसिएशन का जो फोर्थ न्यूजीलैंड नेशनल कैरम टूर्नामेंट है, ये 22nd और 23rd अगस्त को होगा बिकनहेड स्काउट्स हॉल। और हर एक स्किल लेवल के प्लेयर्स को इन्वाइट किया जा रहा है पार्टिसिपेट करने के लिए। आप न्यूजीलैंड कैरम एसोसिएशन का फेसबुक पेज विजिट कर सकते हैं या प्रेसिडेंट पंकज मोंगा को 021-090-85067 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।
4: और इसके अलावा इन एड ऑफ अ मेडिकल ट्रीटमेंट तिरुकुट्टू नाइट जो है ये ऑर्गेनाइज किया गया है ऑकलैंड यूनाइटेड तिरुकुट्टू ग्रुप द्वारा। ये वैदिक सेंटर पर रहेगा 10th of July को, यानी ये होने जा रहा है इसी फ्राइडे को 7:30 PM से ये रहेगा। और एंट्री फीस ओनली $10। कावा एंड स्नैक्स जो है यहाँ पर सेल किए जाएंगे। अगर आपको डिटेल्स चाहिए उन टिकट्स तो आप जीत कुमार को 021-0544-737 पर कॉल कर सकते हैं।
3: श्री राम मंदिर 11 ब्रिक स्ट्रीट हेंडरसन में अखंड रामायण पाठ रहेगा सैटरडे फेस्ट से लेकर संडे 2nd अगस्त तक। शनिवार की सुबह 7 बजे रोट पूजा होगी, जिसके बाद 8:15 बजे आरती, 9:15 बजे से रामायण पाठ आरंभ हो जाएगा जो रविवार की सुबह 10 बजे तक चलता रहेगा। और रविवार को सुबह 10:30 बजे हवन और आरती के साथ प्रोग्राम खत्म होगा। और प्रोग्राम के अंतर्गत आपके लिए भोजन का भी प्रबंध रहेगा, तो आप इसका सेवन कर सकते हैं। और अगर आप मंडली सहित में हिस्सा लेना चाहते हैं इस अखंड रामायण पाठ में, तो पंडित जी से 09836-4647 पर संपर्क कर सकते हैं।
4: रामलीला जो है एक डिवाइन थिएट्रिकल एक्सपीरियंस के लिए आप भी तैयार हो जाइएगा। 8th of August को ये रहेगा न्यूजीलैंड आर्ट एंड कल्चर चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से आपके लिए ये श्री रामलीला लेकर आ रही है। और अगर स्टॉल इंक्वायरीज आप करना चाहते हैं तो मास्टर अशोक को 021-179-5459 पर आप जरूर कॉल कर सकते हैं।
3: कम्युनिटी की कोई खबर आपके पास भी है तो buzz@humfm.com buzz@humfm.com पर अपने ईमेल से आप हमें जरूर भेज सकते हैं।

0: Breakfast Show with Vijay and Pooja.
1: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Manco. English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
2: 22 मिनट हो रहे हैं अभी 9 बजकर और द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा में अब वक्त है कि आपको हम मौका दें फॉर योर चांस टू विन ए डबल पास टू द ग्रेट कॉमेडी नाइट.
3: Absolutely, ये अपॉर्चुनिटी आपके पास है जहाँ पर द ग्रेट कॉमेडी नाइट ये होने जा रहा है और इसके लिए डबल पासेज आप जीत सके. रिमेम्बर कृष्णा अभिषेक एंड राजीव ठाकुर आर कमिंग लाइव ऑन स्टेज फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम सुपर सिटी ऑकलैंड में परफॉर्म करने के लिए 18th ऑफ जुलाई को एट विक्ट्री कन्वेंशन सेंटर. टिकट्स तो bookmyevent.co.nz से आप ले ही सकते हैं बट पासेज जीतने के लिए अब आपके पास अपॉर्चुनिटी है. 0800 004866 पर आपको कॉल करना है और कॉल करने के बाद
2: एक छोटा सा चुटकुला आप हमें सुनाएं, चाहे वो आपका खुद का क्रिएट किया हुआ हो या फिर आपने कहीं सुना देखा पढ़ा हो वो आप सुना सकते हैं. और इतना ख्याल रखना है कि ये जोक जो है क्लीन हो.
3: यस, फैमिली फ्रेंडली. यस, जैसे कि हम बोलते हैं ना कि शब्दों का ध्यान आप रखें, कैसे शब्द आप इस्तेमाल कर रहे हैं, कैसा जोक आप सुना रहे हैं, R18 ना हो इस बात का स्पेसिफिकली ख्याल रखें. रिस्ट्रिक्शंस है बिकॉज वी वुडंट वांट टू अपसेट एनी ऑफ आवर लिसनर्स कि ये किस तरह का लैंग्वेज जो है ये इस्तेमाल हो रहा है. सो विच इज वाई कीप दीज थिंग्स इन माइंड. गिव अस अ कॉल 0800 004866 पर. एक जोक जो है आप हमें सुनाइए और जैसे ही आपका जोक क्रैक हुआ, अगर हम हंस गए मतलब आपके जोक में फंस गए और हंस दिया अगर जो हमने आपके लिए, तो आपको स्ट्रेट अवे पास दे देंगे. मतलब आपको इंतजार करने की जरूरत भी नहीं कि नाम ड्रॉ में जाएगा, ड्रॉ कब होगा और ड्रॉ में से आपका नाम निकले ना निकले वो अलग बात होगी. सीधा आपका नाम उस शीट में हम एंटर कर देंगे जहां पर आपको ये डबल पास दे दिया जाएगा. इट्स दैट इजी, दैट सिंपल.
2: सो लेट्स सी आज कौन है अपनी किस्मत आजमाने के लिए. गुड मॉर्निंग. हेलो.
4: हेलो, गुड मॉर्निंग सर. आप चुटकुला सुनना चाहते हैं सर? आप पहले तो ये बताइए आप और मेम साहब कैसे हैं?
3: हम तो बढ़िया है जी.
2: ठीक है सर, बड़े दिनों बाद आपकी आवाज सुनाई दी.
4: नहीं सर, मैं अब सवेरे निकल नहीं रहा हूँ इसलिए आपसे बात नहीं हो पाती.
2: थोड़ा निकला कीजिए भाई.
3: और नहीं भी निकलना हो तो कम से कम सुनते रहिए, कभी कभार अगर बात हो जाए तो अच्छी बात है.
4: जी बिल्कुल सर, एक दिन आपसे मिलने भी आना है ना, आप ही ने बोला था तो मिलने आऊंगा.
3: हाँ, इंतजार रहेगा उस दिन का.
4: थैंक यू जी. अच्छा, एक चुटकुला तो ऐसा नहीं है, उसमें एक शब्द है, मैं उसको सेंटर कर रहा हूँ.
2: हाँ.
4: वो आप गेस कर लेंगे क्या है.
2: ओके.
4: वो क्या होता था, पहले मैं स्कूटर चलाता था और पटना नाम का एक शहर है इंडिया में, वहाँ रहता था. तो आपको ट्रक के पीछे वो लोग शेर लिखते हैं, शायरी लिखते हैं कुछ.
2: हाँ.
4: ये बड़ा शौक है इंडिया में. तो साहब मुझको एक ट्रक जा रहा था, मैंने उसे देखा, उसने लिखा हुआ था, गुल गया गुलशन गया गई होठों की लाली. इतना पढ़ पाया तो ट्रैफिक आ गया, आगे नहीं पढ़ता. अब मैं ट्रक का पीछा करने लगा, यार इसने लिखा क्या है. तो खैर काफी दूर जाके मैं उसको पूरा पढ़ पाया, तो शेर यूं था, गुल गया गुलशन गया गई होठों की लाली, अब तो पीछा छोड़ डैश हो गई बच्चों वाली.
3: अच्छा. ये डैश हम अपने हिसाब से फिल कर ले.
4: अब डैश मैं बोल नहीं सकता, रेडियो है, पब्लिक सुन रही है तो.
3: हाँ, सब अपने अपने हिसाब से फिल कर लेंगे, कोई बात नहीं. पर अच्छा है, सही था, वेरी नाइस. देखो ना, आपने ये आपका खुद का जोक नहीं है, आपका एक्सपीरियंस है, आपने कहीं पर पढ़ा, आज भी आपको याद है और आपने हमें यहाँ पे सुनाया. तो बदले में चलिए हम आपको देते एक डबल पास द ग्रेट कॉमेडी नाइट के लिए.
4: अरे वाह, थैंक यू वेरी मच मैम.
3: हाँ, आपने हमें हंसाया, अब आप हंसने के लिए तैयार रहिएगा 18th ऑफ जुलाई को विक्ट्री कन्वेंशन सेंटर पर पहुंचकर.
2: हाँ, ग्रेट कॉमेडी नाइट के लिए पास तो हम आपको दे दे, लेकिन उसके लिए आपका नाम तो लिखना पड़ेगा.
4: हाँ, मेरा नाम है शशि, SHASHI, वो आसान है
2: जी.
4: और मेरा सरनेम है श्रीवास्तव.
2: अच्छा, श्रीवास्तव नाम के लोग बड़े क्रिएटिव होते हैं,
3: बड़े टैलेंटेड होते हैं.
4: एक बहुत अच्छे आदमी है, उनको आप अच्छी तरह जानते हैं, वो अपने नाम में श्रीवास्तव लिखते नहीं है.
2: हाँ हाँ हाँ.
3: हाँ, हम जानते हैं आप किसको बोल रहे हैं. उन्हीं को रेफरेंस देके हम बोल रहे थे.
4: नहीं, आप किसकी बात कर रहे हैं?
3: जिनकी बात आप कर रहे हैं.
4: इनकलाब साहब की बात कर रहे
2: हैं।
3: हाँ हाँ हाँ उन्हीं की इनकलाब साहब
2: इलाहाबाद वाले ना
4: जी इलाहाबाद वाले
3: जी। चलो जी थैंक यू शशि जी आपके कॉल के लिए, वंडरफुल डे।
2: थैंक यू सो मच। बहुत जल्द आपको कांटेक्ट किया जाएगा भाई। इतना आसान अपना एक एक्सपीरियंस उन्होंने सुनाया और उसके जरिए एक डबल पास हासिल कर लिया द ग्रेट कॉमेडी नाइट के लिए। आपने पासेस हासिल नहीं किए, जीते नहीं है, तो खरीदना तो पड़ेगा bookmyevent.co.nz से।
0: Hollywood's most wanted.
5: गुंडी खड़ गाओ या सीधा अंदर आओ।
6: मैं लाऊं अपना ए गेम।
0: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

जी हाँ भाई बहनों, झुमरी तलिया से मुन्नी की रिक्वेस्ट आई है। रफ्ता रफ्ता देखो, आंख मेरी लड़ी है।

0: स्टोरी में इमोशन है, ड्रामा है, ट्रेजेडी है।
1: बॉलीवुड में भी तमाम चीज़ें हो रही हैं और इनकी जानकारियां जो हैं ये तो हम आपको देते ही रहते हैं, और उनमें शामिल है राघव जुयाल की आने वाली फिल्म। इनका नाम बड़ा डिफरेंट है ना,
2: राघव जुयाल।
1: हाँ, तो इनकी आने वाली फिल्म जो है आई थिंक एंड ऑफ दिस मंथ ये रिलीज होनी जा रही है, एंड इन दैट इज वर्ल्ड वाइड। हालांकि इस फिल्म के बारे में अभी कुछ खास सुनने को नहीं मिला है, लेकिन फर्स्ट लुक और टीजर इस फिल्म का ऑलरेडी रिलीज हो चुका है।
2: ओके,
1: और फिल्म का नाम है भाई तेरा स्टार है।
2: अरे वाह।
1: हाँ, ये जो मेकर्स है उन्होंने अनाउंस किया है कि ये एक हाई एनर्जी कॉमेडी मूवी है जिसमें राघव जुयाल अजय सिंह का किरदार निभा रहे हैं।
2: ओके,
1: और उनके साथ कुछ और लोग भी अब इसका स्टार कास्ट में शामिल हुए हैं। इनमें शामिल हैं बरखा सिंह। बरखा सिंह किसी और फिल्म में आई है?
2: She has done a lot of OTT platform पर projects इन्होंने किए।
1: ओके, और इनके साथ निहारिका एनएम, चंदन रोए सान्याल और संजय कपूर।
2: Very interesting star cast, I would say. And इसके अलावा एक और एक खबर जो है मेरे पास है, this is not in regards with the same project, लेकिन एक दूसरे project के बारे में है, और ये है टी सीरीज इन ऑलमाइटी मोशन पिक्चर्स, जिन्होंने अनाउंस किया है द टाटास, एक एम्बिशियस मल्टी सीजन ड्रामा सीरीज जो कि बेस्ड है ऑन गिरीश कुबेर की अवार्ड विनिंग बुक द टाटास पर, हाउ अ फैमिली बिल्ट अ बिजनेस एंड अ नेशन। वैसे आपको याद होगी हमने बातें की थी अबाउट मेड इन इंडिया अ टाइटन स्टोरी, इसके बारे में। सो ये काफी पॉपुलर हुई अमेजोन पर, और इसमें आपको काफी इंटरेस्टिंग जो कहानी है बिहाइंड द होल प्रोजेक्ट टाइटन जो है, कैसे इट केम टू लाइव, एंड ऑफ कोर्स हाउ जेआरडी टाटा वाज इन्वॉल्वड इन इट एंड व्हाट रोल डिड ही प्ले, और उसके अलावा ज़र्क्सिस देसाई जो है इन्होंने क्या कुछ किया था इन रिगार्ड्स विद दिस पर्टिकुलर ब्रांड टाइटन, इसको लेकर अपनी टीम के साथ। तो काफी बातें इसके बारे में हुई, और उसके बाद जाकर ये प्रोजेक्ट जो है ये अनाउंस हुआ है। टी सीरीज ने कहा है कि दिस सीरीज विल एक्चुअली बी क्रॉनिकल ऑफ फोर जनरेशन ऑफ द टाटा फैमिली, फ्रॉम फाउंडर जमशेदजी टाटा टू रतन टाटा, और हाईलाइट करेंगे उनके रोल्स को इन शेपिंग मॉडर्न इंडिया थ्रू द इंडस्ट्री इनोवेशन और फिलान्थ्रोफी जो उन्होंने इनफेक्ट दिखाया है, नेशन बिल्डिंग जो है उनका रहा है, कितना कॉन्ट्रीब्यूशन इस मामले में। ये कहानी इसकी करण व्यास लिखने वाले हैं, द प्रोजेक्ट इज करंटली इन डेवलपमेंट, और जो डायरेक्टर है अभी तक वो, और साथ में द कास्ट इज येट टू बी अनाउंस्ड, और इसे अभी फिलहाल के लिए एज अ प्रीमियम ग्लोबल स्ट्रीमिंग सीरीज जो है इस तरह से पोजीशन किया जा रहा है, सेलिब्रेटिंग वन ऑफ इंडियाज मोस्ट इन्फ्लुएंशियल बिजनेस फैमिलीज। सो लेट्स सी हाउ इट गोज, कैसे वर्कआउट होता है। और जैसे कि हमने कहा, जमशेदजी टाटा जो है, हु इज द फाउंडर ऑफ टाटा स्टील, उन्होंने ताजमहल पैलेस होटल भी स्टेब्लिश किया था, एंड ही ऑल्सो सपोर्टेड द क्रिएशन ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। और इसके अलावा सर दोराबजी टाटा, सर रतन टाटा और लेडी मेहरबाई टाटा जो है, इन्होंने एक्सपेंशन ऑफ टाटा स्टील में काम किया, क्रिएट किया टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर और टाटा ट्रस्ट का एस्टेब्लिशमेंट जो है ये इन्होंने किया। जेआरडी टाटा के बारे में बातें करें तो ही वॉज द फाउंडर ऑफ टाटा एयरलाइंस, ग्रोथ किया है या फिर इन्होंने ग्रो किया है टाटा मोटर्स को, और लॉन्च किया था टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। रतन टाटा वन ऑफ द मोस्ट लव्ड पर्सनल्स आई वुड से, इनफैक्ट आजकल के ज़माने में भी इनका जो काफ़ी ज़्यादा फैन फॉलोइंग ये रहा है। ग्लोबल एक्सपेंशन ऑफ टाटा ग्रुप इनके हाथ में रहा, इंटरनेशनल एक्विजिशंस और कंज्यूमर बिजनेस सच एज टाइटन कंपनी जो है इसको ये इन्होंने काफ़ी आगे जो है ये बढ़ाया है। सो लेट्स सी हाउ डज दिस टर्न आउट टू बी, और जैसे कि हमने कहा वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल बिजनेस फैमिलीज ऑफ इंडिया, इनकी हिस्ट्री कहीं ना कहीं इस सीरीज के थ्रू आपको देखने को मिलेगी।
1: वहीं पर दिलजीत दोसांझ के सतलुज जो है इसको लेकर काफ़ी कंट्रोवर्सी, काफ़ी बातें हो रही हैं, और Z5 पर ये आई और विद इन 48 आवर्स उसे हटा भी लिया गया, जिसके बाद और ज़्यादा बातें होनी शुरू हो गई, एक कंट्रोवर्सी और बढ़ती गई, और अब एक नया टर्न ले लिया है इस मामले में, जब इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने ये दावा किया है कि द फिल्म वॉज रिलीज ऑन Z5 विदाउट कम्प्लीटिंग द रिक्वायर्ड सर्टिफिकेशन प्रोसेस।
2: आई थिंक उन्होंने 127 कट्स की मांग की थी, कुछ वर्ड्स रिमूव करने की मांग की थी, कुछ नंबर्स को चेंज करने की मांग की थी. आई वॉज रीडिंग दैट आर्टिकल इनफैक्ट जो पब्लिश की गई थी. सो मैंने देखी है सतलुज, बिकॉज इट्स नॉट अवेलेबल इन इंडिया ऑन Z5, बट आउट ऑफ इंडिया इंटरनेशनली आपके पास अगर एक्सेस है Z5 का तो ये इस पर अवेलेबल है. बहुत से लोगों ने देखी है एंड अपने अपने व्यूज़ जो है ये शेयर की है. आई वुड से कि अगर आपको हिस्ट्री के बारे में कुछ समझना है, जानना है, स्पेशली जसवंत सिंह खारला जिनके बारे में काफ़ी बातें हो रही हैं, उनके ही लाइफ पर आधारित ये कहानी कहीं ना कहीं उनके बारे में है इन अ वे, तो आप ज़रूर ये जाकर देखिएगा.
3: Mornings made better.
4: Two frienda, char toast, butter jam, or a special chai.
3: The breakfast show with Vijay and Pooja.
5: Ladies and gentlemen,
3: unfiltered with Sandy and Rusby. क्योंकि दुनिया में already बहुत सारे perfect, polished, Instagram friendly stories हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं.

0: Andy and Rusby on Rover, Spotify, or anywhere you get your podcast.
1: TradeDepot.co.nz. Trade Depot brings you MyDia, the world's number one air conditioning company. Introducing the MyDia Inverter Heat Pump. It looks elegant and sophisticated, features innovative smart technology, and superb energy efficiency. Shop now for your MyDia Inverter Heat Pump, including installation anywhere in New Zealand, from only $1,299 with Trade Depot. T's and C's apply. TradeDepot.co.nz.
2: Shine Dental has a fresh new look with more space and the same caring team. New patients ke liye ultrasonic scale and polish from $99 or one tooth acrylic denture sirf $599 mein. Plus free dental examinations for new and existing patients. Free wins and ACC codes or under 18s ke liye free treatment. Visit Shine Dental at 574 Great South Road, Manukau. Book today on 09277644. T's and C's apply.
3: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
4: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras, Manukau. English heritage-inspired furniture for everyday luxury living.
5: What's going on?
4: Football updates brought to you by PFSL, providing the best home loan advice for the last 20 years. Google PFSL today. Amma's Food, 100% authentic and pure as mother's love. And Indelible Homes, your building experts known for subdivisions. Visit indelibleHomes.co.nz.
6: मैच पूरा होने ही वाला है या फुल टाइम होने वाला है बिटवीन स्विट्जरलैंड और कोलंबिया राउंड ऑफ 16 का फीफा वर्ल्ड कप में और द स्कोर्स स्विट्जरलैंड नील कोलंबिया नील.
7: दूसरी ओर एक और एक खबर जो कि सामने आ रही है और अगर आपने इसके बारे में सुना हो, बहुत सी जगह पर भी इसके बारे में काफ़ी बातें हो रही हैं ऑफ माइग्रेंट एक्सप्लोइटेशन. काफ़ी डिटेल्स जो है ये सामने आ रहे हैं. पामस्टन नॉर्थ के कंपनी के एक डायरेक्टर हैं जिन्होंने डिमांड किया tens of thousands of dollars from a migrant worker, and इसे regard किया जा रहा है as a series of abuse of power. और इसके बारे में काफ़ी बातें जो है ये सामने आ रही है. बताया गया है कि कलानी जो कि डायरेक्टर ऑफ कंप्यूटर एक्सप्रेस 24 केयर लिमिटेड या फिर कंप्यूटर एक्सप्रेस 24 केयर लिमिटेड की डायरेक्टर है, इनके बारे में काफ़ी बातचीत जो है ये हुई है और इनको 12 months home detention जो है ये सेंटेंस किया गया है after being convicted of exploiting a migrant worker. As the director of the company, she unlawfully demanded tens of thousands of dollars from a Sri Lankan employee, जिसमें repayment of wages भी शामिल था. She was also ordered to pay $59,657.68 in reparations, जिसमें unpaid wages जो है ये शामिल है, pay EYE contributions शामिल है और इलीगली किसी के पैसे ऑब्टेन करने की वजह से भी ये उन पर यू नो इनको बताया गया ये करने के लिए. इमिग्रेशन न्यूजीलैंड ने इस पूरे मामले को डिस्क्राइब किया है एज द केस एज अ सीरीज और एज अ सीरियस अब्यूज ऑफ पावर और वॉर्न किया है माइग्रेंट एक्सप्लोइटेशन लीव्स वर्कर्स फाइनेंशियली एंड इमोशनली वल्नरेबल. आई थिंक इट्स क्वाइट सैड कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में हम पहली बार तो बात नहीं कर रहे हैं. And I would not be wrong if I say कि जितने भी immigrants हैं जो इस country में आते हैं और नौकरी करने की शुरुआत जब उन्होंने वो करते हैं तो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से वो भी exploitation का शिकार होते हैं, चाहे बड़े पैमाने में हो या छोटे पैमाने में हो, but they have experienced it. और ये होता आ रहा है इतने सालों से, this is not the first time. और फिर भी ऐसे सिचुएशन में जहाँ पर कई लोगों की जिंदगियाँ बर्बाद हो जाती है, उनकी जमा पूंजी जो है ये पूरी की पूरी बर्बाद हो जाती है, तो इस सिचुएशन में भी होम डिटेंशन इट्स समथिंग टू थिंक अबाउट यू नो.
6: एक और खबर आ रही है. वेस्ट ऑकलैंड में कल एक पेट्रोल स्टेशन पर हुई मारपीट में एक व्यक्ति को चोट आई जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा. डिटेक्टिव इंस्पेक्टर ग्लेन बॉल्डविन ने बताया कि पुलिस को बुलाया गया इस पेट्रोल स्टेशन में रोजबैंक रोड एवनडेल में कल रात 9:30 के वक्त. वहां पर एक व्यक्ति जो है घायल था, थोड़ा गंभीर इनकी हालत बताई गई है, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया और वहीं घटनास्थल से 35 यानी 35 वर्षीय एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया गया जिन पर चार्जेस लगाए गए हैं विद वुंडिंग विद इंटेंट टू कॉज ग्रीवियस बॉडली हार्म और उन्हें आज बाद में ऑकलैंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेश किया जाएगा.
7: तो ये था आज का डेली राउंड अप, और भी खबरें ऐसे आपके लिए हम पर हम लेकर आते रहेंगे, इसके लिए हमारे साथ ही बने रहिएगा। बट ऑन द सेम नोट टॉकिंग अबाउट AI हर जगह पर है एक्चुअली, बहुत से लोग अपने इसे यू नो लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, सीख रहे हैं, जान रहे हैं और इसे कहीं ना कहीं अपने प्रोफेशन में इंक्लूड करते हुए अपने आप को और ग्रो कर रहे हैं। तो अगर आप भी इसके बारे में अच्छे से समझना चाहते हैं, अनफिल्टर्ड के रीसेंट एपिसोड में सैंडी एंड रूजवेंट जो है उन्होंने बातें की है AI स्पेशलिस्ट दर्शित पांड्या के साथ, जो कि एक सीनियर प्रिंसिपल इंजीनियर है एट सर्को प्लेटफॉर्म, एट सर्को जो है यहाँ पर, और AWS कम्युनिटी बिल्डर भी है। इन्होंने पूरा का पूरा ब्रेक डाउन दिया है इन द वर्ल्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कैसे ये काम करता है, कितना सेंस यू नो ये बनता है आपके लिए, ChatGPT से लेकर AI एट वर्क, जॉब सिक्योरिटी के मामले में, प्राइवेसी कंसर्न्स, अपॉर्चुनिटीज के मामले में, अपने स्किल्स को आप कैसे बढ़ा सकते हैं फ्यूचर के लिए, ये सारा कॉन्वर्सेशन इन्होंने किया हुआ है। एंड यू कैन ऑल्सो चेक इट आउट, आप यू नो चेकआउट कर सकते हैं अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रूजवे का ये लेटेस्ट एपिसोड इस पॉडकास्ट का, और इसके लिए रोवा जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर वे एवर द पॉडकास्ट आर अवेलेबल।

0: दो बातों का समय तो हो चला है, लेकिन उससे पहले आपको याद दिला दे दैट जेके स्टार प्रोडक्शंस, गोट लाइव, ड्रीम्स एंटरटेनमेंट, सिमरन प्रोडक्शंस और शहजादा प्रोडक्शंस आपके लिए लेकर आ रहे हैं द लेजेंडरी राहत फतेह अली खान, और ये आ रहे हैं सुपर सिटी यॉर्क क्लिनिक अनफॉरगेटेबल नाइट ऑफ म्यूजिक आपके लिए परफॉर्म करने के लिए। एक ऐसा एक्सपीरियंस जिसे मैजिक से कम शब्दों में डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहाँ पर ये अपने टाइमलेस हिट्स तो परफॉर्म करेंगे ही, लेकिन आपकी रूह को छूले ऐसे सूफी अंदाज में भी कुछ गाने और कवालियां जो है ये आपके लिए यहाँ पर लेकर आने वाले हैं। सो तैयार रहिएगा एक पावरफुल वॉइस को सुनने के लिए और इनकी आवाज में खो जाने के लिए ऑन द 25th ऑफ जुलाई एट द ट्रस्ट अरेना, जहाँ पर ये होने वाला है। तो dryticketsdotcom, यहाँ से अपने टिकट समय रहते जरूर ले लीजिएगा।
1: और दूसरी तरफ जो फीफा वर्ल्ड कप राउंड ऑफ 16 का मैच हो रहा है, इंजरी टाइम में अभी खेल हो रहा है, अभी भी कोलंबिया और स्विट्जरलैंड निल ऑल से बराबर हैं। इनमें से कौन सी वो टीम होगी जो क्वार्टर फाइनल्स में अर्जेंटीना का सामना करेगी, कुछ देर बाद पता चलेगा। तो अपडेट्स हम पर आपको जरूर देंगे। आज की पहली बात, भागने से नहीं भाग लेने से काम आसान होता है।
0: बिल्कुल सही।
1: और दूसरी बात, खुद को खुद की आदत डालो, खुद को खुद की आदत डालो, लोगों का क्या आज इसके कल उसके।
0: वेरी ट्रू। उम्मीद है चले इन बातों को आप याद रखेंगे और इन्हें याद रखते हुए अपनी लाइफ में सही चॉइसेस करेंगे, ताकि आप भी बेहतर से बेहतरीन बन सके। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। हमारी और आपकी मुलाकात अब होगी कल एक बार फिर ठीक सुबह 6 पर, द ब्रेकफास्ट शो विद विजयन पूजा लेकर आपके साथ हम जुड़ जाएंगे। तब तक के लिए टेक केयर।

माई टाइम फिलहाल आप यहाँ पे सुन रहे हैं यू हमिंग अलोंग विद सैंडी राइट नाउ। एंड इवेंट्स की बात करते हैं ओवर द स्कूल हॉलीडेज, माँ तारीख की वैसे ये लॉन्ग वीकेंड है तो अपने बच्चों को आप लेके जा सकते हैं बहुत सारी जगह पे, बहुत सारे इवेंट्स हो रहे हैं, बहुत सारी लाइब्रेरीज में भी बहुत फ्री इवेंट्स रहते हैं। तो अपनी नियरेस्ट लाइब्रेरी में भी आप जा सकते हैं, जैसे कि जो पार्नर लाइब्रेरी है वहाँ पे माँ तारीख की थीम्ड स्टोरी टाइम्स रहने वाली है ड्यूरिंग द स्कूल हॉलीडेज। नेक्स्ट अभी 14 जुलाई को रहने वाली है जहाँ पे बुक्स विल बी द स्टार थीम्ड, सो स्टार्स के ऊपर जो स्टोरी टाइम्स है वो रहने वाली है। सो ऑलवेज लुक फॉर योर नियरेस्ट लाइब्रेरी ऑल्सो, बिकॉज वहाँ पे ऐसे फ्री इवेंट्स बच्चों के लिए बहुत कुछ रहते हैं। एंड बहुत और भी इवेंट्स हो रहे हैं कंसिडरिंग माँ तारीख की, जैसे कि अगर आप ऑब्जर्वेटरी एंड प्लैनेटेरियम में जाते हैं जो कि वन ट्री हिल पे लोकेटेड है, वहाँ पे एक स्पेशल शो जो है माँ तारीख के टाइम पे, ये आप एक्चुअली में एक्सपीरियंस कर सकते हैं, द स्टार्स ऑफ द न्यू ईयर इसके बारे में ये जो शो है। सो stardom.org.nz पे अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे और भी इंफॉर्मेशन इसके रिलेटेड आपको मिलने वाली है।

0: चाहे आप हम के दिन चैट बीस को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माई एफएम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी। बसेस, बिलबोर्ड, ट्रेन स्टेशन, स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वी गॉट द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड। कॉल मी काशिका ऑन 021-769-755। मीडिया वर्क्स, मीडिया दैट वर्क्स।
1: पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हो या आप फ्यूचर की तरफ शिफ्ट कर रहे हो, स्मार्ट चॉइस अब सिंपल है। वे सिटी GWM हैवल, हैवल का हाइब्रिड और प्लग इन हाइब्रिड रेंज पे डिस्काउंट्स और सिर्फ 4.95% फाइनेंस ऑफर्स। आज ही वे सिटी ऑटो ग्रुप पहुँचे और जिमी टेलर और उनकी टीम से मिले। लिमिटेड टाइम ऑफर, टीज एंड सीज अप्लाई। फॉर मोर इन्फो विजिट वे सिटी ऑटो ग्रुप .nz और सर्च फॉर वे सिटी ऑटो ग्रुप ऑन सोशल्स।
2: तैयार हो जाओ एक सूफी रात के लिए। Once upon a time with the legendary Rahat Fateh Ali Khan live in concert along with Shahzaman Ali Khan Saturday 25th July at the Trust Arena. Book your tickets on drytickets.co.nz. For sponsorships, call Karam Hundal on 027-514-6477.
3: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं जैसे खुद कोई गूगल हो,
4: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स।
5: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सब डिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी। फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 09279439 और विजिट legalassociates.co.nz।
6: Auckland Transport is upgrading your rail network this July as we get closer to more trains more often with City Rail Link in 2026. Between Thursday 9th July and Sunday 12th July, all train lines will be closed for a City Rail Link timetable trial and for essential rail upgrades. This is the best time for AT and our partners to carry out the upgrades. Buses will replace all impacted services. For details, visit at.govt.nz/matariki2026.
7: And फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हो? बोली, बस मेरा फोकस है।
8: अच्छा,
7: बताओ तुम्हारा फोकस? फोकस साडा कुछ नहीं
8: मिसेस सिंह।
9: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने।
10: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन्स, फोकस किचन्स, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहुहु। कॉल 09281-3050 और विजिट focuskitchens.co.nz।
11: My Time brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better.
12: Office shout out.
13: माई टाइम फिलहाल आप यहाँ पर सुन रहे हैं ऑफिस शाउट आउट में। इस समय पर सुनील हमें यहाँ पर सुन रहे हैं अपने ऑफिस से। थैंक यू सो मच हमेशा यहाँ पे ट्यून इन करने के लिए। रोवा के ज़रिए एक्चुअली में आप हमें यहाँ पर सुन रहे हैं। रोवा के ज़रिए जब आप हमें सुनते हैं, नॉट जस्ट आप रेडियो सुनते हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स भी वहाँ पर जाके आप पढ़ते हैं। लेटेस्ट बॉलीवुड में, अराउंड द वर्ल्ड क्या क्या हो रहा है, इसके बारे में न्यूज़ भी आपको अब डायरेक्टली रोवा पर जाके मिलती है। तो मेक श्योर कि वो भी आप चेक करें। हमारी टीम की वीडियोस भी एक्चुअली में आपको वहाँ पे ज़रूर मिलती है, तो वो भी आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। बॉलीवुड के बारे में बातें करते हैं। पढ़ रही थी कि सितारे ज़मीन पर इसके बाद आमिर खान जो है अपनी नेक्स्ट मूवी के ऊपर काम कर रहे हैं जिसका नाम है ललकारा। जो मूवी है बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ लाला अमरनाथ एंड इट्स सेट ऑन 1947 पार्टीशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। सो इसमें आशुतोष गोवर्कर जो है उनके साथ ये काम करने वाले हैं एंड काफ़ी समय से इसके ऊपर एक्चुअली में काम कर रहे थे। इंटरेस्टिंगली सम ईयर्स अगो अनदर बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान, ही वॉज ऑल्सो इन टॉक्स टू वर्क ऑन द फिल्म ऑन लाला अमरनाथ। उस समय पर राजकुमार हिरानी के पास ये प्रोजेक्ट था, लेकिन फॉर सम रीजंस वो आगे नहीं बढ़ा। सो दिस वॉज आफ्टर द रिलीज ऑफ शाहरुख खान ज़ीरो एंड राजकुमार हिरानी की उस समय पर संजू मूवी आई थी। सो इस समय पर दोनों का आइडिया था कि साथ में मिलकर लाला अमरनाथ इनके ऊपर एक मूवी बनानी चाहिए, बट देन सर्टन रीजंस थे कि ये जो प्रोजेक्ट था आगे नहीं बढ़ पाया। बट नाउ आमिर खान इज़ पार्ट ऑफ दिस बिग प्रोजेक्ट। पार्टीशन के ऊपर अभी एक और मूवी भी आने वाली है जो कि सनी देओल की मूवी है बंटवारा, वो भी हम एक्चुअली में देखने वाले हैं, जिसमें सनी देओल एंड आमिर खान दोनों को हम देखने वाले हैं। रिसेंटली काफ़ी सारी होते हैं ना कि एक ही सब्जेक्ट के ऊपर मिलकर बहुत सारी मूवीज़ आती है बाहर, जैसे अभी आई थी मैं वापस आऊँगा, इस मूवी में भी थोड़ा सा इसका पार्ट, इसका अफेक्ट एक्चुअली में ज़रूर दिखाया था। सो सिमिलर काइंड ऑफ सब्जेक्ट्स के ऊपर अक्सर मूवीज़ जो है ये साथ में ज़रूर आती है। बाय द वे इसी बात पे याद आया, सतलुज मूवी अगर आपने Zee5 पे अभी तक नहीं देखी है ज़रूर देखिए, इससे पहले कि ओवरसीज ऑडियंस के लिए भी उतर जाए। पंजाब 95 का ही दूसरा नाम दिया है सतलुज, इट्स ब्यूटिफुल मूवी। एंड मुझे नई रीजंस पता है कि अभी इंडियन ऑडियंस के लिए क्यों इस मूवी को बैन किया गया है, इतना डिटेल में नहीं जाती, लेकिन इस इंसान के ऊपर, जसवंत सिंह के ऊपर जो मूवी बेस्ड है, इनकी कहानियाँ मैंने बचपन से सुनी हैं। तो हम भी एक्चुअली में अमृतसर बेस्ड है और पापा का वहाँ से ट्रांसफ़र बाद में, पापा ने करवाया था बेसिकली ट्रांसफ़र इसी टाइम के दौरान जलंधर में। सो पापा से मैंने बहुत सारी कहानियाँ सुनी है बिकॉज़ वो सिविल हॉस्पिटल में काम करते थे एंड उन्होंने बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में शेयर की है। सो जब मूवी मैंने देखी तो मैंने बहुत सारी स्टोरीज़ जो है ये एक्चुअली में कनेक्ट की कि ये सब कुछ तो मैंने सुना ही हुआ है एंड इसको दिखाने में हर्ज क्या था, बैन क्यों था ये सब कुछ दिखाना। खैर इतना डिटेल नहीं समझ में आता है बट इट्स ए नाइस मूवी। अगर आप कोई कहानी हिस्ट्री की जानना चाहते हैं जो आपको कभी बुक्स में नहीं मिलेगी तो डेफिनेटली ये मूवी जो है सतलुज ये आप Zee5 पे देख सकते हैं।
11: टॉप हिट ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, बिल्ड योर ड्रीम्स।

0: week along with Sandy right now. My time filhal aap yahan pe sun rahe hain. Tri-Vision event aapke liye the great comedy night leke aa rahe hai jisme Krishna Abhishek and Rajiv Thakur live perform karne wale hain. So do comedians ke saath double laughter yahan pe aapko experience karne ka mauka milne wala hai. Imagine kijiye jinko hamesha aapne TV pe dekha hai, actually mein unhe aap live apne samne dekhne wale hain. फैमिली फ्रेंडली इवेंट है, परफेक्ट नाइट है आपकी फैमिली के लिए जहाँ पे अनफॉरगेटेबल मेमोरीज आप क्रिएट कर सकते हैं. VIP टिकट सोल्ड आउट हो चुकी है लेकिन बाकी टिकट्स कुछ बाकी है. आफ्टर पे वो ऑप्शन भी अवेलेबल है लेकिन टिकट्स बहुत जल्दी जा रही है. ग्रैप योर टिकट नाउ, बुक माई इवेंट डॉट कॉर.nz पर जाके अपने टिकट्स आप बुक करवा सकते हैं. 18 जुलाई को ये इवेंट होने वाला है विक्ट्री कन्वेंशन सेंटर में. सो आपको यहाँ पे टिकट जीतने का मौका भी मिलने वाला है ड्राइव शो में एक सिंपल सा जोक क्रैक करने पे. सो अगर आप एक जोक क्रैक करते हैं तो आपका नाम इस ड्रॉ में शामिल हो सकता है जहाँ पे इस शो के लिए डबल पास आपके नाम हो सकता है.
1: My time brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better.
2: Driving you home. The Drive Show with Sandy and Rusby.
3: तो फिर सरिता के चप्पल का साइज क्या था?
4: तो उसने सरिता ने जाके मैडम को बोल दिया कि हाँ जी मेरे को जहाज मारा किसी ने.
5: वो भी आई लव यू वाला.
4: मैडम ने पकड़ लिया भी यहाँ से किसने बनाया. वो एक लड़की थी वो बोलती जहाज तो दिलजीत बना रहा था बेटा.
5: अच्छा आप दिलजीत तो
4: आए आए बताओगे यार.
2: Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manukau and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99 on sale now. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaku.
6: Tori and Ben didn't think they needed a DVS system.
7: We've got double glazing.
6: Have you still got that cold, damp feeling?
8: Yeah, we do.
6: So Tori and Ben got DVS home ventilation and its fresh air in, stale air out technology went to work, making their rooms drier and healthier. Say no to that cold, damp feeling. Say yes to DVS. Your healthy home isn't complete without it.
9: Do you know why so many of your neighbors are installing a shower dome shower top? Just watch the demo video at showerdome.co.nz. You'll see how a shower dome stops steam misting up your mirrors, stops mold and mildew, and saves energy. No extractor fans required. The best thing you can do for your home is install a shower dome. Available now from your local installer.
10: Showerdome.co.nz.
11: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 19 branches across Auckland and Waikato, हम हमेशा आपके पास हैं.
12: Go Bananas Childcare is now offering 30 hours for just $10 per week for all ages.
11: तो जल्दी ज्वाइन करें to enjoy these special offers. और सबसे खास बात, Go Bananas Childcare Beachlands is now open and offering 12 months completely free for a limited time. तो देर मत कीजिए. Call 0800-4626-26 today.
12: Available at selected branches. T's and C's apply.
13: अपने सपनों की दुनिया बनाने वी ऑल केम हियर एंड वी वर्क हार्ड टू प्रोटेक्ट देम बट व्हेन समथिंग गोज रॉन्ग लाइक अ कैंसर डायग्नोसिस एन एक्सीडेंट और अ हार्ट अटैक योर इंश्योरेंस क्लेम्स ओनली सक्सीड इफ योर एप्लीकेशन वाज डन राइट फ्रॉम द स्टार्ट एट अश्योर वन नितेश शीरा वर्क्स विद यू टू मेक श्योर डिटेल्स आर कैप्चर्ड नथिंग इज मिस्ड नथिंग फॉरगॉटन बिकॉज द राइट एडवाइजर नोज द एप्लीकेशन प्रोसेस द पॉलिसी वर्डिंग एंड नोज एग्जैक्टली व्हाट इट टेक्स फॉर अ क्लेम टू बी सक्सेसफुल अश्योर वन प्लान फॉर टुमारो टुडे कॉल 0800-77 हीरा नॉर्थ एंड वेल एडवाइजरी लिमिटेड ट्रेडिंग एज अश्योर वन इज अ लाइसेंस्ड फाइनेंशियल एडवाइस
1: ड्रीम डायरी.
0: माई टाइम में ड्रीम डायरी का वक्त हो चुका है. ड्रीम डायरी में आपका सपना यहाँ पे एनालाइज किया जाता है हमारे एनालिसिस टूल के जरिए. सो मेरे पास जो आज मैसेज आया था, इन्होंने मैसेज किया है कि इनका ड्रीम था कि आई वॉज फ्लाइंग ओवर सिटीज विदाउट एनी विंग्स, यानी कि उड़ रहे थे ये पंखों के बिना. So analysis says कि ये जो dream है is one of the most positive dreams people can have. Flying without wings जो है ये symbolize करता है freedom को, confidence को, personal growth को भी. ये suggest करता है कि you are starting to believe in yourself and realizing कि आपको हमेशा किसी की support की ज़रूरत नहीं है अपने goals को achieve करने के लिए. The fact you are flying over the city is interesting too because cities जो है ये represent करती है opportunities को, responsibilities को, careers को, relationships को, ऐसी सब चीज़ों को. So instead of being stuck in the traffic below, you are actually soaring above it all. So it's quite cool. आपका सबकॉन्शियस मे भी आपको बता रहा है कि स्टॉप गेटिंग कॉट अप इन एवरीडे स्ट्रेस एंड स्टार्ट लुकिंग एट द बिगर पिक्चर. सो ये ड्रीम आ सकता है वेरियस सिचुएशंस में. यू आर फाइनली लेटिंग गो ऑफ एनी फियर या सेल्फ डाउट इन योर लाइफ. एक डिफिकल्ट चैप्टर जो है मे बी आपके लाइफ में एंड हो रहा है. यू आर रेडी टू टेक अ लीप ऑफ फेथ या फिर चेंजिंग जॉब, स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस, मूविंग कंट्रीज. आप भी ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं क्या? या फिर परसुइंग अ ड्रीम. सो यू आर बिगनिंग टू एक्चुअली सी पॉसिबिलिटीज इंस्टेड ऑफ प्रॉब्लम. बहुत ज़रूरी है ये. सो आपको ये ड्रीम के बाद एक्चुअली में फील कैसे हुआ ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है. वॉज यू एक्साइटेड, जॉयफुल या फिर यू वॉज स्केयर्ड ऑफ फॉलिंग? तो वो एक्चुअली में इमोशंस को बहुत ज़्यादा वहाँ पे मैटर करता है. वेल, आपको कौन सा ऐसा ड्रीम है जो बार बार आता है? आप भी यहाँ पे शेयर कर सकते हैं. 5599 इज अ नंबर.

0: माई टाइम फिलहाल आप यहाँ पे सुन रहे हैं। रिसेंटली हमने एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया है AI के ऊपर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर। मस्ट लिसन, ये पॉडकास्ट है। AI एवरी डे हम यूज़ करते हैं किसी न किसी वे से। आजकल तो हम गूगल करते हैं तभी AI जवाब देता है, गूगल बाद में आता है। खैर, सो यस, AI लाइफ में है एंड बेटर रहता है कि AI को सीखना। लेकिन बहुत सारे सवाल आते हैं कि AI को हम कैसे यूज़ करें, कहाँ से शुरू करना चाहिए, इसके रिस्क फैक्टर क्या है, क्या अपना ज़्यादा डिटेल्स तो हम प्राइवेसी तो नहीं शेयर कर रहे हैं, उसे उल्टा तो नहीं कुछ हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे सवाल हमारे माइंड में कई बार आते हैं, तो इसीलिए ये पॉडकास्ट हमने किया है विद द AI स्पेशलिस्ट दर्शित पांड्य। इन्होंने इसके बारे में फुल समझाया है एंड यहाँ पे थोड़ा सा बिट आपके लिए प्ले करती हूँ टू मेक यू अंडरस्टैंड कि उन्होंने क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे इन्होंने बताया कि हमें AI को क्या एक्सेस जो है वो देना चाहिए।
1: के साथ ही रहेगी, उसके बाद नहीं जाएगी।
2: सो लेट्स से इफ आई हैव टू गेट ऑनटू एन AI प्लेटफॉर्म, तो क्या क्या एक्सेस देना सही रहेगा मेरे लिए अभी? मतलब लाइक फॉर एग्जांपल, व्हाट ऑल इन्फॉर्मेशन शुड आई प्रोवाइड it with, like can I give it access to my gallery, my Instagram, I don't know, like meko, I am
0: कि क्या सेफ रहेगा, कितना एक्सेस देना सेफ रहेगा।
1: True. See, ये अगेन पर्सनल चॉइस की बात हो गई। अगर जैसे मेरी गैलरी में फ़ोटो होते ही नहीं है, पहली चीज़, अगर मुझे देना है तो मैं दूंगा, क्योंकि मेरे में स्क्रीनशॉट्स होते हैं। अगर कहीं गया तो मैंने स्क्रीनशॉट डाल दिया कि आई विल रिकॉल और समथिंग लाइक दैट, राइट। पर्सनल फोटोज़ या फैमिली फ़ोटोज़ मैं इतना नहीं रखता हूँ, मूव कर देता हूँ। अगर आप लोगों को मतलब कोई मीडिया एजेंसी में, समझ लो कि मीडिया में है, मीडिया में तो भाई फ़ोटो वीडियोज़ के अलावा काम नहीं चलेगा, कंटेंट वहीं से बनाना है, तो या दे दो, और बेटर कि उसका एक फोल्डर बनाओ कि वर्क फोल्डर,
2: okay,
1: या पर्सनल फोल्डर और कंटेंट फोल्डर, और वो फोल्डर का ही एक्सेस दो,
0: okay,
1: सब ओपन न कर दो। जैसे हमारे फोन में हम सब ने ये किया है, कोई भी ऐप डाउनलोड करते थे ना इतने सालों से, तो भाई यस यस यस करके डालते, कौन टर्म्स एंड कंडीशन पड़ेगा, कौन पॉलिसी पड़ेगा, लेकिन वो सब में छोटा छोटा होता है कि भाई ये एप्लीकेशन जब आप यूज कर रहे होगे तो वी विल यूज माइक टू लिसन यू एज वेल। कई बार होता है कि जैसे हम लोग बातें कर रहे हैं, शायद फेसबुक जाके आपको या इंस्टाग्राम जाके आपको बता देगा कि अभी AI की ही रील्स आएगी, AI की ही फीड आएगा, क्योंकि हमने बहुत सारी बातें कर ली, क्योंकि वो
0: एप्लीकेशन। और इसके रिलेटेड और भी बहुत कुछ एक्चुअली में इन्होंने इस पॉडकास्ट में शेयर किया है। सो पूरा एपिसोड सुनने के लिए आइदर आप रूवा पे जाके अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रुस्बे सर्च कर सकते हैं, स्पॉटिफाई में जाके आप सर्च कर सकते हैं, अमेजोन, एप्पल म्यूजिक पे, या फिर यहाँ पे सिंपली ड्राइव लिख के भेजिए तो फुल लिंक आपको मिल जाएगा।

कंधों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी वरना छड़ी। लिख लिख कर पड़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

0: You're humming along with Sandy right now. IRD and government ka fuel relief payment scheme jo hai, is samay par kaafi iske upar question uth rahe hain. So government ne announce kiya tha ek temporary boost in work tax credit IWTC working for family system ke liye to help families deal with the rising fuel cost. So jab ye war ki situation hui thi us samay par ye unhone announce kiya tha. Eligible working families with children were expected to receive up to $50 extra per week for up to a year. जो पेमेंट था इसे टारगेट किया गया था वर्किंग फैमिलीज़ के ऊपर जो जिनके बच्चे भी हैं लो टू मिडिल इनकम हाउसहोल्ड्स के लिए फैमिलीज़ ऑलरेडी क्वालिफाइंग फॉर द इन वर्क टैक्स क्रेडिट के लिए. इसमें बेनिफिशरीज नहीं थे, सुपर एन्यूएशन वाले जो है वो नहीं थे, पीपल विदाउट चिल्ड्रन वो भी इसमें इंक्लूडेड नहीं थे. सो वाई आर सम एलिजिबल फैमिलीज मिसिंग आउट, जो इश्यू है ये अपेयर हो रहा है बिकॉज सम फैमिलीज हु बिलीव दे क्वालिफाई but they're not receiving the money. Iske possible reasons ho sakte hain, they may not be already receiving working for families ka support. So kafi families jo qualify hoti hai lekin wo registered nahi hoti hai, income details jo hai ye ho sakta hai ki updated nahi hai. Government support system jo hai ye totally current information ke upar rely karta hai. So agar family ka income change hua hai, relationship status change hua hai, number of children change hue hain, work situation change hai, to wo maybe updated nahi hai. Some families are just outside the criteria as well. So payment जो है बहुत ही strict threshold के साथ था. Families earning slightly above the income limit may miss out even if they are still facing the pressure from high petrol. So इसके ऊपर काफ़ी सवाल भी उठ रहे हैं कि should fuel relief be targeted only at certain families or should it help everyone who is feeling the pressure? Well, हमेशा हर किसी को तो हम खुश नहीं कर सकते, but yeah, सवाल जो है यहाँ पे हम राइटफुली जरूर उठा सकते हैं.
1: My Time brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better.
2: वो दिन जब मोहब्बत खतों में होती थी.
3: ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना हो ना.
2: और गानों में जज्बा

उन बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: rewind सिर्फ रोवा पर। Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 19 branches across Auckland and Waikato, हम हमेशा आपके पास हैं.
1: Go Bananas Childcare is now offering 30 hours for just $10 per week for all ages.
0: तो जल्दी join करें to enjoy these special offers. और सबसे खास बात, Go Bananas Childcare Beachlands is now open and offering 12 months completely free for a limited time. तो देर मत कीजिए. Call 0800-46-26-26 today.
1: Available at selected branches. T's and C's apply.
2: HBO Max is the all-killer, no-filler.
3: So wait, a streaming service that's full of the good stuff and no boring filler?
2: Exactly.
3: Right, we'll see. What are they called?
2: There's HBO original series The White Lotus, House of the Dragon, Euphoria, The Last of Us, The Sopranos, hit movies like Wuthering Heights, Superman, one battle after another, and then there's Friends, The Big Bang Theory.
3: Whoa, okay, I get it. Fair call.
2: HBO Max, all-killer, no-filler. Stream now.
4: Does your vacuum cleaner suck? Lawnmower not making the cut? Well, book your Auckland Council inorganic collection today and we could recycle it tomorrow. We collect items on your property and do everything we can to minimise landfill waste. To find out what's accepted, where to place it and how to book your collection, search Auckland Council Inorganics online. Tāmaki Turiki, all together Auckland.
5: Cancer touches almost all of us in some way. This Feel Better Month at Farmers, you can help. When you buy a participating beauty product or make a donation in store, you're helping provide free, practical support for people affected by cancer. At a time when cancer can leave people feeling overwhelmed and uncertain, that support can make a real difference. Cancer Support New Zealand helps people manage the everyday effects of cancer through practical sessions, expert support, and trusted resources. Support Feel Better Month at Farmers.
6: Everyday burn hazards are hotter than they look. Act fast. Cool burns under running water for 20 minutes. And for serious or large burns, always call 111. Brought to you by the Burn Support Group and the MediaWorks Foundation.
7: Why switch to Tower? Get covered in minutes and enjoy 2 months on us when you buy new comprehensive car insurance online. Use promo code 2 months. T's and C's and eligibility criteria apply. Excludes GST and levies. Switch to Kiwi. Switch to Tower.
8: Six word story
9: में ना आज थोड़ी सी different story है मेरे पास. आज की कहानी है six words में. Wi-Fi died. Family finally talked together. Once again, Wi-Fi died. Family finally talked together. So, मुझे लगता नहीं कि इसको ज़्यादा elaborate करने की मुझे ज़रूरत है, but the message is very clear. हम कई बार ना strong internet connection ढूंढने की कोशिश करते रहते हैं, but sometimes we forget कि strong human connection की भी ज़रूरत है. So, human connection को strengthen करने के लिए कई बार Wi-Fi को dead करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. Technology से हम करीब भी आ चुके हैं, जो दूर बैठे हैं, जो किलोमीटर्स अवे है, थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स अवे है, उनसे करीब आ चुके हैं, लेकिन जो हमारे साथ हैं उनसे एक्चुअली में हम बहुत ज़्यादा दूर जा चुके हैं. सो मुझे लगता है कि ना लाइफ में जब आप अपने अपनों के अराउंड होते हैं, आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स हैं, तो मेक श्योर कि वहाँ पर आप कुछ ऐसा टाइम ज़रूर रखते हैं जहाँ पर आप वाईफाई को डेड रखते हैं. मे बी सर स्विच ऑफ द वाईफाई फॉर सम टाइम यार, ज़रूरी थोड़ा है खाना खाते समय आपको टीवी देखने है, सीरीज़ देखनी है, बातें करनी है, मतलब बातें करनी है, हो सकता है मे बी सिट टुगेदर ऑन अ टेबल एंड या कहीं पे भी आप बैठे लिविंग रूम में एंड जस्ट हैव फन कन्वर्सेशंस, जस्ट फिनिश योर मील फर्स्ट एंड देन वॉच समथिंग. ये एक्चुअली में ये सिक्स वर्ड स्टोरी कहती है.
10: Top hit of the hour brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

माय टाइम फिलहाल आप सुन रहे हैं यू हमिंग अलोंग विद सैंडी राइट नाउ. एंड फरी एनिमल्स अगर आपके पास है, आपके घर में अगर पेट डॉग्स है, पेट्स है आपके घर में, तो एक चीज़ तो आपने बहुत रियलाइज़ की होगी जो मैंने भी रियलाइज़ की है कि अगर फिज़िकल एक्सरसाइज उनके लिए इम्पॉर्टेंट है, उतना ही मेंटल स्टिमुलेशन इम्पॉर्टेंट है. मेंटल एक्सरसाइज पेट्स के लिए बहुत ज़्यादा एक्चुअली में इम्पॉर्टेंट रहती है, बिकॉज जस्ट लाइक अस पेट्स जो है ये भी बोर्ड होते हैं, फ्रस्ट्रेट भी होते हैं, रेस्टलेस भी होते हैं अगर उनको ज़्यादा चैलेंजेस नहीं मिलते हैं. सो मेरे घर पे जो पेट है बॉक्सर है डॉग, एंड वो अभी 10th month का होने वाला है. एंड बॉक्सर का पपी एज थोड़ा ज़्यादा देर तक रहता है, तो हमें उसको बिजी बहुत ज़्यादा रखना पड़ता है, अदरवाइज चप्पल खा जाता है वो. सो हमने फिगर आउट जो किया है, जैसे कि पजल फीडर्स उसके लिए, मील टाइम को गेम में कन्वर्ट करने के लिए. सो इंस्टेड ऑफ सिंपली पुटिंग फूड इन अ बाउल, मे बी जो आपका पेट है उसे थोड़ी सी अगर मेहनत करनी पड़े खाना खाने के लिए, तो वो उनके लिए एक मेंटल एक्सरसाइज भी होती है. पजल फीडर्स जो है ये इनक्रेज करते हैं टू फॉर देम टू यूज़ देयर नेचुरल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल एज वेल, स्लो डाउन द ईटिंग, बिकॉज अगर आपका पेट बहुत फास्ट खाना खाए तो उससे वो स्लो डाउन भी हो सकते हैं, एंड स्टे मेंटली इंगेज्ड एज वेल. इट एक्चुअली हेल्प्ड मी अ लॉट. हाइड एंड सीक ट्रीट्स जो है ये भी बहुत एक्चुअली में इंटरेस्टिंग होता है. बहुत सारे ऐसे टॉयज़ वो सब कुछ मिलता है जहाँ पे आप ट्रीट्स को ना हाइड कर सकते हैं, एंड बाद में आप उनको पकड़ा सकते हो खेलने के लिए. आप घर पे भी ऐसे टॉयज़ बना सकते हो. सॉक्स जो है उसको आप बना सकते हो रोल करके, उसके अंदर आप एक्चुअली में ट्रीट हाइड कर सकते हैं, एंड लेट देम सर्च. उनको थोड़ा उसके ऊपर मेहनत मशक्क़त करने दो, उस ट्रीट को सर्च करने दो. सो बट यू हैव टू स्टार्ट वेरी ईजी, जैसे कि प्लेस द ट्रीट वेयर दे कैन सी देम, then gradually make it harder. So hide them behind all these toys, and then unke baad jab wo dhoondne lagenge to unki jo mental stimulation wali exercise hai ye bhi hogi. Well, aapke ghar mein agar pets hai, aap kaise handle karte hai, kya tricks apnate hain, share some ideas with me as well na, jaise main ideas share kar rahi hu, mere sath bhi thode ideas share kijiye. Yahan pe 5599 is a number. Bollywood.

0: फिलहाल माय टाइम आप यहाँ पे सुन रहे हैं यू हमिंग अलोंग विद सैंडी राइट नाउ. एंड आपको बता दें कि लेजेंडरी राहत फतेह अली खान आपकी सुपर सिटी में एक अनफॉरगेटेबल नाइट लेके आ रहे हैं जहाँ पे आप उनके टाइमलेस सॉन्ग्स को हिट्स को एक्सपीरियंस कर सकते हैं कवालीज को. एंड ऑल्सो यू नो ये ऑडियंस को बहुत ही अच्छे वे से कैप्टिवेट करते हैं, ये तो मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है. ट्रस्ट अरीना में इनका शो होगा 25th of July को, विच इज़ प्रेजेंटेड बाय जेके स्टार प्रोडक्शंस, गोट लाइव, ड्रीम्स एंटरटेनमेंट, सिमरन प्रोडक्शंस एंड शहजादा प्रोडक्शंस. टिकट्स अवेलेबल है dryTickets.com पे, तो वहाँ पे जाके अपने टिकट्स आप जल्दी से खरीद लीजिए इससे पहले कि टिकट्स आपके हाथ से निकल जाए, बिकॉज बहुत ही कम दिन बाकी है. इट इज 8th July टुडे एंड 25th July को ये शो होने वाला है.
1: My time, brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better. 80s के रेट्रो गाने.

0: Download Rover to listen Hum 80s Jukebox.
1: अरे बबीता, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी गुरुज नंबर यार.
2: क्यों, क्या हुआ?
1: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था. $20,000 चाहिए थे. बैंक गई तो इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत. एक हफ्ता हो गया, नो रेस्पॉन्स. फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में. गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है.
3: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री. कॉल 0800 LOGIC G, दैट्स 0800 564 424.
4: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 19 branches across Auckland and Waikato, हम हमेशा आपके पास हैं.
3: Go Bananas Childcare is now offering 30 hours for just $10 per week for all ages.
4: तो जल्दी join करें to enjoy these special offers. और सबसे खास बात, Go Bananas Childcare Beachlands is now open and offering 12 months completely free for a limited time. तो देर मत कीजिए. Call 0800-4626-26 today.
3: Available at selected branches. T's and C's apply.
5: Karan Aujla brings his P-pop culture world tour to New Zealand. Auckland, Spark Arena, this August. Tickets at livenation.co.nz. Don't miss Karan Aujla Live.
6: Why did I join People's Panel? Because this is the city I live in, so I care about it, and I wanted my voice to be heard.
7: Search and join the online People's Panel. Complete surveys, win prizes. Tāmaki Tūtaki, all together Auckland.
8: Rescue me, recycle me.
9: My time filhal aap yahan pe sun rahe hain. You're humming along with Sandy right now. And rescue me, recycle me ke baare mein baat karte hain. So let's talk about bananas. आपके घर में बनानास तो होते ही होंगे. बहुत सारे लोग बनानास खाना पसंद करते हैं. सो बनाना पील्स जो है, बेसिकली इसके बारे में ये टिप है. काफ़ी लोग जो बनाना खाते हैं, दे इमीडिएटली थ्रो द पील इनटू द रबिश बिन. बट जो पील है, ये एक्चुअली में इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आपके गार्डन को बूस्ट दे सकते हैं. सो बनाना पील्स जो है, उसमें पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब कुछ होता है. और ये ऐसे न्यूट्रिएंट्स है जो प्लांट के लिए बहुत ही हेल्थ, उनके ग्रोथ के लिए बहुत ही हेल्थी है, उनके रूट्स के लिए बहुत सही है, एंड बेटर फ्लावरिंग भी होती है. सो द बनाना पील यू थ्रो अवे टुडे कुड हेल्प योर गार्डन ग्रो टुमारो. सो इसको आप कैसे कर सकते हैं? यू कैन चॉप द बनाना पील्स इंटू स्मॉलर पीसेस. उसको ऐसे ही नहीं आपको डालना है, स्मॉल पीसेस में उसको चॉप करना है. आप उसको देन कंपोस्ट बिन में डालिए. मिक्स देम विद ड्राई मटेरियल्स लाइक लीव्स हो गए, कार्डबोर्ड हो गया, पेपर हो गया. सो लेट नेचर ब्रेक देम डाउन आफ्टर दैट. सो ओवर द टाइम जो पील है, इट बिकम्स न्यूट्रिएंट रिच कंपोस्ट जो आपकी सॉइल को, आपकी गार्डन की सॉइल को इम्प्रूव करता है. चॉपिंग करना ज़रूरी है बिकॉज जो स्मॉलर पीसेस होते हैं, इट ब्रेक डाउन फास्टर एंड लार्ज चंक्स को अवॉइड करते हैं ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट सिटिंग अराउंड. सो या ये आप कर सकते हैं अपने घर में. सो अ पॉपुलर DIY गार्डन ट्रिक भी है इन क्रिएटिंग अ लिक्विड फीड, जिसमें आप बनाना पील्स को कट करके पीसेस में आप उसको जार में डालिए, बकेट ऑफ वाटर में या फिर जार डालिए, कुछ दिनों के लिए छोड़ दीजिए. देन स्ट्रेन द वाटर. तो यूज़ इट टू वाटर आउटडोर प्लांट्स. तो इससे क्या होगा कि न्यूट्रिएंट रिच लिक्विड वहाँ पे आएगा जो आपके प्लांट्स को ग्रो करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है. सो बनाना पील चाहे लिक्विड में आप यूज़ कर रहे हैं, चाहे वैसे आप कंपोस्ट बिन में यूज़ कर रहे हैं, दोनों वे से भी आपके प्लांट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्थी है.

0: मेरी आवाज गूंजेगी।
1: लंच बॉक्स विद केतन।
2: आ गया, आ गया, आ गया।
3: किया नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम, बुलाब का स्वागत करते हैं आज।